0: शिष्यत्वात् सर्वसः। अब क्या कहते हैं ब्रह्मा जी कि तब हिमालय ने उत्साह पूर्वक दुर्गा और शिव जी का उपनयन संस्कार वैदिक मंत्रों द्वारा करवाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि गर्ग मुनि ने क्या किया, दोनों का उपनयन संस्कार करवाया
1: गर्ग मुनि ने,
0: और पार्वती को दुर्गा शब्द से ही संबोधित किया जा रहा है क्योंकि पार्वती ही दुर्गा है, दुर्गा ही पार्वती। अब कहते हैं कि फिर विष्णु आदि देवता और मुनिजन गिरिराज हिमालय की प्रार्थना को सुनकर कुतूहल के साथ प्रवेश किए, वेदाचार और लोकाचार को यथोचित विधि से करके शिवजी द्वारा दिए गए आभूषणों से शिवा को विभूषित किया। पहले उसे स्नान कराया, फिर ब्राह्मणों की स्त्रियों तथा सखियों ने उनकी आरती की, दो नए वस्त्रों को उसे पहनाया जिससे जिनसे वह सुशोभित हुई। उस समय वह हिमालय की कन्या शंकर की पत्नी शोभित हुई, हिमालय की कन्या थी लेकिन शंकर से उनका विवाह हो रहा था तो वो उससे सुशोभित हुई। वीरराज महाशैल दुहिता शंकर प्रिया कंचुकी परमा दिव्या नाना रत्नान्विता अद्भुता विधृता च तया देव्या विलसंती अधिकम मुने सा बभार तदाहारम दिव्य रत्न समन्वितम वलयानी महारानी शुद्ध चामी करानी च स्थिता तत्रैव सुभगा ध्यायन्ति मनसा शिवम सुशुभे अति महाशैल कन्यका त्रिजगत प्रसु। अब कहते हैं कि उस समय उसने अनेक रत्न जटित सुंदर कंचुकी को धारण किया, उससे वह अधिक सुशोभित हुई। उसके बाद उसने दिव्य रत्न जटित हार को धारण किया और बहुमूल्य शुद्ध सोने की चूड़ियों को भी उसने धारण किया। वह सौभाग्यवती गिरिराज पुत्री तीनों लोकों की माता मन से शिव जी का ध्यान करती हुई वहीं बैठी हुई शोभित हो रही थी। उस समय दोनों ओर आनंददायक उत्सव मनाया जा रहा था। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए गए जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय औरों को भी दान दिया गया। उत्सव के साथ गीत वाद्य भी वहां हो रहा था। फिर मैं यानी ब्रह्मा जी विष्णु आदि देवता तथा मुनिजन सभी प्रसन्न होकर उत्सव मनाने लगे। भक्ति से शिवा को प्रणाम कर और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर हिमालय की आज्ञा पाकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इस बीच वहां ज्योतिष शास्त्र के पंडित गर्ग मुनि ने गिरिराज हिमालय से कहा। अब गर्ग मुनि जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पानी ग्रहण संस्कार के लिए शिव जी को ले आइए। अब सभी उठ गए और वेद मंत्रों के साथ बाजे बजने लगे, प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे शिव जी को लेने के लिए संभवतः पर्वत आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम सब के बड़े भाग्य से पानी ग्रहण का समय आ गया है। और सभी हिमालय के घर पहुंच गए थे। कहते हैं कि काली जो है वो कौन है, पार्वती, पार्वती ही दुर्गा है, पार्वती ही काली है। कहते हैं काली के प्राप्त होने की इच्छा से शंभु अत्यंत प्रसन्न हुए क्योंकि हर जन्म में काली किनकी बनती है, भगवान शिव की। और यद्यपि माता पार्वती जब शिव से विलग होती है तो सब कुछ भूल जाती है, जीवात्मा रूप में जब इस संसार में आती हैं तो सब कुछ भूल जाती हैं, सब कुछ नए सिरे से उनका होता है, लेकिन अंदर में परमेश्वर के प्रति इतना प्रेम भरा हुआ है कि वो प्रेम खत्म नहीं होता। और जिस तरह से बारिश के समय में सूखी हुई दूब हरी हो जाती है, ठीक उसी तरह से भावनाएं समय पाकर के हरी हो जाती हैं कि पार्वती और शिव का पहला साक्षात्कार जब होता है तो पार्वती अपने शिव को कहीं ना कहीं से पहचान लेती हैं और फिर उनके अंदर प्रेम का अंकुरण होता है, चाहे वो जिस किसी भी रूप में आए इस धरती पर, लेकिन अंततः भगवान शिव को वो पहचान ही लेती हैं। यानी जीवात्मा परमात्मा की सहचरी है और जीवात्मा हमेशा परमात्मा को ढूंढती रहती, और इस ढूंढने के क्रम में जो उत्सुकता जो प्रेम उनके अंदर जागृत होता है वही वैराग्य का भी रूप धारण करता है क्योंकि परमात्मा को वैराग्य से ही वो पा सकती है। प्रेम में वैराग्य ये होना पार्वती से कोई सीखे। वैराग्य मतलब कि संसार से उन्होंने अपने आप को खींच लिया और जोड़ दिया किससे? भगवान शिव से। संसार को माइनस कर दिया, शिव जी को प्लस कर दिया। शिव का अनुराग जिनके रग रग में बह रहा हो, शिव के प्रति पुलकन है, शिव के प्रति ही उनकी धड़कनें धड़कती हैं, शिव ही जिनकी सांसों में बसे हुए हैं, शिव ही जिनके रोम रोम में हैं, वो हैं पार्वती, वो हैं काली, वो हैं दुर्गा। तो कहते हैं कि दोनों जो है सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और महोत्सव मन रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश सब आगे चलते आगे आगे चल रहे थे। उस महोत्सव में शंख, भेड़ियाँ, नगारे, बड़े ढोल, गोमुख आदि बार बार बजाए जा रहे थे। गायक मंगल गान गा रहे थे, स्त्रियां अनेक प्रकार से नृत्य कर रही थीं। इन सब के साथ संसार के एकमात्र हितकर्ता परम शक्ति से संपन्न होकर उस समय समस्त देवों द्वारा प्रसन्नता से सेवित तथा फूलों की वर्षा को स्वीकार करते हुए वहां गए। अब देखिए यहाँ दिया है स्त्रियां उस समय नृत्य कर रही थी, यानी कि केवल आज के समय स्त्रियां नृत्य नहीं करती थी, उस समय भी स्त्रियां नृत्य कर रही थीं। बीच में ये नृत्य आदि सब खत्म हो चुका था, लेकिन अब सब कुछ हो रहा है कि बारात के साथ साथ स्त्रियां भी जाती थी और अब भी जा रही हैं और नृत्य गान सब जगह होता है। अब कहते हैं कि बड़े सम्मान के साथ शिव जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। बारात के साथ आए, यज्ञ मंडप में उन्होंने प्रवेश किया, वहाँ उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की गई। अब कहते हैं आगे कि विषाद दुतार तारयामास सुमहेशम पर्वतोत्तम निन्यूड गुहांतरम प्रीत्या महोत्सव पुरः सरम हिमालयो अपि संप्राप्तम सदेवगण मिश्वरम प्रणम्य विधि बद भक्त्या नीराजनम अथागरोत। नीराजनम मतलब आरती। कहते हैं कि पर्वत श्रेष्ठों ने उन्हें बैल से उतारा और महान उत्सव तथा प्रेम के साथ उन्हें घर के भीतर ले गए। देवताओं के साथ अपने घर में आए हुए शिव जी को हिमालय ने भक्ति से विधिवत प्रणाम किया और उनकी आरती उतारी। सभी देवताओं मुनि आदि को प्रणाम कर बड़े उत्साह के साथ अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए हिमालय ने उन सब का सम्मान किया। वह हिमालय विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को अर्धपाद्य द्वारा सम्मानित कर अपने घर के भीतर ले गया और उसने ब्रह्मा विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को आंगन में रत्न सिंहासनों पर बैठाया, क्योंकि राजा का घर था भाई, रत्न सिंहासनों की कमी नहीं थी, तो उन रत्न सिंहासनों को उसने विशिष्ट अतिथियों के लिए रखा हुआ था, वो थे ब्रह्मा विष्णु महेश। अब कहते हैं कि मीना ने, उसकी सखियों ने, ब्राह्मणियों ने तथा सौभाग्यवती स्त्रियों ने प्रसन्नता से उनकी आरती। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित ने शिव जी के हाथ से मधुपर्क आदि कृत्य विधिवत करवाए। हे मुनि, मैंने पुरोहित को प्रस्ताव के अनुसार मंगल कार्य करने की प्रेरणा दी, उसने भी तदनुसार सब किया। हिमालय ने अत्यंत प्रेम के साथ घर के भीतर प्रवेश कर वहाँ समस्त आभूषणों से विभूषित वेदी के ऊपर बैठी वह कृशोदरी पार्वती सुशोभित हो रही थी। मेरे और विष्णु के साथ शिव जी को वहाँ ले आए। कन्यादान के योग्य लग्न की प्रतीक्षा करते हुए बृहस्पति आदि देवता वहाँ आनंदित हो रहे थे। खूबसूरत वर्णन है। और देखिए जो विवाह आजकल करवाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि सतयुग में जो शिव पार्वती का विवाह हुआ था वहीं से सब कुछ लिया,
1: वही विधि विधान,
0: वही
1: मंत्रोच्चारण द्वारा,
0: वही मंत्रोच्चारण है, वही सब कुछ है और उसी के अनुसार दंपति में जो कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ दंपति शिव और पार्वती को ही कहा जाता है। हमेशा वामांगी बन करके पार्वती उनके साथ रहती है, शिव पार्वती को नहीं छोड़ते, पार्वती शिव को नहीं छोड़ती, चाहे जन्म जन्मांतर क्यों नहीं पार्वती के हो जाए, लेकिन पार्वती हमेशा शिव की ही होती है और शिव हमेशा पार्वती को कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकालते हैं।
1: और ये भी तो एक बात देखिए लीना जी कि विवाह के मंत्रोच्चारण के लिए, विधि विधान के लिए, सारे संस्कार के लिए एक विद्वान पंडितों को ही चुना जाता है
0: जी,
1: जिन्हें ये सारे सब कुछ विद्या आती हो, कोई छोटे मोटे या थोड़ी सी उच्च श्रृंखल से विद्या वाले पंडित को विवाह के लिए नहीं चुना जाता। तो ये पहले से ही परंपरा चली आ रही है कि गर्गाचार्य ऋषि गर्ग के जैसे महाऋषि जो वहाँ पे मंत्रोच्चारण हो रहा है और उनको पाणी ग्रहण संस्कार करा रहे हैं, तो उसी परंपरा को आज भी ये यहाँ पर चल रही है हमारे समाज में कि विद्वान ब्राह्मणों को ही चुना जाता है जो विधि विधान से और उचित मंत्रोच्चारण द्वारा पूरी तरह से विवाह को संपन्न करा सके और उसके पूरे वेदोचित जो हैं जितने भी मंत्र हैं उनका सही तरह से वहाँ पर पालन हो सके।
0: लेकिन आजकल क्या होता है कि रात्रि में सब कुछ होता है, रात में लोग नाच गा करके थक जाते हैं, थकने के बाद खाना पीना खाया यानी कि बरवधु भी खा लेते हैं, प्रायः सब खा पी लेते हैं, उसके बाद आराम करने का समय आता है और उस समय विवाह होता है। विवाह जैसा शुभ कार्य उस समय होता है जिस समय सभी थक करके चूर हो जाते हैं, तो फिर विवाह हुआ कहाँ ठीक से। वेदोच्चारण जहाँ होता है वहाँ उसी समय कान में फूंक देते हैं कोई कि पंडित जी जरा जल्दी जल्दी करवा दो, उतना समय नहीं है। हर चीज़ के लिए समय है, फोटो खिंचाने के लिए समय है, बारात के स्वागत के लिए समय है, खान पान के लिए समय है, सब कुछ के लिए समय है, लेकिन विवाह के लिए समय नहीं होता। जबकि अगर पूर्ण विधि विधान के साथ विवाह कराया जाए तो 2-3 घंटे लग जाते हैं
1: बड़े आराम से।
0: हाँ,
1: बड़े आराम से लग जाते हैं,
0: लेकिन ऐसा होता नहीं है।
1: लीला जी आप याद करिए कि अभी भी अभी पिछली पीढ़ी को लेकर चलते हैं, तभी भी 12 बजे के करीब जो है वो शुरू होते थे फेरे मंत्रोच्चारण के साथ में, और सुबह के 4-5 बजे तक जो है खत्म होता था विवाह का मंत्रोच्चारण। लेकिन अब क्या है कि 1 बजे तक, जैसा कि आपने बताया कि वो नाच गाना चलता रहता है, फोटो सेशन चलते रहते हैं, और फिर उसके बाद में 2 बजे के करीब वो फिर शुरू होता है। तो उसमें क्या है कि पुत्र के और पुत्री के जो घर वाले हैं बस वही लगभग वही
0: हो जाते हैं।
1: हाँ, और आप ठीक कह रही हैं कि उनके कान में डाल दिया जाता है कि थोड़ा विवाह भाई जल्दी ख़त्म कर देना। अब 2 बजे वो बैठे हैं दूल्हा दुल्हन, या 2:30 बजे बैठे हैं, और 4 बजे फिर उनको ख़त्म करना पड़ेगा।
0: दुल्हन सो रही है, दूल्हा भी सो रहा है, नींद आती रहती है, प्रायः नींद आती रहती है, स्वाभाविक है नींद आएगी। तो इसलिए सवेरे का टाइम जो होता था प्रातः काल का, उस समय जो विवाह होता था वो दैवी विवाह होता है,
1: क्योंकि एक
0: देवताओं का अनुग्रह बरसता है। लेकिन इस समय पिशाच, प्रेत, राक्षस ये सब घूमते रहते हैं
1: ब्रह्म मुहूर्त में जब।
0: तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जो विवाह होता था, विवाह कार्य होता था, वो सबसे अच्छा होता था। और ब्रह्म मुहूर्त नहीं
1: हुआ,
0: दिन में फिर भी विवाह करिए वो भी अच्छा है, लेकिन 12 बजे रात के बाद तो भूत प्रेतों का टाइम आनंददायक नहीं रहता, स्थिति आनंददायक नहीं होती है उस समय। हाँ, नींद तोड़ करके लोग आते हैं और कुछ देर बैठते भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ये अरुचिकर होता है। और इस समय वेद मंत्र भी लोगों को कान में मधुर नहीं लगते हैं, तो इसलिए हम लोगों को इस विषय पर विचार करना चाहिए।
1: लीना जी, जैसे आजकल का ब्रह्म मुहूर्त जो है, जैसा कि कहा है, मैंने भी सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से फिर 5 बजे तक का, और उससे ऊपर भी जा सकते हैं, वो सारा ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो उस अवधि में, उसी काल में जो है विवाह संपन्न होना चाहिए, जैसा कि आप कह रही हैं।
0: लेकिन प्रायः सुबह हो ही जाती है, वो तो हो गई, लेकिन रात की जो थकान रहती है वो उस ब्रह्म मुहूर्त को जो है आनंदित नहीं कर पाती। तो इसलिए इस विषय पर हमें विचार करना चाहिए आज के समय में। अब देखिए, जब शिव का विवाह हो रहा था तो सभी दिवस में गए थे और आनंद मग्न थे, उत्सव हो रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी वहाँ पर विराजमान हैं और पार्वती के साथ शिव जी का विवाह हो रहा है, और जितनी भी नागरिक स्त्रियाँ थी, नगर की वधुएँ थी, सब इन दोनों को देख देख करके क्या हो रहे थे, मगन हो रहे थे, विभोर हो रहे थे, आत्मविभोर हो रहे थे। कहते हैं कि जब गर्ग ऋषि जब बोलते हैं कि ये शिव जी को ले आइए, तो सब विभोर होकर के उनको देख रहे हैं। कहते हैं जहाँ घड़ी रखी थी वहीं गर्गाचार्य बैठे हुए थे। जैसे ही घड़ी समाप्त हुई वैसे ही ओम का उच्चारण किया। गर्गाचार्य ने पुण्य वचन कह करके अपने हाथ

0: जी शिवा की पूजा करें। देखिए उस समय भी ये चलन में था कि वर वधु की पूजा करे या वधु वर की पूजा करे, क्योंकि दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित होता है इससे। और अगर हम मन से, तन मन धन से एक दूसरे को सम्मान देते हैं तभी सम्मान मिलेगा, नहीं तो सम्मान नहीं मिलेगा। आजकल तो एक छत के नीचे रह करके भी पति पत्नी में बातें नहीं होती हैं कभी कभी। तन मन मिलते हैं, आत्मा नहीं। तो तन मन और आत्मा ये तीनों मिल जाए तभी विकास है, मुक्ति है। अब कहते हैं कि इस प्रकार वे दोनों पार्वती परमेश्वर लौकिक रूप से परस्पर पूजा करते हुए सुशोभित हो रहे हैं। पार्वती और शिव जी एक दूसरे क्या कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे। तीनों लोकों की शोभा से सुशोभित एक दूसरे को देखने वाले उन दोनों की लक्ष्मी आदि स्त्रियों ने आरती उतारी। उसी प्रकार ब्राह्मणों की स्त्रियों और नागरिक स्त्रियों ने उनकी आरती की और शिव शिवा को देखती हुई बहुत प्रसन्न हुई। शिवांच संभुंश विलोकयंत्यो अपूर्वम मुदम ताह सकला महोत्सवम। ये अपूर्व मोद उन्हें होने लगा, आमोद प्रमोद में दोनों रम गए और इस तरह से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 48वां अध्याय अब शुरू हो रहा है। अभी विवाह जो है पूर्णतः संपन्न नहीं हुआ है, अभी दोनों एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, अब क्या कहते हैं। इसी समय गर्गाचार्य द्वारा प्रेरित हिमालय मेना के साथ कन्यादान करने के लिए तैयार हुए। अब कन्यादान भी हो रहा है, यानी कि जितनी विवाह परंपरा है
1: तभी से है,
0: वो उसी समय से है। पानी ग्रहण हो रहा है, द्वार पर पूजन हो रहा है वर का, फिर वधू वर वधू दोनों का पूजन एक दूसरे लोग कर रहे हैं। अब पानी ग्रहण संस्कार हो रहा है, कन्यादान हो रहा है। तो अब कन्यादान में क्या है, कहते हैं सोने का घड़ा लेकर वस्त्र तथा आभूषणों से शोभित भाग्यवती मेना हिमालय के बाईं ओर आकर खड़ी हो गई। माँ बाप करते हैं कन्यादान, और कन्यादान जो होता है वो थोड़ा सा विव्वल भाव विव्वल कर देने वाला क्षण होता है, क्योंकि माता पिता यही सोचते हैं कि चलो अब तो हम कन्या को दान दे दिए और कन्या पराई हो गई। कन्यादान के पहले पराई नहीं होती है, कन्यादान करने के बाद पराई होती है, क्योंकि कन्यादान को सबसे अधिक शुभ माना गया कि आपने कन्या का दान किया तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल है, कि क्योंकि कन्या बहुत प्रिय होती हैं हर किसी को, हर माँ बाप को। पर सबसे प्रिय वस्तु का दान जिसने कर दिया,
1: सबसे बड़ा दान,
0: ये सबसे बड़ा दान
1: दान कहलाता है।
0: तो अब कहते हैं कि हिमालय के पास मेना आकर के खड़ी हो गई। पाद्यादि भी ततः शैला प्रहिष्ट स्वपुरोहित तम वरम वर्यामास वस्त्र चंदन भूषण ततो हिमाद्रिना प्रोक्ता द्विजा तिथ्या कीर्तन प्रयोगो भन्यताम तावद विस्मयम समय आगते। अब कहते हैं कि तब पुरोहित सहित हिमालय ने प्रसन्न होकर पाद्यादि तथा वस्त्र चंदन आभूषणों से उस वर का वरण किया। तब हिमालय ने ब्राह्मणों से तिथि आदि सहित समय के आने पर कन्यादान संकल्प पढ़ने के लिए कहा। यह सुनते ही उन ज्योतिषी ब्राह्मणों ने निश्चिंत होकर तिथि आदि का उच्चारण किया। शिव जी द्वारा हृदय से प्रेरित हिमालय ने सृष्टिकर्ता शिव जी से हंसते हुए कहा, हे शिव जी, अपना गोत्र प्रवर कुल नाम वेद तथा शास्त्र कहिए, देर मत कीजिए। क्यों हंस रहे थे हिमालय, क्योंकि वो तो जानते थे कि शिव जी का ना कोई कुल है ना कोई गोत्र है। तो हंसते हुए कहते हैं कि स्वगोत्रम कथ्यताम संभो प्रवरश्च कुलम तथा नाम वेदम तथा शाखाम मा कार्षी समयात्ययम। अब ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्य वचस्तस्य हिमाद्रे शंकर तदा सुमुखो विमुख सद्यो अपि असोच्य सोच्यताम गतः एवं विधः सुरवरैः मुनिभिः तदानीं।

0: गंधर्व यक्ष गण सिद्ध गणेश तथैव दृष्टो निरुत्तर मुखो भगवान महेशो अकार्षी सदाय मथ तत्र स नारद तुम। अब कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हिमालय के इस वचन को सुनकर सुमुख शिव जी उदास हो गए, अशोचनीय होने पर भी चिंतित हो गए। इस प्रकार उस समय देवता मुनि सिद्ध गंधर्व तथा यक्ष गणों ने भगवान शिव जी को चुप हुए देखा तो तुमने हे नारद उनकी सहायता की। हे नारद, ब्रह्म तत्व को जानने वाले तुमने शिव जी से प्रेरित होकर उस समय वीणा बजाई, तब बुद्धिमान गिरिराज ने हठ के साथ तुम्हें रोका और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु देवता मुनि आदि ने भी रोका। शिव जी की इच्छा से जब तुम रुके नहीं तब हिमालय ने तुमसे कहा वीणा मत बजाओ। हे पंडित देवर्षि, जब तुम्हें हट से उन्होंने रोका तब तुमने शिव जी का स्मरण कर उनसे कहा। अब क्या कहे नारद जी, सुनने लायक बात है। नारद जी ने कहा कि तुम ही मूढ़त्वम आपन्नो न जाना सी च किंचन वाच्ये महेश विषय अतिव असी तुम बहिर्मुख त्वया पृष्टो हरह साक्षात गोत्र कथनम प्रति समय स्मित ददंत्य उपहास करम वचः अस्य गोत्रम कुलम नाम नैव जानन्ति पर्वत विष्णु ब्रह्मा देव अपि परेशाम का कथा स्मृता। अब नारद जी कहते हैं कि तुम महान मूर्ख हो जो उनके कुल और गोत्र को पूछ रहे हो, तुम कुछ भी नहीं जानते। शिव जी के बारे में तुम सर्वथा अनभिज्ञ हो। तुमने शिव जी से पूछा कि तुम्हारा क्या गोत्र है, इस समय तो यह पूछना उपहास करना है। इनके गोत्र कुल नाम को तो हे पर्वत ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु आदि भी नहीं जानते, दूसरों की तो बात ही क्या है। हे शैल, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, उन्हीं शिव जी को आज तुम काली के तपोबल से देख रहे हो। तुम शिव जी को जो साक्षात देख रहे हो वो काली का तपोबल था इसलिए देख रहे हो, बहुत तो सुंदर देख नहीं पाते।
1: बहुत सुंदर विवाह का वर्णन आपने सुनाया लीना जी, हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: दोस्तों, अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं इस एपिसोड को आगे बढ़ाऊं, तो आप कृपया मुझे भी इजाज़त दीजिए और अगली बार पुनः अगले एपिसोड में हम यहीं पर मिलेंगे मानव रचना रेडियो स्टेशन 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइफ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM फील गुड फील लाइफ।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
2: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
3: ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
1: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं। उनसे कुछ पूछो तो कहे कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा है, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
3: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन हैं और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हरन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। मानव शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अमर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहाँ उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं आता। तो इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
1: बिल्कुल,
3: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते
1: हैं बिन बुलाए मेहमान।
3: जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में, तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण हैं, उसके मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण हैं। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में लें तो कहा जाता है KP² LHBP अर्थात के फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, P फॉर प्योरिटी जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर पी फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, पी फॉर पीस, एल फॉर लव, एच फॉर हैप्पीनेस, बी फॉर ब्लिस और लास्ट पी पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
1: खुद के मन में क्या है
3: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
1: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, ये होता है
3: जी, बिल्कुल। उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो फिर से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
1: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला।
3: तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही, तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है तब भी हम स्टेबल रहें, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है। जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की। तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है। आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया, और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का अशांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
4: बिल्कुल। और ये जितनी भी सात चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना।

0: ہے, باقی بھگوان نے یہ ان بلڈ ہمارے لیے رکھی ہے. بالکل صحیح کہا, ہم دوسروں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, ہم کبھی خود کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. اور وہی آپ نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ اگر آپ خود کو جان لیتے ہیں بس وہی ایک آتما کا پارٹ ہے, وہی جو ہے پورا پرفیکٹ ہے آپ خود میں. بہت صحیح بات بولی. گیتا کے گیان کی ہم بات کر رہے ہیں اور ادھیائے دو ہے, نام ہے گیان یوگ, اور اس میں ہم چرچا کر رہے ہیں کہ ہم ایک آتما ہے کے بارے میں. جیوتی جی نے بہت خوبصورتی سے بتایا, اور اب ہم پریا جی کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس ادھیائے میں آگے کیا ہے. پریا جی بتائیے.
1: آگے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ارجن کو وہ بار بار یاد دلا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں پرماتما کہ تمہیں یدھ کرنا ہی ہے, جس کے لیے وہ کہتے ہیں ہتو وا پراپسیسی سورگم جتوا وا بھوکشیسے مہیم تسماد اتشٹھ کونتے یدھائے کرت نشچیہ. ارتھات پارتھ ارتھات جو ان کا اسٹوڈنٹ ارتھات ارجن کو انہوں نے کہا کہ تم چاہے مر کر کے سورگ پہنچو یا پھر جیوت رہ کر یدھ کر کے اس پوری سرشٹی پر جیت پراپت کر سکھ کو بھوگو, تو اسی لیے تمہارا بیسٹ یہی ہے کہ تم یدھ کرو. تو کیونکہ سمپل کچھ کیے بنا جانا اور کچھ کر کے جانا, اس میں بہت فرق ہوتا ہے. تو یہاں ان کو وہ بار بار یاد دلاتے ہیں کہ آپ کو یدھ کرنا ہے, اور یدھ کرنے میں ہم کانشیس یہ نہیں ہوئے کہ کون جیتے گا یا ہارے گا, ہمیں کانشیس ہونا ہے کہ ہماری فائٹ اچھے سے ہو. تو پھر بات یہاں آتی ہے, اسپرچویلٹی یہ کہتی ہے کہ کیا ہمیں فزیکل فائٹ کے لیے پرماتما پریر رہا ہے, ہمیں وہ گائیڈ لائنز دے رہا ہے کہ شوڈ وی گیٹ دا ویپنز, کی ہمیں ہتھیار اٹھانے ہیں. پر یہاں پر پرماتما ہمیں ہمارے گنوں کے ہتھیاروں کی بات کرتا ہے کہ جہاں میرا مینٹل فائٹ ہے, جہاں دوند ہے, جہاں میں کنفیوز ہوں, جہاں ڈیلیما سٹارٹ ہوتے ہیں, وہاں میں اپنے فوکس کروں انٹرنل شکتیوں پر, جیسا کہ جیوتی جی نے بتایا کہ یہ سب چیزیں میرے پاس مجھے پرماتما سے آپ نے کہا ان بلٹ ہے, گاڈ گفٹ ہے. تو اس پر اگر میں فوکس کرتا ہوں تو میری یہ فائٹ میرے لیے بہت ایزی ہو جاتی ہے. اور فائٹ مجھے کرنی ہی ہے, بنا فائٹ کیے میں آگے بڑھ نہیں سکتا. اسی یوگ کو جو آپ نے کہا گیان یوگ ادھیائے کا نام ہے, تو یہاں پر پرماتما ہم کو سمپورن گیان کا پریبھاشا ڈیفینیشن وہ یہ کہتے ہیں کہ آتما کا گیان ہی سمپورن گیان ہے. مینس اگر میں اپنے آپ کو نہیں جانتا, اپنے استتو کو نہیں جانتا, تو میں اگر پوری دنیا کا پورا گیان بھی ارجت کر لیتا ہوں تو بھی میں انکمپلیٹ ہوں. اور دیٹس وائی دیکھا یہ گیا ہے کہ جب ہم ہائر لیول پر کسی بلندی پر کسی کو دیکھتے ہیں تو اینڈ آف دا ڈے وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ رہ گیا ہے. اور وہ کیا رہ گیا ہے کہ خود کو جانا اور خود کے بعد خدا کو پانا. یہ چیز جو ہماری زندگی میں رہ جاتی ہے اسی کے لیے ہمارے کو پرماتما یا کرشن روپ میں ہمارے کو بتا رہے ہیں. اس کے بعد وہ ہمارے کو یاد دلاتے ہیں کہ ہمارا جو من بدھی سنسکار, جیسے کہ جیوتی جی نے کہا, تو من جو ہے وہ کئی طرح کے تھاٹس کو کریٹ کرنے کی ایک فیکٹری ہے. بس اس فیکٹری میں پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے پروڈکٹس کو پروڈیوس تو کر رہا ہے, یعنی تھاٹس کریٹ کر رہا ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ کون سا مال آر کا مال ہے, مینس ریجیکٹڈ ہے. تو جس میں بدھی ہم کو ہیلپ کرتی ہے کہ کیا ریجیکٹڈ ہے, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے. جیسے من نیگیٹو تھاٹس, پازیٹو تھاٹس, نیسیسری, ویسٹ, ٹاکسک, ایلیویٹڈ, رائٹ تھاٹس, بہت طرح کے تھاٹس کرتا ہے. اور ہمارے کو بدھی گائیڈ کرتی ہے کہ ایلیویٹڈ مینس ایسے تھاٹس جس میں ہم صرف دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, جبکہ اسی کے بالکل الٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاکسک تھاٹس, یعنی جہاں ہم صرف اپنے لیے یا دوسروں کے لیے نقصان کی باتیں سوچتے ہیں, مرنے مارنے کی باتیں کرتے ہیں, جیسے کہ سوسائڈ کرنا, یعنی وہ ویکتی کتنا ہی ٹاکسک تھاٹس میں بھرا ہوا ہوگا تو اسی لیے اسے ٹاکسک تھاٹس کہتے ہیں. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو لاسٹ آتا ہے سنسکار. سنسکار ایک ریکارڈنگ باکس ہے, جیسے کہ پلینز میں بھی ایک باکس ہوتا ہے جس میں ریکارڈ کیا جاتا ہے سب کچھ, اسی پرکار سے آتما میں اپنے آپ ایک ریکارڈنگ باکس ہے. اور یہ جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اوپر دھرم راج اور چترگپت بیٹھے ہیں سب کا حساب کرنے پر, نہیں, یہ انٹرنلی ہی ہم سولز کے ساتھ ہی فیڈ ہے, بلٹ ہے, کہ جو ہمارا بدھی ہے अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को, तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकेंड बाय सेकेंड रिकॉर्ड हो रही है
0: जी।
1: और जब एंड ऑफ द डे यानी जब मृत्यु आती है, तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहाँ अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है, और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो, तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं, तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
0: बिल्कुल।
1: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है, तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वहीं कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भुर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे, अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें, तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं, और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों, तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो, तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए, और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है, और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं, कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे, और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
0: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और इस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास, और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
1: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिण जन्म बंध विनर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, माना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके, निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव, ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एक रस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से, माना आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहां कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं, तो वहां ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाएं आइस फैक्ट्री, मुख में लगाएं शुगर फैक्ट्री, अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री, अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो, और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति, देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कम्फर्ट नहीं हो रही है, तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें उसमें आकर्षित, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है, तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है, और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है, उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोले, बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट किया अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया कहाँ खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थिर प्रज्ञ स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है, जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे, उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी, और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं, तो आपने कैसे निर्णय ले लिया? तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया, उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
2: जी, और
0: वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
1: जी,
0: आपको बदलना पड़ेगा
1: जी।
0: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली है, और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
1: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस्ड करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवम भस्सी माना। अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा, अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में, आत्मा को राजा की सीट पर
2: बैठाकर डिसीजंस लेने हैं, तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
0: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है, और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी, और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए रेडियो मानवृष्ण 107.8 FM पर। नमस्कार।
3: ज्वाला, समुद्र की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश, तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
4: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती, नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
3: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
4: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
3: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
4: तो फिर एक वादा करो,
3: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
4: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
3: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: कहिए क्या सुनेंगे आप?
2: रेडियो मानव रचना, रेडियो मानव रचना।
3: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी। ओम शांति।
4: आज बहुत सारी एवेन्यूज ओपन है विद द वे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बच्चे आज कर रहे हैं जो उनके पेरेंट्स को नहीं पता, नहीं पता है, एंड दैट्स अनहेल्दी। इससे ज्यादा ये अच्छा है कि मैं आपको बता कर करूँ, इवन इफ यू आर नॉट रेडी फॉर इट। लेकिन जहाँ मुझे बार बार आपसे रेजिस्टेंस मिलेगा, आप नहीं बताएंगे, तो हाउ डिफिकल्ट फॉर मी इज इट टूडे टू लीव द हाउस वेयरिंग अ सलवार कमीज and just change somewhere else. आपको क्या पता चलेगा? Nothing. And majority children are doing that. How difficult is it कि बोलो कि मैं स्कूल जा रही हूँ और चले कोई मूवी जा? Children are doing that.
3: I think it's happening every day.
4: कितनी बार आप मूवी में चले जाओ, आप शॉपिंग मॉल में चले जाओ, बच्चे हैं वहाँ पे, क्या कर रहे हैं वो वहाँ पे?
3: स्कूल यूनिफॉर्म्स में है तो साफ दिखता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं, definitely.
4: तो जहाँ रेजिस्टेंस मिला, हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया। अब जब हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया, तब तो बहुत कुछ और हो सकता है जो पेरेंट को पता भी नहीं चलेगा। आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस, एनर्जी ब्लॉकेज थी। अगर हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया होता तो वो उनको ये पता होता कि हम जो भी कर रहे हैं, वी कैन टेल आर पेरेंट्स। हर पेरेंट आजकल ये पूछता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे बच्चे हमारे को हर बात बता दे। दे वॉन्ट दैट, लेकिन उसके लिए फिर हर बात सुनना की पोटेंशियल तो होनी चाहिए ना। जैसे ही वो अपनी बात शेयर करेगा, बोलोगे यू रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, तो बच्चा बोलेगा ठीक है, देन आई एम नॉट टेलिंग यू। सो अगर मुझे ये पता होगा कि आप मेरी, आई कैन कम एंड टेल यू सबसे अजीब चीज एंड यू विल स्टिल एक्सेप्ट, तो मैं आपके साथ हर बात आकर शेयर करूंगी। लेकिन अगर मुझे पता है कि हर छोटी छोटी बात पर आप बोलोगे ये गलत है, तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं पता कैसी है दुनिया आउटसाइड, तो मुझे पता है दुनिया कैसी आउटसाइड, आई फाइंड माई वे एंड आई डू इट माई वे। तो ये जो बैरियर होता है, ये बहुत ज्यादा हमने ही क्रिएट किया होता है, क्योंकि बचपन से एक्चुअली एक बच्चे को आदत होती है अपने पेरेंट्स से हर बात शेयर करने की। तो हमने बचपन में उनकी बातें सुनते गए सुनते गए, अगर वो संस्कार इतना स्ट्रांग होता है कि वो बड़े होकर भी शेयर करेंगे, लेकिन वो शेयर करना कब बंद करते हैं? आई हैव टू आस्क माई सेल्फ।
3: यस, वेरी ट्रू।
4: क्योंकि बहुत बार पेरेंट्स कहते हैं अब बच्चे मेरे से बात नहीं करते हैं, वो हर वाली जो पहले वाली करते हैं, अब बच्चे छुपाते हैं कुछ बातें। आई हैव टू आस्क माई सेल्फ। बहुत इजी है बोलना कि दे आर रॉन्ग, अब वो छुपाते हैं बातें। क्यों क्यों जरूरत पड़ी छुपाने की? क्योंकि उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिला। बहुत सारे परिवारों में है, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप शेयर करते हैं, लेकिन हमेशा देखा जाता है कि उसका फाउंडेशन यही था, एक्सेप्टेंस। फिर जब वो शेयर करते हैं तो फिर वो एक बात, एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट भी करते हैं, स्वीकार भी करते हैं, लेकिन शेयर करना ही बंद हो जाएगा तो फिर तो बहुत ज्यादा दूरी आ जाएगी।
3: वंडरफुल। सो लेट बी एक्चुअली, अगर हम,
4: इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपना डिसिप्लिनिंग कर रहे हैं, आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उसको एक कंट्रोलर की तरह नहीं, एक गाइड की तरह। एक गाइड गाइड करता है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको साक्षी होना ही पड़ता है। तो औरों की स्क्रिप्ट लिखना बंद करके अपनी स्क्रिप्ट लिखें, और बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करें। और अगर कोई हमें बुलाता है इंटरफेयर करने के लिए, यू नो पीपल अपने साथ शेयर करते अपनी सारी बात, तो शेयर करें विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन दैट। तो उससे क्या होगा, हम उनको जो वो पूछ रहे हैं वो तो बता देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अगेन कंट्रोल नहीं करेंगे, नहीं फिर आप, मैंने जो बताया आप उस अनुसार करें, नहीं। लेट पीपल बी द वे दे वॉन्ट टू बी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट बी शुड ऑलवेज बी इन माई माइंड कि जहाँ भी मैं किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, स्टॉप, लेट देम बी, दे विल फाइंड देयर वे। यू नो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि हर आत्मा अपनी रास्ता ढूंढ लेती है, हर आत्मा। हम ही सोचते हैं कि नहीं, हम जल्दी से उसको उस रास्ते पर ले जाएं, वो पॉसिबल नहीं होता। एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है एक्सेप्ट एवरीथिंग। जहाँ रेजिस्टेंस आ जाता है, अगेन इट्स वेरी वेल कनेक्टेड, लेकिन जहाँ रेजिस्टेंस आता है तो जिसके भी प्रति या जिस सिचुएशन के प्रति मेरे अंदर रेजिस्टेंस होता है, तो मैं एक्चुअली उसको और शक्तिशाली बना देती हूँ। जैसे हम कहते हैं ना, वो और जिद्दी होते जाते हैं।
3: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल,
4: उनके अंदर वो आदत और कड़क होती जाती है, तो वो रेजिस्टेंस। और फिर यहाँ रेजिस्टेंस हम बहुत बार बाहर से एक्सेप्ट कर लेते हैं कहने के लिए, लेकिन अंदर रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस सामने वाले को या सिचुएशन को और भी एम्पावर करता जाता है। तो वी नीड

0: हर चीज शेयर करें,
1: क्वालिटीज वो जो हम सचमुच में समझ चुके हैं अपनी, जो कि हर दूसरी आत्मा में भी है।
0: अब तो क्वालिटीज तो बहुत सेकेंडरी बात हो जाती है, इवन नॉलेज एंड स्किल्स शेयर करने में हमें थोड़ा सा, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में चलते हैं, तो हमें ये नहीं समझ में आता कि जो हमारे पास है अगर हम उसको पास ऑन नहीं करेंगे तो हमारे पास नया कहाँ से आएगा। हम बस उतने को ही लेकर पकड़ कर रख लेते हैं। जैसे एक नदी को हम देखते जो ऊपर से बहती हुई जाकर नीचे सागर में जाकर मिल जाती है, यू जस्ट हैव टू सी द जर्नी ऑफ द रिवर, क्योंकि माय लाइफ इज लाइक दैट जर्नी,
1: लेट इट फ्लो, एक्चुअली यू नो एवरीथिंग हैज टू फ्लो,
0: एवरीथिंग हैज टू फ्लो। अब वो रिवर क्या करता है, जब वो नीचे फ्लो कर रहा है, एक तो वो अपनी यात्रा अपने आप कर रहा है, इट फाइंड्स इट्स वे, बीच में कितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं वो अपना रास्ता ढूंढता जाता है। वो जो नदी है, जो वो पानी की लहर जो फ्लो कर रही है, वो कितने सारे क्रीचर्स के लिए घर भी बन जाती है, कितने सारे उसके अंदर रहते हैं। लेकिन उस रिवर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस है वो क्या,
1: जीवन।
0: किसको?
1: जीवन दायिनी, मनुष्य को देना।
0: एब्सोल्युटली, सिर्फ मनुष्य को नहीं, उसके यात्रा हाँ। में जो कुछ आता है
1: उसको जीवन देते,
0: एक फूल, एक पत्ता, एक टहली, एक जानवर, एक पशु, एक पक्षी एंड ह्यूमन बींग, उसकी ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी यात्रा में एवरी थिंग, एवरी लिविंग बींग जो आता है, इट नरिशेस दैट लिविंग
1: बींग,
0: दैट्स द जर्नी ऑफ द रिवर।
1: वाओ, ब्यूटीफुल, दैट्स नाइस,
0: दैट्स माय जर्नी। मैं भी तो उसी तरह हूँ, आई एम फाइंडिंग माय वे, इट्स ओके, देयर आर ऑब्स्टिकल्स, आई एम फाइंडिंग माय वे, आई हैव गिवन शेल्टर टू अ फ्यू क्रिएचर्स, दैट्स आल्सो ओके, बट व्हाट इज माय मेन पर्पस इन लाइफ, बिकॉज What's my purpose in life? ये बहुत लोगों का question है। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या? और वो समझते हैं कि कोई और उनको बता पाएगा कि what's my purpose in life? Purpose in life is कि you're flowing, stagnant water नहीं बन जाओ जो एक जगह रुक जाता है, flow करो, और आपके flow होने में, आपके contact में जो भी आता है
1: उन्हें nourish,
0: और nourish करना अर्थात जो मेरे पास है वो सबको, क्योंकि जैसे ही उनके साथ शेयर किया उनको भी एम्पावरमेंट मिल जाते हैं। इमेजिन गोइंग टुमारो मॉर्निंग टू वर्क विद दिस फीलिंग, देन वर्क इज नो लॉन्गर वर्क। एक है मुझे काम करने जाना है, पैसे कमाना है, घर आना,
1: और वहाँ सफोकेट होना है, वहाँ पता नहीं क्या क्या होगा क्या नहीं होगा।
0: एक है मुझे कल जाना है अपने जीवन के पर्पस को पूरा करने के लिए, और वो ये है कि कल सारा दिन में जितने लोग मुझे मिलेंगे उनको नरिश करना
1: and give them happiness, you know?
0: ये मेरी responsibility है। तो imagine how the day will pass and then I'm sharing and giving without expecting, at the end of the day मुझे कैसा लगेगा? Do I have to think is satisfaction क्या होती है, contentment क्या होती है,
1: stress management क्या होती है? I think stress has gone somewhere up, you know, it's like in this whole conversation I think हम, मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी जरूर इस बात को अनुभव कर पा रहे होंगे कि इस पूरी बातचीत में स्ट्रेस कहीं दिखा ही नहीं, कहीं था ही।
0: स्ट्रेस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बात करनी थी, स्ट्रेस दिस इज मोर द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल गो टू वर्क वेरी अनविलिंगली, आई हैव टू गो टू वर्क,
1: वर्क इज अ स्ट्रेस। इतनी बार ये कहा जाता है कि माई वर्क एरिया इज अ स्ट्रेस एरिया, द मोस्ट स्ट्रेसिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ इज माई वर्क।
0: तो हमारे जीवन का लक्ष्य, हर एक के जीवन का लक्ष्य ये है, एनर्जी एक्सचेंज विद एवरीबडी आई मीट। अब मेरा ये लक्ष्य होना चाहिए कि ये एनर्जी एक्सचेंज बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए। अब उसमें कई लोग बोलते हैं मैं तो देता हूँ अच्छी वाली लेकिन औरों से मुझे नेगेटिव मिलता है। स्टॉप, माई रोल इज ओनली टू
1: वंडरफुल, यू नो वी कैन ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर वी वांट कि हमें मिलना चाहिए, वी कैन ऑलवेज रिमेंबर दिस। ये उदाहरण एग्जांपल को अगर हम याद कर लें, आई एम लाइक अ रिवर,
0: you know, flow,
1: I am nourishing,
0: flow and just flow and pass on, क्योंकि आप flow करते करते कितनी चीजों को pass on करते जाएंगे और वो अपने आप nourish होते जाएंगे।
1: You know, we at times we stay there.
0: रुका हुआ पानी, रुका हुआ पानी कैसे हो जाता है?
1: कई बार अपने साथ लोगों को, कईयों को ले चलते हैं, they can be part of your flow.
0: तो वो आपकी यात्रा का हिस्सा है, लेकिन हर एक को nourish करें, ये बहुत important है। और इसको अगर हम अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं तो हमारे जीवन बहुत सुंदर हो जाती है, क्योंकि हर एक को नरिश करते करते वो नरिशमेंट तो
1: हमसे होके,
0: आई फील ब्यूटीफुल,
1: एंड यू नो दैट रिवर इज हेल्दी रिवर व्हेन इट इज नरिशिंग एंड इट्स नॉट डाइंग, इट्स फ्लोइंग,
0: हीलिंग हो जाएगी उससे, कितनी हीलिंग। और थोड़ी देर के बाद साइलेंस में जब हम बैठते तो अपनी इस अंदर की आवाज को जरूर सुने। कई बार हमें कुछ कर्म करने से पहले ऐसे लगता है कि आई थिंक समथिंग इज टेलिंग मी दिस इज

0: स्ट्रॉन्ग लेकिन मैं कर देती हूँ क्योंकि अगर मैं उस आवाज को सुनती हूँ तो वो मुझे उस टेम्पररी चीजों से जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो कोई डिपेंडेंसी है, चाहे वो कोई अटैचमेंट है, चाहे वो कोई एडिक्शन है, वो मुझे उससे दूर लेकर जा रही है, मुझे अंदर पता होता है कि लेकिन उस आवाज को सुनना मतलब इस टेम्पररी जो हैप्पीनेस की जो हमने चीजें ढूंढी हुई है इनसे दूर जाना, तो मैं इसको आवाज को अनसुना कर देती हूँ और उस तरफ चले जाते हूँ। ये जो बार बार अपने अंदर की जो ये आवाज़ आती है, क्योंकि विजडम इज ऑल इनसाइड, तो ये जब अंदर की आवाज़ आती है और हम इसको इग्नोर करते रहते हैं तो ये भी एक दिन
1: बात करना बंद कर देते हैं।
0: तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि साइलेंस में बैठकर वही लाइब्रेरी वाला सीन वापस क्रिएट करके एक्सटर्नल नॉइज को ख़त्म करके जो भी अपने पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, जैसे हम दूसरों को पूछने जाते हैं वैसे अपने आप के लिए वो क्वेश्चन छोड़ दो। तुरंत आंसर नहीं एक्सपेक्ट करो, बट दैट शुड बी इन साइलेंस। साइलेंस में जाके क्वेश्चन वहाँ छोड़ दो, आंसर विल बी देयर बिकॉज द आंसर इज ऑलरेडी हियर। तो इसको हम कहते हैं लिसनिंग इनसाइड। कीप लिसनिंग टू द ट्यूटर इनसाइड इन ट्यूशन। अब हमें समझना चाहिए कि मेरी आंतरिक जो अंदर का विवेक है उसने वो आंसर दिया है वो मुझे। That's good for me. Mm-hmm. Then I should follow that. So be quiet, let go, let be, accept everything, pass on to everyone as they come, and listen inside.
1: Mm-hmm.
0: Simple things. सुनने में immediately लग रहा होगा नहीं simple नहीं बहुत difficult, तो भी simple.
1: हाँ, और हर बार की तरह
0: start doing that.
1: हर बार की तरह वो experimentation करके अपने अनुभव के आधार पर फिर हम इसको देखें कि कहाँ तक हम वहाँ पहुँच पाते हैं। But yes. अपना अनुभव मुझे फिर यही कह रहा है कि ये बिल्कुल सही बैठेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस स्ट्रेस से हम जिंदगी को भरा हुआ है वो कहीं उड़ जाएगा। इन दिनों हम बात कर रहे हैं एंगर की, वो गुस्सा जिसे हम जायज मान लेते थे, लगता था कि हमें कहीं ना कहीं शक्ति दे रहा है, अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो हमारे काम नहीं निकलेंगे। लेकिन इस पूरी बातचीत में ये बात सामने आती है कि गुस्सा एक वो डिस्टर्बेंस है, एक वो इमोशन है जो कहीं ना कहीं हमें खुशी नहीं देता है, और उसका एटीट्यूड या वो फीलिंग जो उसको कम कर सकती है, उसको दूर कर सकती है, वो है पीस, शांति। लेकिन क्या है शांति? क्या जिसे हम शांति मानते हैं कहीं हम उससे बहुत इतने शांत तो नहीं हो जाएंगे कि हमारा एनर्जी लेवल ही कम हो जाएगा? ऐसी कई बातें अभी भी आपके मन में होंगी, मेरे पास भी ऐसे कई सवाल हैं। तो आज एक बार फिर ये सफ़र शुरू करते हैं, और हर बार की तरह इस सफ़र की हम सफ़र हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
0: ओम शांति।
1: सिस्टर शिवानी, पिछले दिनों हमने खूब गुस्से को खंगारा है, खूब अच्छी तरह से देखा है कि क्या क्या वो बातें हैं, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो गुस्से को जनरेट करती हैं, और क्या कुछ हमारे अंदर होता है। लेकिन एक बार फिर हर बार की तरह एक रिकैप करते हैं और गुस्से के उन स्टेप्स किससे दोबारा गुजर लेते हैं जो जब शुरू होता है ये पूरा प्रोसेस और कहाँ तक पहुँचता है।
0: सबसे पहले तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि गुस्सा है क्या। गुस्सा एक इमोशनल डिस्टर्बेंस है हमारी कॉन्शियसनेस में, जो क्रिएट तब होता जब वो नहीं होता जो हमें चाहिए, या वो हो जाता जो हमें नहीं चाहिए। मतलब परिस्थितियाँ और लोग जब हमारे कंट्रोल से बाहर और हमारे कहे अनुसार नहीं चलते तो वो डिस्टर्बेंस हमारे अंदर क्रिएट होता। और जनरली क्योंकि हम परिस्थिति और लोगों को उसका जिम्मेवार ठहरा देते हैं, तो वी आर एबल टू जस्टिफाई आर एंगर कि वो गलत थे तो मुझे गुस्सा आया। तो आज दिन तक हमने अपने गुस्से को जस्टिफाई करते गए, और इसीलिए परिवर्तन करने की आवश्यकता भी नहीं समझी कि ये सही है, दूसरे लोग बिगड़ जाएंगे अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे, और उनकी है ही गलती तो मेरा गुस्सा करना जायज़ है। But what we didn't realize is that every time we are inflicting so much of pain on ourselves, तो गुस्सा बार बार करना या कहें एक बार भी करना सारे दिन में, तो ये अपना ही नुकसान है। दूसरे का कम लेकिन अपना बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि यहाँ जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होते वो यहाँ पर भी उसका प्रभाव पड़ता और फिर पूरे शरीर पर भी पड़ता। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये रियलाइज करना कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैंने जनरेट किया और इसको मैं फिनिश कर सकती हूँ। तो उसको सबसे पहले उसको ओवरकम करने के लिए हम एक अवेयरनेस में चलते हैं कि जब थोड़ा सा भी अंदर चिड़चिड़ापन की फीलिंग आए, थोड़ा सा भी कहीं कुछ मेरे कहे अनुसार नहीं चल रहा, एंड आई कैन सी ओके आई एम नॉट लाइकिंग इट, यू नो मी नॉट लाइकिंग इट इज माय
1: इरिटेशन,
0: या इज माय फर्स्ट स्टेज ऑफ इरिटेशन, इरिटेशन थोड़ा सा अंदर आना शुरू हो गया, तो उसी टाइम वो फर्स्ट स्टेज है अवेयरनेस, जागृता कि मेरे अंदर क्या क्रिएट हो रहा है. तो अपनी क्रिएशन की शुरुआत में ही उसकी अवेयरनेस होती है. और दूसरा एक्नॉलेज करना कि यस आई एम क्रिएटिंग दिस, आपकी वजह से नहीं ये हो रहा है, आप भले जो बोल रहे हैं लेकिन ये मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैं क्रिएट कर रही हूँ. और ये इसको एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझे आ रहा है, उसके साथ युद्ध नहीं करना कि क्यों आ रहा है, आई विल हैव टू एक्सेप्ट इट क्योंकि मुझे अब उसको फिनिश करना है. तो एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है और ये मेरी अपनी क्रिएशन है, लेकिन ये मेरे अपने हाथ में है. तो अवेयरनेस क्रिएट की, एक्नॉलेज किया कि हाँ ये आ रहा है, एक्सेप्ट किया कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, और फिर उससे डिटैच हो जाए, अपने आप उस गुस्से के थॉट्स को देखना शुरू कर दे,
1: watch it
0: and see it. तो what happens कि एक है कि जैसे ही हम अपनी कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी है उसको वहाँ से हटा देते हैं, और वहाँ से हटाकर उस थॉट्स को देखना शुरू करते हैं, तो जैसे ही हम वो एनर्जी को हटाते हैं वो जो इमोशन है वो फिनिश हो जाती है. अभी क्या है, हम उस इमोशन को एनर्जी देते हैं,
1: फ्यूल करते रहते हैं ना, वी ऑलवेज से दैट उसने हमारे एंगर को फ्यूल किया, बट आई थिंक इट्स आवर एनर्जी.
0: जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर आप वो मस्ती कर रहे हो और आप भी उसके साथ मस्ती करो तो दोनों मस्ती कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दूर से खड़े होकर उसको देखना शुरू कर दो तो वो कॉन्शियस हो जाता है और वो जो कर रहा था वो उसको छोड़ देता है. तो कॉन्शियसनेस की एनर्जी को उस थॉट से हटा के देखना शुरू करते हैं, वो इमोशन फिनिश हो जाती है. अभी हम क्या करते थे, उसको एनर्जी देते, क्यों बोला, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, अगली बार मैं ये देखूंगी. सो वी आर गिविंग एनर्जी टू दैट इमोशन, it builds up more and more and it can stay with me till a very very long time. To usse detach ho jayenge and then come back to my stage, to the center ki main kaun. Om shanti ye bhi agar yaad rahe to it means main ek shant swarup atma hu. To I come back to my stage that I am a peaceful being. The awareness, acknowledge, accept ke ha aa raha hai, fir usse detach ho jaye and then come back to my original stage. तो कभी भी दिन में ये चिड़चिड़ापन गुस्सा अगर आए तो लेट्स गो थ्रू दिस 4-5 स्टेजेस, और अगर उस टाइम नहीं कर पाते तो गुस्सा करने के बाद भी भले कर लीजिए कि आज मुझे गुस्सा आया था, क्या हुआ था. तो क्या होगा, एक दो बार गुस्सा करने के बाद करेंगे तो अगली बार
1: गुस्से के दौरान
0: वो अवेयरनेस, बेसिकली वो अवेयरनेस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. अवेयरनेस रहती है तो बाकी स्टेप्स करना बहुत इजी हो जाता है.
1: दैट्स वंडरफुल एक्चुअली सिस्टर शिवानी, बिकॉज़ अभी तक क्या होता आ रहा था कि हमें गुस्सा इतनी आदत में घुल चुका था कि हमें एहसास ही नहीं होता था कि हमने गुस्सा किया है. और अब क्योंकि जब पता है कि इतनी बात गुस्से की सुन चुके हैं, हम दूसरों को कहते थे मैं तो गुस्सा नहीं करता, या मुझे तो गुस्सा नहीं आता, नो आई एम ए वेरी पीसफुल पर्सन, बट वो जो अंदर का चिड़चिड़ापन है, जो इंटरनलाइज एंगर जिसकी हमने पहले बात की थी, सो दिस ऑल स्टेज विद अस. सो अगेन इट मे नॉट गो कम्प्लीटली इन वन डे, बट द मोमेंट वी स्टार्ट वॉचिंग एंड गोइंग थ्रू दीज 5 स्टेप्स, I think gradually we should be able.
0: It is not going to go in one day. See, because why it will not go in one day? क्योंकि वो belief systems एक दिन में नहीं जाते. अगर belief सारे एक दिन में टूटते हैं कि गुस्से के बिना काम हो सकता है, गुस्से से कोई result, तो एक दिन में चला जाएगा. लेकिन वो एक एक belief को finish करने में थोड़ा सा time लगता है. लेकिन the journey is very simple. You know, don't give up on yourself. चाहे आपका कितना भी कड़क संस्कार हो क्रोध का, it can go. और वो पूरी तरह से जाएगा. क्योंकि अवेयरनेस जाएगी, यू नो अवेयरनेस चाहिए, बस गुस्सा आ रहा है एंड देन इट विल गो. एंड ये जस्टिफिकेशन खत्म करनी है कि दूसरों की वजह से, जब तक वो बिलीफ सिस्टम सबसे स्ट्रांग है कि औरों की वजह से गुस्सा, देन आई विल नॉट चेंज, देन आई विल कीप वेटिंग फॉर यू टू चेंज.
1: यस, यू नो वी ऑलवेज बीन सेइंग इट्स जस्ट अ यू नो थॉट वे. सो अगेन द थॉट दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल, ये एक संकल्प, ये एक सोच कि मैं जिम्मेदार हूँ, इवन इफ उसके लिए अपने आप को दोषी ना ठहरा के कि ठीक है गुस्सा है भी तो कोई बात नहीं, होता यह है कि हम इतने गिल्ट और रैंक, मतलब अपने आप से गुस्से में चले जाते हैं कि मैंने क्यों किया,
0: नुकसान हो जाता है. पहले गुस्सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, अब गिल्ट क्रिएट हो जाता है, फिर शेम हो जाती है, एंड फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको छुपाने के लिए और उसे और गुस्सा कर, यू नो मतलब पहले गुस्सा कर देंगे, अंदर लगेगा कि मुझे करना नहीं चाहिए था, फिर और जोर से बोलेंगे क्यों नहीं करना चाहिए था मुझे, तो करना चाहिए था आपने, यू नो, सो इट इज जस्ट बिकम्स अ वेरी साइकिल प्रोसेस एंड इट जस्ट डजंट ब्रेक एनीवेयर.
1: एंड डेफिनेटली सिस्टर शिवानी, ये हम इस पर कितनी बातचीत कर चुके हैं और इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि इट कैन चेंज. लेकिन अब हम आते हैं कि हमने बात की थी इमोशन और फीलिंग की, यू नो, कि हर एक इमोशन, क्योंकि इमोशन कहीं ना कहीं हम अभी तक उसे अपनी ताकत मानते थे और हम कहते थे पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन, इमोशन एक्चुअली इज, यू नो, ऑल दैट डिस्टर्बेंस जो यहाँ क्रिएट होती है, तो उसका एंटीडोट या उसका जो एक फीलिंग है जो उसके एवज में कन्वर्ट होती है या आती है, वो पीस जुड़ता है उसके साथ. लेकिन पीस से जुड़ी हुई भी बहुत भ्रांतियाँ हैं. बहुत सी ऐसे बिलीव्स कह सकते हैं हम, या बहुत से ऐसे मान्यताएं कह सकते हैं कि पीस जो है वो बहुत एनर्जी लेस हो जाता है. तो एक्चुअली बहुत सी बातें हम जानेंगे कि क्या मान्यताएं जुड़ी हैं. मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या है, व्हाट इज रियली मेंट बाय शांति या पीस.
0: पीस इज अ वर्ड विच वी यूज वेरी ऑफन बट रेयरली अंडरस्टूड. यू नो, वी आर ऑल लुकिंग फॉर पीस. हमें शांति चाहिए, हमें शांति चाहिए, बट वी आर नॉट अवेयर कि व्हाट आर वी लुकिंग फॉर. तो क्या होगा, वो होगी भी तो पता नहीं चलेगा कि वो है. एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम लोग सब शांति अनुभव करते हैं सारा दिन में, लेकिन वो एक नेचुरल स्थिति है. लेकिन उसको हम तब रियलाइज नहीं कर पाते. हम रियलाइज किसको करते हैं, जब हम स्ट्रेस में या टेंशन में होते हैं, क्योंकि वो अननेचुरल है. You know, and at that time we say, I want peace. Peace is basically a state of the being. ये सिर्फ एक स्थिति है, मुझ आत्मा की एक स्थिति है, जिसका result क्या होगा कि जो मेरी thoughts होंगे वो बहुत positive और focused होंगे. अंदर एक silence होगा. एक है silence, एक है noise. You know, तो peace doesn't mean कि कोई बोले नहीं, कुछ करे नहीं. बाहर से हो सकता है कि बहुत peaceful है, अंदर बहुत noise है. और नॉइज क्या है, ये सब डिस्टर्बेंसेस, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था. सो पीस इज बेसिकली साइलेंस ऑफ द माइंड. साइलेंस ऑफ द माइंड में ये मतलब नहीं है कि जीरो थॉट्स. सम पीपल थिंक पीस साइलेंस मतलब नो थॉट्स. नो, थॉट्स फोकस्ड. आपको जिस चीज के बारे में जिस क्षण सोचना है और जितना सोचना है और जिस रूप से सोचना है, बस उतना ही करना है. हमें ये प्रोग्राम अभी करना है, वन थॉट. होगा नहीं होगा, ठीक होगा नहीं होगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो ना हो जाए.
1: तो ये पॉजिटिविटी के साथ, यू नो, जो फोकस, जो थॉट्स की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव रहे.
0: पॉजिटिव, दे विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो बहुत फास्ट चलते हैं, एंड दे विल बी मोर टुवर्ड्स वरी, एंग्जाइटी, टेंशन, फियर. तो पॉजिटिव थॉट्स बहुत फोकस्ड होंगे और उसका रिजल्ट आपके एटीट्यूड में आएगा, आपके बिहेवियर में आएगा. अगर नॉर्मल प्रैक्टिकल में भी हम देखें तो पीस इज एक्चुअली एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लेना. अभी जो चीज जैसी है वैसी बिल्कुल ठीक है, बट विद द वर्किंग कि इसको आगे और ठीक किया जा सकता है. तो अभी क्या होगा, पीस शांति मेरे मन में तब होगी जब मैं एक्सेप्ट कर लूं कि आप अभी जो हैं जैसे हैं बिल्कुल ठीक. तो ये क्षण शांति, और फिर मैं आपको अगले क्षण के लिए आपके साथ ये डिस्कस भी कर सकती हूँ कि आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं. लेकिन अगर मेरे अंदर ये चल रहा है, नहीं, इनको ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्या पहना हुआ है, ये नहीं पहनना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, दिस इज पीसलेसनेस. आई एम नॉट एक्सेप्टिंग यू एज यू आर. तो पीस इज के सिचुएशन जैसी है एक्सेप्ट करना, लेकिन साथ में भविष्य के लिए उसको चेंज भी करना. पीस मतलब आप जो हैं जैसे हैं आपको स्वीकार करना, इवन अगर आपका ओपिनियन
1: आप एक्सेप्ट कर लूँ, मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँ जैसे आप हैं, तो मैं क्या है सोच के एक्सेप्ट करूँ कि आप सही हैं अभी जैसी हैं, अपने परिपेक्ष में, अपने लिए या मेरे लिए भी सही है.
0: आप अपने परिपेक्ष में, अपने दृष्टिकोण से, आप जिस सिचुएशन में अभी हैं आप बिल्कुल ठीक है
1: उसके लिए.
0: Absolutely.
1: है ना? लेकिन मेरे पास अगर कॉन्फ्लिक्ट है या मेरे विचार या मेरा परसेप्शन डिफरेंट है, तो वो मेरा है, मैं एक्सेप्ट उसको भी करती हूँ. क्या यहाँ ये आ जाता है कि देन गिवन हो गया?
0: नहीं, गिवन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये भी एक्सेप्ट किया कि आप जो हैं वैसे भी ठीक है. मैंने ये भी पहले तो, अब देखो, औरों को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप को.
1: आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. पूरे कॉन्फिडेंस से अब मैं कह सकती हूँ
0: ओम शांति.

0: मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और आज है संडे का दिन, संडे वाले दिन आपके पास ढेर सारी जानकारी लेकर के आ जाती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास एक्सपर्ट जो है वो जुड़ने वाले हैं। बहरहाल अभी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या कोई संदेश जो है आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई गाना सुनना चाहते हैं, जल्दी से फरमाइश कर सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। फिलहाल कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइव।
1: अच्छा ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब शस्त्र देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। इसी के साथ बता दूं आपको, अगर आप फरीदाबाद से बाहर जा रहे हो और ये सोच रहे हैं कि रेडियो मानव रचना के साथ कैसे जुड़ना है, तो बस आपको क्या करना है, हमारा इंटरनेट ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अपना एंड्रॉयड या आईओएस मोबाइल फोन लेना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर जाना है, सर्च बॉक्स में लिखना है रेडियो मानव रचना, जिसके बाद ऐप डाउनलोड आप कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद पॉडकास्ट सेक्शन में जाके ढेर सारे ऐप, पॉडकास्ट, एक्सपर्ट की एडवाइस, बहुत ही कमाल के एवरग्रीन सॉन्ग्स आप सुन सकते हैं वर्ल्ड में कभी भी कहीं से भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस जल्दी से डाउनलोड कीजिए ऐप को। और साथ ही आपको बता दूं मैं कि आप हमें सोशल मीडिया के थ्रू भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रेडियो मानव रचना के नाम से आप हमें खोज सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, और यूट्यूब पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ढेर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे सा ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जुड़ रही और सुन रही रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइक।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप, मैं हूं साक्षी आपके साथ और आपके लिए खास प्रोग्राम आज का हमारा लेकर के आ गई हूं। संडे का दिन है, आपके साथ रहती हूं और हमारे साथ आज हमारे एक्सपर्ट भी जुड़ने वाले हैं। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर राजेश, जो कि एक हेल्थ एक्सपर्ट है, योग गुरु है और साथ ही साथ एक हैप्पीनेस कोच भी है। आज एक बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं। कई लोगों की पर्सनालिटी होती है इंट्रोवर्ट होते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। कौन सी पर्सनालिटी ठीक है या कौन सी पर्सनालिटी जो है आपके लिए आपके व्यक्तित्व पे जचती है, या फिर हो सकता है कि आप देखिए इसके बीच में भी एक पर्सनालिटी होती है, तीसरी पर्सनालिटी, क्या आपकी पर्सनालिटी वो तो नहीं। चलिए आज इसके बारे में थोड़े और डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं हमारे आज के एक्सपर्ट जो हैं डॉक्टर राजेश, जो कि एक योग गुरु हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ एक हैप्पीनेस कोच भी हैं। डॉक्टर राजेश, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार साक्षी, नमस्कार रेडियो मानव रचना के श्रोतागण, आप लोगों से मिलकर के बहुत ही अच्छा लगता है, खास करके ये सुबह के समय में।
0: बिल्कुल डॉक्टर राजेश, और आज संडे का दिन है, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं आज ना आपसे कुछ ज़रूरी सवाल जो है वो जानना चाहती हूँ, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो होने वाला है पर्सनालिटी के टाइप्स के ऊपर। अलग अलग तरीके की पर्सनालिटी जो है वो लोगों की होती है, तो सबसे पहले पर्सनालिटी को सिंपल लैंग्वेज में कैसे आप डिफाइन करेंगे, सबसे पहले तो वो बताइए।
1: देखिए, पर्सनालिटी जो वर्ड है ना, ये पर्सोना से आया है। पर्सोना का अर्थ होता है मास्क, मास्क का अर्थ होता है एक्सप्रेशन।
0: जी,
1: तो पर्सनालिटी जो है यह व्यक्तित्व है। ये एक्सटर्नल रूप में भी होता है, इंटरनल फॉर्म में भी होता है, और दोनों का ये कॉम्बिनेशन ही मनुष्य अपने आप में है पूर्ण रूप से।
0: बिल्कुल डॉक्टर राजेश, मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट इस पर्सनालिटी की बात करें, एम्बिवर्ट की बात करें, तो सब में एक बेसिक डिफरेंस जो है ये क्या है?
1: देखिए, व्यक्तित्व के मूड के अनुसार उसका माइंड का सेटअप चेंज होता है।
0: जी जी,
1: जब वह इंट्रोवर्ट बनता है, यानी वह चुपचाप अंतर्मुखी हो गया, उसकी ऊर्जा जो है अंदर की ओर प्रवाह कर रही है, ऐसे समय वह मेडिटेटिव स्टेट का होगा, सेल्फ एनालिसिस करेगा, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करेगा, कैलकुलेशन करेगा, और वह बातचीत ज़्यादा नहीं करेगा, वो अपने आप में अंतर्मुखी हो जाता है। ऐसे समय में ध्यान की का भी अभ्यास होता है, मेडिटेशन भी होता है, और मनुष्य इसमें साइलेंस रहता है। इसी को कहते हैं अंतर्मुखी हो जाना, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। लेकिन ये अगर ज्यादा इंट्रोवर्ट अगर आप हो गए तो फिर प्रॉब्लम है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो और ज्यादा एक्सट्रोवर्ट भी अगर हम उसके उल्टे में जाएंगे तो ज्यादा एक्सट्रोवर्ट भी वो भी प्रॉब्लम है। एक्सट्रोवर्ट का अर्थ हो गया आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा, ऑल द टाइम यू स्टार्टेड टॉकिंग, कम्युनिकेटिंग, डायनामिक, एक्सट्रोवर्ट एक्सप्रेशन, लाउड, दीज ऑल आर द एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। सो हमें बैलेंस बना के रखना है, जिसको हम कहते हैं एम्बिवेलेंट, नाइदर टू मच इंट्रोवर्ट नॉर टू मच एक्सट्रोवर्ट। सो बैलेंस जो है ना, वो बहुत संतुलन बना के रखना, जिसको हम कहते हैं संतुलन बना के रखना है, ये अच्छा व्यक्तित्व माना जाता है।
0: जी जी डॉक्टर राजेश, अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जिसके बाद मेरे कुछ और भी सवाल हैं आपसे, जरूर मैं जानना चाहूंगी। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और आज है संडे का दिन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश। डॉक्टर राजेश, आपसे हमारी सवाल जो है वो हमारी बातें चल रही हैं, सवाल हम आपसे जान रहे हैं। मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहती हूँ, क्या इंट्रोवर्ट होना नेचुरली शाय या सोशली एंग्जियस होने के बराबर है?
1: नहीं, हम इसमें एग्री नहीं होते हैं
0: जी।
1: समय समय पर जब ऊर्जा का क्षय हो जाता है, जब बहुत ज्यादा आप टायर्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आप एग्जॉस्टेड हो गए और ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी जिसको कहते हैं, जिसको कहते हैं कंप्लीट बर्न आउट हो गए, ऐसे समय में पीसफुल स्टेट में ऑटोमेटिकली मनुष्य का मन चला जाता है, वह अंतर्मुखी हो जाता है। अंतर्मुखी होने का अर्थ है प्रिजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संग्रह करना ताकि फिर से आप तैयार हो गए, ये एक हो गया। फिर दूसरा है, अगर अवेयरनेस के साथ आप सेल्फ एनालिसिस करते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं या ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो आपके अंदर ऊर्जा एक दो फोल्ड नहीं, 1000 times more हो जाता है। इसीलिए हम मेडिटेशन करते हैं अपने मन को संतुलित करने के लिए, मन और शरीर के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए। समय समय पर प्रकृति ने

0: आपको मॉनिटर कर दिया कि अपने आप अंतर्मुखी हो जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इंट्रोवर्ट्स को अकेला रहना या टाइम स्पेंड करना खुद के साथ इतना पसंद क्यों होता है? हम अक्सर देखते हैं जो इंट्रोवर्ट होता है ना, वो अक्सर ये कहता है कि मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे अकेला रहना है और मुझे अपना जो ये टाइम है ऐसे ही पसंद है। तो क्या रीज़न है, क्यों होता है ऐसे?
0: देखिए, दो तरह का, एक तो ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड, जैसे मेडिटेशन जो है वो आपको एक अलग किस्म का आनंद देता है, जॉय देता है। आपकी ऊर्जा जब अंतर्मुखी होती है तो आप बहुत रिलैक्स भी फील करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन आप अगर ज़्यादा घर ही में ही रहना चाह रहे हैं, अपने आप में ही जी रहे हैं, तो वो भी देखना है, उसका भी एक बॉर्डर लाइन होता है। जैसे डिप्रेशन वाले जो लोग हैं, जो वो ज़्यादातर इंट्रोवर्ट ही होते हैं, वो बातचीत नहीं करते, वो अपने आप में रोते रहते हैं, अपने आप में कमरे बंद करके, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। सामंजस्य होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। इंट्रोवर्ट अच्छी चीज़ है, लेकिन टाइमिंग के लिए।
1: जी अच्छा, ये भी बहुत बार होता है कि जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो हमेशा सोशल गैदरिंग उन्हें पसंद आती है, लोगों के बीच रहना पसंद है, तो क्या ये एक मैं कहूँगी कि उनको ऐसा ही उनका व्यक्तित्व ऐसा है, या फिर वो एक अटेंशन सीकर की तरह सबके बीच में रहना चाहते हैं ताकि उनको सब अटेंशन दे, उनका व्यक्तित्व वैसा है?
0: नहीं, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो बातचीत करेंगे और जहाँ पर भी वो रहेंगे तो गैदर तो ऑटोमेटिकली लोग आ जाएंगे सामने में एक दूसरे, क्योंकि वो बहुत एक्सट्रोवर्ट है, वो बहुत बोलने वाला है।
1: जी, जी।
0: वो हमेशा कुछ ना कुछ टॉपिक्स को लेकर के छेड़ता ही रहता है, क्योंकि उसके लिए एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के लिए अगर आप रूम में बंद करके कहेंगे कि अब इस रूम में बंद रहो, तो उसके लिए लाइक सुसाइडियल हो जाता है, क्योंकि वो चुपचाप बैठ नहीं सकता, शांत नहीं हो सकता।
1: जी, तो अभी आपने कहा एक तीसरे पर्सनालिटी के बारे में, एम्बिवेलेंट पर्सनालिटी के बारे में आपने बात करी, ये क्या होता है? और साथ ही अगर क्या एम्बिवर्ट जो सिचुएशन का अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर जो है वो दिखा सकता है या नहीं, या ये पर्सनालिटी कम्प्लीटली डिफरेंट है?
0: देखिए, कुछ जैसे क्रियाएं होती है उसमें आदमी ऑटोमेटिक इंट्रोवर्ट हो जाता है। तो जैसे लाइक हम सोने के लिए जाते हैं, तो सोना जो है अपने, जब तक आप इंट्रोवर्ट नहीं होगी, आपकी ऊर्जा अंतर्मुखी आप नहीं होंगे, आपकी नींद नहीं आ सकती है। ये पूरा व्यवस्था है प्रकृति का, आपके शरीर और मन के साथ। शरीर और मन के बीच में जो संतुलन होता है, तरह तरह की क्रियाएं होती है जिसमें आप मौन भी होते हैं, आप टॉकेटिव भी होते हैं। जैसे आप खाना खाने के समय में, हमारे पूर्वज हमेशा कहते हैं मौन में खाना चाहिए, साइलेंस में खाना चाहिए, यानी आपका फूड के साथ डीपर लेवल का कनेक्शन होगा, आत्मीयता जुड़ेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज है, अभ्यास है। जब आप खाना शांत होके खाएंगे तो पूरी एकाग्रता के साथ खाएंगे, आप ज्यादा नहीं खाएंगे, आप अवेयर रहेंगे और खाना का एक एंजॉय मिलेगा। जनरली हम लोगों के साथ क्या होता है, खाने के टेबल पर हम बहुत बातें करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। उसमें क्या कि जो हम बात कर रहे हैं वो खाना के साथ वो एब्जॉर्ब भी हो रहा है आपके शरीर। इसलिए लोग कहते हैं कि साइलेंस जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना है, और इसका एक ही उद्देश्य है मन को और चित्त को शांत रखना।
1: बिल्कुल।
0: तो मौन भी एक अभ्यास है जो एम्बिवेलेंट बनाता है एक्सट्रोवर्ट को थोड़ा देर के लिए। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ ज्यादा मत करो, 2 घंटे का टाइम फिक्स कर लो कभी भी, कि 2 घंटे के लिए हम अपने आप में निकले। लेकिन मौन का अर्थ ये नहीं कि आप मोबाइल पर काम कर रहे हैं, इंट्रोवर्ट का मतलब ये नहीं कि आप मोबाइल पर काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, आप साइलेंस कैसे अपने आप को दे रहे हैं वो मायने रखते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, कुछ और भी सवाल हैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें. आज हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट जो हैं वो जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेश, जिनसे हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं. डॉक्टर राजेश, अगला सवाल आपसे जानना चाहूँगी. पर्सनालिटी पे हमारी बातें चल रही हैं, तो पर्सनालिटी की अगर बात करें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, क्या इन दोनों पर्सनालिटीज का स्ट्रेस को हैंडल करने का तरीका क्या डिफरेंट होता है?
1: हाँ, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो लेस स्ट्रेस को एब्जॉर्व करते हैं क्योंकि उनका एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ज़्यादा है. इंट्रोवर्ट जो है वो बहुत इमोशनल और सेंसिटिव होते हैं, वो अपने अंदर एब्जॉर्व करते हैं ज़्यादा, तो वो ज़्यादा चांसेस रहता है वो अपने आप में लड़ते रहते हैं इनसाइड में
0: जी.
1: वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहते हैं, जिससे ज़्यादातर वो साइकोसोमेटिक चैलेंजेस में फंस जाते हैं
0: जी.
1: ये तो दो पर्सनैलिटी है, लेकिन भारतीय परंपरा, भारतीय दर्शन में 5 तरह के व्यक्तित्व होते हैं साक्षी जी.
0: अच्छा, हाँ, प्लीज बताइए.
1: एक होता है मूड, दूसरा होता है चित्त, तीसरा होता है विक्षिप्त, चौथा होता है निरोध, और पांचवा एकाग्र. ये 5 व्यक्तित्व है भारतीय परंपरा में, भारतीय दर्शन में. मूड का अर्थ होता है जड़, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है. वो जो ब्लंट जिसको हम कहते हैं
0: जी, जी.
1: वो व्यक्तित्व जो है, कम पढ़े लिखे लोग जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं और आइसोलेटेड प्लेस में रहते हैं, दुनिया से कट ऑफ रहते हैं, वो ज्यादातर वैसे उनकी लेस आईक्यू होती है. तो वो मूड टाइप के हम लोग कहते हैं ना, और हम लोग कभी कभी भाषा में कहते हैं क्या मूड हो गए हो क्या, मतलब क्या कि जड़वत हो गया, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है. वो मूड पर्सनैलिटी है. ये भारतीय दर्शन के आधार पर मैं बता रहा हूँ, भारतीय ज्ञान परंपरा में और इंडियन एंशिएंट विजडम है ये
0: जी, जी.
1: दूसरा उन्होंने कहा क्षिप्त पर्सनैलिटी, वो हमेशा यस और नो के बीच में फंसा रह जाता है, हाँ और ना के बीच में, वो डिसीजन नहीं ले पाता है. और एक है विक्षिप्त है, वो कम्प्लीटली डिस्टॉर्टेड पर्सनैलिटी है, वो क्या कर रहा है उसको भी नहीं पता, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, उसका क्या रिजल्ट है, क्या इम्पैक्ट है, उसको हम कहते हैं विक्षिप्त. वो अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी अवेयर नहीं है. और ये जिसको हम साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं कि ये प्रॉब्लमेटिक है, स्टेट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर में आ गया. ये हमेशा एक अलग दुनिया जोन में ये रहता है, इससे कुछ भी नहीं पता है कि ये क्या कर रहा है. ये हो गया विक्षिप्त. अब आता है निरोध. निरोध जो है ये संत भाव में जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता, क्लैरिटी होता है, सब चीज नकारात्मक विचारों को हम त्याग देते हैं, जिसको कहते हैं निरोध. पांचवा एकाग्र. एकाग्र जो है ना वो फोकस्ड माइंड है, वो अपने आप में उसे क्या करना है, उसको क्लैरिटी, उससे सारा सब चीज दिखता है. तो निरोध और एकाग्र जो है ये सबसे अच्छा व्यक्तित्व माना जाता है
0: जी, जी.
1: तो ये 5 तरह के होते हैं
0: जी.
1: मोड, क्षिप्त, विक्षिप्त, निरोध एंड एकाग्र.
0: बिल्कुल बिल्कुल. जो कम्प्लीटली डिफरेंट है, जो अगर हम एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट की बात करें, और ये जो है थोड़ा सा और डिफाइन मैं कहूँगी कि हमारी भारतीय परंपरा में जो है वो बिल्कुल डिफाइन तरीके से बताया गया है.
1: हाँ, तो एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट जो हम कर रहे हैं साइकोलॉजी के आधार पर, वेस्टर्न साइकोलॉजी के आधार पर हमने डिटेल कर दिया
0: जी.
1: लेकिन अपने भारतीय ज्ञान में 5 तरह के व्यक्तित्व को मनाया गया है
0: जी, जी.
1: बहुत कम लोगों को पता भी है इसके बारे में, लेकिन ये 5 तरह के व्यक्तित्व होते हैं.
0: बिल्कुल.
1: और आप अगल बगल देखेंगे कैसे लोग हैं, मूड भी हैं, क्षिप्त भी हैं, विक्षिप्त भी हैं, एकाग्र वाले भी मिलते हैं और निरोध वाले भी मिलते हैं.
0: बिल्कुल.
1: निरोध वाले जो होते हैं वो बहुत रिलैक्स होते हैं, सब चीज वो ईश्वर पर छोड़ देते हैं, जो करेगा भगवान करेगा, वो अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता है.
0: बिल्कुल बिल्कुल. डॉक्टर राजेश, बहुत सारी बातें आपसे चल रही हैं, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगी, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें, तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें. मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज डॉक्टर राजेश, जिनसे हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं. डॉक्टर राजेश, अब एक हमारे पास सवाल आया है, हमारे एक लिसनर है राहुल जिनका नाम है, इन्होंने लिखा है कि वर्क प्लेस में क्या ज़्यादा कैसी पर्सनैलिटी जो है ये ज़रूरी हो जाती है, और अगर हम इंट्रोवर्ट होते हैं तो वो शो करता है कि हम बहुत ही कम कॉन्फिडेंट है, और अगर हम एक्सट्रोवर्ट होते हैं तो ऐसा दिखता है कि हम जो है वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि ओवर कॉन्फिडेंट हैं, और मुश्किल हो जाता है कि अपनी पर्सनालिटी से बाहर रहकर जो है मैनेज करना चीज़ों को. तो क्या सही रहेगा या क्या टिप आप इनको देना चाहेंगे?
1: देखिए, संतुलन बना करके रखिए, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बातचीत कीजिए, और जहाँ पर आपको काम करना एकाग्रता की ज़रूरत है तो आप फोकस माइंड में रहिए. तो इसीलिए हम कहेंगे ना एक्सट्रोवर्ट भी रहिए ना इंट्रोवर्ट, आप अपने आप में संतुलन बनाइए. संतुलन हर जगह बनाना पड़ता है, इसलिए मैंने एक वर्ड, और संतुलन जब आप बनाएंगे तो आपका व्यक्तित्व जो होगा संतुलित होगा.
0: बिल्कुल.
1: एक चीज़ साक्षी जी याद आ गया, मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे हमको, मैं एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हूँ, तो मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कम बोलो, ज्यादा बोलोगे तो फंस जाओगे.
0: जी बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर राजेश, मैं ये भी आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या अगर जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज हैं, एक लीडर है वो, बॉस है या किसी हायर पोजीशन पे है, क्या उनका एक्सट्रोवर्ट होना ही जरूरी है? क्या ऐसा जरूरी है उनके लिए कि उनकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए?
1: नहीं, ऐसा नहीं है. कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, लेकिन वो है डीपली इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी. वो अपने आप को लाइक एन आर्टिस्ट, वो अपने आप को वो प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारे दृष्टि से, हमारी नजरिया से व्यक्तित्व का संतुलन होना, जो आप प्रश्न पूछ रही हैं कि कुछ लोग बहुत ज्यादा दिखाते हैं, तो कैरेक्टर है उनकी, वो जरूरत है कि वो आप पर टास्क करेंगे, आप पर प्रेशर क्रिएट करेंगे, आपसे काम चाहेंगे, आपसे रिटर्न चाहेंगे, तो इसलिए वो कम्युनिकेशन उनका अच्छा होता है.
0: बिल्कुल. डॉक्टर राजेश, एक चीज़ और मुझे ध्यान में आ रही है, आजकल हम सोशल मीडिया जो है काफ़ी ज़्यादा जो है हर चीज़ में सोशल मीडिया होता है, बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड करती हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इन्फ्लुएंसर है जिसकी पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट है लेकिन सोशल मीडिया पे वो एक्सट्रोवर्ट है, क्या उसकी मेंटल हेल्थ पर इसका असर पड़ सकता है कि वो अपनी बाहरी जिंदगी को इस तरह से जी रहा है और जबकि वो एक इंट्रोवर्ट है, तो क्या कोई प्रभाव पड़ता है उसका?
1: अरे आपने जो साक्षी जी आपने जो चीज़ पूछा है ना, कुछ दिन पहले मैं सोशल मीडिया पर ही देखा कि एक कोई नोएडा में साइकोलॉजिस्ट थी और वो हैप्पीनेस और दूसरों के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करती थी, प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट थी, और उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया. जो दुनिया के जीवन में खुशियों का पाठ पढ़ाती थी, हैप्पीनेस के काम, हैप्पीनेस रहने के तरीके बताती थी कि खुश रहिए, और एक दिन अचानक पता लगता है कि वो खुद सुसाइड कर ली.
0: जी.
1: तो ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है. एक तरफ तो आप दुनिया को बाहर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की कि जो लोग होते हैं वो कुछ और होते हैं, दिखाते कुछ और हैं, यही होता है कि हम मास्क ओरिएंटेड हो जाते हैं. हम बाहर से दिखा रहे हैं कि हम बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं, लेकिन हम अपने अंदर बहुत ही सेंसिटिव हैं और इमोशनल हैं, और जिसके कारण कि हम तनाव को झेल नहीं पाते हैं.
0: बिल्कुल.
1: इसलिए अंदर से संतुलित रहिए.
0: बिल्कुल.
1: ये बैलेंस जो है ना, इक्वानिमिटी स्टेट ऑफ माइंड, कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ माइंड, जो हमारा भगवद गीता भी कहता है ना, भगवद गीता जो है उससे बड़ा कोई साइकोलॉजी की किताब नहीं है.
0: जी.
1: वो अपने आप में एक पूर्ण है, वो आपके व्यक्तित्व, आपके गुणों, आपके पूरी व्याख्यान करती है.
0: बिल्कुल, वो बिल्कुल बिल्कुल. डॉक्टर राजेश, बहुत सारी बातें आपसे चल रही हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूँगी और आखिरी कुछ चंद सवाल हैं जो उसके बाद हम ज़रूर आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक. कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील

0: वेलकम बैक रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन। बहुत सारी होती हैं बातें। डॉक्टर राजेश, मैं आपसे अगला सवाल जो है वो जानना चाहती हूँ कि अब चूंकि जिंदगी जो है भागती दौड़ती जिंदगी है, इतना कुछ चल रहा है जिंदगी में, तो अगर किसी पर्सन को लगे कि वो सोशल सिचुएशन में अपनी पर्सनालिटी के जो ऑपोजिट बिहेव कर रहा है, तो क्या ये नॉर्मल है, या ऐसा अगर उसको पता है तो उसे क्या करना चाहिए?
1: देखिए, सबसे बड़ा चीज है पता। हमारे जीवन में जब चैलेंज होते हैं हम अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी आप इसलिए होते हैं अगर उसका आप सही उपयोग करेंगे, सेल्फ ऑब्जर्वेशन
0: जी।
1: दिस इज द टाइम टू हील योर सेल्फ, दिस इज द टाइम टू अंडरस्टैंड अबाउट योर सेल्फ एंड योर चैलेंजेस, व्हाट यू आर फेसिंग, उसे अवेयरनेस के साथ डील करना चाहिए। मैं लोगों को कहता हूँ हमेशा कि सजगता बनाए रखिए
0: जी।
1: सुख दुख ये सब आते रहेंगे, जाते रहेंगे, अच्छा बुरा ये तो प्रकृति का नियम है। अभी आप खुश हैं, थोड़ी देर में दुखी भी हो जाएंगे। अभी अंधकार है, कल प्रकाश भी होगा, कल प्रकाश है तो अंधकार होगा। ये फेजेस ऑफ लाइफ है, तो फेजेस ऑफ माइंड भी चलते हैं, फेजेस ऑफ इमोशंस भी चलते हैं, ये सब जीवन का भाग है। आप सजग रहिए,
0: बिल्कुल
1: आप सजग रहिए। अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, शांत बैठिए, श्वासों का ख्याल कीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए। ये सारी चीज़ों का जब आप अभ्यास करेंगे आप स्वतः संतुलित हो जाएंगे। कभी थोड़ा योग कर लिए, थोड़ा वॉकिंग कर लिए, थोड़ा गार्डनिंग कर लिए, थोड़ा फैमिली में एक साथ मिलकर के थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिए किचन में जा करके,
0: बिल्कुल
1: माँ के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ मिल करके, तो एक अच्छा ये जो माहौल, एक खुशनुमा माहौल आप तैयार करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: ये खुशनुमा माहौल कहीं बाहर से नहीं आएगा, इसके लिए आपको ही एफर्ट करना है। और इससे एक आपकी ट्रेनिंग होती है कि साथ साथ मिल करके काम करने की। अब किचन में थोड़ा देर के लिए अगर हाथ बटाएंगे तो उससे आप देखेंगे सारे लोग हैप्पी हो जाते हैं, अरे आज क्या हुआ, देखो सब लोगों ने मिल करके काम किए हम लोगों ने, तो आप आउटकम जो देखेंगे ना वो रिलैक्सेशन स्टेट ऑफ माइंड आता है, रिलैक्स इसी वे में आ जाता है। गार्डनिंग कीजिए, फूलों के साथ थोड़ा सा समय अपने अगल बगल पौधों को लगाइए, पार्क में जाइए, कभी कभी अपने लिए समय निकालिए, आप खुश रहेंगे। दिस ऑल आर द वे टू हील योर सेल्फ, डीपर लेवल ऑफ माइंड, डीपर लेवल ऑफ इमोशन। शांत होइए, थोड़ा सा परमात्मा के लिए चिंतन करेंगे, और एक चीज अपने आप को ढूंढिए, हु एम आई, मैं कौन हूँ।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: जब भी मौका लगे, मेरा कहना लोगों को कि ये मनुष्य जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए, सबसे पहले तो तुम हमें जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ,
0: बिल्कुल
1: मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ आके, मेरा पर्पस क्या है। जब इन सब सवालों के पर आप एनालिसिस करेंगे ना, तो आपको सारी क्लैरिटी दिखाई देने लगेगी, एकदम विजन क्लियर हो जाएगा, और जीवन का फिर आपका जो गोल होगा बहुत ही हाई लेवल का होगा।
0: बिल्कुल डॉक्टर राजेश, अब आखिरी सवाल आपसे यही कि क्या वो संदेश है खास जो आप हमारे सभी लिसनर्स को देना चाहेंगे, एक टिप जो मैं कहूंगी कि आप जरूर दीजिएगा, हैप्पीनेस की वो जो चाबी है वो बस एक जल्दी से एक मैसेज के द्वारा आप हमें सबको बताइए।
1: शेयर योर क्वालिटी ऑफ टाइम विद फैमिली।
0: बिल्कुल, बहुत सही, बहुत अच्छी बात ही आपने कही है, बहुत अच्छी। चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच डॉक्टर राजेश कि आप हमारे साथ आए और इतनी सारी बातें करिए, और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता
1: हूँ। नमस्कार साक्षी, नमस्कार रेडियो मानव रचना के श्रोतागण, आप लोगों से मिल करके बहुत ही अच्छा लगता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने क्वालिटी टाइम को भूलिए मत अपने परिवार के साथ साझा करने के लिए।
0: बिल्कुल, चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे लेने का इजाजत, तो मुझे दीजिए इजाजत एक छोटे से ब्रेक की, वापस आऊंगी, होंगी बातें, तो जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती है बातें। इसी के साथ आज हमारे साथ जुड़े डॉक्टर राजेश, जिनसे हमने बहुत सारी बातें करी हैं। और हमारे पास जो कई सारे मैसेजेस हैं वो आए हैं, और एक मैसेज आया हमारे पास हमारे लिसनर मनीष जी की ओर से, मधु जी की ओर से, सुनीता जी की ओर से भी, बबलू जी और से भी मैसेज आया है। और ये मैसेजेस देखिए, मैं आपको बता दूं प्रोग्राम बहुत पसंद है। और किसी ने लिखा है कि हाय गुड मॉर्निंग साक्षी, साक्षी सुबह सुबह आ जाती है ना आपके पास आपको परेशान करने के लिए। नहीं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं करती आपके लिए, तो मैं कितनी सारी जानकारी लेकर के आती हूँ। और देखिए मैसेजेस भी इसी तरह से हैं, आपको मेरा प्रोग्राम पसंद है, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपको ये प्रोग्राम इतना पसंद आता है, आप इतने सारे मैसेजेस करते हैं, आप इतने अच्छे से कनेक्टेड रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है अपने लिसनर्स से ढेर सारी बातें करना। चलिए अब जो है वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं, कुछ जुड़ा सवाल है, ये मेंटल हेल्थ से जुड़ा कुछ सवाल है, या फिर आपका जो सवाल है जुड़ा हुआ है हैप्पीनेस से, अगर आप चाहते हैं कुछ टिप्स, ज़रूर हमारे जो आज के हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे पूछ सकते हैं। नंबर है 8010781078। और अगले हफ्ते जब हमारे साथ वो जुड़ेंगे तो आपका सवाल मैं ज़रूर पूछूंगी। चलिए अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील राइट।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत, कल होगी आपसे मुलाकात, होंगी ढेर सारी बातें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: योर सिटी योर रेडियो फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मानोरचना 107.8 FM।
1: वेल हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार सत श्री अकाल राम राम जय माता दी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आरजे सागर आ चुका हूँ लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानोरचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइव। ये शो हर बार की तरह यही बोलूंगा बहुत खास है और होता भी है भैया, बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं, पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं, इंडस्ट्री के बारे में आपको बताते हैं, कंपनी के बारे में बताते हैं, कंपनी की USPs के बारे में आपको बताते हैं, कंपनीज की जो फाउंडर्स होते हैं उनके बारे में आपको बताते हैं, उनके बैकग्राउंड के बारे में, उनके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बारे में, पूरी इंडस्ट्री का एक स्ट्रक्चर आपको समझाते हैं। तो एक तरीके से आप अवेयर तो हो रहे हैं, साथ साथ आप एजुकेट भी हो रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस शो इज रियली रियली स्पेशल फॉर अस। So, आज फिर से हाजिर हूँ लेकर के अपना वही शो, जिसमें हम लोग वापस से शुरू करेंगे अपना पूरा प्रोसेस का, एक आप कह सकते हैं यात्रा पर निकलेंगे। इंडस्ट्री से शुरुआत करेंगे, इंडस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे, तो उसके बाद फर्दर मूव ऑन करते करते हम कंपनी की तरफ आएंगे, हम कंपनी के बारे में आपको बताएंगे, वो पूरा प्रोसेस वैसे ही चलेगा। लेकिन फिलहाल मेरा सलाम कबूल करके लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून, फील गुड फील लाइव।
2: ना इज्जत की चिंता ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन।
3: गुरुदेव यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए।
2: हाँ गुरुदेव। नाइस।

असली सेठ भी असली नकली माल बनाए, ऊपर असली लेबल अंदर नकली घी और चाय, पॉपलिन का बदल के नंबर टेरिलिन बनाए, या बेईमानी तेरा आसरा बोल के

महाराज पधारे, चिमटा चरस चिलम और चेले साथ साथ है।

वेलकम बैक। आई होप आपको गाने पसंद आई। नाउ दिस नोट अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। मैं आरजे सागर, शो का नाम है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। दोस्तों आज के शो में जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले उसकी इंडस्ट्री को समझते हैं। सो दिस कंपनी डील्स इन फैशन टेक। फैशन टेक फैशन और टेक्नोलॉजी को मिलाकर बनी हुई एक इंडस्ट्री है, एक बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो करता हुआ सेक्टर। और इंडिया में हमें जो देखने को मिलता है फैशन और टेक्नोलॉजी का ब्लेंड, उसने लिटरली मतलब इस इंडस्ट्री को एक नई शेप दी है, एक नई उड़ान दी है, एक नई ग्रोथ दी है, जहां पर आपको बहुत सारे इनोवेटिव डिजाइन देखने को मिलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, रिटेलिंग, इवन कस्टमर एक्सपीरियंस, सब कुछ काफी एनहेंस हुआ है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, IoT, ब्लॉकचेन, और ये बहुत लंबी लिस्ट है। तो टेक ये जो है, जब से इस फैशन इंडस्ट्री में आया है तब से इसमें बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली है। तो आज हम इस मार्केट को समझेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम आज की कंपनी को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं फैशन टेक मार्केट इंडिया में क्या है। देखिए, आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, डिजिटल मार्केट प्लेसेस देखने को मिलती हैं, तो ये सब कुछ हो पाता है इस एक इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी के आ जाने के बाद से, जहां पर डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक, सप्लाई चेन से लेकर मैनेजमेंट तक, रिटेल से लेकर कस्टमर एंगेजमेंट तक, सब कुछ शामिल होता है। स्मार्ट टेक्सटाइल्स, वियरेबल टेक्नोलॉजी लाइक स्मार्ट क्लोदिंग, जिसमें हेल्थ को मॉनिटर किया जाता है। फैशन के साथ हमारी हेल्थ को मॉनिटर किया जा रहा है, हमारे हार्ट रेट को मॉनिटर किया जा रहा है, इट्स अ ग्रेट थिंग। AR/VR सॉल्यूशंस, जिसकी वजह से आप वर्चुअली ट्राई कर सकते हो कौन सा कपड़ा आपके ऊपर सूट करेगा और कौन सा नहीं करेगा, जो आपके ओवरऑल शॉपिंग एक्सपीरियंस को काफी बेहतर बनाता है। AI ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स, जो आपके हिसाब के स्टाइल आपको दिखाते हैं, आपके हिसाब से आपको फैशन जो है वो रेकमेंड करते हैं, और जैसी भी आपकी डिमांड होती है उस तरीके से आपके लिए कुछ क्रिएट करके देते हैं। देन इसके बाद सस्टेनेबल फैशन इनोवेशन, जो टेक्नोलॉजी की वजह से हो पा रहा है, जिसमें हम वेस्ट को रिड्यूस करते हैं और प्रमोट करते हैं एथिकल प्रैक्टिसेस को। सो दिस इज फैशन टेक इंडस्ट्री इन इंडिया। अब ये मैंने आपको मेजर पिलर्स बताए कि किन किन वर्टिकल्स के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद हम ये समझेंगे कि फैशन टेक मार्केट इवॉल्व कैसे हो रही है इंडिया में। बट इन द मीन टाइम, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

0: तेरा प्यार है।
1: उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई। नाउ विद दिस नोट अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। मैं हूं आरजे सागर, शो का नाम है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और दोस्तों, आज की जो इंडस्ट्री है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सब कुछ आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। इंडस्ट्री का नाम है फैशन टेक। फैशन और टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक शब्द बना है फैशन टेक, जिसकी वजह से हमारी फैशन इंडस्ट्री इंडिया में बहुत रैपिडली इवॉल्व हुई है और अभी भी होती जा रही है। और देखिए, फैशन बहुत पहले से है, लिटरली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रही है हमारे बीच में हमेशा से। तो अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, फैशन चेंज होगा, लेकिन फैशन इस टर्म को हम सीधा लेकर जाएंगे बैक इन 100 years ago, 200 years ago, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। आप जहां तक जा सकते हैं वहां तक इसको लेकर जाइए, क्योंकि उस टाइम पर भी जब कपड़े नहीं थे हमारे पास, टेक्सटाइल नहीं हुआ करता था, लोग बनाया करते थे, अपने हिसाब से कपड़े बनाते थे, अपने हिसाब से ज्वेलरी बनाते थे। सो फैशन वॉज स्टिल देयर। अब यहां पर समझेंगे कि इंडिया में फैशन टेक कैसे इवॉल्व हुई है। सबसे पहला पॉइंट आता है शिफ्ट टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। पैंडेमिक के बाद से बहुत कुछ बदला है, हमारा ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा होता गया है और लोग भी ऑनलाइन प्रेफर करने लगे हैं, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री ग्रो हुई है। क्योंकि फैशन के साथ एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं टेक, दैट मींस टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा है पैंडेमिक के बाद, जो लोगों का टेस्ट चेंज हुआ है ऑनलाइन की तरफ, जो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। देन इसके बाद इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ी है टेक्नोलॉजी में, लोग अब इन्वेस्ट करने लगे हैं। वर्चुअल ट्राई ऑन्स, AI बेस्ड पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन एंड चैटबॉट बेस्ड कस्टमर सर्विस, ये सब चीजें अब कंपनीज ऑफर करने लगी हैं, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री तेजी से ग्रो हो रही है। राइज इन D2C ब्रांड्स। देखिए, बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं फैशन के जो आपको D2C मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर, सीधा कस्टमर तक जो उस सामान को डिलीवर करते हैं आपको दिखाते हैं, आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, नो मिडलमैन रिक्वायर्ड। सिंपली वहां पर जिसने लिस्ट किया हुआ है प्रोडक्ट को, उसके थ्रू आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और प्रोडक्ट आपके घर पे। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा है। नाउ दिस इज द न्यू फैशन, मानिए इस बात को। लोग अब पूछने लगे हैं, भैया इको फ्रेंडली है क्या आपका जो कपड़ा है, क्या आप उसमें क्या किस तरह की प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, आप जिस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं आपने इस फैब्रिक को, इस टेक्सटाइल को, या जिस तरीके से आप ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कहीं आप मदर नेचर को नुकसान तो नहीं पहुंचाते हैं। या सिमिलर टू कार्स, जैसे कार्स में सेफ्टी पूछी जाने लगी है, वो एक नया फैशन बन चुका है। सो हाँ, फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। एंड देन इसके बाद अगला पॉइंट आता है जो सबसे क्रूशियल है, दैट इज पर्सनलाइज्ड कस्टमर एंगेजमेंट। देखिए, आपको पर्सनलाइज करके दिखाया जाएगा कपड़ा। मानकर चलिए आपने व्हाइट टी शर्ट देखी जो आपको थोड़ी रेट्रो वाइब देगी, तो आपको रेट्रो वाइब की ही जीन्स दिखाई जाएगी, वैसे ही शूज दिखाई जाएंगे, और जो एल्गोरिदम है वो आपके टेस्ट को समझेगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप उस प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो आपको वैसे ही वो इंगेज करके रखेगा, क्योंकि वैसे से ही ऑप्शंस आपको दिखाए जाएंगे। दैट्स हाउ ये जो इंडस्ट्री है वो इवॉल्व होती जा रही है, और हमेशा से होती आई है, आगे भी होती रहेगी। बट ये आप समझ सकते हैं कि मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है। नाउ विद दिस नोट हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक। उम्मीद कर रहा हूं जितना अभी तक आपको समझाया गया है उतना आप समझ पाए हैं फैशन टेक को। आगे बात करेंगे फैशन टेक मार्केट के हाइलाइट्स के बारे में, बट फिलहाल आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैं हूं आरजे सागर, शो का नाम है आत्मनिर्भर भारत, पेश है यहां पर ये गाने आपके लिए, फील गुड फील लाइफ।

गुड फील लाइव। दोस्तों मेरा नाम सागर शोकनाम, आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की, और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवश्ना 107.8 FM। तो आज की जो कंपनी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसकी केस स्टडी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, वो जिस इंडस्ट्री में डील करती है उस इंडस्ट्री का नाम है फैशन टेक। आइए थोड़े सा इसके हाईलाइट समझते हैं। पहला आता है इंटीग्रेशन ऑफ AI एंड ML, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये लिटरली मतलब बहुत तेजी से यहाँ पर जो है हमें देखने को मिला है कि हर एक कंपनी जो है इन टूल्स का सहारा ले रही है, जिसकी वजह से इनकी डिमांड बढ़ी है, नए नए ट्रेंड्स आते जा रहे हैं, कस्टमर बिहेवियर को प्रिडिक्ट किया जा रहा है, सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। तो इस वजह से आप कह सकते हैं फैशन टेक मार्केट जो इंडिया में डील करती है, उसका वन ऑफ द मेजर हाइलाइट्स है इंटीग्रेशन ऑफ AI एंड ML। उसके बाद है AR VR फॉर वर्चुअल शॉपिंग एक्सपीरियंस। मानकर चलिए आपको कोई कपड़ा ऑर्डर करना है, कोई गूगल्स आपको ऑर्डर करनी है, वॉच आपको ऑर्डर करनी है, आप उसको पहले अपने घर पर चेक कर सकते हैं। आपके पास AR VR का ऑप्शन है अच्छा खासा। बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं इसमें जो लिटरली मतलब चीजों को टॉप नॉच रखना चाहते हैं और अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को अपनी सबसे पहली प्रायोरिटी समझते हैं। वहां पर आप घर से चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर वो कलर सूट करेगा, और वो कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है उतना एक्यूरेसी के साथ आपको रिजल्ट्स दे पाए। उसके बाद थर्ड मेजर हाईलाइट है 3D प्रिंटिंग एंड डिजिटल फैशन। ऐसे भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो आपको मौका देते हैं एक्सप्लोर करने का 3D प्रिंटिंग, जहां पर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड एक्सेसरीज, कस्टमाइज्ड पेरल्स जो है वो बनवा सकते हैं। आप कमांड देंगे, आपको लगेगा यू आर द ओनर जिसने ये सब कुछ सेलेक्ट किया है। और एक नया बिजनेस भी स्टार्ट हुआ है इसमें, POD प्रिंट ऑन डिमांड। मतलब लिटरली लोग इन टूल्स की हेल्प से एक साइड बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं और अच्छा खासा पैसा कमा पा रहे हैं। सो या, दिस इज वन ऑफ द मेजर हाइलाइट्स इन फैशन टेक मार्केट इन इंडिया, 3D प्रिंटिंग एंड डिजिटल सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जो मेजर हाईलाइट है, दैट इज स्मार्ट वेयरेबल्स एंड टेक्सटाइल्स। देखिए मेजर हाईलाइट है, लेकिन आप सब लोग फेमिलियर हैं इस एक टर्म से, स्मार्ट वेयरेबल्स से, कि किस तरीके से हम जो है स्मार्ट बैंड्स पहनते हैं, स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं, स्मार्ट क्लोथिंग आ गई है जो हमारी ओवरऑल हेल्थ को मेजर भी करती है और साथ साथ हमें काफी ट्रेंडिंग लुक भी देती है। सो या, वन ऑफ द मेजर हाईलाइट्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत कुछ बदला है। देन उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है ये सस्टेनेबिलिटी, एंड ये चीज अगेन हर एक सेगमेंट में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी की वजह से लिटरली मतलब बहुत कुछ चेंज हुआ है, लोग अब जागरूक हो गए हैं। चाहे आप बात करें Tier 1 की, चाहे आप बात करें Tier 2 की, चाहे आप बात करें Tier 3 की, किसी भी पर्टिकुलर आप क्राइटेरिया को यहाँ पर पिक करें, आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी, सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात की जाने लगी है। क्योंकि सिटीजन्स को अभी समझ आ गया है कि मदर नेचर को बचाना है हमें, और ये सब कुछ हमें करना होगा बाय जस्ट सिंपली शिफ्टिंग आवर चॉइसेस। तो इसलिए शायद कंपनीज भी अभी से एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर बहुत फोकस कर रही है। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पाए हैं कि क्या क्या हाइलाइट्स है फैशन टेक मार्केट के इंडिया में। अब लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बात करेंगे ड्राइविंग फैक्टर्स की, कि कौन कौन से वो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं जो इंडिया में इस एक इंडस्ट्री को ड्राइव करते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर ये इंडस्ट्री ग्रो हो पा रही है। मतलब टूल्स की बात करेंगे, पर फिलहाल मजा लीजिए इन गानों का, क्योंकि अभी वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील गुड।

फील गुड फील लाइव। नाउ विद दिस नोट अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। दोस्तों मैं आरजे सागर, शो का नाम है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और आज यहां पर हम जिस कंपनी के स्टडी आपके लिए लेकर आए हैं, दैट डील्स इन फैशन टेक इंडस्ट्री, और यहां पर हम फैशन टेक को अच्छे से समझ रहे हैं। फिलहाल अब हम बात करने वाले हैं जहां पर ना यहां पर ड्राइविंग फैक्टर्स की। पहला ड्राइविंग फैक्टर, ग्रोइंग ई कॉमर्स पेनिट्रेशन। देखिए जितना ज्यादा ई कॉमर्स बढ़ता जा रहा है, जितनी ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स बढ़ती जा रही हैं, उतनी ज्यादा फैशन टेक मार्केट ग्रो होती जा रही है। रीजन, क्योंकि ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड हैं। अब जब लोग अपने फोन को इतना यूज कर रहे हैं, सब कुछ फोन पे दिख जाता है, फोन पर मल्टीपल ऑप्शंस दिख जाते हैं, इतने सारे पोर्टल्स हैं, इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, और सब आपको सारी फैसिलिटीज फोन पर ही प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उस एक पर्टिकुलर ग्रोथ को फ्यूल मिलेगा। सेकेंड फैक्टर, राइजिंग इंटरनेट एंड स्मार्टफोन यूजेज। अब काफी अफोर्डेबल प्राइस पर आपको स्मार्टफोन मिल जाता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी गांव-गांव तक पहुंच गई है, तो इन सब चीजों की वजह से अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है, स्मार्टफोन मिल गया है, ऑनलाइन फैशन शॉपिंग जो है वो एक मेन स्ट्रीम चीज बन गई है। स्पेशली अगर हम बात करें टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज की, जहां पर लोगों के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है, बहुत बड़े बड़े मॉल्स नहीं होते हैं, बट स्टिल दे कैन चूज, और दुनिया के जो भी बेस्ट फैशन प्रोवाइडर्स हैं उन सब में से वो सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी तरह की चीजें जो है मॉडिफाई करा सकते हैं, अपनी पसंदीदा चीजों को एक पर्सनलाइज्ड टच वो दे सकते हैं। थर्ड जो ड्राइविंग फैक्टर है, दैट इज टेक सेवी मिलेनियल्स एंड जेन ज़ी। देखिए यंगस्टर्स हमारी जो कंट्री है उसमें बहुत ज्यादा है, बहुत पॉपुलेशन है, 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में यंगस्टर्स की है, और यंगस्टर्स क्योंकि वो काफी इनोवेटिव माइंडसेट वाले होते हैं और उन्हें पर्सनलाइज्ड फैशन एक्सपीरियंस चाहिए, टेक सेवी भी होते हैं, और कंपनीज इन सारे क्राइटेरियाज पे खरी उतर पा रही है, तो इसकी वजह से भी ये इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। फोर्थ पॉइंट अगेन बोलूंगा, सस्टेनेबिलिटी फोकस किया जा रहा है। अब जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी उतना ही ज्यादा वो यूएसपी बनती चली जाएगी, जो कंपनी जितना ज्यादा सस्टेनेबल मॉडल लेकर आएगी उतना ही ज्यादा तरक्की करने वाली है लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो, क्योंकि लोग अब पूछने लगे हैं लिटरली। तो उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है सरकार का सपोर्ट एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स। देखिए सरकार के बिना कुछ नहीं हो पाता है, अगर कोई भी इंडस्ट्री ग्रो कर पाती है तो उसके पीछे बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सरकार का होता है, सरकार मुहिम चलाती है। जैसे ब्रॉडर व्यू से अगर देखा जाए तो इंडिया में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए सरकार के द्वारा, लाइक डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन सब ने मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम यहाँ पर तैयार किया जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप्स हुए, यहाँ पर स्टार्ट हुए, लोगों ने भी उनको एक्सेप्ट किया, अपने दिलों में जगह दी और डिमांड बढ़ती चली गई। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिनकी वजह से ये इंडस्ट्रीज ग्रो होती हैं, और फैशन टेक भी उसी का एक रिजल्ट है कि यहां पर इतना तेजी से ग्रो हो रही है। उम्मीद कर रहा हूं यू गॉट द पॉइंट। तो हमने आपको अभी 5 ऐसे ड्राइविंग फैक्टर्स के बारे में बताया, ग्रोइंग ई कॉमर्स पेनिट्रेशन, राइजिंग इंटरनेट एंड स्मार्टफोन यूजेज, टेक सेवी मिलेनियल्स एंड जेन ज़ी, फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नमेंट सपोर्ट एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स। नाउ विद दिस नोट हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे और बताएंगे आपको कुछ चीजें जो जुड़ी हुई हैं फैशन टेक से। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको गाने पसंद आए और हमारे शो को आप पसंद कर रहे हैं, और ये भी उम्मीद कर रहा हूँ साथ साथ कि आज की जो इंडस्ट्री हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर फैशन टेक, जिसमें हमारी आज की कंपनी डील करती है, उसको आप समझ पा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है उतना फेमिलियर आपको करा दें इस एक इंडस्ट्री से। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, अगर कोई नया प्लेयर आना चाहता है इस मार्केट में तो कैसे आ सकता है? मतलब देखिए, वो टोटली आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस होने वाला है, बट स्टिल जितना हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, जितनी रिसर्चेज हम कर पाते हैं, उनके आधार पर कुछ पर्टिकुलर ऐसी स्ट्रेटजीज हम आपको बता सकते हैं जिस हिसाब से आप चल सकते हैं, मतलब एक बार देखा जा सकता है। पहली रहेगी, अपनी नीश आपको आइडेंटिफाई करनी होगी। ऑल्दो फैशन टेक बहुत एक ब्रॉड कैटेगरी है, उसमें भी आपको पर्टिकुलर एक नीश सेट करनी होगी कि किस तरह का फैशन आप ऑफर करना चाहते हैं और कौन आपका टारगेट कस्टमर रहेगा। सेकंड जो स्ट्रेटजी हो सकती है, दैट इज लेवरेज टेक्नोलॉजी, क्योंकि ऑलरेडी हमें डिस्कस कर रहे हैं कि टेक बेस्ड इंडस्ट्री है और उसमें सारी कंपनीज कोशिश कर रही हैं जितना हो सकता है उतना अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस बना पाए। लाइक AI में इन्वेस्ट करते हैं, AR में इन्वेस्ट करते हैं, VR में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे एक यूनिक सर्विस, एक यूनिक प्रोडक्ट अपने कस्टमर तक पहुंचा पाए, डिलीवर कर पाए और कस्टमर को कन्विंस कर पाए कि आप यहां से खरीद सकते हैं, VR द बेस्ट। तो ये आपको करना होगा, एक बार देखा जा सकता है। थर्ड स्ट्रेटजी रह सकती है फोकस ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल है लगभग हर एक इंडस्ट्री में, क्योंकि कस्टमर इज द गॉड। अगर कस्टमर खुश है आपके प्रोडक्ट से तो वापस आएगा, बाकी लोगों को भी रेकमेंड करेगा और इस तरीके से कंपनी ग्रो करेगी। अगर कस्टमर खुश नहीं है, आपको उसकी खुशी से फर्क नहीं पड़ता, तो शायद प्रॉब्लम होगी आपके लिए, आपको चीजों को हमेशा ऑल्टर करना होगा। इसलिए हमेशा कस्टमर एक्सपीरियंस को अपनी प्रायोरिटी बनाकर चलिएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी आपकी हो सकती है कोलैबोरेट विद टेक स्टार्टअप्स। अब देखिए, समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई इंसान स्टार्ट करना चाहता है, फैशन का सेंस है, समझते हैं फैशन को, लोगों की डिमांड को समझते हैं, क्या नई चीजें आने वाली है फ्यूचर में वो देख पाते हैं, बट टेक में हाथ थोड़ा सा तंग रह जाता है। तो ऐसे में आप जो बाकी टेक स्टार्टअप्स हैं जो कटिंग एज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं हमें, उनके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू कैन जस्ट एंटर अ मार्केट जो ऑलरेडी काफी ग्रो कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी हो सकती है बिल्ड एन ओमनी चैनल प्रेजेंस। मतलब एक ऐसी आपको प्रेजेंस अपनी बनानी होगी जहां पर आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही चैनल्स पर केटर कर पाए अपने कस्टमर्स को। अगर ऑनलाइन कोई आना चाहता है उसके लिए भी आपके पास अच्छी सर्विस हो, ऑफलाइन भी आपको बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है लेंसकार्ट। स्टोर्स भी काफी अच्छे हैं और आप ऑनलाइन अगर जाते हैं तो आपको उनके पोर्टल पे भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो सबसे ट्रेंडिंग अभी है, जो आज हम लगभग हर एक सेगमेंट में देख पा रहे हैं, दैट इज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ये आपको फॉलो करना होगा क्योंकि अल्टीमेटली जो एनवायरमेंटल कॉन्शियस कंज्यूमर्स हैं वो आपकी तरफ जरूर आएंगे और वो काफी लॉयल रहने वाले हैं आपके साथ अगर आप ये वाली प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। देन इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, उसमें आपको खुद को एंगेज करना होगा, लाइक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सोशल मीडिया कंटेंट आपको बनाना होगा ताकि आप एक ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंच पाए। देन उसके बाद अंडरस्टैंड लोकल प्रेफरेंसेस। आपको ये भी समझना होगा कि इंडिया में भी बहुत सारे रीजन्स हैं और हर रीजन में किस तरह का टेस्ट लोग पसंद करते हैं। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फेस्टिवल्स, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बहुत ही जनरलाइज कर देते हैं चीजों को। लाइक नॉर्थ इंडिया का कपड़ों पहनने का तरीका अलग होता है ट्रेडिशनल क्लोथ्स की अगर बात करें, और वहीं पर साउथ इंडिया का बिल्कुल अलग होगा। तो इस तरीके से हमें समझना होगा कि किस एरिया में किस चीज की प्रेफरेंस है और रूट्स क्या बोलती है, कैसे हम उनके ट्रेडिशनल फैशन को आज के जो हमारा फैब्रिक है, आज का जो हमारा फैशन है, उसके साथ अलाइन करके उन्हें दिखा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो अगर आप फॉलो करते हैं या कोई भी ऐसा नया प्लेयर फॉलो करता है तो उसकी काफी हेल्प होने वाली है इस एक मार्केट में खुद को एस्टेब्लिश करने में। आप ट्राई कर सकते हैं। नाउ विद दिस नोट हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बात करेंगे आज की कंपनी की फाइनली।

उम्मीद कर रहा हूँ जो पूरा प्रोसेस अभी तक आपको इंडस्ट्री के बारे में बताया समझ आया है और आप ये फिगर आउट कर पाए हैं कि आपके लिए कैसे एक रोड मैप बन सकता है उस एक इंडस्ट्री में अपना कदम जमाना अगर आपको है तो। अब इसी के साथ अपने शो में आगे बात करेंगे आज की कंपनी की। फाइनली आज की कंपनी बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि ये कंपनी अब ऑपरेशनल नहीं है, बट इस कंपनी के बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी क्योंकि दिस कंपनी वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। हम आज AI की बात कर रहे हैं लेकिन बहुत पहले ये कंपनी जो है प्रिडिक्शन जैसी चीजों के ऊपर काम करती थी। डिजिटल ब्रांड के तौर पर ये कंपनी निकल के सामने आई थी। कंपनी का नाम है स्टॉक बाय लव। स्टॉक बाय लव वॉज एन इंडियन फास्ट फैशन डिजिटल ब्रांड जिसका फोकस था ट्रेंड लेड अपेरल्स के ऊपर, एक्सेसरीज के ऊपर यंग वुमेन के लिए। जैसे उस टाइम पर, ये 2012-13 की बात हो रही है, उस टाइम पर जो मार्केट प्लेस प्लेयर्स हुआ करते थे उनके पास अपनी वैल्यू चेन नहीं हुआ करती थी, बट इस कंपनी ने अपनी खुद की एंटायर वैल्यू चेन जो है वो बनाई वहां पर। वैल्यू चेन से मेरा मतलब है डिजाइन से लेकर के सोर्सिंग से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के सेल्स तक सब कुछ इन्होंने किया बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड डेटा। फैशन क्योंकि बहुत तेजी से चेंज होता है, ठीक है, डिस्काउंट्स बहुत तेजी से आते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं फैशन वर्टिकल की जब हम बात करते हैं, क्योंकि आज हम फैशन टेक की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अपने पीक टाइम में इसने फैशन टेक के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और वही एक फंडामेंटल था कि जो ट्रेडिशनली ई कॉमर्स कंपनीज कंट्रोल करती हैं प्रोडक्शन को, उसको थोड़ा सा ब्रेक कर पाएं और नया कुछ दे पाएं फ्लेवर लोगों को। दिस कंपनी वॉज स्टार्टेड इन 2012-2013, इस फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट हुई थी 2012-13 के बीच में नई दिल्ली में, और बहुत सिंपल से थॉट के साथ कि डेड इन्वेंट्री को हटाते हैं, डिस्काउंट वॉर्स को हटाते हैं और कुछ अमेजिंग देते हैं। टेक, सप्लाई चेन, ट्रेंड डेटा, इन सारी चीजों को इन्होंने कंपाइल किया था उस टाइम पर, व्हाट एग्जैक्टली कस्टमर्स आर लुकिंग फॉर। सो दैट वाज द टाइम जब इस कंपनी ने इस एक थॉट के साथ प्रोडक्शन अपना स्टार्ट किया एंड इट वॉज रियली रियली रियली फास्ट विदाउट ओवर स्टॉकिंग। और ये बहुत रेयर होता है फैशन इंडस्ट्री में, अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ओवरस्टॉक होता है बॉस। इस कंपनी के पास बहुत सारे SKUs थे लेकिन ओवरस्टॉक कभी नहीं रही। सो दैट्स हाउ दिस कंपनी वाज रियली रियली स्पेशल। सो ऑन दिस नोट लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बात करेंगे फाउंडर्स की, उन ब्रिलियंट माइंड्स की जिन्होंने इस कंपनी को जो है एस्टेब्लिश किया और आगे बढ़ाया था। बट इन द मीन टाइम स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक। मैं आरजे सागर, शो यहाँ पर चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की, और आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, फील गुड फील लाइफ। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिस कंपनी की, उसका नाम हम आपको बता चुके हैं, स्टॉक बाय लव। ठीक है, स्टॉक से ही मतलब STOCK वाला स्टॉक नहीं है, ये STALK वाला स्टॉक है। स्टॉक मतलब किसी को देखना, ऑब्जर्व करना, नोटिस करना, वो वाली चीज। तो नोटिस करिए, खरीदिए, प्यार करिए, सिंपल फंडामेंटल, मतलब टाइटल में ही इतना कुछ छुपा हुआ है। इस कंपनी के फाउंडर्स की अगर बात करें तो तुषार अहलूवालिया, शिखा अहलूवालिया, निश्रित श्रीवास्तव एंड आशना चोपड़ा, चार इस कंपनी के को फाउंडर्स थे। तुषार की बात करेंगे, वन ऑफ द प्रिंसिपल को फाउंडर्स जिन्होंने इस कंपनी को जो है स्टार्ट किया। ठीक है, प्रीवियसली ही वॉज पार्ट ऑफ मल्टीपल कंपनीज, मल्टीपल ई कॉमर्स वेंचर्स, इंटरनेट के पूरे इकोसिस्टम में आप कह सकते हैं कि अच्छे से समझते थे बहुत पहले से, वहां पर अच्छे खासे मजे हुए प्लेयर, मजे हुए लीडर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी जो है स्टार्ट करी, बाद में इस कंपनी को बंद करने के बाद उन्होंने दूसरी अपनी कंपनी स्टार्ट करी, बट इन्होंने अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन किया पूरे के पूरे ई कॉमर्स इकोसिस्टम में थ्रू मल्टीपल वेंचर्स। नेक्स्ट नेम इज शिखा अहलूवालिया, ये फैशन एक्सपर्ट है एंड शी यूज टू बी वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ दिस कंपनी, जो हैवली इन्वॉल्व थी डिजाइन में, ट्रेंड में, क्योंकि खुद फैशन की एक्सपर्टीज लेकर के आती हैं, समझती हैं फैशन को, लोग क्या चाहते हैं, लड़कियां क्या चाहती हैं, स्पेशल डेट्स पर, स्पेशल ओकेजन पर किस तरह की चीजों की डिमांड होती है। सो दैट्स व्हाट शिखा अंडरस्टूड एंड दैट्स हाउ ये कंपनी जो है आगे बढ़ पाई थी और लोगों के बीच में अपना नाम जमा पाई थी। अदर को फाउंडर्स वर निश्रित श्रीवास्तव एंड आशना चोपड़ा, ये दोनों भी प्लेयर्स थे इस कंपनी के, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट पिलर्स, बट ये भी जो है इंटरनेट बैकग्राउंड से आते थे, रॉकेट इंटरनेट बैकग्राउंड। ठीक है, जहां पर मुलाकात हुई थी इनकी तुषार से। अब इनकी एजुकेशन की बात करें तो यहां पर मैं थोड़ा सा आपसे माफी मांगना चाहूंगा आज के लिए, क्योंकि पब्लिक सोर्सेज मैंने बहुत कोशिश करी ढूंढने की, बट लिटरली इनके एंटरप्रेन्योरियल जो पूरा ट्रैक था उसके ऊपर तो फोकस किया गया, बट स्पेसिफिक डिग्रीज के ऊपर फोकस नहीं किया गया। लेकिन इतना पता है, ये चारों ही लोग डिजिटल बैकग्राउंड से आते थे एंड ये इन चारों लोगों का आप कह सकते हैं कोर एक्सपर्टीज थी, और चारों फैशन को समझते थे, फैशन में कुछ नया करना चाहते थे, लोगों को नया टेस्ट, नया फ्लेवर देना चाहते थे। That's how they started this venture together. But unfortunately, due to the limited public availability of their details, हम बहुत ज्यादा जानकारी नहीं जुटा पाए, and moreover, company भी अब operational नहीं है, so that is also one of the reasons. But उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तो जितना आपको बताया उतना आप समझ पाए हैं कि experience वो अलग अलग जगह से gain करके आए and कैसे वो आगे जाके आपके काम आता है। लेते हैं अब एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। Stay tuned, feel good, feel live.

वेलकम बैक, मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आज का हमारा ब्रांड है स्टॉक बाय लव। अब इस कंपनी के हम यूएसपीज की बात करेंगे। फर्स्ट प्राइम यूएसपी, वर्टिकल इंटीग्रेशन। होता क्या है, फैशन इंडस्ट्री में अधिकांश कंपनीज ऐसे ऑपरेट करती हैं कि थर्ड पार्टी ब्रांड्स जो होते हैं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स उनके पास होते हैं। अब वहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे लूपहोल्स होते हैं, सप्लाई चेन को संभाल पाना बहुत बड़ा टास्क होता है एक्चुअली। इन्वेंट्री ओवर स्टॉक ना हो जाए, अंडर स्टॉक ना रह जाए, ठीक है, स्टॉक आउट ना हो जाए, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने थर्ड पार्टी ब्रांड्स के ऊपर रिलाई ही नहीं किया। हर एक आइटम इनका खुद से डिजाइन किया, खुद से सोर्स किया, खुद से प्रोड्यूस किया, विद इन देयर टाइम बाय देयर ओन सप्लाई चेन, ठीक है। फास्टर रिलीज इनकी हुआ करती थी, डिजाइन को 8 से 14 दिन का ये बनाया करते थे। ट्रेडिशनली हुआ करता था 45 से ज्यादा डेज का रखा करते थे, एक टैट रखा करते थे टर्न अराउंड टाइम कि 45 दिन में ये स्टॉक बिक जाएगा। लेकिन इनकी स्ट्रेटेजी थी कि 14 दिन में, 8 से 14 दिन ये मैक्सिमम टाइम हमें लेना है और इस टाइम पीरियड में हमें अपना सारा स्टॉक सेल करना है। डेटा ड्रिवन डिसीजंस थे इनके, ठीक है, क्या बनाना है ताकि बहुत हैवीली जो है डिस्काउंट करने की नौबत ही ना आए कि आपके पास डेड स्टॉक पड़ा हुआ आपको डिस्काउंट लगाना पड़ रहा है। ये डेटा ड्रिवन फैसले लिया करते थे। सेकंड यूएसपी वाज टेक लेड ऑपरेशंस, ठीक है। यहाँ पर ये डिजाइन को मैनेज करने के लिए, डिमांड फोरकास्टिंग करने के लिए, प्रोडक्शन प्लानिंग करने के लिए रियल टाइम में लिटरली मतलब टेक का इस्तेमाल करते थे। टेक को अपने डिजाइन इस तरीके से किया हुआ था, एल्गोरिथम को इस तरीके से डिजाइन किया हुआ था कि ये अपनी सारी चीजों को यहाँ पर फॉरकास्ट कर सके और समझ सके कस्टमर कब क्या मांगेगा, उसके आधार पर एक लमसम जो है टाइम पीरियड में चीजें बना दिया करते थे और उसको सेल किया करते थे। ट्रेंड फोकस्ड, थर्ड यूएसपी, ठीक है। दे चेज हाइपर ट्रेंडी कलेक्शंस, जहाँ लिटरली मतलब जो यंग फीमेल कंज्यूमर्स थी इनके पास, एंड जाहिर सी बात है कि फीमेल कंज्यूमर्स के पास ऑप्शन ज्यादा होने चाहिए, दैट इज द थंब रूल। तो यहाँ पर जेनरिक स्टाइल के ऊपर गए नहीं, उसके ऊपर गए कि जो यंग फीमेल्स हैं उनको क्या चीज रेजोनेट करेगी, क्या चल रहा है मार्केट में, क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, संभावना के ऊपर बहुत ज्यादा इन्होंने खेला। एंड फोर्थ यूएसपी वाज मार्जिनल इकोनॉमिक्स, ठीक है। खुद की सप्लाई चेन थी तो जाहिर सी बात है बहुत कम प्रमोशन के साथ भी ये काम कर सकते थे। मतलब मोरओवर इट्स नॉट अबाउट द प्रमोशन, इट्स अबाउट कि इन्होंने वो चीज एक्सेल कर ली थी कि 14 दिन में स्टॉक बेचना है। अब बना भी खुद रहे हैं, डिजाइन भी खुद कर रहे हैं, सोर्स भी खुद कर रहे हैं, भेज भी खुद ही रहे हैं, एंड कस्टमर तक जा रहा है, सेल भी खुद ही कर रहे हैं। सो दे डिडंट नीड एनीवन। तो वो एक चीज इन्होंने एक्सेल करी थी जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि वो एक तरीके से कस्टमर को भी फायदा होगा, क्योंकि जब आप इनहाउस से सारी चीजें कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप कस्टमर के लिए वो पॉकेट फ्रेंडली चीज हो सकती है। दैट वॉज अ थिंग। अब इसी के साथ वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कंपनी के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। लेकिन जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक, मैं सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की, और आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानवश्ना 107.8 के साथ। फास्ट फैशन रिटेल गेम की हम लोग यहां पर अब बात करेंगे, क्योंकि हमारी कंपनी जो है वो अब ऑपरेशनल नहीं है। कंपनी बंद हुई, कंपनी बहुत अच्छी थी, कंपनी एक्चुअली सारी चीजें एक्सेल करके आई थी, लेकिन उसके बावजूद क्या प्रॉब्लम हुई? देखिए, फास्ट फैशन रिटेल गेम है ना जो, ये बहुत ब्रूटल है, केवल भारत में नहीं ग्लोबली। इन्वेंटरी रिस्क होता है, ठीक है। कॉम्पिटिशन, मतलब यकीन मानिएगा कि बहुत भयंकर कॉम्पिटिशन होता है। चीप इम्पोर्ट्स आते हैं, हैवी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट आती है, जिससे मार्जिन्स जो है स्क्वीज हो जाते हैं। स्टॉक बाय लव के साथ क्या हुआ, फंडिंग नहीं मिली फर्स्ट थिंग, ठीक है, उस टाइम पर, क्योंकि बहुत ज्यादा उनको नहीं लगा होगा, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा कि ये इतना फास्ट पेस चल रहे हैं तो क्या कारीगर होगा नहीं होगा, वो सारे ऑप्शंस वहां पर जो है उन्होंने वे किए होंगे, तो शायद नहीं किया होगा इन्वेस्ट। बट हाँ, मेजर एक फंडिंग राउंड के थ्रू इनको आप कह सकते हैं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। कंपनी ने रिपोर्टेडली, जो रिपोर्ट्स बोलती हैं, वेंडर्स को पैसे नहीं पे कर पाए थे, इन्फ्लुएंसर्स को पैसे पे नहीं कर पाए थे, ऑर्डर्स फुलफिल नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से बहुत सारी ऑनलाइन कंप्लेंट्स आई थी और ऑपरेशनल कोलैप्स वहां पर हुआ। तो कहीं कोई लूप होल रहा उनके एंड पर, जहां से वो सारी की सारी साइकिल जो है वो ट्रैक से उतर गई और अनफॉर्चुनेटली कंपनी को बंद होना पड़ा। कंपनी इज अगेन आई एम सेइंग नो लॉन्गर एक्टिव, अपना ऑपरेशन शट डाउन कर चुके हैं आफ्टर क्रैश एंड फंडिंग इश्यूज, बट बहुत कुछ सिखा कर गए हैं कि फैशन इंडस्ट्री में नई डेफिनेशन क्रिएट की जा सकती है, बट वो गलती जो इन्होंने करी वो नहीं करनी है, उससे आगे बढ़ना है और उससे सीख करके आगे जाना है और तब जाके जो है अपना नाम कमाना है। तो ट्रेंड फॉलो करिए, वो सारी चीजें फॉलो करिए, लोगों को क्या चाहिए वो दीजिए, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी सारी चीजें बिल्कुल मैं कहूंगा टिप टॉप रखनी होंगी, ताकि कोई ऐसी नौबत ना आए कि कंपनी को बंद करना पड़े, ऑपरेशन को बंद करना पड़े। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की चीजें हम लोग आपको समझा पाए हैं। फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो को कंक्लूड करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक, मैं सागर। शो चल रहा है पर आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की, फील गुड फील लाइफ। सो अब बात करेंगे थोड़ा सा आपके लिए इनसाइट्स की, कुछ बात करना चाहूंगा मैं यहाँ पर। टेक की अगर आप बात करते हैं फैशन इंडस्ट्री में, इट्स नॉट जस्ट कोड, इट्स सप्लाई चेन, दैट इज अ मेन टेक, दैट इज अ मेन टेक्नोलॉजी जो एक्सेल करना होता है किसी भी एक एंटरप्रेन्योर को। अगर आप लॉजिस्टिक्स को नेल नहीं कर पाएंगे, इन्वेंटरी को नेल नहीं कर पाएंगे, तो टेक्नोलॉजी अकेली आपको नहीं जिता पाएगी इस गेम में। दैट इज द ब्रूटल ट्रूथ, ऑनेस्टली बॉटम लाइन यही है। फास्ट फैशन इज अ मार्जिन वॉर, जो छोटे प्लेयर्स होते हैं ना उनको इजीली क्रश कर दिया जाता है, क्योंकि ग्लोबली बहुत सारे जायंट्स बैठे हुए हैं, चीप इंपोर्ट्स कर दिए जाते हैं। तो अगर जो स्मॉल प्लेयर्स हैं, अगर वो इजीली स्केल अप नहीं करेंगे, जल्दी से स्केल अप नहीं करेंगे, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। इसलिए स्केल अप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस एक गेम में, और फंडिंग की यहां पर गारंटी होती नहीं है। इवन आपके पास वीसी की बैकिंग है, एक स्टार्टअप का ऑपरेशन तब भी फेल हो सकता है, बिकॉज फास्ट फैशन की बात कर रहे हैं हम लोग। अपने आप में बहुत ब्रूटल एक इंडस्ट्री हो जाती है वो, जहां पर लिटरली एक वॉर जोन जैसा आपको कंपटीशन नजर आएगा। सो दिस कंपनी वॉज एक्चुअली एन अटेम्प्ट टू मर्ज फैशन सप्लाई चेन एंड टेक टू री राइट हाउ ऑनलाइन अपेरल्स वर मेड एंड सोल्ड इन इंडिया। उस एक दास्तान को दोबारा लिखने के लिए नई परिभाषा से ये कंपनी आई थी। अनफॉर्चुनेटली इट कुडंट वर्क आउट दैट वे, बट ठीक है, बहुत कुछ हमें सिखा करके गई। सो या हियर वी वांट टू थैंक दिस कंपनी स्टॉक बाय लव, जिन्होंने इतना कुछ हम इंडियंस को नया करके दिखाया 2012-13 में। नाउ ऑन दिस नोट दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं आज का शो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। फिलहाल अपने शो को यहां पर कंक्लूड करना चाहेंगे, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। अपना ख्याल रखिए तब तक। नाउ दिस इज योर दोस्त एंड होस्ट आरजे सागर साइनिंग।

0: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
1: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप, मैं हूं साक्षी आपके साथ और प्रोग्राम ऑल इज वेल लेकर के आई हूं। और आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सीजनल फ्लू या H1N1 क्या है, और आजकल केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, और ये जो ऐसे जो हमें फील हो रहे हैं, ये बॉडी में जो इतने चेंजेस आ रहे हैं, सर्दी खांसी आम है या फिर ये H1N1 है, क्या सही है या क्या नहीं सही है, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए या कौन सी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, क्या खुद से मेडिसिन लेना सही है, ये बहुत सारे सवाल हमारे मन में आ रहे हैं। और ऐसे में देखिए हॉस्पिटल्स में भी केसेस बढ़ रहे हैं और साथ ही हम सोच ये रहे हैं कि घर पर ही इसे ट्रीट कर लें, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं है कि अगर ये H1N1 हुआ या कोई और कोई बड़ी बीमारी हुई तो इसका खतरा कितना बड़ा हो सकता है। और आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं आज के हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर रोहित मुखर्जी, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन। डॉक्टर, सबसे पहले तो मैं एक स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
3: थैंक यू फॉर हैविंग मी मैम।
2: डॉक्टर, जो हमारा पहला सवाल है आपसे, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि आजकल सर्दी खांसी जुकाम बुखार बहुत ज़्यादा आम हो रहा है, तो ये आजकल जो मौसम बदल रहा है तो ये सीजनल फ्लू है या फिर H1N1 का खतरा?
3: तो मैम, जैसा कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, यूजली हमारे इंडिया दिल्ली NCR में जो चेंजिंग वेदर होता है वो डिफाइन होता है जुलाई अगस्त सितंबर एंड देन वो जो स्मोकी सीजन होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो मैम, यूजली इस चेंजिंग वेदर में बहुत रैम्पेंट हो जाता है वायरल का एक से दूसरे में जंप करना, जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉस इन्फेक्टिविटी जो होती है। यूजली हर साल मैम ये इन्फ्लुएंजा ही होता है और इन्फ्लुएंजा ही H1N1 होता है, बट एवरी 2 to 3 ईयर्स इन्फ्लुएंजा अपने आप को म्यूटेट यानी कि धीरे धीरे चेंज करता है। तो जैसे ही चेंज करता है और वो एक समय ऐसा आता है कि वो ऐसा विरुलेंट यानी बहुत ही इन्फेक्टिव वैरायटी जब बन जाती है, तब ये रैम्पेंटली फैलता है, जो कि हमारे यहाँ पे अभी देख रहे हो आप कि बहुत ज्यादा पैंडेमिक जैसा हो गया ये।
2: करेक्ट।
3: तो इन्फ्लुएंजा और H1N1 एसेंशियली सेम ही है, बट एवरी 2 to 3 ईयर्स और 4 ईयर्स वो ऐसा चेंज हो जाएगा कि बहुत रैम्पेंटली फैलेगा। अब आती है बात मैम सवाल की, ये इस बार ही ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस बार मोस्ट लाइकली मैम एंटीजेनिक, इसको शिफ्ट कहते हैं, इसमें इन्फ्लुएंजा का जो DNA लेवल जो है वो पूरा जो है वो शिफ्ट करके बहुत ही ज्यादा इन्फेक्टिव वराइटी का बन गया है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग सिक पड़ रहे हैं। तो ये रीजन है मैम कि चेंजिंग वेदर में क्यों फैलता है और ये इस बार क्यों ज्यादा कर रहा है।
2: डॉक्टर, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि अगर इसके सिम्टम्स की बात करें, क्योंकि बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं और इसी वजह से लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, घर पर ट्रीट कर रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम जब बढ़ जा रही है और एक स्टेज तक पहुंच जा रही है, तब रियलाइज हो रहा है कि नहीं, शायद से अब अलार्मिंग है, तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं वो जरा हमें बताएं।
3: तो मैम, इस सीजन में आप देखेंगे कि हम यूजली इन्फ्लुएंजा जो कॉमन फ्लू होता है वो होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, सबके मैम सिम्टम्स शुरुआती सेम ही होते हैं, फीवर होता है, बॉडी एक होता है। इन्फ्लुएंजा में मैम यूजली जैसे किसी को अंडरलाइंग अगर एस्थमा है या ब्रीदिंग इशू है तो उसको खांसी ज्यादा होगी, हो सकता है उसको सांस का इशू भी हो, बलगम आए, ये सारी चीजें मैम बहुत कॉमन है इन्फ्लुएंजा में होना, जो कि ओवरलैप करती है डेंगू और चिकनगुनिया से, बॉडी एक और फीवर के साथ। अब हम डिसाइड ये करना है कि यूजली सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, खुद से ही ठीक हो जाती है 90% लोगों में, 10 to 15% वारंट हॉस्पिटल विजिट्स या फिर हॉस्पिटल में ओपीडी में दिखाना, या इवन लेस देन 5% विल रिक्वायर एडमिशंस। अब वो कब मैम अपने को इवैल्यूएट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि हमें हॉस्पिटल जाके मिलना है। तो अगर मैम फीवर इज बियॉन्ड 3 days अगर आ रहा है, इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू योर कन्वेंशनल पैरासिटामोल, खांसी में कहीं बलगम में खून आ जाता है, या ब्रीदिंग इशू बढ़ जाता है प्रोग्रेसिवली, या फिर वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है और ओरल इंटेक डाउन हो जाता है, तो ये सारी चीजें हैं मैम कि इन पेशेंट्स को तुरंत ही अपने नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाना है, ताकि वो बेसिक इन्वेस्टिगेट कर सके अपना, जैसे कि एक अपना एक्सरे हो गया जस्ट टू सी द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज एंड मेडिसिन इमीडिएटली स्टार्ट कर सके। घर पे बैठे बैठे मैम ये सारी जो एंटीवायरल्स, एंटीबायोटिक्स और मल्टीवाइटामिंस और ये जो एनसेड्स करके दवाइयां होती हैं जिनसे फीवर टूटता है, ये घर पे बिल्कुल स्ट्रिक्टली नहीं लेनी है, क्योंकि मैम यूजली डेंगू में जो पेशेंट्स होते हैं या फिर जिनको मैम लिवर का इशू होता है, या जिनका खून पतला होता है, या फिर जो एंटीप्लेटलेट्स पे होते हैं, या जिनको पेट में कहीं पे पॉलिप होने का जिसको पता भी नहीं होगा होगा, और उसने अगर एनसेड ले लिया और बाई चांस उसका खून ज्यादा पतला हो गया, तो उनको मैम ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है जो बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है।
2: बिल्कुल डॉक्टर, बहुत ही सारी जानकारी आप हमें दे रहे हैं, लोगों से साझा कर रहे हैं, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें, तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ।
4: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह छूकूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
5: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।

धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, स्पसिबा तवारिश। यहां हमारा इंटरवल होता है, ये तो अंतरत यानी कि वक्फा, मध्यांतर। यह इंटरवल हो सकता है 15 मिनट का है, या 15 घंटे का, या 15 महीने का, लेकिन जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं। मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं। चाहिए।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं ऑल इज वेल. और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर रोहित मुखर्जी, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से. डॉक्टर, बहुत सारी बातें हो रही हैं H1N1, ये बहुत बड़ा एक आजकल केस जो है ये फैला हुआ है, हर जगह इसके केसेस हमें नजर आ रहे हैं, बीमारी इतनी बहुत जल्दी जल्दी फैल रही है. मैं आपसे जानना चाहती हूँ ये स्प्रेड कैसे हो पा रहा है इतनी जल्दी, क्योंकि एक जने को है दूसरे जने को बहुत तेजी से फैल रहा है, और किस तरह से वो भी हमें बताएं.
1: यूजली मैम H1N1 जो इन्फ्लुएंजा ए या बी है वो एक से दूसरे से मैम जो स्प्रेड करता है वो एयर ड्रॉपलेट मैकेनिज्म होता है. अब एयर ड्रॉपलेट मतलब मैम आप और मैं अगर लेट्स से विद इन 6 feet की अगर दूरी पे हैं एंड इफ आई एम इन दैट सेम क्लोज एनवायरनमेंट एज यू, और अगर मैं खांसी कर रहा हूँ या मैं छींक मुझे आ रही है या मैं बात कर रहा हूँ या मेरे से सांस लेते हुए अगर कोई ड्रॉपलेट्स नाक से निकल रहे हैं, मुंह से निकल रहे हैं, तो दे विल बी सस्पेंडेड इन द एयर. तो वंस दोस सस्पेंडेड एयर ड्रॉपलेट्स विच आर कैरिंग द पार्टिकल्स viral particles, they get deposited. जब वो आपके नाक या आपके गले के जो लाइनिंग होती है जब वो उस पर डिपॉजिट हो जाएगा तो फिर दो चीजें डिटरमिन होती हैं कि या तो वो वहीं पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा या वो वहां से ब्रीच करके बैरियर को अपना अंदर पाथ अपना डायरेक्ट कर लेगा. अगर वो न्यूट्रलाइज हो गया तो दैट मींस कि अब आप प्रोटेक्टेड हो. ये सारी चीजें प्रोटेक्शन हम लोग इम्पार्ट कैसे कर सकते हैं, मास्क से, वैक्सीनेशन से, अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखने से, एंड दैट्स अबाउट इट. अगर मैम ये वायरल पार्टिकल जो डिपॉजिट हुआ था इसने जो अपना बैरियर है इसको ब्रीच करके अंदर एंट्री ले ली तो फिर मैम ये क्रॉस अपना पूरी बॉडी में स्प्रेड करेगा, वायरल पार्टिकल्स मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके मैम ग्रेजुअली फिर वो पूरा एक सिकनेस सिंड्रोम जो होता है वो मैनिफेस्ट करेगा.
0: बिल्कुल.
1: तो ये मैम एक से दूसरे से जो स्प्रेड होता है ये एयर ड्रॉपलेट मैकेनिज्म से होता है.
0: बिल्कुल डॉक्टर, कोविड का जो खतरा था उसकी वजह से भी लोग काफी ज्यादा परेशान रहे थे उस टाइम पर, अगर हम COVID-19 की बात करें. अब आ गया है H1N1, सिम्टम्स काफी हद तक सिमिलर हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ क्या ये भी उसी की तरह खतरनाक है, क्या इससे भी उतना ही डर उतना ही खतरा हमें महसूस करना चाहिए और उतनी सावधानी हमें रखनी चाहिए जितना कोविड के टाइम पर था.
1: मैम कोविड और इन्फ्लुएंजा एसेंशली जो एक से दूसरे फैलने का तरीका है वो सेम ही है, बट केस फैटेलिटी रेट मतलब अगर 100 लोगों को कोरोना होगा और 100 लोगों को इन्फ्लुएंजा होगा तो देखा जाए तो कोविड का ज्यादा केस फैटेलिटी रेट हाई था क्योंकि वो बिल्कुल ही हमारे लिए नया था बिकॉज वी वर नॉट एक्सपोज टू दैट प्रायरली.
0: करेक्ट.
1: इन्फ्लुएंजा का मैम इतना हाई इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग एवरी ईयर वी गेट एक्सपोज टू इट. इट इज जस्ट दैट ग्रेजुअली व्हेन द डीएनए ऑफ द वायरस चेंजेस टू दैट एक्सटेंट कि वो ज्यादा विरुलेंट हो जाता है तो फिर वो ज्यादा थोड़ा तंग हमें कर जाता है, जैसे ज्यादा दिन के लिए बुखार, ज्यादा बदन दर्द, ज्यादा दिन के लिए खांसी, ये सारी चीजें वो दे जाता है. अगर आप 1-on-1 कंपेयर करो तो कोविड वॉज फार मोर फेटल देन इन्फ्लुएंजा फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस, जैसे कि उसमें खून को क्लॉट थक्के बनाने की कैपेबिलिटी थी, उसके अंदर मैम बेसिकली इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स यानी बॉडी के अंदर अपना एक ऑटो इम्यून यानी जलन का पदार्थ बनाने का रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा था, इन्फ्लुएंजा में नहीं है. तो जो कोविड में जान जाती थी वो यूजली क्लॉट्स या फिर अपना सेल्फ इम्यूनिटी को अनचेक्ड फ्लेयर होना उसकी वजह से प्रॉब्लम आती थी. इन्फ्लुएंजा में ये चीज नहीं देखी जाती. इन्फ्लुएंजा में यूजली देखा जाता है जो नॉर्मल वायरल करते हैं ये लोग, अपना वायरस जो है यूजली अपना बॉडी एक बहुत ज्यादा करेगा, कफ कर सकता है और बहुत दिनों के लिए जनरलाइज बॉडी एक वीकनेस ये कर सकता है, दैट्स अबाउट इट.
0: जी, कई सारे लोग हैं ऐसे जो इसको बहुत ही ज्यादा नॉर्मल ले रहे हैं या फिर इसके बारे में इतना नहीं, लापरवाही जो है वो दिखा रहे हैं, लेकिन लापरवाही अगर आप दिखा रहे हैं तो इसका जो खामियाजा है आप ही को भुगतना पड़ेगा. इसीलिए कोशिश कीजिए कि अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगती है और अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन बहुत ही अलार्मिंग है तो कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और एक सही मेडिकेशन लें, अपने आप सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना लें. चलिए इसके साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील लाइफ.
2: सिमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए.

0: वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं ऑल इज वेल. और बहुत सारी आज हम बातें कर रहे हैं. हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं डॉक्टर रोहित मुखर्जी, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से. बहुत सारी बातें हो रही हैं डॉक्टर आपसे, और मैं अगला सवाल अब आपसे जानना चाहूंगी. H1N1 का खतरा काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें यह खतरा जो है ज़्यादा जो है रिस्क फैक्टर में वो आते हैं, वो हमें बताएं.
1: यूजली मैम जो OPD में हम लोग देखते हैं, यूजली जो 18 to 35, 45, 55 तक, दीज आर पेशेंट्स हु वुड यूजली रिस्पॉन्ड टू OPD ट्रीटमेंट्स. ये लोग अपना OPD में ही अपना दवाई लेके ठीक हो जाते हैं. अज्यूमिंग मैम somebody has, किसी को एस्थमा है, किसी को शुगर है, किसी को प्रायरली कभी कोविड निमोनिया की वजह से लंग्स में कोई डैमेज फाइब्रोसिस था, या किसी को पहले TB था, या कोई डायबिटिक हाइपरटेंसिव किडनी डिजीज, या फिर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट है, तो ये सारे पेशेंट्स मैम ज्यादा वल्नरेबल रहते हैं कि इनके अंदर सिवेरिटी ज्यादा हो सकती है इन्फ्लुएंजा या H1N1 की. बच्चों में जैसे कि कह सकते हैं कि ब्रॉडली स्पीकिंग बच्चे या जो बुजुर्ग होते हैं, इनकी इम्यूनिटी या तो डेवलपिंग होती है या फिर अंडर डेवलप्ड हो जाती है. तो दीज आर ऑल्सो द कैटेगरीज विच नीड टू वॉच आउट फॉर द सिम्टम्स, जो कि मतलब अगर है लक्षण है तो उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ये नॉर्मल बुखार है. अगर सेकेंड थर्ड डे के बियॉन्ड फीवर जा रहा है या सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, वर्सन कर रहे हैं, तो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ पेशेंट्स हु मस्ट रिपोर्ट टू देयर फैमिली डॉक्टर एट वंस.
0: डॉक्टर, सबसे ज्यादा मैं कहूंगी कि जो डर है लगता है जो प्रेग्नेंट है, और जब पूरी उनको तो लगी रहा है डर, लेकिन उनके साथ साथ पूरी फैमिली को लग रहा है कि कहीं उनको ये इन्फ्लुएंजा ना हो जाए, कहीं H1N1 ना हो जाए, लेकिन क्या अगर ये हो जाता है तो क्या उससे कुछ डेंजरस ऐसा हो सकता है, या कॉम्प्लिकेशंस कुछ बढ़ सकते हैं, या बच्चे पर क्या कोई असर पड़ सकता है इसका?
1: हम इन्फ्लुएंजा का पर से बच्चे पर अगर इनसाइड द वूम है, मतलब कि अगर अगर माँ के अंदर है बच्चा, तो इन्फ्लुएंजा का कोई ऐसी स्टडी नहीं है जो डिक्टेट करे कि उस पर कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा. एब्सोल्युटली नॉट. बट यस, अगर प्रेगनेंसी है और अगर इन्फ्लुएंजा होता है, तो यस यू आर मोर वल्नरेबल देन द जनरलाइज पॉपुलेशन. यू नीड टू वॉच आउट फॉर. ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खतरे की बात है. प्रेग्नेंट फीमेल्स डू यूजुअली हैव लेस इम्यूनिटी कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन, तो उनको थोड़ा ज्यादा देख के चलना पड़ता है. एंड यू कैन नॉट सेल्फ मेडिकेट डेफिनेटली अ प्रेग्नेंट वुमन एट होम. यू नीड टू वॉच आउट फॉर फ्यू मेडिसिंस. दो कुछ मेडिसिंस आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते प्रेगनेंसी में, तो वो आप खुद से डिसाइड नहीं कर पाओगे. इसके लिए आपको अपनी गायनेक या अपना फैमिली फिजिशियन आपको चाहिए. तो अगर है प्रेगनेंसी में किसी को लक्षण, तो तुरंत ही चेक कराएं.
0: बिल्कुल डॉक्टर, कई बार ऐसे होता है कि हम खुद से दवाइयाँ लेनी शुरू कर देते हैं, तो शुरुआत में होता है कि हम पैरासिटामोल से शुरू करते हैं, क्योंकि अगर फीवर आया है तो अक्सर यही दिया जाता है या फिर यही हम इनटेक भी करते हैं. लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये उसके बाद भी खत्म नहीं हो रही है. पैरासिटामोल लेने के बाद भी बुखार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या ये सिचुएशन अलार्मिंग है? और अगर हाँ, तो आप हमें बताएं कि क्या सिचुएशन है और कैसे इसे डील करना चाहिए और कब हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए?
1: H1N1 अगर होता है, किसी को लेट्स से पॉजिटिव आती है रिपोर्ट, या फिर किसी को लक्षण आते हैं, और पैरासिटामोल इज द सेफेस्ट मेडिसिन टू बिगिन विद. अगर पैरासिटामोल लेके भी अगर फीवर सेटल नहीं हो रहा है, तो आई वुड रेकमेंड कि पेशेंट को कोल्ड स्पंजिंग करा जा सकता है फॉर अ डे और मे बी फॉर 2 डेज. बट दैट डज नॉट मीन बाय द सेकेंड डे आप अपने आप ही मेफ्टाल फोर्ट या आईब्यूजेसिक प्लस ये सब दवाइयां बिल्कुल खुद से नहीं खा सकते, अनलेस यू हैव अ CBC रिपोर्ट विच गवर्न्स कि प्लेटलेट नॉर्मल है. अगर किसी के प्लेटलेट स्लो हुए और किसी ने अगर ये मेफ्टाल या NSAID कैटेगरी की मेडिसिन ले ली टू ब्रेक द फीवर पैटर्न, तो फिर वो कैटास्ट्रोफिक, मतलब कि बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी कर सकता है किसी पेशेंट में, अगर वो ब्लीडिंग टेंडेंसी किसी की अंडरलाइंग जो थी और वो अनमास्क थी. तो इसलिए मैं कहूंगा कि घर पे सबसे सेफेस्ट मेडिसिन है गुड हाइड्रेशन, रेस्ट, फूड, पैरासिटामोल, एंड दैट्स इट. अगर सेकेंड डे तक आपका सेटल होता दिखता है, दैट्स इट, आपको और कुछ नहीं करना. अगर थर्ड डे तक ये परसिस्ट कर रहा है, बढ़ रहा है, सिचुएशन खराब हो रही है, सच एज की ब्रेथलेसनेस हो रही है, आपको खांसी में बलगम आ रहा है, रेड कहीं खून का थक्का दिख जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है कि आपसे पैरासिटामोल भी नहीं खाई जा रही, ना खाना खाया जा रहा है, देन यू मस्ट रिपोर्ट टू योर डॉक्टर.
0: अक्सर हम ये सोचते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी हमारे साथ कुछ होता है, कि कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा और थोड़ी बहुत हम मेडिसिन ले लेंगे, घर पर ही ठीक हो जाएंगे. लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और जब ये दिक्कतें बढ़ जाती हैं तब हमें लगता है कि अब तो पैसे हमें खर्चने पड़ेंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब वो इनिशियल स्टेज पे था तो शायद से हो सकता है कि आपको उतने पैसे ना लगे या उतनी आपको वो बीमारी ना जकड़े जितना कि उस टाइम पर आप अभी परेशान हो रहे हैं। इसलिए पहले से पहले ही, चाहे वो H1N1 हो या कोई भी बीमारी अगर आपको है, हम पहले से ही जो है खुद से मेडिसिन ना लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, और डर जो है शायद से बाद में ज़्यादा आपका बढ़ जाए ना कि उस टाइम पर जब वो इनिशियल स्टेज पे है। तो इसीलिए आपको इस बात का ख्याल रखना है। और चलिए इसी के साथ अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं ऑल इज वेल. आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर रोहित मुखर्जी, जिनसे हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं H1N1 के बारे में. डॉक्टर, मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहती हूँ, और वो ये कि अगर वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो क्या H1N1 की भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है?
1: तो यस मैम, H1N1 की वैक्सीन जो आती है वो अवेलेबल है इंडियन मार्केट में. ये एवरी 2 ईयर्स इसको अपडेट करते हैं स्ट्रेन्स को. वैक्सीन्स के मैम बहुत सारी वैरायटीज आती हैं. जो यूजुअली सबसे प्रेवलेंट है, मतलब जो यूजुअली रूटीनली प्रिस्क्राइब होती है, वो आपकी एग कल्चर बेस्ड वैक्सीन होती है, जो कि डेड वैक्सीन एक तरीके से कह सकते हो होती है, और जो बहुत सेफ होती है. वो थ्रू आउट द एज ग्रुप्स किसी को भी लगाई जा सकती है. ये यूजुअली मैम जुलाई में लग जानी चाहिए, क्योंकि इंडिया का जो मौसम है वो यूजुअली जुलाई से ऑनवर्ड्स चेंज होता है अगस्त ऑनवर्ड्स. तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, ये 6 महीने की इसकी अपनी इम्यूनिटी इम्पार्ट करता है. 6 महीने के बाद ग्रेजुअली ये डिक्लाइन करनी शुरू कर जाती है, एंड बाय 9th month इट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल. तो अगर किसी को वैक्सीनेट करना है वो जुलाई के मंथ में करा जा सकता है, ताकि बाय 14 days, 15 days इट टेक्स टाइम टू किक इन, द इम्यूनिटी टेक्स टाइम टू किक इन. तो बाय अगस्त ऑनवर्ड्स यू आर अंडर द प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ द अपना वैक्सीन की जो कवरेज होती है. अब किसको लेनी चाहिए मैम वैक्सीन? यूजली आई वुड सजेस्ट एनी Anybody who's less than maybe 18 and above 65 must take the vaccine each year, अपना जुलाई के मंथ में. Anybody who falls between this age group who has low immunity has a tendency to fall sick more than 3 times a year due to viral infections, influenza and all, in common flu जो होता है, या जो diabetic है, hypertensive है, या जिसको dialysis पे है, या जिसका repeated hospital चक्कर लगता है for one of their family.

0: वायरल इन्फेक्शन जो इस बार का है 2026 का स्वाइन फ्लू जो H1N1 है, इट टेक्स मोर देन एटलीस्ट 2 weeks, एनीवेयर बिटवीन 2 weeks टू 2 months. तो वन मस्ट बी प्रिपेयर्ड कि अपना हाइड्रेशन, खाना पीना, रेस्ट ये करना जरूरी है.
1: जी डॉक्टर, मेरा कुछ और सवाल आपसे जरूर रहेंगे आखिरी में, और अगर रिकवरी के दौरान की बात की जाए तो पेशेंट को किन चीज़ों का ध्यान रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है?
0: मैम रिकवरी में व्हाट आई वुड पे मोर अटेंशन टुवर्ड्स इज गुड रेस्ट, गुड हाइड्रेशन, गुड कैलोरी इनटेक एंड द मेडिसिंस व्हिच हैव बीन गिवन बाय अ डॉक्टर सच एज मल्टीविटामिंस टू और एनी अदर मेडिसिंस सच एज मे बी नेबुलाइजर्स और इनहेलर्स और एंटी हाइपरटेंसिव और डायबिटिक मेडिसिंस, दे नीड टू बी कंप्लाइड टू द डॉट. मतलब वो अच्छे से लेना जरूरी है. अगर आप सिर्फ H1N1 की मेडिसिन लोगे और अपनी BP की मेडिसिन भूल जाओगे या डायबिटीज की भूल जाओगे या अपनी एस्थमा की भूल जाओगे तो द रिकवरी विल बी डिलेड इनएविटेबली.
1: जी डॉक्टर, H1N1 के 5 गोल्डन रूल्स अगर आपको कहें सबसे याद रखने के लिए तो वो कौन से होंगे?
0: सबसे पहला तो मास्क पहनना है पब्लिक स्पेसेस पे. अगर खांसी आती है या छींक आती है तो मे बी अपना रुमाल यूज करें या फिर अपनी कोनी के अंदर आप खांस के या छींक के उसको आप रोक सकते हैं. दूसरा, घर से जब निकलें तो ब्रेकफास्ट करके निकलें, खाली पेट ना निकलें. थर्ड इज अपना खाने पीने पे अपना देखें कि बाहर का खाना अवॉइड करें, घर का ही खाना खाएं ताकि उससे इम्यूनिटी आपकी ठीक रहे. रेगुलर एक्सरसाइज करें और अगर हो सके डेफिनेटली ईयर ऑन ईयर वैक्सीनेट जुलाई के मंथ में कर सकें तो आप अपने आप को और अपने घर वालों को सिवियर इन्फेक्शन से बचा सकते हैं.
1: जी थैंक यू सो मच डॉक्टर, इतनी सारी जानकारी आपने हमें साथ हमारे बांटी है, साझा करी है. मैं आपके तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप स्टूडियो आए और इतनी सारी जानकारी दी.
0: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी.
1: इसी के साथ वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. इसी के साथ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस बड़ी बीमारी से H1N1 इस फ्लू से, चाहे वो सीजनल फ्लू हो चाहे वो H1N1 है, इससे आप दूरी बनाए रखें. और जिसको भी है या अगर आपको खुद को है तो खुद भी अवेयर होना है और दूसरों को भी अवेयर करना है और उनके साथ 6 फीट की दूरी तो आपको रखनी जरूरी है. चलिए इसी के साथ अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो 107.8 FM. Feel good, feel life.

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हेलो एवरीवन, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूं गौरी मल्होत्रा, आपकी अपनी कम्युनिटी मेंबर, और मेरे शो क्रिएटिव मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्रिएटिव मंच में हमारे साथ हैं फरीदाबाद की दो बेहद प्रतिभाशाली और युवा संगीतकार बहनें, 17 वर्षीय हमसिनी कौशिक और 13 वर्षीय स्माही कौशिक। संगीत इन दोनों की जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हमसिनी ने महज 4 साल की उम्र में गायन शुरू किया और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखा। वहीं स्माही ने 6 साल की उम्र से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। इसके अलावा कोविड लॉकडाउन के दौरान दोनों ने वेस्टर्न म्यूजिक, सॉन्ग राइटिंग और कंपोजिशन को एक्सप्लोर किया और धीरे धीरे अपनी एक अलग म्यूजिकल आइडेंटिटी बनाई। करीब 3 साल पहले ये दोनों द गोपी गर्ल्स के नाम से डिवोशनल सिस्टर डुओ के रूप में पहचानी जाती थीं। इनके कौन दिशा में लेके चला रे कन्हैया और व्हेन आई एम इन वृंदावन जैसे गानों को खूब प्यार मिला और खूब सराहा गया। आज ये दोनों द श्यामाज और द फूल्स नाम से अपनी क्रिएटिविटी के दो अलग अलग पहलू दुनिया के सामने रख रही हैं। द श्यामाज के जरिए ये अपनी हिंदुस्तानी शास्त्रीय जड़ों और भारतीय डिवोशनल म्यूजिक को कंटेम्प्रेरी साउंड के साथ जोड़ती हैं। इनका गीत जेंजी की भक्ति भक्ति संगीत को एक फ्रेश और युवा अंदाज में प्रस्तुत करने के लिए काफी लोकप्रिय हुआ। वहीं फूल्स इनके ओरिजिनल म्यूजिक का प्लेटफॉर्म है, जहां ये अपनी फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस और लाइफ स्टोरीज को इंडी पॉप, हिंग्लिश, इंग्लिश इलेक्ट्रॉनिक और एक्सपेरिमेंटल साउंड्स के जरिए एक्सप्रेस करती हैं। सबसे खास बात तो ये है दोस्तों कि ये दोनों बहनें अपने संगीत का काम खुद ही करती हैं। सॉन्ग राइटिंग और कंपोजिशन से लेकर रिकॉर्डिंग, अरेंजमेंट्स, प्रोडक्शन, मिक्सिंग और मास्टरिंग तक। वही हमसिनी साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स भी कर रही हैं और म्यूजिक प्रोडक्शन के टेक्निकल साइड को भी गहराई से सीख रही हैं। तो आइए दोस्तों, आज क्रिएटिव मंच में इन दोनों प्यारी बहनों का स्वागत करते हैं, द श्यामाज और द फूल्स की बेहद टैलेंटेड सिस्टर्स हमसिनी कौशिक और स्माही कौशिक का। आप दोनों का क्रिएटिव मंच में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच मैम हमें यहाँ पे बुलाने के लिए।
0: ओके, तो सबसे पहले मैं आप दोनों से ये जानना चाहूंगी और हमारे लिसनर्स भी ये जानना चाहेंगे कि आपने इतनी अपने मतलब स्टार्टिंग में म्यूजिक की जो शुरुआत की वो आपका पैशन था या हॉबी थी?
1: इट वॉज लाइक अ हॉबी, हॉबी ही थी पहले तो, पर वो धीरे धीरे पैशन बना एंड उसके बाद अब करियर।
0: और आपने किस एज से सीखना शुरू किया था ये भी एक बार आप अपने मुंह से बताइए दोनों जने।
1: तो मैंने एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। मेरा फर्स्ट बर्थडे था जब मुझे किसी ने एक छोटा सा कैसियो दिया था, छोटा सा कीबोर्ड, एंड वो क्योंकि मेरे घर पे था ही, इसलिए जब मैं 4 साल की हुई तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे पियानो क्लास भेज दिया।
0: अच्छा।
1: एंड इस वजह से फिर मैंने पियानो सीखा एंड फिर जब पियानो बजाते बजाते वो गाने भी सिखाते ही हैं, तो गाने सीखते सीखते बजाते बजाते मैं गाने भी लग गई, तो उनको लगा मैं अच्छा गाती हूँ, तो इस वजह से फिर उन्होंने मुझे वोकल क्लासेस में भी डाला एंड दैट इज़ द थिंग दैट स्टार्टेड इट ऑल।
0: ओके, और स्माही ने कब से सीखना शुरू किया?
2: मैंने 6 ईयर्स की जब थी तब से, और मेरा शुरुआत में तो डांस में इंटरेस्ट था, बट फिर उनसे सीखते सीखते फिर मेरा भी उसी में इंटरेस्ट,
0: मतलब वो उसको देखते देखते एक इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हो गया। ओके, और मम्मी पापा का क्या इसमें रोल था? मतलब वो ही तो चाहते होंगे ना कि तुम म्यूजिक में आओ, या तुम लोगों ने जिद की कि नहीं हमें म्यूजिक क्लासेस भेजा जाए?
1: तो जब से मैं बचपन में जब बहुत छोटी थी, लाइक हमेशा मुझे सारी चीज़ें कराई, मैं स्केटिंग में भी नेशनल्स तक खेल चुकी हूँ एंड आर्ट वर्क एंड डांस लाइक लॉन टेनिस सम लाइक एवरीथिंग दे कवर,
0: मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज,
1: हाँ लाइक जो अच्छा लगे कि कुछ तो मिल जाएगा ऐसा। तो फिर मुझे कुछ मिल भी गया, मुझे म्यूजिक मिला एंड लाइक म्यूजिक मुझे सबसे अच्छा लगता था, तो दैट्स व्हाट आई चोज।
0: ओके, सो बचपन में आप दोनों के लिए म्यूजिक ज्यादा मतलब शौक था या पढ़ाई की तरह डिसिप्लिन के रूप में लेते थे उसे?
2: ओके, सो हम दोनों चीज़ों में से कुछ ज़्यादा प्रेशराइज मम्मी पापा कभी नहीं करते थे, दोनों चीज़ों में ही हम बहुत फन रूप में और बहुत आराम से सब कुछ करते थे, कभी प्रेशराइज नहीं किया और
1: डिसिप्लिन कुछ था ही
2: नहीं था। सभी बहुत इंजॉयमेंट से, लाइक पढ़ाई करने का मन करा तो पढ़ाई कर ली, म्यूजिक करने का मन करा तो वो कर लिया, लाइक सब कुछ बहुत लाइट एंड चिल था,
0: मतलब कभी वो प्रेशर नहीं रहा
2: बिल्कुल
0: दोनों चीज़ों को लेकर भी
2: नहीं।
0: और वैसे एक थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है कि तुम पढ़ाई में दोनों कैसे हो, ये बताओ।
2: अच्छा वो तो अच्छा है।
0: जिंदगी क्या होता है, जो बच्चे म्यूजिक डांस वाले होते हैं उनका थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्ट कम
2: नहीं,
0: होता
2: है। तो हमें लाइक लगता है नहीं अच्छा स्कोर करना चाहिए।
0: अच्छा तो अब एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी, क्या आप दोनों को याद है कि पहली बार स्टेज पर परफॉर्म करने का क्या एक्सपीरियंस था आप दोनों का, और कब किया, कहाँ किया और कौन किस एज में किया?
2: मैं तब थी 2 इयर्स की। अच्छा। और मैंने ना कोई रैंडम परफॉर्मेंस चल रहा था, एक स्टेज लगी थी हमारी सोसाइटी में, तो मैंने वहाँ पे ऐसे ही चढ़ के गा दिया। मुझे कोल्ड हुआ था, बहुत गंदी आवाज़ थी,
1: खास खास के गाया,
2: खास के एकदम गंदा सा गाया था मैंने। और फिर बेसिकली मम्मी ने बचपन से हमें स्टेज पे भेजा है, तो हमें कभी स्टेज फ्राइट या नर्वसनेस हुई नहीं, वो हमारी पर्सनालिटी बन गई, हमें लाइफ का हिस्सा ही था, तो हमें कभी ऐसा नहीं हुआ।
1: मुझे अभी भी याद है जब ये ऐसे खास खास के गा के आई थी माइक पर, इतना खुश होके फिर कूद कूद के आई थी कि ओ माय गॉड मैंने गाना गाया,
0: स्टेज पर गाया। हाँ। मतलब वो स्टेज फियर वाली बात कभी नहीं रही आप दोनों,
1: बचपन से वो हमारी लाइफ का एक पार्ट बन गया।
0: नाइस। अच्छा तो अब इसी के साथ कौन सा हमें गाना सुनाओगे आप अपना, जो बेस्ट?

वाओ, अमेजिंग, बहुत ही प्यारी आवाज है आप दोनों की, मतलब गॉड गिफ्ट ही है ये एक तरीके से, बट सच में बहुत प्यारी आवाज है। और इस गाने की स्टोरी क्या है वो हम लिसनर्स इनसे जानेंगे, लेकिन अभी हम ले रहे हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से हमारी आज की प्यारी प्यारी ये जो मेहमान आई है इनसे हम अपनी वार्तालाप को जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और हम आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमसिनी और स्माही। तो अभी आप दोनों ने हमें ये गाना सुनाया, इसकी स्टोरी क्या है, थोड़ा सा हम इसके बारे में जानना है।
1: तो कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, ये गाना सभी ने सुना होगा। ये हमारी मम्मी का फेवरेट गाना था।
0: अच्छा,
1: तो उन्होंने हमें बोला कि इसको चलो डिवोशनल सॉन्ग बनाते हैं, है ना। तो फिर उनका फेवरेट गाना था, फिर हमने बनाया। एंड जब हम गोपी गर्ल्स थे, द गोपी गर्ल्स, तभी हमने गाना रिलीज़ किया था। एंड ये अनएक्सपेक्टेडली बहुत वायरल हो गया था। एंड सभी लोगों ने बहुत पसंद किया इस गाने को।
0: और दूसरी बात मैं जानना चाहूँगी, ये द गोपी गर्ल्स क्या था, आपका प्रोजेक्ट था, तो क्या, किस तरीके से, इसके बारे में बताइए।
1: तो द गोपी गर्ल्स एक डुओ ही था, स्पिरिचुअल डुओ। एंड तब हम बहुत छोटे थे, 3 साल पहले की बात है। आई वॉज इन 9th class एंड शी वॉज इन 5th class। यस, तो इट वॉज द सेम। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम हमें लर्निंग ऐसा लग रहा था कि हमारी स्टॉप हो रही है, तो इस वजह से हमने थोड़ा सा ब्रेक लेने का डिसाइड किया हमारे पेरेंट्स ने, क्योंकि उनको लगता था कि अभी हमें इंडस्ट्री में अभी नहीं उतरना चाहिए, एंड वी नीड टू वेट एंड लर्न फर्स्ट। तो दैट्स

0: मतलब म्यूजिक पूरा सीखा आपने फिर, मतलब ट्रेनिंग ली क्लासिकल म्यूजिक की.
1: पिछले तीन साल के ब्रेक के बाद अब वापस से
0: दोबारा से कम बैक हुआ है बहुत ही जोश के साथ. अमेजिंग. ओके, तो अभी तक हमने बात की आपने कब से म्यूजिक सीखना शुरू किया और कौन सा आपका सॉन्ग वायरल हुआ कैसे, लेकिन अब मैं जानना चाहूंगी दो बहनों की स्टोरी, मतलब दोनों जब एक साथ काम करें. देखो हम लोगों में तो मेरी भी अपने भाई बहन है लेकिन बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बट तुम दोनों बताओ जब तुम दोनों एक साथ काम करते हो तो कैसा वो कॉम्बिनेशन रहता है, वो अच्छी बात है या लड़ाइयाँ भी होती हैं किस तरीके से?
1: ओके, सो बेसिकली साथ में रह रहे कि हमारे थॉट्स और डिसीजंस बहुत ऑलमोस्ट सेम हो चुके हैं, और ऐसी बात नहीं है कि लड़ाई नहीं होती, होती है, बट ऐसी बातों को लेके होती है कि ये सही है या वो गलत.
0: एग्जैक्टली exactly. वही मेरे को जानना था.
1: तो वो हमारी लास्ट डिसीजन तो हमारी मम्मा ही लेती है.
0: अच्छा.
1: हमारे घर के क्रिटिक है वो, अगर हमारे में हम बीच में लड़ाई हो जाती है कि ये अच्छा है, तो हम उनको लाते हैं कि अब आप बताओ ये अच्छा है कि ये अच्छा है, फिर वो फाइनल डिसीजन लेती है, फिर हम उसको फॉलो करते हैं. और मतलब साथ में रह के ये भी हो गया कि हम बिना एक दूसरे से कंसल्ट करे कोई डिसीजन नहीं लेते हैं.
0: अच्छा.
1: तो एक दूसरे की हाँ ना तो बहुत,
0: मतलब वो राय भी बहुत जरूरी है दोनों की एक दूसरे के आपस में, ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए ये चीज तो. और जैसे आपने अभी अपनी मम्मा का जिक्र किया तो मुझे ये बताओ मम्मा भी क्या म्यूजिक से रिलेटेड है या?
1: हमारे दोनों पेरेंट्स आईटी के बैकग्राउंड.
0: अच्छा.
1: तो फर्स्ट वही लाई है म्यूजिक.
0: ओके नाइस. बट फिर भी वो आपको फुल ऑन सपोर्ट करते हैं मम्मी पापा हर चीज़ में.
1: बहुत ज़्यादा सपोर्ट.
0: ये बहुत अच्छी बात है अगर फैमिली से सपोर्ट हो, मदर पेरेंट मतलब मदर फादर का, बहुत ही अच्छी बात है ये. ओके, तो अब मुझे ये बताओ हमसिनी और स्माही, एक क्वालिटी जो स्माही को हमसिनी की ज़्यादा अच्छी लगती है और तुम्हें इसकी, ये बताओ.
1: मुझे दीदी का क्रिएटिव माइंड और उनका बहुत म्यूजिकल माइंड है, वो उनको बहुत सारे आइडियाज होते हैं, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है.
0: और आपको?
2: मुझे उसकी प्रेजेंस चाहिए, लाइक जैसे एक्सप्रेशंस देती है वो, जैसी उसकी स्टेज प्रेजेंस है बहुत अच्छी है.
0: नाइस. और तुम इसे दीदी बोलते हो वैसे?
1: डी यू. अच्छा. उसका भी निकनेम बना.
0: और अगर तुम दोनों को एक दूसरे की कोई म्यूजिकल क्वालिटी बतानी हो तो क्या है दोनों की, मतलब अपनी अपनी डिफरेंट?
1: उनकी वोकल रेंज.
0: अच्छा.
1: उनके रिफ्स रन्स, उनकी वोकल्स बहुत अच्छे हैं. एंड लाइक उसके साउंड में ना, उसकी वोकल्स में बहुत इमोशन है, एंड आई वांट दैट. बहुत इमोशन के साथ गाती है, बहुत फीलिंग के साथ गाती है.
0: ठीक है, तो फीलिंग की जहाँ बात हुई है, मैं चाहूँगी कुछ एक बार फिर से बढ़िया सा कुछ सुनाया जाए हमारे लिसनर्स को.

0: वाओ ब्यूटीफुल,
1: इतनी सूदिंग आवाज है ना आप दोनों की, और जब एक साथ गाते हो बहुत ही, मतलब बहुत सुंदर लग रहा था। और लिसनर्स मैं आपको बता दूं, ये दोनों मुझे पहले ऐसा लगा था कि ये ट्विंस हैं, लेकिन ये है नहीं ट्विंस। कितने इयर्स का गैप है दोनों में?
2: 4 साल का।
1: 4 साल का बिल्कुल। आप इनके पेज पर जाएंगे ना फॉलो करना, और तब देखना ये बिल्कुल ट्विंस लगती हैं रील्स में। तो आई वाज आल्सो कंफ्यूज्ड, बट तुम्हारी आवाज जब एक साथ आती है अमेजिंग, बहुत ही सुरीला।
2: थैंक यू सो मच।
1: ओके लिसनर्स, तो वक्त हो चला एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से अपनी इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे हमारी प्यारी बहनों के साथ। तब तक सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

क्यों ना एक काम किया जाए, मरने के बाद भी जिया जाए, अंगों को अपने दान किया जाए और जिंदगी को एक बार फिर से जिया जाए, एक बार फिर से जिया जाए। जब आप अपने ऑर्गन्स डोनेट करते हैं तो आप सिर्फ एक जिंदगी नहीं बचाते बल्कि आप भी उनमें जिंदा रहते हैं। वे सपोर्ट ऑर्गन डोनेशन डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन, स्टूडेंट वेलफेयर MRIIRS और रेडियो मानव रचना 107.8 FM की ओर से एक खास पहल, डोनेट ऑर्गन्स एंड सेव लाइव्स। डोनेट ऑर्गन्स एंड सेव लाइव्स। आप मदद करेंगे ना?

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो बहुत ही प्यारी बहनें, सुरीली बहनें, जिनका नाम है हमसिनी और स्माही। तो स्माही और हमसिनी, आप मुझे ये बताओ, कोविड लॉकडाउन ने आपकी म्यूजिक जर्नी को किस तरह से बदला?
1: तो कोविड लॉकडाउन का टाइम हमारे लिए लाइक अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा लकी टाइम रहा, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम था, पूरे दिन तो खाली ही रहते थे।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे ऐसी बात नहीं कि हमने टाइम पास नहीं किया, टीवी नहीं देखा, वो भी बहुत देखा, बट फिर भी टाइम बच जाता था। तो इस वजह से हमने लाइक एक हॉबी, लाइक हमने सोचा कि अपनी हॉबी को थोड़ा सा ब्रश अप करते हैं और ज़्यादा। तो मैंने लॉकडाउन में खुद से पियानो सीखा एंड गिटार सीखा, तो उससे लाइक मेरी म्यूजिकल जो ब्रेन है और डेवलप हुआ, एंड मुझे पता चला कि आई वांट टू क्रिएट म्यूजिक, नॉट ओनली सिंग इट।
2: और हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी थी, हर चीज़ करी थी लॉकडाउन में, जैसे सॉन्ग राइटिंग करा, थोड़ा कंपोजिंग एक्सप्लोर करी। तो लाइक लॉकडाउन में हमने अपना फर्स्ट गाना भी लिखा था।
1: हाँ,
0: फर्स्ट गाना कौन सा था वो?
1: तो हमारे पापा का बर्थडे था एंड हमें समझ नहीं आ रहा था क्या गिफ्ट दें, कि कार्ड बनाएं, कि क्या करें, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था। तो हमने एट लास्ट यही सोचा कि चलो गाना बनाते हैं।
0: वाओ,
1: जो कि हमारी बस के नहीं था, बट फिर भी हमने सोचा चलो गाना बना लेते हैं।
2: शी वाज 10 इयर्स ओल्ड, आई वाज 6।
1: तो हमने फिर गाना बनाया, जो कि लाइक बहुत मुश्किल लगा था हमें, बट लेकिन हमने लाइक बहुत चाइल्डिश सा गाना बनाया था, बट फिर भी इट वाज लाइक फन टू हियर।
0: अभी भी सुना सकते हो आप इसे?
1: मुझे बस इसकी एक लाइन याद है।

0: ये अभी भी हमारे चैनल पर भी है।
1: नहीं नहीं गाना तो बहुत अच्छा है और हम चाहेंगे ये पूरा गाना भी हम सुने, क्योंकि अगर किसी को अपने फादर को विश करना हो तो ये गाना गा के कर सकते हैं। बट ये वैसे बड़े कमाल की बात है कि तुम कह रही हो तुम 10 ईयर्स की थी उस टाइम, तुम 6 साल की थी, तो इतने में इतनी छोटी उम्र में बच्चों में इतना होता है पेशेंस कि वो गाने बना ले, तो कैसे ये चीज़।
2: एक्चुअली हमारी एक फ्रेंड थी, उसने हमें इंट्रोड्यूस किया एक सिंगर टेलर स्विफ्ट से।
1: ओके
2: तो हम उससे बहुत इंस्पायर हो गए, एंड क्योंकि उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि वो अपने गाने खुद लिखती थी, तो दैट वॉज द थिंग दैट इंस्पायर्ड मी टू राइट माई ओन सॉन्ग्स। तो फिर मुझे लाइक उसकी तरह बनना था ऑफकोर्स, तो मैंने भी सोचा कि मुझे भी अपने गाने लिखने, चाहे कुछ भी हो जाए अब तो मैं लिखूंगी।
0: और उसी की वजह से हम वेस्टर्न म्यूजिक से इंट्रोड्यूस हुए थे, और तब से लेके अब तक वही हमारी आइडल है कि हमें उसके जैसा बनना है।
1: एग्जैक्टली चलो आई विश कि आप वैसे ही बने।
0: वी विश टू।
1: और क्या, और आप लोगों ने उस टाइम लॉकडाउन के टाइम प्रोडक्शन और रिकॉर्डिंग्स का भी कुछ ट्राई किया या नहीं? बट जैसे मैंने तब तक नहीं, कब से ये चीज स्टार्ट किया आपने?
2: When I was in 9th class, जब हम गोपी गर्ल्स थे उस टाइम, तब मैंने 2 गाने प्रोड्यूस किए थे, कौन दिशा में लेके चला रे कन्हैया और When I'm in वृंदावन। तब ही मुझे पता चला था कि, उससे पहले मुझे पता नहीं था कि म्यूजिक प्रोडक्शन जैसे भी कोई चीज़ होती है, मुझे लगता था गाने बन जाते होंगे बस ऐसे ही।
0: हमने कभी सोचा ही नहीं था, हमें तो ये भी नहीं पता था कि वायरल क्या होता है।
2: हाँ
0: तो बेसिकली मेन चीज़ तो हमारी गोपी गर्ल से ही हुआ था, हमें पता चला था कि ऐसा कुछ होता है
2: कि गाने बनाते हैं फिर पोस्ट करते हैं रिलीज करते हैं, लाइक हमें एक प्रोसेस के बारे में पता चला था। एंड उसके बाद प्रोडक्शन मैंने 9th क्लास में स्टार्ट करी, एंड तब तो मैं लाइक यूट्यूब वगैरह से सीखती थी, इधर उधर से वेबसाइट्स वगैरह से नॉलेज कभी इधर से ली कभी उधर से ली, तो लाइक मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा था वो, बहुत लाइक फ्रस्ट्रेटिंग टाइम पीरियड था मेरे लिए, क्योंकि लाइक जो साउंड मेरे दिमाग में थी, जो मुझे बनाना मैं चाहती थी, वो मैं बना नहीं पा रही थी, तो मुझे गुस्सा आ जाता था मैं गुस्सा ही हो जाती थी खुद पे, मैं बना क्यों नहीं पा रही। तो फिर इस वजह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे कोर्स ज्वाइन करवाया, एंड लाइक जब मुझे टेक्निकल नॉलेज और ज़्यादा थोड़ी समझ आई, तो मैं अपनी जो दिमाग में जो साउंड थी मैं उनको लाइक असलियत में बना पाई, तो फिर मुझे थोड़ी खुशी हुई कि हाँ अब मैं अच्छे से बना पा रही हूँ।
1: बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात की। तो आप अभी भी ये कर रहे हो?
2: हाँ जी
1: यस। कोर्स अभी कंटिन्यू है?
2: हाँ अभी कंटिन्यू है।
1: तो आगे इसी में सोचा है?
2: ऑफ कोर्स।
1: और आपने भी कुछ प्रोडक्शन और इसका सोचा हुआ है?
0: भी शुरू कर चुकी हूँ धीरे धीरे साथ में सीख के,
1: मतलब उसी की लाइन पर आप चल दी हो, दैट्स ग्रेट। अच्छा एक चीज मुझे और बताओ, जैसे तुमने बताया पियानो और गिटार, कैसे यूट्यूब से सीखा था तब?
0: हाँ यूट्यूब से।
1: तो ये पॉसिबल है कि कोई भी सीख सकता है इजिली?
0: हाँ देखो राइट टेक्निक तो नहीं आई थी, बट आ गया था कि ठीक है गाने बजा सकते हैं हल्का फुल्का।
2: लाइक खुद को अकम्पनी करने के लिए, अगर गाने के साथ अकम्पनी करना, तो उतना तो मुझे आ गया था लाइक खुद से, लाइक ऑफकोर्स टीचर से तो सीखने की अलग बात होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो वही हम यहाँ पे ये भी मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि सारा यूट्यूब पे भी निर्भर नहीं रहना, बट एक गुरु की तो नीड डेफिनेटली होती है। ओके तो अब हमें कौन सा सॉन्ग सुनने को मिलेगा? आपने बताया आप गिटार भी इतना अच्छा बजाते हो, पियानो भी, तो अभी क्या हम गिटार पे कुछ सुन सकते हैं? हमारे लिसनर्स वेट कर रहे हैं आपकी आवाज में और आपका मधुर गिटार सुनने के लिए।
2: सिस जय जय शिव शंभू।

0: वाओ, अमेजिंग. इसके लिए तो क्लैप बनती है. इतना मीठा, इतना अमेजिंग और इतना सुर में, बहुत ही मजा आ गया.
1: और
0: जो आपने हारमोनीज की हैं, टू गुड, बहुत ही प्यारा. मतलब इतनी प्यारी आवाजें, शायद हमारे लिसनर्स को भी आज बहुत मजा आ रहा होगा जो ये सुन रहे होंगे.
1: थैंक यू सो मच.
0: तो अब मुझे ये जानना है आपसे कि द गोपी गर्ल से द श्यामास का क्या सफर था ये.
1: तो द गोपी गर्ल्स में वी वर जस्ट सिंगर्स. गोपी गर्ल्स के दौरान हमें पता चला कि म्यूजिक

0: बनाना चाहिए हमें, तब हमने सिर्फ दो गाने प्रोड्यूस किए थे, है ना।
1: तो बेसिकली गोपी गर्ल्स में हम अपने स्टाइल से कुछ नहीं गाते थे, तो वहाँ पे हम बस नॉर्मल जेनरिक भजन्स गाते थे।
0: हमने अपना स्टाइल ढूंढा नहीं था तब तक।
1: अच्छा।
0: फिर इसलिए हमने 3 इयर्स का गैप लिया, अपनी लर्निंग करी, अपना स्टाइल ढूंढा, एंड देन
1: उसके बाद शामाज में हम अपने स्टाइल से चीज़ें गाते हैं, अपने स्टाइल से बनाते हैं, एंड अब हमें हमारा स्किल भी लाइक मच बेटर है उस टाइम से, ऑफकोर्स।
2: और जो ये कौन दिशा में लेके चला रे कन्हैया जो है, और दूसरा आपने व्हेन आई एम इन वृंदावन जैसे सॉन्ग्स को लोगों का जब इतना प्यार मिला, तो उस समय क्या एक रिएक्शन, क्या फीलिंग, क्या कैसा लगता है तब?
0: तो हमें पता ही नहीं था कि लाइक हम सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते थे, पेरेंट्स ने कभी लाइक ज़्यादा हमें करने नहीं दिया, तो हमें पता ही नहीं था कि वायरल जैसी भी कोई चीज़ होती है।
2: छोटे भी तो थे तब।
0: हाँ, ऑफ कोर्स। तो हमें कुछ पता ही नहीं था, हमने बस ऐसे वीडियो बनाई एंड पोस्ट कर दी, एंड फिर हम वायरल हुए। लाइक हमें पता चला लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, इतने फॉलोअर्स आए, तो हमें ऐसे हैरानी थी होती, ओ माय गॉड ऐसा भी कुछ होता है।
1: और आसपास के लोग जैसे हल्का फुल्का की रिकॉग्नाइज करने लग जाते, तो लगता है कि ऐसा बन जाते
0: थे, तो लोग लाइक बहुत लोग हमें रिकॉग्नाइज भी करने लग गए थे, तो फिर हमें ऐसे हैरानी थी, ओ माय गॉड वाओ
1: दिस इज कॉल्ड वायरल,
2: फेमस हो रहे हैं।
0: यस।
2: तो मुझे ये बताओ, जैसे तुम फेमस हो रहे थे, तो स्कूल में कैसा रहता था सबका रिएक्शन, फ्रेंड्स का और टीचर्स का? थोड़ा
0: इट वॉज नॉर्मल, लाइक हमें तो वो पहले से ही जानते थे, तो उनका लाइक कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया। लाइक हाँ थोड़ा सा लाइक म्यूजिक टीचर्स का हाँ थोड़ा
2: तुम्हारी तरफ झुकाव ज़्यादा हो गया होगा कि भाई ये बच्चियाँ तो बहुत अच्छा गाती हैं, तो इन्हें हर इवेंट में लेना ही है, लीड सिंगर बनाना ही है। वो तो होता ही है। चलो बहुत मज़ा आ रहा है आज हमें लिसनर्स इनसे बात करके, दोनों से बहुत ही अमेजिंग बातें और अमेजिंग गाने हम सुन रहे हैं और आप तक लेकर आ रहे हैं। तो अभी एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का वक्त हो चला है, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही सुरीली दो बहनें मौजूद हैं जिनका नाम है हमसिनी और स्माही। तो हमसिनी और स्माही, अब मुझे ये बताइए कि ये जेंजी की भक्ति का आइडिया कैसे आया, और क्या आप चाहती थी कि आज के यंग जनरेशन डिवोशनल म्यूजिक से कुछ नया तरीके का कनेक्शन बनाए?
1: तो बहुत फनी स्टोरी है। 2025 में जून में हमारे पेरेंट्स ना एक ऐसी आइडिया लेके आए, गाना है हमें हरि नाम बट माया सताती है। तो हम दोनों तो हंस रहे थे उन पे, क्या लिख के लाए हो आप। तो लाइक हमें तो बड़ा फ़नी लगा, ऑफ कोर्स था ही वो फ़नी। तो लाइक वो भी कहते नहीं नहीं गाना बनाएंगे, इसका गाना बनाएंगे। तो नवंबर तक लाइक उनको टाइम लग गया गाना लिखने में, तो उन्होंने नवंबर तक लाइक उन्होंने पूरा गाना ख़त्म कर दिया। तो फिर वो हमारे पास लाए फिर से कि चलो अब इसको बनाओ
0: गाना, मम्मी पापा लिख कर लाए।
1: हाँ, मम्मी पापा लाए।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो लाइक एक्चुअली यही होता है हमेशा कि वृंदावन, वो हमें हमेशा वृंदावन ले जाते थे। हम बोलते थे नहीं चलो गोवा चलते हैं ना। तो लाइक ऐसे थोड़े से हमारे जेंजी और मिलेनियल्स में भी थोड़े क्राइसिस हो जाता है, तो उसी पे उन्होंने गाना लिख दिया। तो इस वजह से लाइक उन्होंने हमें बोला कि चलो बनाओ इसको। तो मैं कहते ऐसे थोड़ी, इतना फनी गाना कोई बनाता है क्या, ऐसे थोड़ी। तो लाइक फिर मैंने उसको टला दिया, नवंबर में भी मैंने नहीं बनाया। मैंने बोला कि अरे ऐसे थोड़ी गाना बनाते हैं, छोड़ो ना। तो उसके बाद अप्रैल में उन्होंने बोला एक बार बना के तो देखो, अप्रैल 2026 में, तो बना के तो देखो क्या क्या लाइक अच्छा भी तो लग सकता है। फिर मैंने बनाया, बट जब बनाया तो आई जेन्युइनली लाइक दैट। एंड उसके बाद ना जब भी हम कोई गाना बनाते हैं ना, हमारी आदत है कि हम लाइक जो क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं ना उनसे एक बार रिव्यू लेते हैं सुना के, है ना। तो हमने ऐसे 5-10 लोगों को ऐसे सुनाया तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, तो हमें थोड़ा और कॉन्फिडेंस था कि हाँ हाँ इतना भी बुरा नहीं है, अच्छा लगेगा। तो फिर हमें लाइक कॉन्फिडेंस है कि हाँ चलो रिलीज़ करता है। फिर हमने अप्रैल 28 को हमने इसको रिलीज़ कर दिया आखिरकार। एंड उसके बाद मई 1st से पहले पहले ही वो वायरल हो गया था, तो लाइक इट वर्क्ड।
0: तो क्या हम सुन सकते हैं इस गाने को?
1: हाँ ज़रूर।

सताती है, जाना तो है वृंदावन, बदगोवा बुलाता है, बदगोवा बुलाता है, खाना है सात्विक फूड बट मोमो दिख जाता है, खाना है सात्विक।

0: बताती है।
1: वाओ, फुल ऑन जेंजी की फील, मतलब एकदम।
2: इसके पीछे एक और बहुत फनी स्टोरी है। आपको पता है हमने कभी आज तक अपनी लाइफ में मोमोज नहीं ट्राई किए थे।
1: अच्छा।
2: एंड फिर इस गाने पे हमने मोमो यूज किया, तो लाइक हमने मम्मी पापा से जिद की प्लीज हम इसके शूट में मोमो तो यूज करेंगे।
1: फिर ट्राई किया,
2: फिर हमारे घर पे मोमो आए। तो जब हमने शूट किया था तब आखिरकार पहली बार जिंदगी में हमने मोमोज ट्राई किए।
1: तो कैसा लगा?
2: बहुत अच्छे लगे। उसके बाद हमने 4-5 बार खा लिए
1: बस। लेकिन थोड़ा गले की वजह से मम्मी पापा नहीं खाने देते होंगे, तो वे उसकी जो चटनी होती है तीखी, इसीलिए। और वैसे बहुत अच्छी चीज नहीं है मोमोज, बचपन से ऐसी सारी चीजें टेस्टी लगती हैं हमें भी लगती हैं। ओके, तो अब बात करते हैं फूल्स की, कि ये द श्यामा से बिल्कुल अलग और ज्यादा पर्सनल साइड है। फूल्स आपके लिए एक्चुअली क्या है, इसके बारे में हमें जानना है।
2: तो लाइक जब से मैं 10 साल की उम्र से गाने लिख रही हूँ, तो मैं बहुत सारे गाने लिखती थी। तो ज़्यादातर गाने मेरी लाइफ से इंस्पायर होते थे, जैसे छोटे छोटे जो मोमेंट्स होते हैं उनसे इंस्पायर होके मैं गाने लिखती थी। तो इसलिए मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जिनमें मैं उन गानों को बना के रिलीज़ कर पाऊँ। सो फूल्स एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं अपनी पर्सनल फीलिंग्स वाले गानों को रिलीज़ करती हूँ। तो फूल्स जेनेरिक टॉपिक्स पर ही होते हैं, जैसे कि एक गाना है हमारा एंड ऑफ द वर्ल्ड, जो मैंने इस बारे में लिखा था क्योंकि हमारे फरीदाबाद में बहुत बड़ा थंडर स्टॉर्म आ रहा था एंड मुझे ऐसा फील हुआ कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा लग रहा है दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने वो गाना लिखा। तो ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स पे वो गाने बेस्ड है। तो वो हमारे एक ओरिजिनल सॉन्ग्स की कलेक्शन है जो कि हमें अलाउ करती है अपनी आर्टिस्टिक, दूसरी आर्टिस्टिक साइड को दिखाने के लिए।
1: तो बेसिकली आपके जो रियल इंसिडेंट्स हैं लाइफ के, उसके छोटे छोटे कुछ कुछ आप गाने की फॉर्म में वो फूल्स पर डालते हैं।
2: ऑफ कोर्स।
1: तो इसका नाम फूल्स क्यों रखा आपने?
2: तो फूल्स PHOOL, फूल हिंदी में मतलब फ्लावर होता है एंड इंग्लिश में प्रोनंसिएशन के टाइम पे तो फूल पागल होता है ना। तो उसके बाद फूल्स हमने ऐसे ही सोचा कि इट वुड बी फन, है ना। फूल भी बहुत कलर्स के होते हैं, है ना। तो हमारे गाने कोई बहुत ही डल होता है, कोई बहुत सैड होता है, कोई इतना एनर्जेटिक और हैप्पी होता है। तो बहुत सारे फ्लेवर्स एंड कलर्स ऑफ सॉन्ग्स हैं हमारे, तो इस वजह से हमने फूल्स रखा। और हम दो हैं तो हम एस लगाने वाले थे पहले तो, बट फिर हमने ऐसे ही स्टाइल के लिए जी लगा दिया, तो PHOOL फूल्स।
1: ओ, जेन जी स्टाइल।
2: यस।
1: ओके, नाइस। आप दोनों जैसे बहुत ही यंग हो, अभी इतनी कम एज है, आप 8th में हो, आप 12th में हो, तो इतना कुछ अचीव करना थोड़ा ओवरवेलमिंग नहीं लगता आपको?
2: तो मुझे लगता है, हमें लगता है कि अभी तो हमने कुछ ज़्यादा अचीव नहीं किया है, बिकॉज हमारे ड्रीम्स आर वेरी बिग बचपन से ही एंड हमें अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। तो दिस इज़ जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट।
1: नाइस। और इसके साथ ये बताओ कि जैसे आपकी एज के जो बच्चे हैं वो बहुत चीज़ों में बिजी रहते हैं, तो आपको कभी ये तो नहीं लगता कि हमारा चाइल्डहुड मिस हो रहा है?
3: कभी नहीं। हमारे लिए तो वी हैव द बेस्ट वर्जन ऑफ आर चाइल्डहुड।
1: एग्जैक्टली, क्योंकि एक जो ये एक्स फैक्टर आप में ऐड हुआ है ना, वो बहुत ही अमेजिंग है।
3: किसी भी चीज के लिए मम्मी पापा ने कभी प्रेशराइज नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो बहुत चिल फन चाइल्डहुड।
2: बाकी बच्चे हमारे हमसे जेलस होते थे, भाई तुम्हारे पेरेंट्स इतने चिल की हुए क्या है।
1: एग्जैक्टली।
2: तो हमारा चाइल्डहुड हमारे लिए तो बहुत फन रहा है हमेशा से, अभी भी है।
1: नहीं, जरूर रहना भी चाहिए, और आगे भी मैं यही प्रे करूंगी कि ऐसे ही खूब खुश रहो आप दोनों और खूब फेमस हो। और दूसरा ये बताओ कि जैसे अभी आपने करियर म्यूजिक में ही बनाने का सोचा, राइट? तो अगर म्यूजिक ना होता तो किस में करियर बनाते?
2: हमने प्लान भी रखा ही नहीं है, सोचा भी नहीं प्लान बी के बारे
1: कभी
2: में,
1: कभी तो सोचा होगा।
3: बेसिकली मम्मी पापा ने बोला है कि अगर प्लान भी होता है ना तो प्लान ए पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते।
2: तो हमारा एक ही प्लान है, दैट वी वांट टू बिकम अ ग्लोबल आर्टिस्ट।
3: इंटरेस्ट है दूसरी चीजों में, बट है वही
1: तो ठीक है, ग्लोबल आर्टिस्ट ठीक है। आपको प्लेबैक सिंगिंग में है इंटरेस्ट या परफॉर्म करने में इंटरेस्ट है?
2: हमें परफॉर्म करने
1: में, लाइव परफॉर्म
2: बहुत मजा आता
3: है। बट बचपन में ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। बेसिकली दियो ना बचपन से बहुत एक शाय और इंट्रोवर्टेड बच्ची थी बहुत ज़्यादा, और वो गाती अच्छा थी, तो शी ऑलवेज थॉट ओके आई विल बी अ प्लेबैक सिंगर। बट उसके बाद देन आई स्टार्टेड सिंगिंग, वी हैड द डुओ गोपी गर्ल्स, फिर धीरे धीरे हमने परफॉर्म करना शुरू किया। और हमने तो बचपन में ये भी नहीं सोचा था कि हम साथ में भी कुछ करेंगे। मैं बचपन से डांसिंग करना चाहती थी, तो वो सिंगर बनती, मैं डांसर बनती, हमारा था ही नहीं कुछ। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है अब डुओ बन गया गोपी गर्ल्स में, फिर अब शामाज, अब हम एक अलग अलग इमेजिन ही नहीं कर पाते अब कि अब तो साथ में ही है।
1: अब वैसे आप डांस करते हो?
3: हाँ, थोड़ा बहुत करते।
2: हमारे गानों के शूट्स में शी ऑलवेज डांसेस।
1: अच्छा।
2: एंड स्टेज पर भी शी लाइक उसके एक्सप्रेशन ही बहुत अच्छे, हैंड डांस ही अच्छा करती है बहुत।
1: स्टेज पर तो डेफिनेटली वो चीज करनी चाहिए।
3: यस ऑफ कोर्स।
1: ओके, तो अब मुझे ये बताओ अगले 5-10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हो?
2: आई थिंक अगले 5-10 साल में हम खुद को लाइक एक ग्लोबल लेवल पे देखते हैं, जहाँ पे लाइक सारा पूरा वर्ल्ड हमारे म्यूजिक को इजीली सुन पाता है एंड लाइक सभी सुनते हैं एंड पसंद करते हैं। सो लाइक दैट इज आवर ड्रीम ऑफ कोर्स।
1: वाओ, बेस्ट विशेस हमारी आपके साथ हमेशा रहेंगी। ओके लिसनर्स, बहुत मजा आ रहा है आज हमें हमसिनी और स्माही के साथ। सो अब हम लेंगे एक

0: और अब हम करेंगे रैपिड फायर राउंड हमारी आज की स्पेशल गेस्ट जो है उनके साथ, हमसिनी और स्माही के साथ। तो आर यू रेडी?
1: यस।
0: ठीक है, तो जल्दी जल्दी आंसर देने हैं, राइट? 1 2 3 स्टार्ट। सिंगिंग या सॉन्ग राइटिंग?
1: बोथ।
0: क्लासिकल या वेस्टर्न?
1: बोथ।
0: स्टूडियो रिकॉर्डिंग या लाइव परफॉर्मेंस?
1: बोथ।
0: द श्यामा द फूल्स?
1: बोथ।
0: अपना फेवरेट सॉन्ग?
2: बहुत सारे, बहुत डिफिकल्ट।
0: एक बताना पड़ेगा,
1: ये बहुत डिफिकल्ट।
0: अपना अपना एक बता दो।
1: ये पॉसिबल ही नहीं है तो।
0: ओके ठीक है, स्किप करते हैं। एक आर्टिस्ट जिसके साथ आप अपना कोलैबोरेशन करना चाहते हैं?
1: टेलर स्विफ्ट एंड सोनू निगम।
0: वाओ, एक टेलर स्विफ्ट और एक सोनू निगम, गुड। म्यूजिक के बिना अगर लाइफ होती तो कैसी होती?
1: फिर तो लाइफ में
2: लाइफ ही नहीं है।
0: ओ माय गॉड, बहुत डीप दे दिया है तुमने आंसर। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे आप फ्यूचर में जरूर सीखना चाहते हैं?
1: वायलिन फॉर श्योर।
0: दोनों?
1: सितार।
0: ओके नाइस, दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स बहुत प्यारे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आज आपके साथ। और अब लास्ट में एक एंडिंग क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जो आपकी एज के जितने भी बच्चे हैं या टीनेजर जो भी कह लो, जो हमारा ये शो भी सुन रहे हैं, बहुत से इसमें ऐसे होंगे जो आपकी एज के आज सुन रहे होंगे बच्चे ये शो, तो आप उन्हें अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे आगे फ्यूचर में बनने की, जिन्हें कभी कभी मौका भी नहीं मिलता, बट आप उन्हें किस तरीके से गाइड करना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे?
3: आई वुड जस्ट से दैट जस्ट डू इट, इट्स नाउ और नेवर। क्योंकि अगर हम ये सब सीखने के लिए बड़े होने तक का वेट करते तो शायद अभी हम यहाँ तक भी ना होते।
0: एग्जैक्टली,
1: लाइक अपना पैशन हमेशा फॉलो करो एंड जस्ट नेवर गिव अप।
0: वाओ, बहुत ही अमेजिंग बात आपने बोली है, इतने छोटे हो लेकिन बातें आपकी बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने हमारे लिसनर्स को। ओके, अब रैपिड फायर राउंड के बाद एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? अभी कुछ हैं रिसेंटली जो आपके फैंस को सुनने को मिलेंगे, हमको सुनने को मिल सकते हैं?
1: तो अभी फूल्स में हमारा एक गाना रिलीज होने वाला है, होपलेस, जो कि मैंने 2 साल पहले लिखा था एंड इट्स रियली गुड, बहुत बहुत मजा आएगा उसको सुनने में।
3: 30 अगस्त को रिलीज हो रहा है।
0: वाओ, हम प्रे करते हैं बहुत ही उसे भी खूब लाइक्स, खूब व्यूज मिले आपके सॉन्ग को। बेस्ट विशेस हमारी आपके साथ है। और अब एंड में आप कौन सा गाना हमारे लिसनर्स को सुनाना चाहोगे?
1: सो दिस सॉन्ग इज कॉल्ड टॉपिक। कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं था,

0: topic. Made a syndicate, yeah, without a logic. Oh, topic. God, topic. Will it ever be iconic? Topic.
1: वाओ, इतने मज़ेदार गाने कैसे बना लेते हो आप लोग. सो थैंक यू सो मच हमसिन एंड स्माही. आज आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे शो में आके बहुत ही चार चांद लगाए. थैंक यू सो मच. और हमारी बेस्ट विशेज हमेशा आपके साथ रहेंगी. और लिसनर्स, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का. और अगले हफ्ते फिर से ऐसे ही दिलचस्प मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए मुझे यानी गौरी मल्होत्रा को दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव.

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरोलंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।
1: हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ। नाउ दिस शो इज रियली स्पेशल टू अस, रीजन नहीं, यहां पर हर बार हम एक एक्सपर्ट को लेकर के आते हैं अपने शो में, जो अपने डोमेन के एक्सपर्ट होते हैं, महारत हासिल की होती है, और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं स्किल्स की। आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत कलाकार मौजूद हैं जिनका नाम है ओमकार चौहान, इनके बारे में बात करेंगे। ओमकार एक कंटेंट क्रिएटर हैं, ओमकार एक एक्टर हैं, ओमकार एक फिल्म मेकर हैं, बहुत सारी बातें हम यहाँ पर जान रहे होंगे। अभी अभी रिसेंटली इन्होंने 1,00,000 फॉलोअर्स का जो है एक मुकाम हासिल किया है, 1,00,000 फॉलोअर्स जो है इनके हो गए हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए इनका स्वागत करेंगे। हाय ओमकार, वेलकम टू आवर शो।
2: हेलो, थैंक यू
1: जी। जी उनका पहला प्रश्न मेरा रहेगा, अपने बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को, बहुत सारे लोग इस टाइम आपको सुन रहे हैं, आप क्या करते हैं, अपने शब्दों में बताइए।
2: मैं एक अभी रिसेंट, मतलब रिसेंट तो मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, बट मैं थिएटर बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं और 5-6 सालों से थिएटर कर रहा था और 1 साल से कॉन्टेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, जिसमें कॉमेडी मिक्स है अपना, जिसपे हम वर्क कर रहे हैं लगातार, तो यही है अभी तो जो रिसेंटली चल रहा है।
1: ये सब शुरू कैसे हुआ सिलसिला?
2: सिलसिला कॉलेज टाइम से वैसे स्टार्ट हुआ था। मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग हूँ, जूनियर इंजीनियर, तो फाइनल ईयर में मेरे सीनियर थे जब वो स्टार्ट हुआ सिलसिला, जब वो लोग गए बिना इंटरव्यू हुआ वो उनका, तो कैंपस सिलेक्शन होता है, कैंपस सिलेक्शन में मैंने देखा था कि जो लड़के 95% लेके आ रहे हैं और उनके कंपेरिजन में जो लड़के हैं जो 65% लेके आ रहे हैं, दोनों के रिजल्ट लाने में जो मेहनत का फर्क है ना बहुत ज्यादा है। मतलब ऐसा समझ लो कि एक लड़का जो दिन भर खेलता रहता है, शाम को 2 घंटा पढ़ लेता है, वो 50-60% आराम से लेके आ सकता है, लेकिन जो लड़का आप मतलब 95% को लाना है वो बहुत पढ़ता है, मतलब दिन के 10-12 घंटे पढ़ता ही है मिनिमम। तो वहां देखने को मुझे ये मिला कि दोनों के लिए सैलरी में डिफरेंस था वो बहुत कम था, किसी का 14 पे सिलेक्शन हो रहा है 14,000 पे, दूसरे बंदे का 15 पे हो रहा है, जो 95 लेके आया उसका 15 पे हो रहा है, जो 50 लेके आया उसका 14 पे हो रहा है, तो ये एक वो था कि यार ये तो नहीं करना है, कि इसके लिए इतना मेहनत करके कोई फायदा नहीं है। तो पहली बार मैंने क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से था और बहुत ही बढ़िया था इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो मैंने एक्सपेरिमेंट कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, जैसे होता है ना कि माइक बना लो आप, है ना, 150 रुपए के खर्चे में ये स्पीकर बना लो, वायरलेस माइक बना लो, ये ट्यूबलाइट को अलग अलग तरीके से टेक्निकली मैं जोड़ जा रहा था, वो ट्यूबलाइट वायरलेस ही बना लेते, बैटरी जो खराब है उसको जोड़ जाड़ कैसे, वैसे बहुत सारे वीडियोज बनाया। उसी सेम टाइम पे एक क्रिएटर थे हमारे इंडियन हैकर, जिनका अभी 5,00,000 हुआ था, ठीक है। तो फिर मैंने जब एनालाइज किया तो मुझे समझ आया कि यार ये कॉन्टेंट तो ऑलरेडी मतलब इंडियन हैकर तकरीबन 3 साल पहले ही बना चुके हैं, तो मुझे लगा नहीं यार फिर तो बेकार जा रहा हूँ, मतलब गलत जा रहा हूँ इस रास्ते पे, क्योंकि लोगों ने करके छोड़ दिया है, मैं अभी 3 साल उनके पहले वाली चीज को कर रहा हूँ। तो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, ब्लॉगिंग किया मैंने अच्छा खासा और रिजल्ट भी ठीक ठाक था, तो मतलब एक टाइम के बाद वो भी हो गया, सैचुरेट हो गया कि मजा नहीं आ रहा है। फिर हुआ कि वाइंस बनाएंगे, उस टाइम पे अमित बराना, भुवन बाम, इन सबका ट्रेंड चल रहा था, थोड़ा बहुत ये अपने मतलब पूरब झा तो उनके साथ हर्ष मनवाल के साथ आते थे सब लोग, तो उस टाइम पे वाइंस उन्होंने स्टार्ट किया हमने भी, ये बात है 2019 एंड की, नवंबर दिसंबर तक की, तो वो चला 10-15 वीडियो बनाया, बट टीम टूट गई, टीम जाते थे मतलब उस टाइम पे, तो मान लो आपके लॉन्ग फॉर्मेट का जमाना था, शॉर्ट्स का कुछ था ही नहीं, टिकटॉक पे थोड़ा बहुत कंटेंट बनाते थे एक आध दो, लेकिन लॉन्ग फॉर्मेट ज्यादा पॉपुलर था, तो मतलब 10-15 वीडियो बनाने के बाद टीम टूट गई। तो पहली बार मेरे एक सिंगर हैं कॉलेज में थे, शिव कुमार शुक्ला, जो अभी के टाइम पे वो स्टैंड अप कॉमेडियन है, थे अपने नोएडा वगैरह में सबके लिए ओपन करते हैं, ये आप जानते होंगे शायद उनको, हर्ष बिदरान और भी लोगों का माइक ओपन करते हैं, तो उन्होंने पहली बार मुझे इन्वाइट किया कि ओमकार तुम वीडियो बनाना क्यों बंद कर दिया? तो मैंने बताया कि यार टीम टूट गई है, बन नहीं पा रहा वीडियो, लड़के ही नहीं यहाँ काम करना चाहते हैं। तो पहली बार मैं बिहार से यहाँ आया दिल्ली, दिल्ली में कहा फरीदाबाद, तो यहाँ पे मैं मिला टीम से, बहुत लोग कर रहे हैं थिएटर। तो पहली बार पहले मोमेंट में शिव कुमार शुक्ला जी ने हमें मिलवाया तैयब आलम से, और तैयब आलम बहुत जल्दी दोस्त बन गया, और तैयब दोस्त बन गए मेरे की, क्योंकि हम दोनों सेम कैटेगरी के थे, दोनों यूट्यूब के काम करना चाहते थे, दोनों ही सेम हाइट के, मतलब मैं थोड़ा सा लंबा वैसे 4 इंच तैयब से, क्या कि दोनों लगभग सिमिलर हाइट के हैं, और तो हमारे थॉट्स बहुत सारे मैच होते थे तैयब और मेरे, तो हम दोस्त बन गए, अच्छी बात है। शिव कुमार शुक्ला जी फिर गाइड हो गए, मिलवा के, पता नहीं वो उनका उतना ही रोल था हमारे लाइफ में, मिलवाए और तैयब में दोस्त बने। फिर तैयब में ही मुकेश भाटी सर हैं हमारे थिएटर के, अच्छा खासा मतलब बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, जो मंडी ड्रामा स्कूल से पास आउट हैं, NST में आइटम रिपेक्टिव वर्क करा हुआ है, SRC में करा हुआ है, जो फरीदाबाद में मुझे लगता है कि बहुत मतलब अच्छा उमदा कलाकार है फरीदाबाद के, बहुत नाम है उनका मुकेश भाटी सर का। तो उनसे इंट्रोडक्शन हुआ मेरा, और वहां पे देख के मुझे लगा कि यार ये थिएटर करना है मुझे, ये थी एक जर्नी की शुरुआत। तो पहली बार 2019 नवंबर की बात है, एंड में जाके मतलब आप ऐसा समझ लो 2020 जनवरी से, ये थी एक जर्नी की शुरुआत। तो पहली बार 2019 नवंबर की बात है, एंड में जाके मतलब आप ऐसा समझ लो 2020 जनवरी से स्टार्ट हुआ सिलसिला थिएटर वाला। उसके बाद तो यूट्यूब मैंने बंद ही कर दिया, यार यूट्यूब कौन ही करेगा अब थिएटर, मुझे था कि एक्टिंग सीखना है, और एक्टिंग में मेरे साथ प्रॉब्लम क्या था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे साथ कि मैं वो लड़का था कि अगर मैं किसी बुक को पढ़ने जा रहा हूँ

0: तो मैं एक चैप्टर पढ़ के खुश नहीं होता हूँ। मतलब ऐसा समझो कि अगर एक बुक है जिसमें 12 चैप्टर है तो मैं 12वें चैप्टर पढ़ना चाहता हूँ। कि अगर अगर कोई आया मुझे कि पहला चैप्टर पढ़ा दिया, कोई आया थर्ड पढ़ा दिया, कोई आया नाइन्थ पढ़ा दिया, कोई ट्वेल्थ पढ़ा दिया, तो मैं खुश नहीं हो पाता हूँ। मुझे लगता है नहीं यार और वो क्या बच गया जो रह गया मेरे से। तो वो चीज था, 2.5 साल तक लगातार यहाँ काम करते रहे फरीदाबाद में, लेकिन बहुत अच्छा वर्क नहीं होता है। थिएटर के चीज ऐसे स्टार्ट हुआ था। उसके बाद मंगलडामा स्कूल मैं गया हिमाचल, वहां भी 1 साल का था, हमारा डिप्लोमा था एक्टिंग में। फिर वो वहां से निकलने के बाद बहुत सारे टीचर के साथ काम किया, आयाज खान, समीप सिंह, रॉबिन सर, एनएसडी में आइडेंटिटी आर्टिस्ट काम किया, ग्वालियर, हिमाचल, पंजाब, बहुत जगह कर्नाटक मैंने 550+ किए। फिर जाके कहीं ना कहीं कॉन्टेंट क्रिएशन में आए, क्योंकि हमारे कुछ यहाँ पे मतलब सिंगर है दीपक गर्ग, जिनका आईडी है दीपक गर्ग के नाम से, हसलिन राजन, राजन भाई हैं, तैयब, ये लोग अच्छा कर रहे थे। तो फिर इनकी राह कदम तो फिर आगे हम लोग चलो यार अब करते हैं शुरू।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उत्तम।
0: ये तो फिर आगे हम लोग चलो यार अब करते हैं शुरू।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उत्तम।
0: ये तो
1: तो अभी तक हमने ओमकार चौहान की जर्नी के बारे में बात करी है। आगे हम कंटेंट को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, आपको इस शो के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कि ओमकार कंटेंट कैसे बनाते हैं जिसमें आपकी हेल्प हो सकती है, कि आप एग्जैक्टली कैसे अपने कंटेंट की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमें लेना होगा एक म्यूजिकल ब्रेक। स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो चल रहा है पर वॉइस ऑफ यू, तो आप लोग जुड़े हुए रेडियो 107.8 एफएम के साथ। और आज के हमारे जो मेहमान है हमारे शो में वो है मिस्टर ओमकार चौहान। ओमकार से हमने जाना है कि इनकी यात्रा कैसे शुरू हुई कंटेंट की, और पूरा बता के इन्होंने थिएटर से कैसे शुरुआत हुई और उसके बाद कैसे कैसे जो है सफर यहाँ तक पहुंचा। ओमकार, बात करना चाहूंगा कॉन्टेंट का, बताइए थोड़ा सा कॉन्टेंट कैसे बनाया जाता है, आप कैसे अपना कॉन्टेंट बनाते हैं, थॉट कैसे आता है, कैसे लिखते हैं, सब कुछ बताइए।
1: कंटेंट तो ऐसा है कि अभी के टाइम पे तो कंटेंट इतना सैचुरेट हो चुका है, कोई भी आइडिया आप सोचते हो तो पता लगता है ऑलरेडी सब बन चुका है। तो सबसे पहला पहली मुश्किल हमारी ये रहती है कि यार हम क्या डिफरेंट कर सकते हैं, क्योंकि ना फर्स्ट थिंग तो वर्क करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि कोई भी अगर आइडिया आप लेके आ रहे हो और उस पर वर्क कर रहे हो तो मतलब वो फर्स्ट थिंग है, तो ना फर्स्ट ड्राफ्ट मुझे लगता है नहीं बनाना चाहिए, तो सेकेंड ड्राफ्ट थर्ड ड्राफ्ट पे काम करना ज्यादा बेहतर होगा। तो हमारे मतलब मेरे पास इस केस में अपना बता पाऊंगा, जो भी आइडिया दिमाग में आता है फिर उसको एक बार लिखते हैं, फिर उसको होल्ड पर डालते हैं, फिर दूसरी बार जाते हैं तो यार क्या लिखा है तो और बेहतर लिख सकते हैं, ठीक है, फिर डेली राइट करते हैं। बिकॉज मैं बहुत अच्छा राइटर नहीं हूँ, एक्टर मैं ठीक हूँ बट राइटर में बहुत अच्छा नहीं हूँ। तो जो भी आइडिया जाते हैं तीन बार चार बार मैं लिखता हूँ, फिर लिखने के बाद उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो बहुत बार कॉन्टेंट बन जाता है, बहुत बार वो खुद ही मजा नहीं आता है देख के। क्योंकि क्या होता है ना कि एक अपना थॉट को इमेजिन करना एक ये चीज है, और उसको एग्जीक्यूट करके आउटपुट निकालना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। हम सोच तो लेते हैं कि ऐसा ऐसा कंटेंट बना लेंगे लेकिन बनता नहीं है। तो मैं भी इसी राह में हूँ, लगातार सर्चिंग चल रही है। बट यही कि प्रोसेस यही है कि आप पहले अच्छा कंटेंट सोचते हो, फिर उसको टीम के साथ बनाते हो, बना के एग्जीक्यूट करके डालते हो। बहुत बार लोगों को पसंद आ जाता है, बहुत बार नहीं आता है, तो इसमें बहुत हार्ड भी प्रोसेस तो नहीं है लेकिन है लंबा अच्छा खासा ये।
0: बिल्कुल, अगर कोई इंसान है जो कंटेंट बनाने की शुरुआत करना चाहता है उसको प्रोसेस अगर आप समझाना चाहें, प्रोसेस क्या होता है कंटेंट क्रिएशन का?
1: सबसे पहली बात तो आपको खुद को जानना होगा कि यार आप क्या बेस्ट कर सकते हो। जैसे होता है ना कि मैं बिहार से हूँ, तो मैं अगर भोजपुरी कंटेंट बनाऊं या भोजपुरी से रिलेटेड बनाऊं तो मैं बहुत आसानी से बना सकता हूँ, ठीक है। कोई अगर हरियाणा से बिलोंग कर रहा है तो रीजनल कंटेंट अच्छा बना सकता है वो, लेकिन वहां भी प्रॉब्लम है कि फिर पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि रीजनल कंटेंट में पैसा है तो यूट्यूब पे है, यूट्यूब और फेसबुक से कमा सकते हो, अर्न कर सकते हो अच्छा खासा, लेकिन आप इंस्टा से नहीं कर सकते हो। हिंदी कंटेंट से आप इंस्टा से पैसा बना सकते हो, मतलब अर्न कर सकते हो अच्छा खासा। तो सब मिला जुला के बात यही है कि कोई भी अगर स्टार्ट करना चाहता है तो उसको खुद को समझना होगा कि वो क्या बेस्ट कर सकता है, ठीक है। अगर मैं मुझे मतलब कॉमेडी पसंद खुद ही नहीं है और मैं कॉमेडी वाली वीडियो बनाने लगूँ तो मुझे बहुत लंबा टाइम लगेगा, बहुत लंबा, मतलब 2-3-4 साल बाद में थोड़ा बहुत मैं अच्छा कर पाऊंगा। तो वही वाली बात है कि खुद को समझना ज्यादा जरूरी है। अगर कोई है कि जिस नीच से आता है और उसमें कंटेंट बना ले, आपका नॉलेज किसमें ज्यादा है ना, बैक बेंचर होता है वो मुफ्त बोलने वाले पंचेज दोस्तों का रोस्ट करते रहते हैं, तो उनमें जो क्वालिटी होता है वो जो वीडियो बनाते हैं उस टाइप की तो वो चल जाती है चीजें उनकी। लेकिन जो जैसे बहुत बार लोग आते हैं कि उनने देख के स्टार्ट कर दिया, कह रहे अरे यार वो कर रहा है, मेरा दोस्त तो वो अच्छा कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, तो वो वाला पॉसिबल नहीं है। आप अपने आप को आपको जानना पड़ेगा कि आप क्या बेस्ट कर सकते हो, है ना। तो इसमें तो यही चीज है।
0: बिल्कुल, तो बेसिकली आपको ऑथेंटिक रहना पड़ेगा पहले फिगर आउट करने के लिए कि आपको क्या बनाना है। तो जो आपके अंदर से चीज आ रही है एग्जैक्टली फॉलो दैट पार्ट। Now on this note, लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। We'll take the show ahead, we'll talk about so many things. Just stay tuned with us. Feel good, feel live.

0: वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो यहां पर चल रहा है वॉइस ऑफ यूथ। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो 107.8 एफएम के साथ और हम एक ही चीज आपसे बोलते हैं, फील गुड, फील लाइव। और ये कोशिश करते हैं आपको हम एग्जैक्टली सेम जो चीज है वो कन्वे भी कर पाए। आज हमारे साथ यहां पर ओमकार चौहान एक कंटेंट क्रिएटर हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। अभी तक हमने सारी चीजें लगभग इनसे जान ली हैं। ओमकार, अगला प्रश्न मेरा रहेगा पैसों के बारे में। क्या कंटेंट क्रिएशन को एक ऐसे माध्यम के तौर पर देखा जा सकता है जहां पर आप सस्टेन कर सकते हैं, लंबे टाइम तक दाल चावल का जुगाड़ अच्छा हो सकता है यहाँ से?
1: जहां तक बात है अर्निंग का, वो ये कि अगर आप सिर्फ अर्न करने के लिए आ रहे हो फिर तो मतलब नहीं बनता है आने का कंटेंट क्रिएशन में। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन से आपको होता ना कि आपको प्यार हो जाएगा ना, तो आप पैसा अच्छा कमा पाओगे। जैसे होता ना कि हम व्यूज के पीछे भागेंगे, व्यूज नहीं आएगा। हम अच्छे कंटेंट के पीछे भागेंगे, पैसा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो मेनली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बोलने चाह रहा हूँ कि हम अच्छा कंटेंट बनाने के लिए अगर आ रहे हैं कि हम कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, हमारे अंदर क्रिएटिविटी है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, फील्ड कोई भी हो, है ना, हो सकता है वो फाइनेंस हो सकता है वो टेक हो सकता है वो कॉमेडी हो, एंटरटेनमेंट हो, कुछ भी, एनीथिंग एल्स। तो अगर आप इस चीज के लिए आ रहे हो कि मेरे पास इस चीज का नॉलेज है और मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो पैसा आ जाएगा। लेकिन आप आ रहे हो क्योंकि पैसा कमाना है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से पैसा कमा सकते हैं। तो उसका तो बस यही है कि अगर अच्छा कंटेंट बना सकते हो, पैसा कमाया जा सकता है, बहुत अच्छा कमाया जा सकता है। और इसमें ये कि अगर बैकअप लेके आ रहे हो आप, तो एक मतलब है कि मुझे करना ही यही करना है, सिर्फ यही करना है, तो आप कमा सकते हो। और मैं इतना तो कह सकता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन से आप एक अपनी जनरेशन को बिल्कुल चेंज कर सकते हो। जैसे मैं मिडिल क्लास चाहता हूँ, तो मिडिल क्लास से मैं अपर क्लास में जा सकता हूँ अगर मैं ढंग का काम करूँ तो। लेकिन अगर मैं क्रिएटिव नहीं हूँ और जबरदस्ती लगाऊं किसी चीज को करने में, तो पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिख रहा है कि वो है अर्न कर पाओगे आप। तो ये चीज है कि मतलब अच्छे कंटेंट के पीछे जाओगे तो अर्न कर लोगे, और ऐसा जो पैसा कमाने के लिए आ रहे हो तो शायद ना करता हूँ, जिसका मैंने एनालाइज करा, यही है मेरा काम सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पैसे के जरिए क्या क्या होते हैं ये अगर आप बता पाए? पैसे के जरिए क्या होते हैं, कैसे कैसे पैसा आता है कंटेंट के थ्रू?
1: अच्छा ओके, पैसे के जरिए सबसे सिंपल जो है वो है फेसबुक, क्योंकि फेसबुक का मोनेटाइजेशन प्रोसेस बहुत मतलब बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। वो इतना आसान है कि आप ऐसे समझो कि फेसबुक वाला आपके व्यूज ना लाख पार हुआ किसी भी कॉन्टेंट पे, कोई भी वीडियो उसके चला के लाख व्यू, तो बड़ा में स्टार्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। फॉलोअर पर डिपेंड ही नहीं है, वो 2,000, 2,500, 3,000, 5,000 कितने भी फॉलोअर्स, पैसे बनने लगते हैं वहां पे। और यूट्यूब का है तो लंबा प्रोसेस है, आपको भी पता है कि वो अभी तो 1,000 था और 1,000 वॉच आवर था ना, और 10 मिलियन शॉर्ट व्यू था, वो तो बढ़ के अब 2,000 सब्सक्राइबर और आई थिंक 8,000 और हो गया, वो वॉच आवर हो गया, ऐसा कुछ वो चेंज हुआ अभी कभी अचीव हुआ, ये चीज चेंज हुआ है। तो उस पर थोड़ा सा वो कि आप यूट्यूब से कमा सकते हो। तीसरा जो सबसे मेन पॉइंट है वो है इंस्टाग्राम डायरेक्ट कोई पैसा नहीं देता, वहाँ ब्रांडिंग अगर अच्छी है हमारी तो ब्रांड से हम पैसा उठा सकते हैं, अच्छा खासा बहुत अच्छा पैसा आता है, इंस्टेंट पैसा जो है इंस्टाग्राम ही देता है। लेकिन इंस्टाग्राम डायरेक्ट नहीं देता है, ब्रांड्स आती हैं हमसे कोलैब करती हैं, क्योंकि हमारे पास ऑडियंस है, तो हम उस ऑडियंस के बेस पे हम उनसे चार्ज लेते हैं अच्छा खासा, और हम ब्रांड को प्रमोट करते हैं। तो ये एक वे होता है जहाँ पे हम पैसा बना सकते हैं वहाँ से। ठीक है, और दूसरी एक चीज में और इम्पोर्टेंट थिंग है जो मुझे लगता है बताना चाहिए, वो ये कि आप अगर रीजनल कंटेंट क्रिएटर हो तो इंस्टाग्राम पे डिपेंड मत हो, आपको फेसबुक और यूट्यूब पर डिपेंड होना है कि वो कंटेंट बनाना है जो फेसबुक और यूट्यूब पर चल रहा है। और अगर आप रीजनल कंटेंट नहीं बनाते हो, आप हिंदी कंटेंट बनाते हो, तो आप एक तरह को इंस्टाग्राम पर डिपेंड हो सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। तो यही है मेरा आंसर।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे सवाल यहाँ पर खत्म होते हैं ओमकार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई भी ऐसी चीज है जो मैं ना पूछ पाया हूँ और आप कहना चाहते हो तो प्लीज फील फ्री।
1: सब ठीक है, मुझे लगता है इतना इनफ रहेगा अभी के लिए।
0: बिल्कुल दोस्तों, आप लोग भी जाकर के आप लोग भी जाकर के ओमकार भाई का कंटेंट जो है चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, ओमकार चौहान नाम से आपको ये इंस्टाग्राम पर दिख जाएंगे। बहुत ही फेमस हम कह सकते हैं, एक पर्सनैलिटी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया ओमकार भाई।

0: से शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आगे के लिए, आप जो भी काम करें आप उसमें सफल हो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: वाले दोस्तों, नाउ दोस्तों, वक्त है अपने शो यहाँ पर कंक्लूड करने का। उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला पॉइंट मैं आपको समझा पाया हूँ, आज के शो से कुछ मूल्य आप लोगों को हम दे पाए हैं। शो पसंद आया तो 8010781078 इस नंबर तक अपनी कोई भी मन की बात हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल मैं चलता हूँ। नाउ दिस इज योर दोस्त एंड होस्ट आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ।

मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई, किसान का बेटा हूँ, ये गर्व से कहता हूँ। किसान भाइयों, आज बात हो रही है हरी मिर्च के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिर्च का जो मूल स्थान है वो मैक्सिको है और दूसरे दर्जे पर ग्वाटेमाला माना जाता है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में मिर्चें 17वीं सदी में पुर्तगालियों के द्वारा और इसके बाद ये पूरे भारत में बड़ी तेजी से फैल गई। और किसान भाइयों, मिर्चों में जो कैप्सेसिन होता है, कैप्सेसिन में बहुत सारी दवाइयां बनाने वाले तत्व पाए जाते हैं, खास तौर पर जैसे कैंसर रोधी और तुरंत दर्द दूर करने वाले तत्व पाए जाते हैं। ये खून को पतला करने और दिल की बीमारियों को रोकने में भी मदद करता है। मिर्चें उगाने वाले एशिया के मुख्य देश भारत, चीन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कोरिया, तुर्की और श्रीलंका हैं। उत्तरी और केंद्रीय अमेरिका में यूगोस्लाविया, स्पेन, रोमानिया, बुल्गारिया, इटली और हंगरी। लेकिन दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना, पेरू और ब्राजील हैं। लेकिन भारत संसार में मिर्च पैदा करने वाले देशों में मुख्य देश माना जाता है। इसके बाद चीन और पाकिस्तान का नाम आता है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान मिर्च पैदा करने वाले भारत के मुख्य राज्य हैं। तो ये तो बात मैंने आपको बता दी कि मिर्च कहाँ कहाँ पैदा की जाती है। पर किसान भाइयों, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे मिट्टी की तैयारी कैसे हो, इसकी पैदावार के लिए किस्मों का कैसे ध्यान रखा जाए। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ साझा करूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: आंखें।
1: दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। किसान भाइयों, आज आपसे बात हो रही है हरी मिर्च के बारे में। अगर हम मिट्टी की बात करें तो मिर्च हल्की सी भारी हर तरह की मिट्टी में उगाई जा सकती है। अच्छे विकास के लिए हल्की उपजाऊ और पानी के अच्छे निकास वाली जमीन जिसमें नमी हो, इसके लिए अनुकूल होती है। हल्की जमीनें भारी जमीनों के मुकाबले अच्छी क्वालिटी की पैदावार देती हैं और मिर्च के अच्छे विकास के लिए जमीन की पीएच 6-7 अनुकूल मानी जाती है। तो ये तो रही मिट्टी की बात, अब कर लेते हैं किस्मों की बात। एक किस्म है जिसका नाम है CH1। ये किस्म PAU लुधियाना द्वारा बनाई गई है। ये दरमियाने कद वाली किस्म है। इसका फल दरमियाने आकार और हल्के हरे रंग का होता है, जो पकने के बाद गहरे लाल रंग का हो जाता है। इस किस्म का फल बहुत कड़वा और आकर्षित भी होता है। ये किस्म गलन रोग को सहने योग्य है। इसकी औसतन पैदावार 95 से लेकर 100 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। अब एक और किस्म है जो जानी जाती है CH3 के नाम से। ये किस्म पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना द्वारा बनाई गई है और इसके फल का आकार CH1 के आकार से बड़ा होता है। इससे कैप्सेसिन की मात्रा 0.52% होती है और इसकी औसतन पैदावार 100 से 110 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। एक और किस्म है जो जानी जाती है CH27 के नाम से। किसान भाइयों, इस किस्म की जो पौधे हैं वो लंबे होते हैं और ज़्यादा समय तक फल देते हैं। इस किस्म के फल दरमियानी लंबे यानी 6.7 सेंटीमीटर पतले छिलके वाले, शुरू में हल्के हरे और पकने के बाद लाल रंग के होते हैं। ये किस्म पत्ता मरोड़, फल और जड़ गलन, रस चूसने वाले कीट जैसे के मकोड़ा और जुए की रोधक है। इसकी औसतन पैदावार 90 से लेकर 110 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। तो ये तो रही किस्मों की बात। आगे आपसे बात करूंगा कि जमीन की तैयारी कैसे की जाए। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए अन्नदाता।

दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। किसान भाइयों, मिर्चों के बारे में आज आपसे बात कर रहा हूं। सबसे अहम बात है जमीन की तैयारी कैसी करनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, खेत को तैयार करने के लिए 2 से 3 बार जुताई करें और हर एक जुताई के बाद कंकड़ों को तोड़ें। बिजाई से 15 से 20 दिन पहले रूड़ी की खाद 150 से लेके 200 क्विंटल प्रति एकड़ डालकर मिट्टी में अच्छी तरह मिला देनी चाहिए। खेत में 60 सेंटीमीटर के फासले पर मेड़ और खालियां बनाएं। इसके अलावा एजोस पीरिलियम 800 ग्राम प्रति एकड़ और फास्फोबैक्टीरिया 800 ग्राम प्रति एकड़ को रूड़ी की खाद में मिलाकर खेत में डाल देना चाहिए। तो इस तरह से जमीन की तैयारी की जाती है। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, टमाटर और मिर्च की खेती एक ही या नज़दीक वाले खेत में बिल्कुल ना करें। क्यों? क्योंकि दोनों की बीमारियां एक जैसी होती हैं और इस कारण एंथ्राक्नोस और बैक्टीरिया वाली बीमारियों के बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। मिर्च के साथ प्याज और धनिये की खेती करने से आमदनी में वृद्धि होती है और नदीनों को रोका जा सकता है। कीड़ों की रोकथाम के लिए मिर्च के साथ प्याज, लहसुन या मैरीगोल्ड की खेती की जा सकती है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं अन्नदाता।

दोस्तों एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। किसान भाइयों, मिर्च की फसल के बारे में आज आपसे बात हो रही है, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ बिजाई का तरीका। देखिए, बिजाई का एक अपना समय होता है। नर्सरी लगाने का उचित समय अक्टूबर के आखिर से मध्य नवंबर तक होता है। नर्सरी को 50% छांव वाले जाल से ढक दें और इर्द गिर्द कीट पतंगे रोकने वाला 40 या 50 मैश नायलॉन का जाल लगाएं। पनीरी वाले पौधे 30 से 40 दिनों में आमतौर पर फरवरी मार्च में तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा बात आती है बिजाई के फासले की, तो इसको भी जरा ध्यान से सुने। कतारों का फासला 75 सेंटीमीटर और पौधों का फासला 45 सेंटीमीटर रखें। बीज की गहराई की बात करें तो पनीरी 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई में बोएं और बिजाई का जो ढंग है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। यानी मिर्च की जब भी आप बिजाई करें तो मिर्च की बिजाई पनीरी लगाकर ही करें। तो ये रही बिजाई की बात, लेकिन आगे कुछ और भी ज़रूरी बातें हैं आपके साथ साझा करूँगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता। नफरत

दोस्तों छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की। किसान भाइयों, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं मिर्चों के बारे में, अब बात आती है सिंचाई की। ये फसल अधिक पानी में नहीं उग सकती, इसलिए सिंचाई आवश्यकता अनुसार ही करें। हाँ, अधिक पानी देने के कारण क्या होता है, पौधे के हिस्से लंबे और पतले आकार में बढ़ते हैं और इसके जो फूल होते हैं ना, वो गिरने लग जाते हैं। सिंचाई की मात्रा और फासला मिट्टी और मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर पौधा शाम के 4 बजे के करीब मुरझा रहा हो तो इससे सिद्ध होता है कि पौधे को सिंचाई की जरूरत है। फूल निकलने और फल बनने के समय सिंचाई बहुत जरूरी होती है। कभी भी खेत या नर्सरी में पानी खड़ा ना होने दें, इससे फंगस पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। तो किसान भाइयों, इन सारी बातों का ख्याल रख करके मिर्च की फसल को उगाया जाए तो आपकी फसल बेहतर होगी, और फसल बेहतर होगी तो आपको इसका दाम भी बेहतर से बेहतर मिलेगा। इसी बात के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे आज्ञा चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, लेकिन चलते चलते सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, आधुनिकता के दौर में ज्ञान विज्ञान के विकास से समाज और व्यक्ति में कई भौतिक एवं वैचारिक प्रकट हुए हैं। इन परिवर्तनों से उत्पन्न मानवीय संवेदना से 8वें दशक की प्रमुख रचनाकार यानी मधु कांकरिया का साहित्य जुड़ा हुआ है। तो आज मैं आपसे बात करूंगा रचनाकार मधु कांकरिया के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में और संघर्षों का भी जिक्र होगा। फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है रचनाकार मधु कांकरिया के बारे में। उनका अध्ययन, चिंतन और लेखन न केवल साहित्य, संस्कृति और शिक्षा तक व्यापक है, बल्कि आज की राजनीति, मीडिया और समाज व्यवस्था के सूक्ष्मतम अंतर्ध्वनियां भी उनके मानस पटल में पूरी तरह से रची बसी हैं। उन्होंने कहानी, उपन्यास, यात्रा, वृतांत, संस्मरण यानी कि इस तरह के साहित्यिक रूपों में अपनी अनुभूति की प्रामाणिकता और बोध प्रवणता को अभिव्यक्त किया है। अब तक उनके द्वारा रचित चारों कहानी संग्रहों बेताते हुए 2004 और अंत में ईशु 2008, युद्ध और बुद्ध 2014, जलकुंभी 2020 में भाषा, धर्म, रूढ़ी, दरिद्रता, उजड़ते गांव, स्त्री समस्या, नक्सलवाद की समस्या, बुद्धिजीवी वर्ग, पीढ़ियों के बीच के अंतर यानी कि इनसे जुड़े अनेक ज्वलंत सवालों को प्रकट किया है। ये कहानियां आज के समाज की प्रतिच्छवि हैं और इनसे झांकती आम आदमी के मानव अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता मधु कांकरिया की पहचान है। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, साहित्य के विकास और समाज की पहचान को समझने में युगबोध महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये एक साहित्यिक और दार्शनिक अवधारणा है जो साहित्यकार के समय और समाज की समझ को व्यक्त करती है और जिससे रचना में उस समय की संवेदनाओं, समस्याओं और विचारधाराओं का प्रतिबिंब दिखाई देता है। युग और बोध शब्दों के योग से बना युग बोध एक यौगिक शब्द है जिसका तात्पर्य किसी युग के प्रति हमारी समझ, दृष्टिकोण यानी कि इससे जुड़ा हुआ है। ये अपने आप में एक व्यापक शब्द है जो विशेष समय अवधि में घटित सभी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक, धार्मिक, व्यवसायिक घटनाओं को यथार्थ रूप में केंद्रीभूत रखता है। युगबोध वास्तविकता से परिचित कराता है। इसका ना वर्तमान के साथ कोई संबंध है और ना भविष्य से कोई ताल्लुक है। ये समय सामायिकता पर जोर देता है। एक ही युग में प्रत्येक व्यक्तियों का चेतन अलग अलग होने के कारण हर किसी की युगबोध को लेकर धारणा अलग अलग हो सकती है और उसका प्रभाव भी अलग अलग पाया जा सकता है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सुनते रहिए फहीम के साथ यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, बात हो रही है मधु कांकरिया के बारे में, जो एक बड़ी ही प्रसिद्ध रचनाकार हैं। उनका कहना है, युगबोध को किसी एक विशेष परिभाषा में परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि समय के साथ साथ उसका स्वरूप बदल जाता है। समाज का संपूर्ण रूप साहित्य में समाहित है और युगबोध का पूर्ण रूप रचना में देखने को मिलता है। अतएव युगीन परिवेश को रेखांकित करने के लिए एक रचनाकार को संपूर्ण युग का ज्ञान होना चाहिए। महान कलाकार अपने युग का पूर्ण प्रतिनिधि, पूर्ण व्याख्याता होता है। उसकी वाणी में युग के सारे संघर्ष, सारे राग विराग, समस्त प्रश्न और संदेह मूर्तिमान होकर बोलते या ध्वनित होते हैं। एक समय सापेक्ष होने के कारण कुछ विशेष समय अवधि तक युग बोध का महत्व तेजी से बढ़ता है, लेकिन परवर्ती युग में उसे महत्व मिल भी सकता है और नहीं भी। इसके अलावा वो और क्या कहना चाहती हैं अपने शब्दों के माध्यम से आपके साथ साझा जरूर करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, रचनाकार मधु कांकरिया का कहना है कि किसी भी रचना को पूरी तरह समझने, उसका मूल्यांकन करने के लिए वो रचना कब लिखी गई थी, उस समय का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश किस तरह का था, यानी कि इन सारी बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, जिसे युगबोध कहा जाता है। युगबोध को सिर्फ आधुनिकता, समसामायिकता ही प्रभावित नहीं करती। आधुनिकता के साथ साथ इतिहास, संस्कृति, परंपरा भी उसे प्रभावित करते हैं, क्योंकि प्रत्येक युग के पीछे उसकी पृष्ठभूमि रहती है। इतिहास के किसी भी युग का साहित्य उठाकर देख लिया जाए तो उस युग की तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण अवश्य देखने को मिलता है, जिसकी भावधारा मनुष्य चेतना, समाज और उसके परिवेश से बंधी हुई है। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, मधु कांकरिया का कहना है कि साहित्य जीवन का दूसरा नाम है। साहित्य समाज की चेतना में सांस लेता है। समाज का वो परिधान है जिसमें समाज के सुख दुख, आशा निराशा, हर्ष विषाद, आकर्षक विकर्षक यानी कि सारे ताने बाने बुने जाते हैं। उसमें मानव जाति की आत्मा का स्पंदन होता है। और दूसरी बात, समाज के बिना साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। और साहित्य से परिचित हुए बिना हम समाज को समझ नहीं पाते हैं। साहित्य सृजन के लिए जो भाव विचार चाहिए वो सब समाज से ही मिलते हैं, जिसे युग बोध कहा जाता है। मानव जीवन के तमाम पहलुओं को आत्मसात करके उसे अभिव्यक्त करने का काम साहित्य के द्वारा ही होता है, ऐसा कहना है रचनाकार मधु कांकरिया का। लेकिन इसके अलावा वो कुछ और भी कहना चाहती हैं। उन सारी बातों को आपके साथ साझा करता रहूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था मधु कांकरिया के बारे में, उनका कहना है कि मानव जीवन के तमाम पहलुओं को आत्मसात करके उसे अभिव्यक्त करने का काम साहित्य द्वारा होता है। इसी के साथ साथ वो ये भी कहती हैं कि युग बोध साहित्य का धर्म है। बोध एक आंतरिक प्रक्रिया होने के कारण किसी विषय, परिवेश, परिस्थिति के प्रति हमारी धारणा का निर्माण करता है। बोध हमेशा एक जैसा नहीं रहता, समय के मुताबिक ये बदलता रहता है। अपनी बोध शक्ति के मुताबिक हर एक व्यक्ति दूसरे से अलग होता है। ये एक प्रकार का अनुभव है जो हमें अपने जीवन को सहज करने के लिए सहायक होता है। हर एक देश का, समाज का अपना स्वतंत्र बोध होता है और युग बदलने के साथ साथ उसका बोध भी बदलता रहता है, जिसका रूप साहित्य में देखने को मिलता है। जिस प्रकार व्यक्ति और समाज एक दूसरे के परिपूरक हैं, ठीक उसी तरह साहित्य और युग बोध भी अनुपूरक हैं। एक के बिना अन्य की कल्पना असंभव है, ऐसा कहना है रचनाकार मधु कांकरिया का। लेकिन दोस्तों, मधु कांकरिया के बारे में और भी बहुत सारी बातें थीं, आपके साथ साझा कर सकता था पर समय इजाजत नहीं देता, इसलिए आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में इन्हीं के बारे में आपसे और भी बातें साझा करूंगा। फिलहाल इजाजत चाहता हूं। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। नमस्ते, खुदा हाफिज़।

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानव रचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।
2: बिटिया का ब्याह किया, साथ ही हवन कुंड में उसकी चिता को होम किया। सारी जिंदगी दबाते रहे, सवारते रहे, अनुशासन के सांचे में ढालते रहे। पराए घर जाना है, सामंजस्य बिठाना है, तू पराई है, हमारी जाई है। जा बिटिया जा, ये सब तेरा अपना नहीं, बीता हुआ सपना सा है। तुझे उस घर को अपनाना है, उसे संवारना है, दोनों खानदानों की मर्यादा को बढ़ाना है। लो बाबुल, आज तुम्हें पराया कर उस अजनबी घर को लिया अपना। पर यह क्या, यहाँ भी इतिहास दोहराया गया। हर सू मुझे पराया ठहराया गया। 14 वर्षों का वनवास काट कर भी उन्हें अपना बना न सकी, उनकी बन न सकी, एक निगोड़ा विश्वास तक हासिल कर न सकी। बाबुल, तुम तो पहले ही हवन कुंड में बिटिया की चिता को

0: हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लेकर आते हैं आपके लिए उन सेलिब्रिटीज को जिन्हें चाहते हैं आप, प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी रूपी गीतों की बौछार जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आलम आरा से लेकर आज तक की रिलीज फिल्म के गीत, गजल, भजन, फिल्मी, गैर फिल्मी, कुछ भी। शर्त सिर्फ इतनी कि हमारे सेलिब्रिटी की पसंद के हो, और ऑफ कोर्स आपको तो पसंद आएंगे ही, क्योंकि आपके लिए आपके प्रिय सेलिब्रिटी ही तो चुनकर लाते हैं संगीत की आकाश गंगा से सितारे रूपी गीत। और दोस्तों, अगली बार आप अपनी महफिल में किस सेलिब्रिटी को सुनना चाहते हैं आप मुझे बता सकते हैं, और कैसा लग रहा है आपको रेडियो मानव रचना और सृजन भी, SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे बेहदी खास मेहमान हैं डॉक्टर राम सिंह हलचल जी। आप कविता लिखते हैं, आप गीतकार हैं, और आप डिजास्टर्स मैनेजमेंट से भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राम सिंह हलचल जी, आपका स्टूडियोज में बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: और हलचल जी, जो हमारे दोस्त आप लोगों से सबसे पहले जानना चाहते हैं वो यही कि आपके लेखन की शुरुआत कब, क्यों, कैसे हुई, आपका प्रेरणा स्रोत क्या रहा?
1: हमारे स्कूल में एक बार एजुकेशन ऑफिसर आए
0: जी,
1: तो हमारे हिंदी के टीचर थे डॉक्टर सुनहरी लाल
0: जी।
1: आजकल वो हास्य कवि हैं।
0: अच्छा।
1: डॉक्टर सुनहरी लाल तुरंत के नाम से कविताएं पढ़ते
0: हैं। क्या बात है।
1: तो हमारे वो हिंदी के अध्यापक थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, उनके स्वागत में कुछ नया करते हैं जो स्कूलों में ना होता हो।
0: अच्छा।
1: तो फिर उन्होंने दो विद्यार्थी चुने जिनको लड़की बनाया, उन्होंने साड़ी
0: अच्छा।
1: पहनाई।
0: अच्छा।
1: और हम दोनों को कुर्ता पजामा पहनाया, और एक गीत लिखा उन्होंने पहली बार उस क्लास में बैठ करके कि लाओ लाओ रे सुमंगल हार, अतिथि आए मेरे अंगना। ये उन्होंने हम सबके सामने बैठ कर लिखा। तो उसके बाद गेट पर जा करके चारों लड़के जो हैं, दोनों साड़ी पहनी थी, दोनों पजामा कुर्ता, पुष्प वर्षा की, और ये गीत गाया। तो उस गीत को सुनने के बाद फिर एजुकेशन जो ऑफिसर थे एनएस तौलिया जी, उन्होंने बड़ी तारीफ की और आशीर्वाद दिया हमको कि भाई आप लोग अच्छे बने, और उनको कहा सौभाग्यवती रहो। ये बड़ा हंसी का पात्र बना। गीत बहुत

0: अच्छा रहा, उन्होंने भी बड़ी तारीफ की कि भाई बहुत अच्छा गीत है। तो उस समय मुझे लगा कि मैं भी लिख सकता हूँ।
1: अच्छा, वो आपके आपको अंदर प्रेरणा दे गया।
0: जी, और फिर तब से मैंने कुछ लिखना शुरू किया, लिखता रहा, लिखता था, दोस्तों को सुनाया, दे दिया। लेकिन मेरा एक मित्र है संजीव, उसको मैंने जितनी रचना दी उसने संभाल कर रखी।
1: क्या बात है।
0: तो उसने कई जगह इस्तेमाल भी किया।
1: अच्छा।
0: लेकिन बाद में फिर उसने कहा कि यार ये तुम्हारी रचना है ना, मैं एक जगह प्रिंट करता हूँ।
1: ओह क्या बात है।
0: तो फिर उसने वो रचनाएं सारी प्रिंट की।
1: क्या बात है। तो मैं गुजारिश करूंगी, आपने बताया कि आपने कहाँ से आपके लेखन की शुरुआत हुई, एक रचना हमारे दोस्तों को दे दीजिए इस मौके पर।
0: तो मैं एक मानसिकता कहें या स्थिति कहें, वो महिलाएं जो काम करती हैं, नौकरी करती हैं, नौकरी पेशे वाली महिलाएं,
1: जी जी स्वागत।
0: तो उनके मन मस्तिष्क में क्या चलता है, क्या इंतजार करती हैं वो एक मैंने मन उनका लिखने की कोशिश की।
1: जी स्वागत स्वागत।
0: क्या सच में विशेष है वह सातवां दिन जिसके इंतजार में वह मन क्रम वचन से रहती है? शायद हाँ, वह विशेष वार रविवार ही है। शनिवार को कार्यस्थल से घर लौटते समय एक विजेता की भांति वह मन में पूर्णता का एहसास लिए हुए घर पहुंचती है।
1: बहुत खूब।
0: एक लंबा उच्छ्वास भरकर वह घर पहुंचते ही अपने बैग और पर्स को सहेज कर रखने के बाद खुद को बिस्तर पर निढाल होकर मुक्त छोड़ देती है।
1: क्या बात है।
0: और आंखें बंद करके उस विशेष दिन के इंतजार की खुशियां मनाना शुरू कर देती है। मन ही मन योजना बनाने लगती है।
1: क्या बात है क्या बात है।
0: शरीर की थकान और मशीनी स्वभाव से मुक्त होकर कल देर तक सोऊंगी, भोर के अलार्म को भी अवकाश दूंगी,
1: क्या बात है,
0: ऐसा निश्चय करती है।
1: क्या बात है।
0: थोड़ी देर इन्हीं विचारों के उधेड़बुन के बाद उसे याद आता है कि शाम हो गई है, चाय बनाती हूँ, परिवार के साथ साथ थोड़ी सी मैं भी ले लेती हूँ। चाय की चुस्की के बाद कुछ नमकीन या बिस्किट लेकर खुद को योजना के मार्ग से वापस बुला लेती है।
1: क्या बात है।
0: और शाम की रसोई बनाने में तल्लीन हो जाती है। रात का खाना परिवार को खिलाकर खुद भी थोड़ा सा भोजन का स्वाद लेकर सोने चली जाती है। और बिस्तर पर आंखें बंद कर काम काज के ही सपनों में खो जाती है।
1: क्या बात है।
0: अगले दिन वह सुखद दिन अपनी सुहानी भोर के साथ प्रस्फुटित हो जाता है, जिसे हम सभी रविवार या इतवार कहते हैं। आंखें खुलते ही एक विचार मन में आता है कि आज सरपट भागती जिंदगी से निजात पाऊंगी, आज घर की सफाई और रसोई के काम जल्दी से निपटा कर कपड़े भी धोने हैं और बालों में मेहंदी लगाने के लिए फिर स्नान करना है, और न चाहते हुए भी वह जल्दी ही उठ जाती है। इन सारे कामों में कब सांस ढल जाती है उसे पता ही नहीं चलता।
1: क्या बात।
0: थोड़ी देर लेट कर वह टीवी देखती है और फिर शाम की चाय के लिए रसोई में लग जाती है। जिस रविवार के सुकून की चाह में वह 6 दिन की जद्दोजहद करती है, वह कब गुलर के फूल की तरह खिलता है पता ही नहीं चलता। वह दिवस मुट्ठी में जो रेत की भांति फिसलता है। रात को जब बिस्तर पर विश्राम करती है तो सोचती है, क्या सच में रविवार सुकून के लिए था या नित्य से भी अधिक कार्य लेकर आया और थका कर चला गया। उसके बाद आंखें फिर से सातवें दिन के इंतजार में खो जाती हैं। सच में यह रविवार कितना आराम और कितना सुकून की मृग मरीचिका उसे खूब तड़पाती है, सताती है, और एक उम्मीद की थाली में ना उम्मीदी का स्वप्निल पकवान परोसकर चली जाती है, और वह इसे खुशी से या मजबूरी से ही ग्रहण कर जाती है। ऐसा लगता है इंतजार के तेल में जल रही सुकून की बाती अपनी मध्यम रोशनी से नित्य की संघर्ष भरी जिंदगी में उत्साह का संचार करती है, और अगला दिवस सोमवार के रूप में बिन बुलाए मेहमान की तरह स्वयं प्रकट हो जाता है और फिर उस मशीनी जीवन की शुरुआत कर जाता है। देखते हैं कब इस भागदौड़ भरी जिंदगी और थका देने वाली जिंदगी के अंधेरे में सुकून की रोशनी आएगी और उसे आंशिक या पूर्ण रूप से सुकून दे जाएगी।
1: झिलमिल सितारों का,
0: झिलमिल सितारों का,

0: Welcome again to Radio Manav Rachna with Feel Good Feel Live 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में सृजन लेकर और आज हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान हैं डॉक्टर राम सिंह हलचल जी। आप कवि हैं, गीतकार हैं, आप व्याख्याता हैं। राम सिंह हलचल जी, डॉक्टर साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, आपको पढ़ा गया दैनिक दर्पण, शब्दों की आत्मा, परशुराम महासभा मासिक, काव्य मंजरी, प्रतिलेख, बहुत लंबी लिस्ट है आपके पत्र पत्रिकाओं की। गुजारिश होगी आप अपने सफर के बारे में हमारे दोस्तों को बताइए।
1: मैंने जब लिखना शुरू किया
0: जी
1: तो एक पहली पुस्तक मेरे एक मित्र ने छापी हलचल के स्वर नाम से।
0: ओ।
1: तो उस पुस्तक को कुछ लोगों को दिया, कुछ लोगों ने जब कार्यक्रम हुआ तो उसमें भी वितरित हुई, तो लोगों ने पढ़ा, तो पढ़ने के बाद उनको लगा अच्छा आप ऐसा भी करते हैं।
0: अच्छा।
1: क्योंकि मेरे चेहरे से शायद वो रचनाएं मेल नहीं खाती थी। चेहरा देख करके लोगों को वो, क्योंकि मैं मार्शल आर्ट भी करता था उस समय पर और इस कारण से जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, इसके कारण से तो श्रृंगार रस की कविताएं या दैनिक रचना लोगों को पढ़ने मर लगा अच्छा ये आपका दूसरा रूप भी है।
0: क्या
1: तो फिर लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई हमारी एक पत्रिका है, आप उसमें लिख सकते हो।
0: अच्छा, ये उल्टा हो गया, पहले आपकी किताब आ गई फिर पत्र पत्रिका। ये तो आमतौर पर होता ही हूँ कि पहले पत्र पत्रिकाओं में लोग छपते हैं,
1: हाँ जी,
0: बाद में किताबें आती हैं। दोस्तों, मैं भी कवित्री हूँ, आप लोग जानते हैं कि पहले पत्र पत्रिकाओं से शुरुआत होती है, किताब बहुत बाद में आती है। डॉक्टर राम सिंह हलचल जी के साथ उल्टा हुआ, पहले इनकी पुस्तक आई जिसके बारे में हम बात करेंगे ही अलग से, और फिर बाद में इनकी पत्र पत्रिकाएं आई।
1: जी बिल्कुल, मेरे लिए उल्टा है।
0: गुजारिश करूंगी इस मोड़ पर अपनी एक रचना हमारे दोस्तों को दे दीजिए।
1: आज के समय में जैसे कुछ भी उच्छृंखलता होती है तो कहते हैं ये बड़ा कन्हैया बन रहा है।
0: जी।
1: लेकिन वास्तव में कृष्ण बनना इतना आसान नहीं है।
0: इतना आसान नहीं।
1: मैंने कृष्ण के जीवन को पढ़ा है, उसके बाद मैंने कुछ लिखा है कि जो लोग कहते हैं कि ये कन्हैया है वास्तव में कृष्ण को जानते ही नहीं
0: जानते।
1: तो मैंने उनके जीवन पर लिखा है कि सरल नहीं है कृष्ण हो पाना।
0: क्या बात, बहुत कुछ
1: कि सरल नहीं है कृष्ण हो पाना, गुरुता को लघु होना पड़ता है, जीवन के निथावन कुंड में समिधा सम जलना पड़ता है, 14 बरस तक जननी के आंचल से दूर भी रहना पड़ता है, 3 लोग मुख में धरकर भी घुटनों के बल चलना पड़ता है।
0: बहुत खूब।
1: सरल नहीं है कृष्ण हो पाना, गुरुता को लघु होना पड़ता है, परहित का आदर्श धारने गोकुल भी त्यागना पड़ता है, कर्म भूमि की रज संवारने जन्म भूमि को तजना पड़ता है, सरल नहीं है कृष्ण हो पाना।
0: क्या बात है।
1: त्याग सनातन की मर्यादा पूतना का वध करना पड़ता है, महिलाओं पर हाथ उठाना सनातन की परंपरा नहीं है, लेकिन पूतना राक्षसी थी, महिला थी वो, और इस सनातन की मर्यादा को भी उन्होंने तोड़ा, तो इसलिए लिखा मैंने त्याग सनातन की मर्यादा पूतना का वध करना पड़ता है, देश धर्म समाज रक्षा हित मामा का वध करना पड़ता है, सरल नहीं है कृष्ण हो पाना,
0: बहुत खूब,
1: गुरुता को लघु होना पड़ता है, कान्हा कुमार को छोड़ स्वभाव ग्वाला भी बनना पड़ता है, गौरस माखन बांट सभी को निचोर कहना पड़ता है, सरल नहीं है कृष्ण हो पाना, गुरुता को लघु होना पड़ता है, ग्वाल बाल संग मिलकर के गोवर्धन भी उठाना पड़ता है, काली दाह में जाकर कालिया नाग का मर्दन भी करना पड़ता है, सरल नहीं है
0: कृष्ण, बहुत खूब,
1: दुष्ट शिशुपाल के अपमानों का शतक भी सुनना पड़ता है, गालियां दी उन्होंने वो भी सुने, मुक्त हुई 14,000 रानियों का सम्मान भी करना पड़ता है,
0: क्या बात,
1: सरल नहीं है कृष्ण हो पाना, गुरुता को लघु होना पड़ता है,
0: वाह वाह वाह,
1: अपनों के प्राण घात से बचने अपनों को छलना पड़ता है, वंशी त्याग के कर में रथ का भार थामना पड़ता है,
0: क्या बात,
1: सरल नहीं है कृष्ण हो पाना,
0: सरल,
1: स्वाभिमान के मान को तजकर अपमान को सहना पड़ता है,
0: बहुत,
1: अपनों की प्राण सुरक्षा हित रणछोड़ कहना पड़ता है, सरल नहीं है कृष्ण हो पाना,
0: सरल नहीं कृष्ण हो
1: पाना, ऐश्वर्य द्वारिका का तज निर्धन मित्र को गले लगाना पड़ता है, निज तोड़ प्रतिज्ञा धर्म की खातिर कर्मे चक्र उठाना पड़ता है, सरल नहीं है कृष्ण हो पाना,
0: बहुत खूब,
1: महासमर में सारथी से विराट योगेश्वर बन जाना पड़ता है, धर्म विजय की खातिर गीता अध्याय 18 बांचना पड़ता है। सरल नहीं है कृष्ण अवतार। कुरुक्षेत्र में गांडीव उठा अर्जुन, अभी प्रेरणा दर्शाना पड़ता है। दुर्योधन का मर्दन कर गांधारी का शाप भी सहना पड़ता है।
0: क्या
1: गांधारी ने शाप दिया उनको? सरल नहीं है कृष्ण। प्रेम विरह की शीत अग्नि में स्वयं को ही जलाना पड़ता है। शाश्वत जग में प्रेम अमर है, उद्धव को समझाना पड़ता है। सरल नहीं है कृष्ण। निज कुल बंधु बांधवों के हित सागर में नगर बसाना पड़ता है। नारी तो सुधा द्रौपदी का भरी सभा में चीर बढ़ाना पड़ता है। सरल नहीं है कृष्ण। सरल नहीं है कृष्ण। सरल नहीं है कृष्ण।

0: వెల్కమ్ అగైన్ టు రేడియో మానవ రుచన విత్ ఫీల్ గుడ్ ఫీల్ లైవ్ 107.8 FM పర్ ఆప్ హై మాధురి కే సాథ్ ఔర్ మాధురి హాజిర్ హై ఆప్కి మహఫిల్ మే ఏక్ బార్ ఫిర్ సే సృజన్ లేకర్ ఔర్ ఆజ్ హమారే సాథ్ హమారే బేహది బేహది బేహది ఖాస్ మెహమాన్ హై డాక్టర్ రామ్ సింగ్ హల్చల్ జీ. ఆప్ కవితా గీత్ లిఖతే హై, గీతకార్ హై, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కే లియే భీ ఆప్ కామ్ కర్తే హై. డాక్టర్ సాహబ్, స్టూడియోస్ మే ఆప్కా ఫిర్ సే బహుత్ బహుత్ బహుత్ బహుత్ స్వాగత్ హై.
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब. आपकी पुस्तकें आई एहसासों का नूर, हलचल के स्वर, पिता, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, गुलदस्ता, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई. बहुत लंबी लिस्ट है आपकी पुस्तकों की. गुजारिश करूंगी अपने सफ़र के बारे में हमारे दोस्तों को बताइए.
1: मैंने जब लिखना शुरू किया तो कुछ साझा संकलन छपे, कुछ अपनी व्यक्तिगत रचनाएँ जब एकत्र हुई तो वो छपी
0: जी.
1: तो पहले हलचल का स्वर छपी, उसके बाद फिर एहसासों का नूर, और इस बीच में साझा संकलन भी छपते रहे. तो ध्यान में क्या आया कि लोग रचना पढ़ते हैं अगर मन को भाती है
0: जी.
1: तो जब मन को भाती है तो वो उसको ढूंढते हैं कि किसने लिखी
0: है, वाह.
1: और फिर उससे संपर्क करने की कोशिश करते हैं
0: जी.
1: इस बीच प्रवीण जी एक टीवी पर अपना कविता पाठ चलाते हैं, सतमूला कवियों की चौपाल
0: जी.
1: उसमें उन्होंने मुझे संपर्क किया, राम सिंह जी आपसे मिलना है.
0: मतलब आपको टीवी पर भी देखा गया
1: जी. तो 4-5 बार जाना हुआ मेरा सतमूला कवियों के चौपाल में. तो उन्होंने कहा, राम सिंह जी आप ना अलग अलग चीजें लिखते हैं, एक जैसा नहीं लिखते, तो ये वैविध्य आता कहाँ से है?
0: क्या बात है.
1: तो मैंने उनको दो पंक्तियां कही.
0: स्वागत.
1: मैंने कहा, जब मानव का वरद पुत्र उसका सोने पथ पर कोई संबल हरता है.
0: क्या
1: जब मानव के वरद पुत्र का सोने पथ पर कोई संबल हरता है, वो किसी दृश्य को देखकर मचलता है, तब ये मानव का वरद पुत्र तन्मय होकर कविता करता है. तो उन्होंने कहा, आप हमारे शो पर आइए और कविता कीजिए.
0: गुजारिश करूंगी कि रचना आप हमारे स्टेशन के लिए भी दे दीजिए इस मोड़ पे.
1: तो जो नारी मन पर लिखा मैंने
0: जी, स्वागत,
1: कि वो अपने लिए कुछ नहीं चाहती. अगर वो चाहती है तो क्या चाहती है,
0: क्या चाहती है?
1: वो मैंने शब्दों के रूप में उसको ढालने की कोशिश की.
0: स्वागत स्वागत.
1: वो कहती है, मैं नहीं चाहती तुमसे बराबरी का हक. मैं नहीं चाहती तुमसे बराबरी का
0: हक.
1: मैं नहीं चाहती तुमसे चांद तारों पे घर.
0: बहुत खूब.
1: मैं तो तुमसे अपने एहसासों और अपनी भावनाओं की कदर चाहती हूँ.
0: बहुत खूब, बहुत खूब.
1: मैं तो तुमसे अपने एहसासों और अपनी भावनाओं की कदर चाहती हूँ. मैं न ढेरों सुख सुविधाएं चाहती हूँ, न मैं ढेरों गहने भवन चाहती हूँ.
0: बहुत खूब.
1: मैं तो बस आपके मन में अपने लिए थोड़ी सी फिक्र चाहती हूँ.
0: क्या बात.
1: न ऋचाएं, न कथाएं, न छंदों की गीता. न ऋचाएं, न कथाएं, न छंदों की गीता. मैं न अपना इतिहास गान चाहती हूँ, बस तुम्हारी रातों की नींदों में और भोर की चितवन में थोड़ा सा अपना जिक्र चाहती हूँ.
0: बहुत खूब.
1: मैं नहीं चाहती तुमसे आगे निकलना. मैं नहीं चाहती पीछे पीछे भी चलना. मैं चाहती हूँ शून्य बनकर साथ चलना.
0: बहुत खूब.
1: ताकि तुम्हारी शक्ति बढ़ जाए मेरे जुड़ने से. बस तुम जैसा अंक हम सफर चाहते हैं.
0: क्या बात.
1: बस तुम जैसा अंक हम सफर चाहते हैं.

0: करता रहूं।
1: वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 एफएम पर। आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे बेदी खास मेहमान हैं डॉक्टर राम सिंह हलचल जी। कविता गीतकार हैं आप डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, आप समाज सेवी भी हैं अभी हमें पता लगा। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियोज में बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
1: डॉक्टर साहब, आप जुड़े हुए हैं साहित्य साधना मंच से, साहित्य संकल्प, सुनहरी छांव, आप समाज सेवी भी हैं, हिंदू जागरण मंच, अपना गांव अपना देश फाउंडेशन, जागृति फाउंडेशन, मार्शल आर्ट क्लब, बहुत सारी साहित्यिक और समाज सेवी संस्थाओं से आप जुड़कर काम कर रहे हैं समाज के लिए, देश के लिए। आप मुझे बताइए, हमारे दोस्त जानना चाहते हैं अपने सफर के बारे में।
2: मन में साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ने से पहले सामाजिक संस्थाओं से जुड़ने का आया
1: जी।
2: कई बार ध्यान में आया कि मुझे इन संस्थाओं से क्यों जुड़ना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है इस दुनिया में जो दूसरों के बारे में भी सोचता है।
1: जी।
2: मनुष्य के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो दूसरे के बारे में सोचे।
1: जी।
2: सभी अपने बारे में सोचते हैं। तो मेरे मन में आया कि भाई अगर मैं मनुष्य हूं तो मुझे दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। तो फिर मैं किसके बारे में सोचूं, प्रश्न ये था
1: जी।
2: तो एक दिन यमुना खादर से आ रहा था मैं, यमुना के किनारे जो किसान लोग छोटी छोटी झोपड़ियां बनाकर रहते हैं, तो मन में आया कि जब बारिश का पानी आता है तो ये लोग झोपड़ियां छोड़कर बाहर भाग जाते हैं, और ये दिन भर खेतों में काम करते हैं तो बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, पढ़ने जाते होंगे या नहीं जाते होंगे। तो फिर मैं एक दिन एक अपने मित्र के साथ उन बस्तियों में घूमने गया। तो घूमने के बाद ध्यान में आया कि भाई इन बच्चों में बहुत सारे बच्चे तो स्कूल जाते नहीं हैं, वो भी बचपन से खेत में काम करते हैं, तो उनको खेत की जो मजदूरी है वो दिन के हिसाब से मिलती है। तो जब मैंने उनमें काम करना शुरू किया, मैंने पूछा तुमको कितने पैसे मिलते हैं, उन्होंने कहा 250 रुपये मिलते हैं हमको। तो मैंने कहा तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, बोले जी स्कूल बहुत दूर है। तो हमने कहा अगर स्कूल जाने की व्यवस्था हो जाए तो जाओगे स्कूल, तो कहा जी हम जाएंगे। तो फिर हमने एक पुरानी वैन खरीदी 4-5 दोस्तों ने मिलकर, और उस पुरानी वैन से उन बच्चों के एडमिशन कराए, लगभग 60 बच्चे थे, उनके एडमिशन कराए। उस पुरानी वैन का खर्चा हम 5 दोस्त उठाते थे, और उनसे स्कूल ले जाना और लाना केवल यही काम था उस वैन का, बाकी समय में करते थे। फिर हमने कुछ टीचर्स भी हायर किए 2 घंटे के हिसाब से कि आप 2 घंटे जाकर उनको पढ़ाइए, और ऐसे ही फिर ये सफर चल पड़ा।
1: ऐसे साहित्य की सेवा करने से पहले आपने आप समाज की सेवा के साथ जुड़े, और गुजारिश होगी इस मोड़ पर एक रचना हमारे दोस्तों को दे दीजिए।
2: मैं कुछ विसंगतियों से संबंधित एक रचना आपको सुनाता हूं।
1: जी, स्वागत।
2: हो सकता है उसमें कुछ इशारे ऐसे हों जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए हो सकते हैं।
1: तो स्वागत है।
2: ये गीत मैंने काफी समय पूर्व लिखा था।
1: जी स्वागत।
2: बहुत रचे हैं गीत जुल्फ और मेहंदी वाले हाथों के, सुनी पंक्तियां गजरों की और बिंदी के मोहपाशों की।
1: बात को
2: आज दिखाता हूँ मैं दर्पण इस जालिम परिवेश का, दृष्टांत बताने निकला हूँ मैं अपने पावन देश का। और कैसा दृष्टांत है। देशभक्ति के वृक्ष घट रहे, देशभक्ति के वृक्ष घट रहे, बीज उग रहे द्रोह के, उठो चलो माँ की रक्षा, हित पास तोड़ सब मोह के।
1: क्या बात है।
2: याद करो गुरु गोविंद राणा, याद करो गुरु गोविंद राणा, शिवाजी जैसे वीरों को, भूल गए तुम दुर्गा पद्मा लक्ष्मी सी शमशीरों को।
1: बहुत खूब।
2: काज अब हमें करना है उन अवधपति अवधेश का, अवधेश यानी भगवान राम, तो उनका काम क्या था। काज अब हमें करना है उन अवधपति अवधेश का, इतिहास बताने निकला हूँ मैं अपने पावन देश का।
1: क्या बात है, क्या बात है।
2: और इस लाइन में विशेष रूप से मैंने नौजवानों से आग्रह किया है।
1: जी स्वागत।
2: आज देश की देख दुर्दशा, नींद तुम्हें क्यों आई है, देशद्रोह भ्रष्टाचारों की यहाँ पे बदली छाई है, उस माता की सुध ले लो जिसे स्वार्थ है तू वो काट रहे, जातिवाद का नारा देकर हम सबको जो बांट रहे, नाश अब हमें करना है ये सिंहासन लंकेश का, दृष्टांत बताने निकला हूँ मैं अपने पावन देश का।
1: क्या बात।
2: और देश ने झेला क्या क्या, कोहिनूर सा दुर्लभ हीरा हमें उन्हें दे बैठे हैं।
1: बहुत खूब।
2: श्वेत कबूतर उड़ा उड़ा कैलाश हमें खो बैठे हैं।
1: बहुत खूब।
2: कश्मीर की क्यारी में अब जहर नहीं बोने देंगे, शांति शांति का शांति मंत्र अब और नहीं होने देंगे। भोग रहे हैं फल अचकन के लाल गुलाब अवशेष का, दृष्टांत बताने निकला हूँ मैं अपने पावन देश का। और उसी तरुणाई पर अगली पंक्तियाँ, पश्चिम के आगे अब झुकती भारत की तरुणाई है, चहुदिस देखो पॉप गीत और जींस पैंट ही छाई है। बाल रखे हैं लड़की जैसे बाल रखे हैं लड़की जैसे, मार दिए जो नाई है, चाहे जितनी गर्मी हो पर गले में तंगती टाई है। ध्यान नहीं अब वस्त्र स्वदेशी पूरब के परिवेश का, दृष्टांत बताने निकला हूँ मैं अपने पावन देश का।
1: क्या बात।
2: और कुछ नाम इसमें मैंने लिए हैं, राजा कनिमोझी कलमाणी ऐसे ये अवतारी हैं, इनके गुण को दुनिया जाने जाने सब नर नारी हैं। जेल में जाते सजा भुगतने होती खातिरदारी है, जब नेता जेल में जाते हैं तो उनकी खातिरदारी होती है, सजा नहीं मिलती उनको एक तरह से, बस नाम के लिए जेल जाते हैं। जेल में जाते सजा भुगतने होती खातिरदारी है, इनसे डरता है प्रशासन ये मेहमान सरकारी है। करें गुजारा फाइव स्टार में, करें गुजारा फाइव स्टार में, ध्यान करें सूटकेस का, दृष्टांत बताने निकला हूँ मैं अपने पावन देश का।

0: छोटी सी रात वो लंबी कहानी।
1: वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 एफएम पर। आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारे साथ हमारे बेहद ही खास मेहमान हैं डॉक्टर राम सिंह हलचल जी। कवि हैं, गीतकार हैं, आप लेक्चरर हैं, आप समाज सेवी हैं। डॉक्टर साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
1: डॉक्टर साहब, आपको सम्मानित किया गया अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा, विवेकानंद विचार मंच द्वारा, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षण परिषद द्वारा, हिंदी अकादमी के तत्वाधान में भी आपको सम्मानित किया गया। दिल्ली की जो संस्था है हिंदी साहित्य अकादमी, साधना टीवी चैनल द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया। आप हमें बताइए अपने सफर के बारे में हमारे दोस्तों।
2: मैंने जब पहली अपनी रचना पढ़ी जिसमें 5000 से अधिक लोग थे,
1: वाह क्या बात है,
2: पहली बार मुझे लगा कि इतने सारे लोग हैं सामने तो कैसे बोलेंगे। और जब उनमें ऐसे लोग भी हों जिनसे मैंने सीखा है तो फिर बड़ा संकोच हुआ। लेकिन पहली बार मैंने अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा में एक रचना पढ़ी, एक गीत था, तो वहाँ पर विशेष रूप से उस गीत के लिए मुझे अवार्ड मिला।
1: क्या बात।
2: और उस ट्रॉफी को लेकर के मैं घर आया बड़ा प्रसन्न होकर के, तो मैंने उसको पहली ट्रॉफी जो वहाँ सजा कर रखी।
1: क्या?
2: तो मन से एक आवाज आई कि अगर मैं ऐसे ही लिखता रहा तो शायद आज एक अलमारी है पूरी की पूरी वो सील्स रखी हुई है उसमें।
1: बहुत लंबी लिस्ट है आपके वर्ड्स की
2: जी।
1: क्या बात है।
2: तो हिंदी अकादमी में
1: कैसा लगता है इतने सारे वर्ड्स हिंदी अकादमी द्वारा भी? आप
2: बड़ा अच्छा लगा। और विशेष रूप से जब हिंदी अकादमी में काव्य लेखन प्रतियोगिता का अवसर आया तो मुझे लगा हिंदी अकादमी में तो हिंदी के बहुत बड़े बड़े विद्वान आते हैं, दिग्गज आते हैं, तो मैं कहाँ टिक पाऊँगा। लेकिन जब मैंने रचना लिखी और मुझे प्रथम पुरस्कार मिला,
1: वाह क्या बात,
2: तो मैं इतना गदगद हो गया। मुझे लगा वास्तव में मैं लिख सकता हूँ, अच्छा लिखने की कोशिश करता हूँ। और फिर तो बहुत सारे मंच मिलते रहे,
1: अवार्ड्स मिलते रहे। कैसा लगता है इतने अवार्ड लेकर?
2: लगता है कि जो कुछ लिखता हूँ सामने वाले लोगों को पसंद आता है, और अगर सामने वाले लोगों को पसंद आता है तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई।
1: वाह क्या बात है। गुजारिश होगी इस मोड़ पर एक रचना दे दीजिए हमारे।
2: मैं एक गीत पढ़ता हूँ आपके सामने।
1: जी स्वागत।
2: विशेष रूप से आज के समय में धन को लेकर के ऊंच नीच, जातियों को लेकर ऊंच नीच, राजनीतिक क्षेत्र को लेकर ऊंच नीच, धर्म को लेकर हर तरफ खींचा ताना और चारों तरफ एक जहरीला माहौल सा दिखता है
1: जी।
2: तो मैंने मन से प्रश्न किया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरे मन ने जो उत्तर दिया वो मैंने लिखा इस पर।
1: जी स्वागत।
2: तो मेरे मन ने कहा, दिलों को जोड़ने का तू कोई अब यत्न कर प्यारे,

0: प्यारे कर प्यारे
1: क्या
0: और स्थिति कैसी है? गुलजार नफरत की हुई हर रोज जो गलियां, गुलजार नफरत की हुई हर रोज जो गलियां,
1: क्या बात है।
0: भगीरथ बन बहा गंगा वहां तू प्रेम की प्यारे, समर्पण प्रेम का करके वहां विश्वास बन प्यारे, अमावस काली मां हरने को शीतल चंद्र बन प्यारे, दिलों को जोड़ने का तू कोई अब यत्न कर प्यारे। जहां हर आंख सुनी है, जहां हर होंठ सूखा है, ऐसी बस्तियां हैं। जहां हर आंख सुनी है, जहां हर होंठ सूखा है, जगा सपने सुनहरे तू होंठ रसधार कर प्यारे,
1: क्या
0: दिलों को जोड़ने का तू कोई अब यत्न कर प्यारे,
1: बहुत
0: खिला दे फूल।

0: सींच दे हर हृदय विस्मृत बागवा बन के तू प्यारे, दिलों को जोड़ने का तू कोई अब यत्न कर प्यारे।
1: बहुत खूब।
0: बचे ना बूंद भी गम की किसी मन के ही कोने में,
1: बहुत
0: सुधारस प्रेम खुशियों की तो वर्षा कर वहाँ प्यारे।
1: बहुत खूब।
0: गुजरती रात फांकों में, फांको यानी भूख, गुजरती रात फांकों में सुबह प्यासी रही हरदम, भूख के सर पे हमला कर धनंजय बन वहाँ प्यारे। दिलों को जोड़ने का तू कोई अब यत्न कर प्यारे।
1: बहुत।
0: और जो हमारी परंपरा है
1: जी।
0: क्या है? सुखी हम तुम रहें जग में, पड़ोसी भी न भूखा हो।
1: क्या बात।
0: सुखी हम तुम रहे जग में, पड़ोसी भूई न भूखा हो। करो ऐसा जतन कोई सुखी हो जाए सब प्यारे, दिलों को जोड़ने का तू कोई अब यत्न कर प्यारे। बसा दुनिया यहाँ ऐसी सभी मिल बांट कर खाएं, न हो अपना पराया फिर सभी खुश हो यहाँ प्यारे। न जाति पंथ भाषावर मजहब अब बने बाधा, ये मेरे मन का सबसे कठिन प्रश्न है
1: जी। स्वागत।
0: न जाति पंथ भाषा वर्ग मजहब अब बने बाधा, बढ़े सन्मार्ग पर हम सब जगा हर प्राण को प्यारे।

0: प्रयत्न कर प्यारे। और सबसे अंत में मेरी कलम को कहा
1: स्वागत,
0: कलम काली बने दुर्गा बने यह चाहना मेरी, मगर ये गीत जन मन के रचे तू यत्न कर प्यारे, दिलों को जोड़ने का तू कोई अब यत्न कर प्यारे।
1: आजा तुझको पुकारे,
0: आजा

0: Welcome again to Radio Manav Rachna with Feel Good Feel Live 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर और आज हमारे साथ हमारे बेदी बेदी बेदी खास मेहमान हैं डॉक्टर राम सिंह हलचल जी। आप कवि हैं, गीतकार हैं, आप समाज सेवी हैं, आपने बहुत सारा काम किया है देश और समाज के लिए। डॉक्टर राम सिंह हलचल जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। आपने इतना सारा काम किया, इतनी सारी संस्थाओं से जुड़कर, इतनी पत्र पत्रिकाओं में आप छपे, इतनी सारी आपकी पुस्तकें हैं, इतने सारे आपने अवार्ड्स लिए हैं। कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी नारी का हाथ होता है। आपको पहले बात तो ये कि कैसा लगता है इतना सारा काम करके, इतने सारे अवार्ड्स लेके, और आपकी सफलता के पीछे कौन है और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं?
1: मुझे लगता है कि इतने सारे काम करने के बाद, सामाजिक काम करने के बाद, एक तो ये लगता है कि मेरा मनुष्य जीवन सफल हो गया
0: जी।
1: क्योंकि मनुष्य जब दूसरों के बारे में सोचता है
0: जी,
1: दूसरों के लिए करता है, तो वास्तव में करता तो दूसरों के लिए, लेकिन अपने पुण्य का सृजन भी करता है साथ में, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि सनातन धर्मी हूँ इसलिए पुनर्जन्म में विश्वास करता हूँ और पुण्य को मानता हूँ। इसलिए जीवन में निरंतर कुछ करने की
0: जी
1: इच्छा रोज जागृत होती है। और पहले तो नहीं करता था, लेकिन पिछले लगभग 14 वर्षों से मैंने अपनी आय का कुछ हिस्सा समाज के लिए निकालना तय कर दिया है।
0: क्या बात।
1: और मैं अपनी आय में से जो मेरा 10% है वो समाज के लिए निकाल कर रखता हूँ।
0: क्या बात।
1: कि ये समाज के लिए, जिस समाज ने मुझे बोलना, चलना, उठना, बैठना सिखाया
0: जी, जी।
1: जिस समाज ने मुझे संस्कार दिए, मैं उस समाज को कुछ देना चाहता हूँ, कुछ सहभागी बनना चाहता हूँ उस समाज का, इसलिए कुछ देता हूँ मैं। वो निराश्रित बच्चों की पढ़ाई पर खर्च हो सकता है, वो हेल्थ पर खर्च हो सकता है
0: जी।
1: वो हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने में खर्च हो सकता है, जो जिस प्रकार से भी मैं समाज को कुछ दे सकता हूँ उसके लिए करते
0: पूरी कोशिश करते हैं।
1: आपने कहा कि कौन है सफलता के पीछे
0: जी, जी।
1: तो मेरी सफलता के पीछे 3 लोग हैं। एक मेरे हिंदी के आचार्य आदरणीय सुनहरी लाल तुरंत जी,
0: जी
1: जो एक हास्य कवि प्रख्यात हैं
0: जी।
1: दूसरा मेरी पत्नी,
0: क्या बात है।
1: और तीसरा हमारी एक अध्यापिका थी ब्रजेश कुमारी चौहान जी।
0: जी
1: इन तीनों लोगों ने वास्तव में जीवन में मुझे बहुत आगे पहुंचाया।
0: वाह।
1: जब भी मुझे लगा कि मैं उदास हूँ, मुझे लगा कि शायद सफलता का मार्ग नहीं मिल रहा है, तो इन तीन लोगों ने मुझे जो है सहारा दिया, समझाया, बताया
0: जी, जी।
1: और कई बार तो आपको आश्चर्य होगा कि मैंने जैसे कोई कविता लिखी
0: जी,
1: और कविता लिखते समय मुझे लगा ये शब्द यहाँ फिट नहीं बैठ रहा है, तो मैं अपनी पत्नी को पढ़ाता हूँ कि देखो ये समझ में नहीं आ रहा, यहाँ फिट नहीं बैठ रहा, क्या हो सकता है।
0: अच्छा।
1: तो मेरी 70% से अधिक रचनाओं में उनके कुछ शब्द जरूर हैं, इसकी जगह ये फिट हो सकता है।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: तो वो अभी एम ए इंग्लिश है, एम ए बी एड है, एक स्कूल में शिक्षिका है, तो वो मेरी बहुत सारी कविताओं को करेक्ट कर देती है। तो ऐसे 3 लोगों का वास्तव में इस लेखन जीवन में, और
0: गुजारिश करूंगी इस मोड़ पर रचना एक दे दीजिएगा।
1: मैं एक श्रृंगार पढ़ता हूँ।
0: स्वागत।
1: रोज तुम पर मरना जीने के लिए आसान नहीं है।
0: वाह वाह वाह।
1: मोहब्बत अनमोल मोती है, कोई खैरात नहीं है, ये साहस का प्रतिफल है, मुफ्त जज्बात नहीं है।
0: बहुत गुड।
1: हमने देखे हैं एक दूजे से खपा होते हुए लोग, न मिलने का बहाना कहते, ठीक हालात नहीं है। मिलने का मन नहीं करता जब किसी से, तो कहते यार हालात ठीक नहीं है, परिवार में लोग ठीक नहीं है, पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, 4 बहाने बना देते हैं। तो हमने देखे हैं एक दूजे से खफा होते हुए लोग, न मिलने का बहाना कहते, ठीक हालात नहीं है। प्यार की सूरत यहाँ बस प्यार से ही मिलती है, प्यार तो समर्पण है, विश्वास है, सवालात नहीं है।
0: क्या बात है।
1: खुशियों से खिले चेहरों से जिंदगी में सुगंध है, खुशियों से खिले चेहरों से जिंदगी में सुगंध है, आंसू प्रेम निशानी है, विरह की सौगात नहीं है।
0: क्या बात है, बहुत
1: कुछ। किसी की चाहत में आंखों से बरसते हैं मोती, यह एहसास है तुम्हारे, बूंदों की बरसात नहीं है।
0: बहुत
1: तुम्हारा ना होकर भी, तुम्हारा न होकर भी होने को वो इश्क कहते हैं, तुम्हारा न होकर भी होने को वो इश्क कहते हैं, दूर रहकर भी पास रहना कोई करामात नहीं है। टूटी उम्मीदों में भी तुमसे उम्मीद करना इश्क है, टूटी उम्मीदों में भी तुमसे उम्मीद करना इश्क है, रोज तुम पर मरना जीने के लिए आसान नहीं है।
0: क्या
1: रोज तुम पर मरना जीने के लिए आसान
0: साथी।

0: डॉक्टर राम सिंह हलचल जी, आपने अपने इतने कीमती समय में से समय निकाला और आप हमारे दोस्तों को मिलने के लिए चले आए, अपनी रचनाएं लेके, अपनी भावनाएं लेके। मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूँ मुझे नहीं पता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद तो आपका कि आपने मुझे अवसर दिया और इन सारे लोगों से जुड़ने का मौका मिला। मैं आपके माध्यम से और अधिक लोगों तक पहुँच पाया, अपने को उन तक पहुँचा पाया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और विशेष रूप से मानव रचना का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: दोस्तों, सुन रहे हैं हमारे शो को संगीता अहलावत, राजेंद्र अग्रवाल, अरविंद सिंह, उमाशंकर शुक्ल, अलका शर्मा, प्रीता कौशिक, तनिक शर्मा, प्रियम वत्स, वीनू, नीता, अमृता प्रभात, सुदर्शन, उपमा, रितेश, पूर्वा, आर के सिंह, सुजीत, सलमान, अंकित, मुकेश शर्मा, अनिता सिंह, महेश चंद जैन, नेहा अरोड़ा, अरबी कपूर, सुमन, देवेंद्र। बहुत लंबी लिस्ट है, आप भी हमें बता सकते हैं आपको कैसा लग रहा है सृजन और रेडियो मानव रचना भी। कॉल करके या एसएमएस करके 8010781078 पर। सो कीप लिसनिंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है। ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है।
1: तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के संग लेक वादा,
0: अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ, और टाइम हुआ है एक ऐसे प्रोग्राम का जो जुड़ा है आप ही से, आप ही की सुरक्षा से। प्रोग्राम का नाम है सुरक्षा संवाद, जो हम खास तौर पर से लेकर आते हैं फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर आपकी सुरक्षा के मद्देनजर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो भी ऑफ कोर्स आप ही की सुरक्षा से जुड़ा है। बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं, और साथ ही हम बात करेंगे करियर के बारे में भी। करियर के बारे में क्यों बात करेंगे, क्योंकि करियर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और करियर ऐसी फील्ड में बनाया जाए जो आम जनता की सुरक्षा के लिए हो तो फिर कहने ही क्या। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, मिस हिमाद्री कौशिक, IPS बैच 2019 और फरीदाबाद की DCP हेडक्वार्टर्स। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना।
3: थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, और मुझे बहुत ही इट्स अ प्रिविलेज टू बी एबल टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक विद एवरीवन। थैंक यू।
2: सो हिमाद्री जी से बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं, और बात करने वाले हैं आपकी सुरक्षा को लेकर। अब जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो आम जनता की सुरक्षा में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है साइबर क्राइम का। साइबर क्राइम इसलिए क्योंकि मैम डायरेक्टली उसको भी देख रही हैं, और साइबर क्राइम के साथ साथ आम जनता की सुरक्षा की भी बात करेंगे। हिमाद्री जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आम जनता को ये तो पता है कि DCP क्राइम या DCP साइबर क्राइम कौन होते हैं, लेकिन हेडक्वार्टर्स के बारे में उनको जानकारी नहीं है। तो एक मैं थोड़ा सा चाहूँगी आप हमें ओवरव्यू दें कि आप अपने विभाग की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रही हैं।
3: जैसे कि आप जानते होंगे, लोग भी जानते होंगे, फरीदाबाद में 3 जोन्स हैं, उनके

0: इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग आर्थिक अपराध शाखा और तीनों जोन्स के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशंस को भी देखती हूँ
1: जी.
0: तो आई एम श्योर मैं काफी चीजें मिस आउट कर रही हूँ बट ब्रॉडली दिस इज द वर्क.
1: एक ओवरऑल व्यू में हमें पता चल गया कि आप क्या क्या करिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन मुझे लगता है सबसे मुश्किल होता है. आप पुलिस में भी हैं और आप एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रही हैं, तो एक तरफ तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन में आपको प्यार से भी बात करनी पड़ती है, ये भी एक चैलेंज होता है.
0: एब्सोल्युटली, जैसे एक तरह से वैसे तो पुलिस के सभी मतलब सभी पोस्ट्स एक तरह से सब बहुत बड़ी एचआर एक्सरसाइज है, बिकॉज वी आर मैनेजिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपार्टमेंट्स एंड वो भी ऐसा डिपार्टमेंट इन विच डिसिप्लिन इज द बिगेस्ट थिंग. सो यू नो इट हैज़ इट्स ओन चैलेंजेस, बट बहुत ज़्यादा अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस भी है ह्यूमन बींग्स को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं, स्पेशली एक यूनिफॉर्म्ड सर्विस में.
1: जी बिल्कुल, और ये मुझे लगता है कि हम पुलिस को बहुत स्ट्रिक्ट समझते हैं पर बहुत मुश्किल होती है पुलिस की जॉब, आसान नहीं होती, क्योंकि 24 घंटे आपको कार्यरत रहना ही पड़ता है, आप अपनी ड्यूटी पर ही हैं, आप छुट्टी बहुत कम लेते हैं, क्योंकि अक्सर हम सुरक्षा संवाद में जब भी किसी पुलिस अधिकारी से बात करते हैं तो उनको अपना फोन आधे घंटे के लिए जब साइड पर रखना होता है वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि उसके बाद नॉनस्टॉप उनके फोन पर जितने फोन आते हैं, कॉल बैक करते हैं, फिर कॉल वेटिंग आती है, वो एक आपका जो दायरा है वो इतना बड़ा होता है, अपराधों से जुड़ा हुआ होता है कि आप 15 मिनट के लिए भी शांत नहीं बैठ सकते.
0: एब्सोल्युटली, जिस कारण जैसे हम काफी ट्राई करते हैं, रिसेंटली भी हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए अपने फोर्स के लिए. देखिए फोर्स मतलब मैं आपको ऐसे एक उदाहरण दूं, तो आप जब कोई नेगेटिव चीज देखते हैं रोड पे, एक एक्सीडेंट देख लेते हैं या कुछ भी, मैं तो कहती हूँ अगर आप एक जानवर का भी एक्सीडेंट देख लेते हैं तो आपका मूड खराब हो जाता है, आप घर जाते हैं आपका थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है, आप किसी का कोई ब्लडी कोई चीज देख लेते हैं, तो आप सोचिए एक ऐसा व्यक्ति जो सुबह से रात तक यही देख रहा है.
1: बिल्कुल,
0: मतलब नॉट टू साउंड मोरोस पर जैसे इतने वो वही लोग हैं जो सारे डेड बॉडी डिस्पोज कर रहे हैं, हर सीन ऑफ क्राइम पे जा रहे हैं, सो वी डोंट वैल्यू दिस इनफ दैट उनकी मेंटल हेल्थ भी इसी चीज से शेप हो रही है. उनको नेगेटिविटी के बीच में रह के भी खुद को पॉजिटिव रखना है, तो हम कई इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं सबके काउंसलिंग कराने के, सबको काफी ज्यादा स्ट्रेस रहा है पीछे मेडिटेशन और योगा पे, बिकॉज डिस्प्रोपोर्शनेट डिजीजेज हैं. अभी रिसेंटली हमने आई हेल्थ कैंप लगाया था, फिर से हम हार्ट हेल्थ कैंप लगाएंगे, तो पुलिस फोर्स में आप देखेंगे थोड़ा ये डिस्प्रोपोर्शनल रहती हैं ये वाले इशूज. सो आई अंडरस्टैंड वो पब्लिक के लिए हैं बट उनके लिए भी होना कोई चाहिए टू टेक केयर ऑफ देयर वेलफेयर.
1: बिल्कुल, और वो आप बखूबी करेंगे मुझे लगता है.
2: सुरक्षा संवाद में बातों का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ. मैं हूं दीक्षा आपके साथ, और आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डीसीपी हेडक्वार्टर्स आईपीएस हिमाद्री कौशिक.

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम है उदीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम का नाम है सुरक्षा संवाद इन एसोसिएशन विद फरीदाबाद पुलिस. और हमारे साथ आज स्टूडियो मौजूद हैं आईपीएस हिमाद्री कौशिक जी, डीसीपी हेडक्वार्टर्स फरीदाबाद पुलिस. बातों का सिलसिला जारी है और आगे जान रहे हैं देश की सुरक्षा से जुड़े कुछ सवाल. शहर को और ज्यादा सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है, क्राइम को कैसे खत्म किया जा सकता है, ऐसी कुछ बातें और इन बातों का कुछ सोल्यूशन. मैम, अब जानना चाहेंगे फरीदाबाद के बारे में. फरीदाबाद में अपराध का जो दायरा है वो थोड़ा बढ़ गया है. बहुत सारे लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि शहर में जो गुंडागर्दी है वो ज़्यादा हो गई है. ख़ास तौर पर से अगर मैं ये वेब सीरीज़ या क्राइम सीरीज़ जो चल गई हैं उनके बाद बहुत सारे युवाओं का जो बातचीत करने का तरीका है वो बदल गया है. लोग इंटरनेट से इतना कुछ सीख रहे हैं कि वो अपने तक नहीं रख पा रहे, वो चीज़ें दूसरों पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं. गुस्सा बढ़ गया है, एजिटेशन बढ़ गया है. और ये अक्सर हम अपने शोज़ में जागरूक भी लोगों को करते हैं कि आप इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस मत होइए. अगर आपको इन्फ्लुएंस होना ही है तो किसी अच्छे इन्फ्लुएंसर से होइए. तो आपको क्या लगता है ये क्राइम बढ़ने की सबसे ज़्यादा वजह क्या इंटरनेट है या फिर वैसे ही लोगों का तनाव में रहना है?
1: देखिए, दो चीज़ें हैं. पहली बात तो क्राइम बढ़ना, तो एक और चीज़ है कि पुलिस की थोड़ी एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है. इन द सेंस कि अगर आप कहीं पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो आपका केस वहाँ पे रजिस्टर होगा, वहाँ पे कोई ग्रीवेंस है तो आपको उसको एस्केलेट करेंगे एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीजीपी, हर लेवल पे. तो अब हमारा एक्सेस टू ऑल ऑफिसेज लोगों का है, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स हैं, हमारे पास ऑनलाइन कंप्लेंट्स आती हैं, हमारे पास फ़ोन पे कंप्लेंट्स आती हैं. तो जो एक पहले होता था कि लोग थाने जाने से डरते थे, इकट्ठे होके 10 लोग साथ में जाते थे, अब ऐसा नहीं है. लार्जली हम भी देखते हैं थानों में काफ़ी लोग आते हैं, अपनी इश्यूज रिपोर्ट करते हैं. तो ये जनरली काफ़ी लोग कहते हैं, बट आप देखेंगे एज अ प्रोपोर्शन ऑफ कंप्लेंट्स हम कितनी क्राइम रजिस्टर करते हैं, तो आप देखेंगे स्टेटिस्टिकली रजिस्ट्रेशन बढ़ा है. और स्टेटिस्टिकली देखा जाए तो पिछले 3 साल में फरीदाबाद का क्राइम नहीं बढ़ा है, कम हुआ है सक्सेसिवली. तो एक टू डाइग्रेस अ लिटिल, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नोबेल लॉरेट हैं इन इकोनॉमिक्स, डैनियल कानमैन. सो ही टॉक्स अबाउट परसेप्शन बायस. तो प्रॉब्लम क्या है कि सोशल मीडिया चैनल्स इतने बढ़ गए हैं और एवेन्यूज ऑफ रिपोर्टिंग इतने हो गए हैं, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, इतने सारे फेसबुक हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, जो सेम न्यूज़ को 5 बार दिखाएंगे तो आप 5 बार वही देखेंगे. तो शायद हमारा आइडिया एंड परसेप्शन, जो एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पहले शायद रेडियो से आती थी और वो भी मतलब एक ही जगह से आती थी और या न्यूज़पेपर से आती थी, लिमिटेड होता था. अब नाउ वी आर बम्बार्डेड विद सो मच इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सेसिव क्राइम दैट देर इज़ अ परसेप्शन. बट ऑफकोर्स आई एग्री कि इन्फ्लुएंस तो है ही, इतने सारे टीवी सीरीज हैं जिसमें क्राइम इज़ मतलब क्राइम को हम बहुत ही ग्लैमरस बना रहे हैं, तो वो तो काफ़ी यूथ अट्रैक्ट हो रहे हैं उस चीज़ में. बट उसमें भी देर आर अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स. वी हैव बीन लॉजिंग एफआईआर्स अगेंस्ट म्यूजिक, अगेंस्ट म्यूजिशियंस जो मतलब इस तरह की चीज़ को बढ़ावा देते हैं. ऐसे म्यूजिशियंस को परफॉर्म करने की जब परमिशन मिलती है उसमें भी हम उनको लिमिटेड परमिशन देते हैं कि आप इस कंटेंट के ऊपर नहीं गाएंगे. और जो लोग ये क्रिमिनल पोस्ट्स करते हैं उनके लिए ये है कि देखिए, जैसे अनोनिमिटी उन्हें लगता है इंटरनेट पे है, बट आयरॉनिक ये बात है कि आप कुछ बोल दोगे रोड पे तो शायद नाम ना आए सामने, पर अगर आप इंटरनेट पे कुछ बोलते हैं तो वी कैन ऑलवेज ट्रेस इट बैक, इररिस्पेक्टिव ऑफ वीपीएन यूज्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर टॉर यूज्ड, हमें हमेशा पता कर सकते हैं कि ये कौन कर रहा है. और इस मैटर पे भी हम काफ़ी एक्शन ले रहे हैं. सो आई होप आई एम आंसरिंग द व्हाट यू आस्क्ड.
0: मैम, थोड़ा सा साइबर क्राइम की तरफ चलते हैं, क्योंकि साइबर क्राइम जब आप एक समय था 2022 का आंकड़ा मैं जो इंटरनेट पर देख रही थी, 10 लाख के आसपास रिपोर्ट्स आती थी. 2025 में ये आंकड़ा 22.5 लाख के आसपास हो गया. इतनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, अरबों रुपए का फ्रॉड हो रहा है, सरकार अलग अलग कैंपेन्स चला रही है, पुलिस अपनी तरफ से अलग अलग तरीकों से लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रही है, कॉलेजेस में जा रहे हैं, RWAs के साथ मिलकर हम रेडियो के माध्यम से कोशिश करते हैं लोगों तक पहुंचने की कि साइबर क्राइम से बच के रहना है और डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है. लेकिन फिर भी आप सुबह अगर अखबार खोलते हैं 7:30 बजे तो आपको हर दूसरे पेज पर या पहले पेज पर कई बार ऐसी खबरें दिखाई देती हैं कि इस परिवार से 85 लाख लूट लिए, किसी ने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई जो है वो डिजिटल अरेस्ट से डर कर दे दी. अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि ये डिजिटल अरेस्ट जब है ही नहीं कोई चीज, सो इतनी अवेयरनेस के बाद भी क्यों लोग फंस रहे हैं, कैसे फंस रहे हैं? क्योंकि हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, आप हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कि इनसे नहीं डरना है।
1: जी देखिए, अभी भी ये इंस्टेंसेस आ रहे हैं जैसे आप कह रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के स्पेसिफिकली, तो जो ये साइबर क्रिमिनल्स हैं दे आर यूजिंग सम बैकग्राउंड इंटेलिजेंस, मुझे ऐसा लगता है कि वो बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं लोगों का। क्योंकि आप देखेंगे ज्यादातर एक एज के से ज्यादा लोग थोड़े मतलब सीनियर सिटीजन रिटायर्ड प्रोफेशनल्स, क्योंकि शायद हम भी उतना ही प्रयास कर रहे हैं अवेयरनेस जनरेशन का, हम भी हर बार न्यूज़पेपर में देते हैं, इतनी सारी साइबर राहगिरी हो रहे हैं जिसमें हम स्कूल्स कॉलेजेस जा रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, जिस भी माध्यम से ये मैसेज जा सकता है लोगों तक पहुंचा रहे हैं, फिर भी कुछ लोग अभी भी डर जाते हैं। देखिए मतलब वो आपके डर के ऊपर अटैक कर रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर दैट फियर कि हाँ लोग डरेंगे हम जब बोलेंगे कि आपका ये सामान पकड़ा गया। कई बार ऐसा होता है हमें लगता है कि उन्हें कैसे हमारी इन्फॉर्मेशन है कि मेरा ये कोरियर आ रहा है, बट एक्चुअली आप देखेंगे घर में ऑलमोस्ट आजकल इतना ज़्यादा ई कॉमर्स है कि रोज़ एक ना एक डिलीवरी तो आ ही रही है, एक की या किसी और की, जितने ज़्यादा सदस्य हैं समटाइम्स टू अ डे, तो आपको हमेशा लगता है कि एक तो मेरा पैकेज रस्ते में है ही, तो शायद उसी की बात हो रही हो। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपको लग रहा है ना कि नहीं इसको सही पता है क्योंकि सही में मेरा एक पैकेज आ रहा है, आजकल तो घर में रोज़ एक ना एक पैकेज आ रहा है, तो अगर वो कह भी रहे हैं कि आपका कुछ आ रहा सामान पकड़ा गया तो वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। जैसे आपने बताया डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है और ये लोगों को डरा के उनके पैसे लेने का एक तरीका है। अपार्ट फ्रॉम डिजिटल अरेस्ट मैं ये भी कहूँगी कि जैसे डिजिटल अरेस्ट आपके डर के ऊपर प्रे करता है, इट प्रेज ऑन योर फियर, इसी तरह से एक दूसरा भी स्कैम है काफ़ी प्रोमिनेंट, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, जिसमें स्टॉक मार्केट में निवेश करने के नाम पे या हाई रिटर्न्स के नाम पे लोग टेलीग्राम पे इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स ज्वाइन कर रहे हैं, उनको 17-18% का रिटर्न प्रॉमिस किया जाता है मंथली, तो और लोग पैसे देते रहते हैं, और इसमें पुलिस के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि आप देखिए वो व्यक्ति 7-8 महीने से पैसे दे रहा है और 7-8 महीने बाद जब वो अपने पैसे वापस मांगते हैं तो उनको पता लगता है ये स्कैम है, तो वो फ्रॉड 7-8 महीने पहले शुरू हो गया, वो पैसे 7-8 महीने जाने पहले शुरू हो गए, तो हम भी जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है क्योंकि 7-8 महीने में तो ये पैसे बिल्कुल गायब हो जाते हैं,
0: कहीं जगह चले जाते हैं,
1: कहीं जगह एग्जैक्टली। तो आप, मैं ऐसा मानती हूँ कि हमें कई बार पूछना चाहिए खुद से कि क्या ये चीज टू गुड टू बी ट्रू है, क्या पॉसिबल है आज आप कोई लीगल तरीके से किसी को 17-18% प्रॉमिस करो, और मतलब ये किस तरह से बड़े इंटेलिजेंटली आपको बताएंगे कि हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से डील कर रहे हैं तो हमारा ब्रोकरेज नहीं है कि ये नहीं है, मतलब इस टाइप का आपको कुछ बताएंगे, तो ये जैसे जनरली लोगों को जानकारी होगी कि आपके जो डीमैट अकाउंट है उसमें स्टॉक्स हैं तो वो आपके पैन कार्ड से ही लिए जाएंगे, जाहिर सी बात है। ये चीज़ आप ऑनलाइन जाके ऑफिशियल साइट से, जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं तो कैम्स ऑनलाइन से या कहीं से भी चेक कर सकते हैं अपने पैन कार्ड की डिटेल्स जा देख के। कोई और अगर अपने आईडी से ले रहा है तो वो पैसा हो सकता है आपको ना मिले, ये टेलीग्राम पे ज्वाइन किए हुए ग्रुप्स में की बातों में मत आइए, आप इन पे इनकी चीज़ की लालच में नहीं पड़ना है कि मुझे कोई इतना रिटर्न दे रहा है या स्टॉक मार्केट में निवेश करने को कह रहा है। अगर आपको करनी है इन्वेस्टमेंट तो प्लीज़ आप अपने बैंक को कॉन्टैक्ट कीजिए
0: जी,
1: या जो भी रजिस्टर्ड ऑपरेटर्स हैं उनको कॉन्टैक्ट कीजिए। तो ये भी एक अलग तरीके का साइबर फ्रॉड है जिसके बारे में लोगों को अवेयर होना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है दो चीज़ें बहुत बड़ा फ्रॉड का एक कारण बनती है, एक लालच, आप ग्रीडी हो जाते हैं कि आज मेरा 50 लाख 80 लाख बन के हमें एक साल में मिल जाएगा, दूसरा डर, आपको ये फंसा देते हैं कि आपका पैसा जो है वो टेररिज्म में कहीं इन्वॉल्व हो गया है या फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग में हो गया, तो वो डर जाते हैं और बुजुर्ग खास तौर पर से डर जाते हैं। और इनफैक्ट हमने ऐसे ऐसे केसेस भी सुने हैं जहां पर उन्होंने अपना घर तक बेच दिया, अपनी एफडीज तक तोड़वा के पैसा ट्रांसफर कर दिया। इनफैक्ट बैंक्स को भी आजकल ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर आपके पास कोई बुजुर्ग इस तरीके से आ रहा है, और लखनऊ में एक हाल ही में केस भी हुआ था जहां पर कोई बुजुर्ग गई थी लेडी जो डिजिटली अरेस्ट थी, 3 दिन से वो गई थी अपनी FDs तोड़वाने, तो एम्प्लॉयज ने उनको बात करने में कहीं ना कहीं उनको शक हुआ और उन्होंने उनको काउंसिल किया और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो वो डिजिटल अरेस्ट का केस जो था वो पकड़ा गया। तो ये बहुत जरूरी है अवेयरनेस, लोगों तक जानकारी पहुंचाना।
1: इसी रिलेशन में एक एक्चुअली बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हरियाणा पुलिस का
0: जी।
1: हमने एक HDFC बैंक के साथ फिलहाल DGP हरियाणा ने एक डुअल OTP सिस्टम शुरू किया है जिसमें आप चूज कर सकते हैं कि दूसरा OTP किस ट्रस्टेड इंसान के साथ जाएगा, स्पेशली जैसे सीनियर सिटीजन है वो अगर अपने बच्चों का या अपने स्पाउस का नंबर दे दें तो एक डबल चेक हो जाता है। तो कंसिडरिंग ये वल्नरेबल कुछ सेक्शंस, डुअल OTP बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है हमें। इसी की तरह अभेद्य जैसे ऐप है उसमें भी यही प्रोविजन है कि हमें जो ऐसे सस्पिशियस कॉल्स आ रहे हैं वो पता लग जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऐप है, सेंट्रल गवर्नमेंट की M-Kavach।
0: बिल्कुल
1: M-Kavach मेरे पास भी, मेरे भी फोन में है। ये जैसे हम ट्रू कॉलर ऑपरेट करते हैं है उसी तरह की, पर एक ऑफिशियल वेबसाइट, तो जो भी ब्लैकलिस्टेड नंबर M-Kavach पे हैं वो हमें बता देंगे, वो हमें जैसे नॉर्मल कॉल लगता है
0: फ्रॉड
1: नंबर है, BOIP कॉल उसमें बता देगा। तो अभेद या M-Kavach ये काफ़ी वो है। और जैसे जैसे ये लोग अपना मोडस ऑपरेंडी एडवांस कर रहे हैं ऐसा नहीं है, हम भी काफ़ी एडवांस हो चुके हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन में, एंड आई एम श्योर वी विल कम अप विद द सॉल्यूशंस दैट कैन मिनिमाइज दिस प्रॉब्लम फॉर पीपल।
0: बिल्कुल, क्योंकि इतने साइबर फ्रॉड के केसेस बढ़ चुके हैं कि अब मुझे लगता है कि लोगों को फिजिकल डकैती से कम डर लगता है और साइबर से ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि अब हर कोई एक छोटे से फ़ोन में पूरी दुनिया है उसके, जिसमें उसके सारे बैंक अकाउंट्स हैं, जिसमें उसके ईमेल में पासवर्ड्स हैं और डेटा कहाँ कहाँ पहुँच रहा है, कैसे हैक हो रहा है कोई नहीं जानता है।
2: तो बहुत सी बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन बहुत सीरियस बातें हो जाती हैं जब हम बात करते हैं सुरक्षा की, तो इन सब बातों के बीच में एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक तो बनता है। और अगर आपको ये बातें अच्छी लग रही हैं, ये जानकारी आपको पसंद आ रही है, तुम्हारे इंटरनेट रेडियो की ऐप रेडियो मानव रचना डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, और इस पूरी बातचीत को आप RJ दीक्षा के फोल्डर में जाकर सुन सकते हैं और शेयर कर सकते हैं जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें पूरी दुनिया में कभी भी किसी भी वक्त। अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 FM आपके अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन। और इस पहले रेडियो स्टेशन पर चल रही है बहुत ही स्पेशल बातचीत। प्रोग्राम का नाम है सुरक्षा संवाद, आपकी सुरक्षा को लेकर खास इन्फॉर्मेशन जो हम फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर लेकर आते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारी मुख्य मेहमान है हिमाद्री कौशिक जी, जो कि DCP हेडक्वार्टर्स हैं, साथ ही साइबर क्राइम से जुड़ी हुई जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको देख रही हैं और ऐसी कुछ जानकारी साइबर क्राइम से जुड़ी हुई आज हमारे साथ शेयर भी करी हैं, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बातचीत करना बेहद जरूरी है। तो बातचीत चल रही है हिमाद्री जी के साथ। मैम, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी बच्चों को, यंगस्टर्स को लेकर एक बहुत बड़ा चीज जो है, गेमिंग की दुनिया से बहुत बच्चे जुड़ रहे हैं और गेमिंग में बहुत पैसा गवा भी रहे हैं और ब्लैकमेल भी हो रहे हैं, अपने पेरेंट्स का भी बहुत पैसा वो लगा देते हैं और उसके बाद जब पकड़ा जाता है तो हाल ही का केस है कि एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया सिर्फ इस बात से क्योंकि गेमिंग में पैसा बहुत लगा दिया था उसने, और बाद में जब उसके घर वालों को पता चलता तो उससे वो डर गया था। और ये कुछ केसेस हैं जो दिल्ली NCR के हैं, ज्यादा दूर के नहीं हैं। कोई एक केस आता है जहां पर कोरियन कल्चर से इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बच्चे के, तीनों जो बहनें थी उन्होंने सुसाइड कर लिया। सो ये यंगस्टर्स को हम इंटरनेट की दुनिया से अलग भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें बचा के भी रखना है। सो कैसे पेरेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे या उन बच्चों को क्या एडवाइस करना चाहेंगे?
1: देखिए, मतलब एक तो इस बारे में एज अ पुलिस ऑफिसर एडवाइस है, तो एज अ पुलिस ऑफिशियल आई से कि आपको कुछ पेरेंटल कंट्रोल एप्स यूज करनी चाहिए टिल अ सर्टेन एज एटलीस्ट, कि आपको पता रहे कि फोन पे क्या है। मतलब अभी काफ़ी पॉपुलर पेरेंटल कंट्रोल एप्स हैं, वो कौन सी चीज़ें एक्सेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आप कुछ IPs भी ब्लॉक कर सकते हैं अपने घर के इंटरनेट से कि ये खुलेगा ही नहीं ये गेम। तो पेरेंट्स को तो कुछ ऐसे ऐप्स रखना अपने पास, एक आपको वॉच रखने की तो ज़रूरत है टिल अ सर्टेन लेवल, बिकॉज देखिए बच्चों का यही है कि जैसे पर्सपेक्टिव का प्रॉब्लम है, उनको अभी नहीं समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है, पर जब कुछ हो जाएगा तो फिर उसके बाद समझ में आएगा। और बच्चों के लिए भी, अगर ये कुछ बच्चे सुन रहे हैं, और पेरेंट्स के लिए एज नॉट अ पुलिस पर्सन, एज इन जनरल सेंस ये एडवाइस है कि आपको थोड़ा अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देना होगा ताकि वो आपसे इतना ना डरें कि कुछ हो जाए तो आपको बताएं ना। आपको उनको काउंसिल करके बस डराना नहीं है कि ये मत करो, क्योंकि देखिए काफी चांसेस हैं कि डराने से नहीं ये सिचुएशन सॉर्ट आउट
0: हो जाते हैं, शेयर करना बंद कर।
1: तो आपको उनको ये भी कॉन्फिडेंस दिलाने की जरूरत है कि बाय चांस कभी भी कुछ हो जाता है तो मुझे बताओ। हमारे लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो यही है कि वो बच्चे अपनी बात अपने पेरेंट्स से शेयर करें। सो बिकॉज वी आर इन द 21st century एंड काफ़ी पेरेंट्स ये समझते भी हैं मुझे लगता है आज के दिन, कि आपका रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ ऐसा होना पड़ेगा कि आपको वो कुछ इशू हो तो बताएं। एंड बिकॉज अ लॉट ऑफ मे बी टीनेजर्स और यूथ वुड बी लिसनिंग होपफुली, आई ऑल्सो वॉन्ट टू से कि देखो आपको अभी शायद नहीं समझ आए और हम जो बात कर रहे हैं आपको लगेगा कि ये न्यूज़पेपर में किसी के साथ हो रहा है या पता नहीं कहाँ हो रहा है दुनिया में, ये आपके साथ हो रहा है, आपके पड़ोसी के साथ हो रहा है। और मतलब ये ना हम कई बार इमेजिन नहीं कर सकते जो हम पढ़ते हैं दैट वी कुड बी देम, बट वी कुड एब्सोल्युटली बी देम। अपार्ट फ्रॉम गेमिंग, मतलब कैजुअल कमेंट्स कई बार किसी की पिक्चर पे, कभी अपने प्राइवेट डेटा किसी से शेयर कर दिया फिर वो वायरल हो जाना, किसी का ब्लैकमेल करना, मतलब आप विक्टिम तो हो ही सकते हैं, पर अगर आप ये किसी के साथ करते हैं जो एक कैजुअल बुलिंग आप जिसको समझ रहे हैं, पहले जो बुलिंग होती थी फिजिकल होती थी स्कूल्स में, उसमें फिर भी टीचर डांट देते थे एक बार को, अब जो साइबर बुलिंग है या साइबर क्राइम है, सेक्सुअल साइबर क्राइम है, उसमें आप एक ट्रेल छोड़ रहे हैं, अ ट्रेल दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, तो वो कंप्लेंट होगी तो उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। तो यू हैव टू ऑल्सो बी अवेयर दैट दिस इज, हम जो करें इरिवर्सिबल है, वो क्लिक इरिवर्सिबल है। एक चीज आपने इंटरनेट पर डाल दी तो आप उसे डिलीट कर दो, पर वो फॉरएवर इंटरनेट पे हो जाती है। सो वी हैव टू बी केयरफुल फ्रॉम बोथ एंड्स, हमें विक्टिम भी नहीं बनना है और मतलब अनकॉन्शियसली विदाउट इंटेंशन हमें कल्प्रिट भी नहीं बन जाना है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रेन।
0: बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया उनमें एक बड़ा देश है जिसने बैन किया है। क्या आपको लगता है कि ये एक सॉल्यूशन है कि कुछ हद तक बच्चों के साथ होने वाले साइबर क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है?
1: देखिए, मतलब देर आर बोथ साइड्स टू इट, बट मुझे लगता है व्हेन वी बैन समथिंग तो हम थोड़ा सा उसका अट्रैक्शन भी कई बार बढ़ा देते हैं। तो मतलब वो देखिए हमारे यहाँ अब फोन्स कितने रीजनेबली प्राइस्ड हैं, तो वो बच्चे एक फ़ोन खरीद के एक सिम कहीं से अरेंज करके स्कूल ले जाएं, एक दूसरे को दिखाएं और उसको हम मतलब डीमनाइज करें, तो ये तो आई थिंक एक पॉलिसी लेवल पे हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या हम बैन करके ये समझना पड़ेगा कि एक्सेस बंद कर सकते हैं। दूसरा ये भी पॉइंट है कि इंडिया जैसी कंट्री जिसमें इतने रिमोट एरियाज हैं, आज एजुकेशन गांव-गांव तक पहुंच रही है, लोगों के पास एक्सेस टू रीडिंग मटेरियल है, और जो चीज़ आप यहाँ फरीदाबाद में पढ़ रहे हैं इंडिया के सबसे रिमोट एरिया में भी बच्चे के पास वो है। दे कैन कम्पीट पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज और रिमोट एरियाज, पहाड़ पे बैठे बच्चे भी अब पहाड़ों पे आइलैंड्स पे कम्पीट कर सकते हैं। यू मस्ट बी सीइंग देयर इज सेक्युलराइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड एवरीबॉडी इज हियर, तो क्या वो एक्सेस बंद करना हमारे लिए ठीक है? क्योंकि इंटरनेट अगर आप लोगों के लिए बंद करेंगे तो उनके लिए भी करेंगे फॉर चिल्ड्रन, सो वी हैव टू असेस द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर इंटरनेट रहे भी तो उसे रेगुलेट करना जरूर एक पेरेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एंड आइडियल तो वो वर्ल्ड होगा जहाँ हम बच्चों को समझा पाए कि आपको ये कैसे यूज करना है।
2: चैलेंज है पर कोशिश उसकी पहले करनी चाहिए।
0: सो दोस्तों, अगर आप भी अपने मन में कुछ सवाल रख के बैठे हैं अपने शहर की सुरक्षा को लेकर, साइबर क्राइम को लेकर अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। नंबर बहुत आसान है 8010781078। अभी वक्त है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। मैं हूं दीक्षा आपके साथ, प्रोग्राम का नाम है सुरक्षा संवाद।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपके अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन सुन रहे हैं आप और मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है सुरक्षा संवाद। इस खास सीरीज को हम आपके लिए लेकर आते हैं फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर, और आज हमारी खास मेहमान है DCP हेडक्वार्टर्स IPS 2019 बैच हिमाद्री कौशिक जी। से हम बहुत सारी बातें करें, लेकिन इन बातों के साथ साथ हम बात करें हैं करियर की भी, क्योंकि करियर के बारे में बात करना भी जरूरी है। जब आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या पुलिस सर्विसेज में होते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां अलग लेवल पर होती हैं, लेकिन चाह कर भी इस फील्ड में बहुत सारे बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि उन्हें सही रास्ता नहीं पता होता। तो स्वयं जानते हैं हिमाद्री जी से कि अगर कोई भी बच्चा या उनके माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा इन सिविल सर्विसेज की तैयारी करे तो कैसे शुरुआत होनी चाहिए और क्या खास तैयारी करनी चाहिए।
1: अब साइबर से हटकर थोड़ा सा चलते हैं एक आम इंसान की तरफ। लोगों को पुलिस से डर क्यों लगता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो अक्सर लोग कहते हैं ना कि पुलिस के चक्कर में नहीं फंसना है। अभी भी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि बहुत रिपोर्ट्स रजिस्टर हो रही हैं, बहुत सारे जो क्राइम हैं वो रजिस्टर हो जाते, पहले नहीं होते थे। पहले लोग 10-10 इकट्ठे होके तब पुलिस स्टेशन जाते थे, जो हमने अक्सर देखा भी है, पहले ऐसा ही होता था। आज लोग ऑनलाइन फटाफट से रिपोर्ट रजिस्टर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक आम इंसान या फिर एक आम लड़की जो सड़क पर चल रही है, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो डरती है पुलिस के पास जाने से कि कहीं उसी पर कोई डाउट तो नहीं हो जाएगा, कहीं उसी को ही तो फंसा नहीं लिया जाएगा, या उसके घर वाले कहेंगे कि तुम पुलिस को क्यों इन्फॉर्म कर रही हो। सो ऐसे में पुलिस से लोग ना डरें और एक साथ देकर अपराध को रोकने में मदद करें, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कोई ऐसे नंबर्स या कोई ऐप जिसके थ्रू बिना पहचान के भी वो अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकें?
2: देखिए, इसमें दो साइड्स हैं। एक साइड तो पहली तो ये है कि डेफिनेटली आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप 112 पे कॉल कर सकते हैं। 112 पे आप जब कॉल करेंगे और अपना इशू बताएंगे, वहाँ कोई आएगा, एक्शन लेगा, और मतलब एनीबडी कैन कॉल एंड वी गेट अ लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम विमेन एंड वेरी विद अ लॉट ऑफ प्राइड आई कैन से कि फरीदाबाद में एवरेज टाइम इज लेस देन 7 मिनट्स फॉर एन ERV टू रीच टू अ कंप्लेनेंट। तो वी आर रीचिंग इट रीचिंग द प्लेस ऑल्सो इन टाइम। ऐसे भी आप कर सकते हैं, आप थाना जाके अपना इशू बता सकते हैं। देर आर विमेन पुलिस स्टेशन इन ईच जोन। एंड दूसरा साइड अगर मैं बताऊँ तो अनोनिमस कंप्लेंट्स का प्रॉब्लम ये है कि फिर वी आर अनेबल टू चेक कि ये मैलिशियस इंटेंशन से तो नहीं दी जा रही, क्योंकि देखिए विक्टिम तो वो भी होता है जिसके अगेंस्ट एक गलत कंप्लेंट आ जाए।
1: बिल्कुल।
2: तो ये वाला सिस्टम जब अनोनिमस कंप्लेंट्स में हम एक्शन लेते थे तब हमें समझ में आया कि ये भी लोग मिसयूज कर रहे हैं अनोनिमिटी,
1: इस चीज का
2: गलत लोग गलत किसी पे एलिगेशन लगाने में उनके लिए भी हार्मफुल है। बट डेफिनेटली मैं हमारे इनिशिएटिव्स की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स अब हैं हमारे फोर्स में। देर आर अ लॉट ऑफ फीमेल ऑफिसर्स, फीमेल पोस्टेड इन महिला थाना, तो अगर वो जाना चाहें, अपनी समस्या बताना चाहें, जा सकते हैं। मैंने पर्सनली भी यहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स देखे हैं, कई बार उनके बाहर भी फीमेल्स और राइडर्स प्रेजेंट रहते हैं,
1: ताकि
2: PCRs खड़ी होती हैं, तो वो जाके उनको बता सकते हैं अगर उनके साथ ईव टीजिंग या इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है। प्लीज़ आप रिपोर्ट करो। और मैं पेरेंट्स को भी यही करूँगी कि आपको भी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चों को टू रिपोर्ट क्राइम, बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट अ ड्यूटी टू आर ओन सेल्फ, टू आर सेल्फ एस्टीम, कि हमें अच्छा नहीं लगता हमारे साथ कुछ हो जाए, हम कुछ करें नहीं, एक इनजस्टिस लगता है। सो वी विल ट्राई आर बेस्ट टू एक्ट ऑन इट एंड ऑल्सो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सोसाइटी। हो सकता है आप नियरली मिस कर गए हो कोई क्रिमिनल, आपके साथ कोई चीज़ होते हुए, तो बाकी सबके सब भी उस चीज़ से बच सकते हैं। और रहा पुलिस से जो एक डर है उसकी बात, तो अब आई एम थिंकिंग इट्स अ लिटिल बेटर एंड आई होप इट विल गेट बेटर, कीप गेटिंग बेटर।
1: जी बिल्कुल। अब बहुत सारी बातें हमने आपसे क्राइम की कर ली हैं, शहर को ठीक करने की कर ली हैं, अब बच्चों के करियर के बारे में जैसे हमने शुरुआत में कहा था हम बात जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको देख रहे हैं और सुन रहे हैं जो सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, UPSC या स्टेट सिविल सर्विसेज उनका सपना होता है कि एटलीस्ट हम देश की सेवा इस तरीके से कर सकें। क्या तरीका होता है, क्योंकि आप एक अच्छी स्टूडेंट हैं स्कूल में, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए 10th और 12th में, उसके बाद आपने इंजीनियरिंग करी बिट्स पिलानी से, और उसके बाद साथ साथ सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करी, आप मास्टर्स भी करी आपने, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये एक ट्रैक आपका शुरू से ही था कि सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है या फिर बाद में फील हुआ कि मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो ये भी जरूर ट्राई करना चाहिए या गाइडेंस मिली क्या?
2: देखिए मैं अपना पहले आपको अपना पर्सनल जर्नी बताती हूँ. मैंने ट्वेल्थ के बाद मैंने इंजीनियरिंग करी, मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया और मैं बिट्स पिलानी गोवा कैंपस में केमिकल इंजीनियरिंग करी. दैट पॉइंट इन टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं था कि सिविल सर्विसेज देना है
1: जी.
2: मैंने एक सिक्स मंथ्स आई ऑल्सो वर्कड फॉर सिक्स मंथ्स इन एन इन्वेस्टमेंट बैंक एंड वो मुझे बहुत अपील नहीं किया. एंड काफ़ी टाइम से मेरे को रीडिंग का काफ़ी शौक था तो द मोर आई वुड बुक्स आई वुड रीड अबाउट आर हिस्ट्री या इंडिया मुझे लगता था कि ये भी एक फील्ड है जहाँ पे हम कुछ सब्सटैंटिव वर्क कर सकते हैं जिससे हमें एक्चुअली सेटिस्फैक्शन मिले. तो फिर उसके बाद मैंने अपना जॉब छोड़ के ये सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी एंड फॉर्चुनेटली मेरा पहले इनकम टैक्स IRS इनकम टैक्स में हो गया 2017 में और 2019 में IPS में. ये तो मेरी पर्सनल जर्नी रही है. सबकी अपनी अलग जर्नी होती है. कुछ लोगों को बचपन से अपनी कॉलिंग पता होती है कि
1: यही
2: करना है, UPSC करना है. कुछ लोगों को बाद में पता लगता है. इट डज नॉट मैटर. जब भी अगर आपको ये करना है बट स्टिल एक चीज़ पे मैं बहुत स्ट्रेस करूँगी कि आपको अपने ग्रेजुएशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए. कि आप UPSC देने के लिए आप ऐसे नहीं कर रहे हो कि आप पढ़ाई कॉलेज में ना पढ़ाई करो या मैं मुझे काफ़ी लोगों ने कई बार पूछा हम ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लें जहाँ जाना ना पड़े क्लासेस
1: साथ-साथ
2: तैयारी करते रहें. तो मुझे इन माय पर्सनल ओपिनियन ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं है. कॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट. एट द एंड ऑफ द डे आप वहाँ से जो चीज़ सीख के निकलेंगे भले आप इंजीनियरिंग करें, मेडिकल करें, कॉमर्स करें, आर्ट्स करें, उससे भी आपकी एक मतलब उससे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बनती है, एक लर्निंग बनती है टू बी वेरी प्रैक्टिकल. सिविल सर्विसेज काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम है.
1: Absolutely.
2: और मैं तो ये भी कहती हूँ कि आई हैड अ लॉट ऑफ लक ऑन माई साइड. एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड. इतने सारे बच्चे हैं कंट्री में जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं. मेरे जितनी ही पढ़ाई काफ़ी लोगों ने भी की होगी बट बहुत ज़्यादा एलिमेंट ऑफ लक इन्वॉल्व है
1: जी.
2: सो यू कैन नॉट जस्ट थ्रो इट ऑल थ्रू ऑल ऑफ इट टूगेदर. आई फील अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट अग्री विद मी बट आई फील दैट यू शुड डू योर ग्रेजुएशन प्रॉपरली, गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट डिग्री और आप उसको यू शुड अर्न दैट डिग्री और उसके बाद टाइम है. अब तो आप एक ग्रेजुएशन कर लें, आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लें तो
1: भी
2: यू कैन गिव योर 5 अटेम्प्ट्स इफ यू वॉन्ट और हाउ एवर मैनी यू वॉन्ट. तो उसमें कोई इशू नहीं है. फिर आप उसकी तैयारी करें एंड फॉर प्रिपरेशन मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स आई कीप सेइंग एंड इट गोज बैक टू आवर अर्लियर डिस्कशन कि आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं.
1: बिल्कुल,
2: बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं. तो पर्सनली मैंने 3 साल जो मेरा मतलब दोनों अटेम्प्ट्स और प्रिपरेशन मिला के 3 साल मैंने सारा सोशल मीडिया डिलीट कर दिया. आई वॉज नॉट ऑन फेसबुक, नॉट ऑन इंस्टाग्राम. व्हाट्सएप पे मैं थी एंड टू टॉक टू माई पेरेंट्स. आई रिमेंबर एक फ़ोन लॉक ऐप है सो आई टू लॉक माई फ़ोन फॉर 12 hours सो दैट आई डोंट लुक एट इट. मैं मतलब कहीं नहीं, मेरे सब फ्रेंड्स वर वर्किंग, कोई इंडिया में कोई इंडिया के बाहर. तो मुझे ये था कि अगर मैं सोशल मीडिया पे इतना टाइम स्पेंड करूँगी तो मैं यही सोचते रह जाऊँगी कि यू नो बाकी लोग अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, मैं क्यों
1: सिर्फ पढ़ रही हूँ,
2: बैठ के रूम में पढ़ रही हूँ. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ समथिंग आई फाइंड इन

0: कॉमन विद एवरीवन जो अब सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करें कि उन्होंने अपने डिस्ट्रैक्शंस लिमिट कर लिए, क्योंकि ना वो सोशल लाइफ के साथ साथ देने वाला तो थोड़ा ये एग्जाम नहीं है.
1: बिल्कुल
0: इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क.
1: एब्सोल्युटली.
0: And I'm saying that more hard work than IQ in that sense, because the syllabus is so vast.
1: Absolutely.
0: That if you think you are smart enough to do it without hard work, it is going to be quite disappointing.
1: बिल्कुल.
0: या आपको लगता है हम बहुत intelligent हैं, हमसे ऐसे हो जाएगा, तो वो
1: ऐसा नहीं होता है.
0: मुझे मुश्किल लगता है.
1: मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपके 12th में या 10th में 95 plus marks आए हैं, percentage आपकी अच्छी आई है, graduation भी आपने बहुत अच्छे marks से करी है, और फिर आपको लग रहा है अरे हम तो IAS बन ही जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है. IAS वो भी बन सकता है जो 67% लाया हो. Absolutely. क्योंकि वो फिर उसकी तैयारी अपने तरीके से करता है, मेहनत से करता है. और जैसा हिमाद्री जी ने कहा कि सोशल मीडिया 3 साल के लिए बंद किया था, तो एक्चुअली में सोशल मीडिया बंद करने से आपके डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं. दुनिया में क्या चल रहा है ये आपको अखबार के थ्रू पढ़ना होता है सुबह सुबह उठ के. द हिंदू काफी फेमस है इसके लिए, जिसको आप सुबह उठते ही देखें, और देखने के बाद आपको पढ़ना होता है उसको अच्छे से, 1 घंटा लगाकर, 1.5 घंटा लगाकर, उसके बाद आप बाकी चीजों का टाइम टेबल बना के चलते हैं, तो मुझे लगता है चीजें ज्यादा बेटर होती हैं.
0: एब्सोल्युटली.
1: सो करियर से जुड़ी बातें भी चल रही हैं और सुरक्षा से जुड़ी बातें भी चल रही हैं. हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं IPS हिमाद्री कौशिक जी, DCP हेडक्वार्टर्स फरीदाबाद पुलिस. वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का.

0: हर्ड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम सुरक्षा संवाद, खास पहल हमारी आप तक आपकी सुरक्षा से जुड़े कुछ सवाल पूछने की एक्सपर्ट्स द्वारा यानी ऑफिसर्स द्वारा। और हमारे साथ आज स्टूडियो मौजूद हैं डीसीपी हेडक्वार्टर्स हिमाद्री कौशिक जी, आईपीएस 2019 बैच, और इनसे हम बातचीत करें हैं बहुत सारी आप ही की सुरक्षा को लेकर, आपके अपने शहर को लेकर, साइबर क्राइम को लेकर, लेकिन साथ ही सिविल सर्विसेज के बारे में भी बातचीत जान रहे हैं और इनके जीवन से जुड़ी हुई कैसे वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज किया जाए, ये भी कुछ सवाल हैं जो हम इनसे जरूर पूछ रहे हैं। हिमाद्री जी, जब आपने तैयारी करी सिविल सर्विसेज की तो कोचिंग लेने का कंसेप्ट, क्योंकि आजकल कोचिंग जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, दिल्ली फेमस है कोचिंग के लिए, और जैसा कि राजेंद्र नगर में बहुत सारे आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, बच्चे आते हैं पढ़ाई छोड़कर, यहाँ पर बहुत फीस देते हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े टीचर्स आज की तारीख में जो फ्री में ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, और जिसकी वजह से बहुत बदलाव भी आया है कि छोटे छोटे गाँव के बच्चे, छोटे छोटे शहरों के बच्चे बाहर निकल कर आ रहे हैं, सिविल सर्वेंट बन रहे हैं। सो आप क्या कहना चाहेंगे कि कोचिंग लेना ऐसे फिजिकली ज्यादा फायदेमंद है, अगर कोई दिल्ली एनसीआर का बच्चा है तो वो जरूर ले, या फिर सिर्फ आप ऐसी कोचिंग जो ऑनलाइन आपको मिल रही है उससे भी आप आगे बढ़ सकते हैं?
1: देखिए, मैं अपना पर्सनली बताऊं तो वैसे आई एम फ्रॉम देहरादून, बट आई डिड मूव टू दिल्ली फॉर सिविल सर्विसेज प्रेपरेशन, बट समहाउ मेरा टाइमिंग ऐसे हो गया दैट आई कुड नॉट जॉइन कोचिंग।
0: ओके,
1: आई जॉइंड कोचिंग, आई कुड नॉट अटेंड, क्योंकि मैं वो कोचिंग से पहले ही प्रीलिम्स दे दिया था इस तरह से, जो भी मतलब बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेज मैंने जीएस की कोचिंग नहीं कर पाई, एंड समहाउ डिस्पाइट बीइंग एन इंजीनियर आई डिसाइडेड टू टेक इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, तो उसमें भी मोस्टली सेल्फ स्टडी ही रहा। सो आई थिंक विदाउट कोचिंग इट्स डेफिनेटली पॉसिबल, अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट, और ऑनलाइन इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं कि आप 100% अगर आपके पास उस चीज़ का एक्सेस नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, और बिल्कुल कर सकते हैं, और अगर वो अफोर्डेबल चॉइसेस नहीं है, देखिए ऐसा है कई लोगों का लाखों नहीं खर्च करके होता, कई लोगों का बिल्कुल अपने आप से घर पे बैठ के पढ़ के भी हो जाता है, बट वन थिंग थोड़ा सा ये था कि व्हाई वुड आई मूव अवे फ्रॉम होम, फिर वो एनवायरमेंट थोड़ा सा हेल्प करता है,
0: पढ़ाई का एक
1: माहौल चाहिए होता है, घर पे मतलब थोड़ा कम्फर्ट होता है, देखिए कम्फर्टेबल एटमोसफियर में वो खुद को वो पिंच नहीं होता है, तो ना केवल वो डिफिकल्ट जगह है वो, मतलब घर इतने ऐसे हैं, एक एक रूम में सब रह रहे होते हैं, अपना कर रहे होते हैं, दैट प्लेस इज डिफिकल्ट, बट आप नीचे, आप वहाँ पे बाहर जाते हो तो आपको दिखता है कि सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कोई ना कोई बुक पे है, कोई बुक ले रहा है, कुछ कर रहा है, तो दैट हेल्प मी, इफ इट्स द काइंड ऑफ थिंग दैट हेल्प्स यू तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कितने लोग घर से कर रहे हैं। और कोचिंग, तो कोचिंग का फ़ायदा ये है कि बिकॉज जैसे मैंने कहा सिलेबस इतना वास्ट है, तो मुझे ऐसा लगा अगर कोचिंग लेते हैं तो आपको थोड़ा जल्दी पता लग जाता है कि क्या पढ़ना है, बट फॉर श्योर दैट कोचिंग इज़ नॉट गोइंग टू, मतलब दैट इज़ नॉट द थिंग जिससे आपका क्लियर होने वाला है, मैक्सिमम वो थोड़ा एड कर देगा, बट 95% आपका खुद का एफर्ट है।
0: बिल्कुल, आपको थोड़ा सा तरीका बता देगा, तरीका क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बट पढ़ना आपको ही है तो उसके लिए फोकस आपको करना होगा। और मुझे लगता है आजकल YouTube पर इतनी वीडियोस हैं कि अगर आप एंशियंट हिस्ट्री को उठाते हैं और उसका एक टॉपिक अगर आप मौर्य डाल देते हैं तो मौर्य डायनेस्टी के लिए इतनी वीडियोस आ जाती हैं कि आप उसको इजीली समझ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, वीडियोस हैं, रिसोर्सेज हैं, रिटन रिसोर्सेज हैं, न्यूज, मतलब इवन, बट ये मैं कहूंगी न्यूज, जैसे आपने कहा न्यूज पेपर जरूर पढ़ना चाहिए, लोग न्यूज कंपाइलेशन पढ़ते हैं, बट न्यूज, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर न्यूज पेपर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और एनसीईआरटी की किताबें जो आप बचपन में मिस कर जाते थे, सिक्स क्लास ऑनवर्ड्स वाली, आपको लगता था सिर्फ एनुअल एग्जाम के लिए चाहिए, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी दोबारा से, वो आपको समझनी पड़ेंगी, एक एक लाइन आप उसमें से मिस नहीं कर सकते, एक एक डायग्राम भी आप छोड़ नहीं सकते। सो बहुत सारी तैयारी चाहिए होती है, लेकिन तैयारी के बाद जो रिजल्ट आता है वो कमाल का होता है, बहुत खुशी देता है। अब हिमाद्री जी, जो आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वर्क लाइफ बैलेंस और फैमिली में अगर दो सिविल सर्वेंट्स एक साथ रह रहे हैं, मैं हमारे लिसनर्स को और व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगी कि हिमाद्री जी के जो बेटर हाफ हैं वो फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर हैं और वो भी एक आईएएस ऑफिसर हैं, सो ये घर में जो माहौल रहता है बहुत सीरियस रहता है, क्योंकि इतनी सारी, आप जो हैं वो आप पुलिस विभाग में हैं और वो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है 24 घंटे कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता होगा, तो उसको कैसे बैलेंस करते हैं?
1: जी एक्चुअली फॉर्चुनेटली हम कॉलेज बैचमेट्स हैं, मतलब कॉलेज सेम कॉलेज एक बैच आगे आयुष उस फिल्म में, तो आई फील दैट वैसे तो जोवियल ही रहता है घर पे, तो हम कोशिश करते हैं काम की बात ही नहीं करें, बट ऑब्वियसली दिन के इश्यूज होते हैं उसके बारे में एक दूसरे में जानते हैं, सो वी डिस्कस इट समटाइम्स, बट ऑल्सो फॉर्चुनेटली आई हैव टू चिल्ड्रेन, टू लवली चिल्ड्रेन, तो उनके साथ वेन एवर आई गो बैक होम तो बिल्कुल भूल जाता है आदमी दिन कहाँ गया कैसा गया, एंड दैट बिकम्स योर होल थिंग. वाइल्ड चैलेंजेस हैं, ऑफकोर्स चैलेंजेस हैं, टाइम लिमिटेड होता है दोनों सर्विस में है, बट पर्सनली बहुत अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाती है, आप दूसरे इंसान के इश्यूज समझ सकते हैं, दैट आई नो कि if he's not able to come somewhere I completely understand because half the time I'm not able to go somewhere to hamare wo wale hassles kam rehte hain
2: ki dusre ko samajhte hain
1: ki tumne ye nahi kiya so we don't have that, we try to support each other, thodi bahut taiyari bhi saath mein ki thi, so we understand that struggle, so all in all it just goes fine and not at all serious, bilkul bhi serious mahol nahi rehta, we try to I have two children and one dog and all of us try to spend the evenings together and have a good time.
2: बिल्कुल. अब मैं आपसे यही जानना चाहूंगी चलते चलते कि क्या टिप्स देना चाहेंगी उन लोगों को जो आपको भी देख रहे हैं सुन रहे हैं और अपने बच्चों को सिविल सर्विसेज की तरफ थोड़ा सा इंस्पायर करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो वाकई आप जब ब्यूरोक्रेसी में होते हैं तो आप कुछ बदलाव लाने की ताकत रखते हैं. हम कमियां बहुत निकालते हैं कि इस सोसाइटी में ये ठीक नहीं हो रहा है या ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए, लेकिन पॉलिसी मेकर एक्चुअली में आप तभी बनते हैं जब आप सिविल सर्विसेज की तरफ जाते हैं, या तो आप पॉलिटिशियन हो, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है. तो ये एक रास्ता है एक आम इंसान के लिए देश को बदलने का.
1: जी डेफिनेटली, मैं अगर पेरेंट्स या स्टूडेंट्स इस करियर की तरफ थोड़ा भी इंक्लाइंड हैं तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं आपको थ्री पर्सपेक्टिव से बताऊँगी. सबसे पहला, क्या आप एक्चुअली कुछ कर सकते हैं? मैं इतना ज़्यादा फारफिश तो नहीं कहूँगी कि आप कुछ बदल सकते हैं, क्योंकि वो तो आगे जाके होता है. क्या आप लोगों की मदद कर सकते हैं? आप रोज़ एक एक दिन इतने लोगों से मिलेंगे जो इतनी ज़्यादा मतलब इतने परेशान होंगे, उनकी कुछ आवश्यकताएं होंगी, कई लोगों को शायद आप मदद ना कर पाओ, पर रोज़ आप जब ऑफिस जाओगे आप ऐसे 10-15 लोग होंगे जिनके लाइफ में आप कुछ बेटर कर सकते हो, जो आपके पास अपने सबसे दुखी और सबसे स्पेशली पुलिस में मैं देखती हूँ सबसे वल्नरेबल में आते हैं, एंड यू कैन हेल्प देम. सो देर इज़ डेफिनेटली अ सेटिस्फैक्शन ऑफ डूइंग समथिंग सब्सटेंटिव दैट हेल्प्स पीपल, अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर है. सेकेंडली, अगर आपके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर है जॉब सेटिस्फैक्शन, तो मतलब नॉट टू साउंड लाइक बट वेरी ऑनेस्टली, आपको इस एज पे जिस एज पे आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करोगे जो एक्सपोजर मिलेगा इट इज़ ट्रिमेंडस. वो मतलब आपको इतनी ज़्यादा वर्किंग्स ऑफ द गवर्नमेंट और जिस लेवल पे आप ज्वाइन करोगे दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू नो यू विल नॉट फाइंड इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, तो वो भी काफ़ी अच्छा करियर पाथ रहता है. एंड द थर्ड थिंग आई वॉन्ट टू से इज दैट पेरेंट्स अपने बच्चों को मोटिवेट करें इस चीज़ के लिए और फॉर द राइट रीजन्स टू, एंड आई एम श्योर ऑल रीजन्स आर राइट रीजन्स इन दैट सेंस, पर आप उनको बताएं कि ये एक करियर है वेर यू विल फाइंड जॉब सेटिस्फैक्शन, इट इज़ नॉट अ जॉब इट इज़ अ करियर, एंड यू विल फाइंड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ डिफरेंस एट द राइट प्लेसेस. और ओवरऑल मुझे लगता है सेटिस्फैक्शन रेट सर्विसेज में काफ़ी रहता है, पीपल आर जनरली हैप्पी विद वेयर दे आर, सो बट आई वुड प्रेफर इफ पीपल डिड नॉट चेज इट फॉर द रॉन्ग रीजंस लाइक दे वांट सम पावर और सम व्हाटएवर, वो होगा तो होता तो वो भी है, बट फिर भी मतलब दैट इफ दैट इज नॉट द मोटिवेशन आई थिंक इट्स बेटर.
2: जी बिल्कुल, यानी सेवा पहले पावर बाद में, अगर आप वो चीज लेके चलेंगे तो शायद सक्सेसफुल भी जल्दी होंगे और कुछ बदलाव ला पाएंगे आप सोसाइटी में. फुटबॉल बहुत अच्छा खेली है ये अपने कॉलेज में, और ये एक जवाब भी था जो इनके लिए इंटरव्यू में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ था. चलते चलते बस ये भी बता दीजिए कि ये फुटबॉल का जो प्यार था आपका, इसने वाकई आपको, क्योंकि जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो उसमें सिविल सर्विसेज का जो आपने इंटरव्यू दिया उसमें ये बहुत बड़ी एक चीज साबित हुई थी कि एक लड़की फुटबॉल इतना ज्यादा खेलती है और उसने अपने फॉर्म में भी फिल किया हुआ है.
1: जी जी जी बिल्कुल. एक्चुअली मेरा इंटरव्यू वाज वन ऑफ द रीजंस आई मेड इट. तो मुझे जो सर थे मेरे पैनलिस्ट, वो ही वॉज वेरी, एंड आई न्यू अबाउट हिम, वो काफ़ी मतलब ही वॉज अ वेरी रिनाउंड पर्सन, और थोड़ा सा मुझे लगता है मुझे इंस्टिगेट करने के लिए ही सेड कि लड़कियाँ थोड़ी फुटबॉल खेलती हैं, तो आई आंसर्ड इट फॉर हिम एंड वेरी प्लेजेंटली, बिकॉज एक्चुअली क्या होता है ना, आप थोड़े से फेमिनिस्ट टाइप के होते हो तो आप इस बात पे गुस्सा हो जाते हैं, तो बट आई न्यू टू नॉट रिएक्ट बिकॉज आई ऑल्सो न्यू अबाउट हिम एंड यू नो आपको इंटरव्यू में टेस्ट करेंगे,
2: बिल्कुल.
1: तो ही आस्क्ड मी हाउ कम, सो आई टोल्ड हिम ऑनेस्टली बचपन से काफ़ी कजिन्स वगैरह होते थे तो हम लोग साथ में फुटबॉल खेलते थे, नेचुरली आई वॉज बेटर एट फुटबॉल, तो आई वॉज प्रिपेयर्ड बिकॉज मैंने फुटबॉल लिखा था कि उसके बारे में टेक्निकल कुछ पूछ सकते हैं इंडियन टीम के बारे में, तो आई आंसर दोज थिंग्स एंड अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स इट्स ऑलवेज बीन अ पैशन, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, अब अपॉर्चुनिटी कम मिलती है बट Absolutely love the game.
2: बिल्कुल. और पुलिस सर्विसेज में अगर आप फिट हैं और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं तो ये बहुत बड़ी चीज होती है.
1: जी जी.
2: So, बहुत सारी बातें आज हमने जानी, शहर को खूबसूरत बनाना और क्राइम फ्री बनाने से लेकर अपने करियर को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है, सिविल सर्विसेज की तरफ कैसे तैयारी करनी है, ये सब हमने जाना. फिलहाल हिमाद्री जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और उम्मीद है दोबारा कभी फिर बातचीत होगी और बहुत से और मुद्दों पर बातचीत होगी. हमारे इस प्रोग्राम सुरक्षा संवाद में हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
1: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये सारे टॉपिक आपके साथ डिस्कस करके और मुझे भी खुद भी कुछ इनसाइट्स मिले वो आपसे बात करते हुए. जी
2: सो बहुत सारी बात हमने आज सुरक्षा संवाद में की है. ज्यादा अगर आप इस कार्यक्रम को देख रही हैं, किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमारी इंटरनेट रेडियो ऐप रेडियो मानव रचना iOS और प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और साथ ही किसी के साथ भी शेयर करना चाहें दुनिया भर में आप शेयर कर सकते हैं. हमारी YouTube वीडियो या Instagram पर अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत.

सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी

0: जिंदा है कुछ ऐसे ही लोगों के कारण। और आज इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं वो हैं डॉक्टर किरण मोदी। डॉक्टर किरण मोदी फाउंडर और मैनेजिंग ट्रस्टी हैं उदयन केयर की। और ये उदयन केयर की शुरुआत कैसे हुई, किस प्रकार का काम होता है, और क्या आपने आज तक इस नाम को सुना है, और अगर हाँ तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, आज इस पूरे कार्यक्रम में आपको पता लगने वाला है। और इस खास बातचीत के लिए करेंगे डॉक्टर किरण मोदी का स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में। डॉक्टर किरण, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी आपको कि आपने ये मौका हमें दिया।
0: डॉक्टर किरण, आप एक ऐसे मोड़ पर थी जिंदगी के जहाँ आपके पास अपने करियर के लिए बड़ा फ्लरिशिंग करियर चूज करने का मौका था, लेकिन ऐसे में आपने शुरुआत की उदयन केयर की। सो मुझे बताइए इसके पीछे की क्या कहानी थी, कैसे इसकी शुरुआत हुई और आपका रुझान इस तरफ कैसे हुआ?
1: अगर मैं देखूं दूर अपने बचपन तक जाती हूं तो मुझे शायद पहले से बहुत इंटरेस्ट था कि बच्चों के लिए, जो लो रिसोर्स फैमिलीज हैं उनके बच्चों के लिए कुछ किया जाए जिससे कि वो पढ़ सकें, कुछ जीवन में बन सकें। और मुझे एक घटना याद आती है बचपन की, जब मैं कुल में 8 साल की थी, अपने माता पिता के साथ कहीं जा रही थी, रास्ते में बहुत भीड़ भड़क्का था, अचानक हाथ छूट गया और अचानक मैंने देखा मेरे माता पिता नहीं हैं। उस 2 घंटे में जब तक मुझे पुलिस ने पकड़ा और ले जाके वहाँ पुलिस स्टेशन में बिठाया, तब तक मेरे माता पिता ढूंढते ढूंढते मुझे आए, इसमें 2 घंटे लग गए थे। उन 2 घंटों में मेरी जान निकल गई थी और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि अगर एक बच्चे के साथ उसके माता पिता नहीं होते हैं तो उसके ऊपर क्या बीतती है और उसके मन में कितने डाउट्स आते हैं कि नाउ व्हाट, अब मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूंगी, वो सारी चीज़ें। और हमारे घर में कुछ बच्चे थे जिनको कि पढ़ने की ज़रूरत थी, जो पढ़ नहीं पा रहे थे, मेरी जैसे मेरी माँ की जो हेल्पर थी उनकी बेटियाँ। इन सारी चीज़ों ने मुझे इस तरफ एक रुझान दिया बचपन से ही, और मैं कुछ कुछ करती ही रही। कभी जब वॉर्स हुए तो उनके लिए मैंने फंड रेज किए और जाकर के गवर्नमेंट को मैंने वो जो पैसों की थैलियाँ जमा की थी वो जाके दी। इन सारी चीज़ों से मुझे फंडरेजिंग के प्रति भी बड़ा इंटरेस्ट हो गया था। तो इस तरह से करके ज़िंदगी बढ़ती चली गई। फिर कहीं शादी जल्दी हो गई, शादी के बाद बच्चे हो गए, लेकिन मेरी पढ़ाई जारी रही। उस पढ़ाई के बीच में ही देखते ही देखते कब मैं 39-40 की हो गई और मेरी PhD भी मैंने ज्वाइन कर लिया था और ख़त्म होने वाली थी। अचानक जीवन एक ऐसा झटका कभी देता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि क्या हो गया, लेकिन लगता है पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। I had a पर्सनल ट्रेजिडी। उस ट्रेजिडी के बाद मुझे लगा अगर मुझे कुछ करना है जीवन में तो सिर्फ दूसरों के लिए करना है, और वो दूसरों के लिए एक्चुअली नहीं होता है, आप कर खुद के लिए रहे होते हैं। क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं किसी के लिए, अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप कर पाते हो। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि भगवान ने मुझे चुना इस रास्ते के लिए और मुझे रास्ता दिखाया। मैंने सबसे पहले बच्चों के होम्स चालू किए, क्योंकि बचपन की ये कहानी याद थी मुझे जब मैं अकेली हो गई थी। मुझे लगा जिन बच्चों के कोई माता पिता नहीं है उन बच्चों को मैं माता पिता की तरह सब प्यार दे पाऊँ, और अगर मैं करना चाहती हूँ तो बहुत लोग समाज में जो ऐसा करना चाहेंगे, ऐसे लोगों को जोड़ करके एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो ऑर्फन हैं या अबैंडन्ड हैं उनको भी एक पारिवारिक सुख, एक स्टेबिलिटी, एक उनकी मेंटल हेल्थ की परेशानियों को समझना, उन सारे इश्यूज पे हम एड्रेस कर पाए। दूसरी तरफ उन बच्चियों को जिनको मैं पढ़ाना चाहती थी, वहाँ से ये निकल के आया कि हमें कोई ऐसा एजुकेशन प्रोग्राम चालू करना चाहिए जिससे जो बच्चियाँ लो रिसोर्स फैमिलीज में हैं, जहाँ माता पिता होते हुए भी अपने बच्चों की उतनी हेल्प नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी एक प्रोग्राम होना चाहिए। तो हम लोगों ने इस तरह से उदयन घर्स की कल्पना की एक तरफ, और दूसरी तरफ उदयन शालिनी फेलोशिप एंड उदयन केयर ITVT प्रोग्राम, जिसमें कि स्किलिंग एंड अलग अलग तरह की शिक्षा दी जाती है जिससे कि बच्चों को जॉब मिल सके, यूथ को जॉब मिल सके। ये हमारी कहानी है पूरी, कुछ ही शब्दों में मैंने आपको बताने की कोशिश की है।
0: डॉक्टर किरण, अगर मैं सही मायने में पूछूं तो उदयन केयर की ऑफिशियल शुरुआत कब हुई?
1: 1994 में मैंने ये ट्रस्ट सेट किया था फरवरी में, और जी
0: सो आप सोचिए दोस्तों, 1994 से और आज तक एक लंबा सफर है जो डॉक्टर किरण मोदी ने इन बच्चों को उनका भविष्य बनाने के लिए दिया है। अब कितने खूबसूरत ऐसे पल होंगे जो बच्चे यहाँ से पढ़कर आगे गए हैं, वो वापस पलटकर इस घोंसले में जब आए हैं और कुछ बनकर आए हैं तो कितनी खुशियां लेकर आए होंगे, बहुत सारी बातें होंगी और इन बातों को हम जरूर जानेंगे डॉक्टर किरण।

0: मोदी से, बट उससे पहले वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, छुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मनोवृष्ण 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइव।
1: तुम्हें अपनी माशुका की कसम, खींच के रख दो उसकी तस्वीर यहाँ, इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं उदयन केयर के साथ, जिसके फाउंडर और मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर किरण मोदी हमारे साथ है। डॉक्टर किरण किस प्रकार से काम करते हैं, एक नटशेल में आपने जरूर बताया, पर मैं जाऊंगी थोड़ा सा विस्तार से। हमारे सभी लिसनर्स को आप बताएं कि जिस तरीके से आपने ये होम सेटअप किए, तो बच्चे कहाँ से आए, कैसे लाते थे, क्या कोई जरिया था जिस तरीके से कोई आज भी बच्चा आपके पास आ सकता है, सो किस प्रकार से ये पूरा काम कर रहे हैं आप?
1: सो हम लोगों का इरादा तो ये था कि इस तरह के होम्स बनाएं जिसमें कि बच्चों को एक पूरी परिवार की तरह उनको रखा जाए और उनको पूरा आगे बढ़ने के लिए हर तरह की सुख सुविधा मिले। और इसीलिए हम लोगों ने छोटे होम्स की कल्पना की। जिस जमाने में हमने शुरू किया था उस समय 100 चिल्ड्रन नॉर्म था होम्स का, जो कि मुझे समझ नहीं आया कि इतने सारे बच्चे जब एक संग होंगे तब कैसे उनका आप इंडिविजुअली ध्यान रख पाएंगे। और मुझे ऐसा लगा कि बच्चों में ये बॉन्डिंग एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग को जगाना बहुत ज़रूरी है। उनको लगे कि ये उनका अपना घर है, उसके लिए आपको ज़रूर थोड़े कम नंबर में बच्चे चाहिए। तब हम लोगों ने एक कल्पना की कि 12 बच्चों का होम हो। और सबसे पहले दिल्ली गवर्नमेंट को अप्लाई किया था, तो बड़ा मुश्किल था वो लाइसेंस भी मिलना, क्योंकि बिना लाइसेंस के आप बच्चों को नहीं रख सकते। ये बड़ा मुश्किल हुआ क्योंकि उन लोगों को इतने बड़े बड़े होम्स की ही आदत थी कि वो छोटे होम्स नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका भी तो काम बहुत बढ़ जाता है। लेकिन फिर अंत में हमारी बात उन लोगों को समझ में आई कि जिस तरह के बच्चों को क्वालिटी केयर हम देना चाहते हैं, हमें छोटे होम्स ही चाहिए। फिर हमें पहले एक होम का परमिशन मिला, फिर तो धीरे धीरे मिलते चले गए और देखते ही देखते 17 होम्स बनते चले गए, जिनमें कि 12-12 बच्चे एक एक होम में रहते। और आइडिया ये था कि ये बच्चे समाज के बीच में रहें, इसीलिए हम लोगों ने जो होम्स बनाए वो बिल्कुल मिडिल क्लास लोकेलिटीज़ में, एक कोई बड़ी बिल्डिंग में 3-4 फ्लैट्स हैं उनमें एक फ्लैट में हमारे बच्चे रहें, इस कल्पना के साथ शुरू किया था, जिससे बच्चों को शुरू दिन से समाज के बीच में रहना आए। तीसरी चीज़ जो हमने इसमें जोड़ी और जो कि बहुत अलग थी, उसको हम बोलते हैं मेंटर मदर एंड मेंटर फादर कॉन्सेप्ट। जब मुझे ये लगा कि मैं चाहती हूँ कि एक माँ की तरह इन बच्चों को पाल पाऊँ, तो आई एम श्योर देर आर मैनी पीपल इन सोसाइटी जो कि ये भी करना चाहते होंगे। और ये सच ही था, देखते ही देखते हम लोग 37 मेंटर पेरेंट्स हो गए जो इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह बड़ा कर रहे थे। और पूरा जो स्टाफिंग है, जो गवर्नमेंट की रिक्वायर्ड स्टाफिंग है, उनको पूरे अच्छे से हेल्प कर पा रहे थे कि इन बच्चों को सही रास्ता मिल पाए। तो इस तरह से करके हमने शुरू किया था। और जैसे जैसे बच्चे 18 के होते गए, हम लोगों ने रियलाइज किया कि जो लाइसेंस होता है होम्स का वो 18 तक खत्म हो जाता है, उसके बाद क्या? ये सबसे बड़ा प्रश्न था, क्या 18 साल में अगर हमें किसी ने नहीं उठाया होता तो क्या आज हम इस लायक होते? तो किसी से भी आप पूछ के देखिए, 18 साल की उम्र इतनी कितनी वो ऐसी उम्र है कि जहाँ बच्चों को और ज्यादा मदद की जरूरत है। इसलिए हम लोगों ने आफ्टर केयर प्रोग्राम्स चालू किए और हमारे बच्चों को आफ्टर केयर दिया, जिससे कि वे आगे की पढ़ाई कर सकें, उनके मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकें, उनको इंटर्नशिप और उनको जॉब्स दिला सकें। टिल द टाइम द चाइल्ड स्टैंड्स ऑन हिज ओन फीट, दे वी लुक आफ्टर देम। तो ये हमारा उदयन घर और उदयन आफ्टर केयर का कॉन्सेप्ट था। यहीं से समझ में आने लगा था कि बहुत सी संस्थाएं अपने बच्चों को 18 के बाद नहीं देख पा रही हैं। तब हम लोगों ने एक रिसर्च स्टडी की, जो कि एक तरह से अपने आप में जिसने एक गेम चेंजर थी। उस रिसर्च स्टडी ने क्लियर बताया कि जिन बच्चों को आफ्टर केयर नहीं मिल पाता है, कितना उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है, उनको आफ्टर केयर मिलना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे समाज में भी चेतना आई, पॉलिसी लेवल पे भी बदलाव आए, और आज एक आफ्टर केयर के नाम से सब समझने लगे हैं कि वॉट इज़ आफ्टर केयर, जहाँ बच्चों को 18 साल के बाद भी उनको पूरी तरह से उनको सपोर्ट किया जाए। तो इसको, इस प्रोग्राम का हम बोलते हैं आफ्टर केयर आउटरीच प्रोग्राम। इसमें भी हमारे पास 900 से ज़्यादा बच्चे हैं पूरे हिंदुस्तान में, जो हमारी संस्था में बड़े नहीं हुए, किसी और संस्था में बड़े हुए हैं, लेकिन 18 के बाद उनका ख्याल हम लोग कर रहे हैं।
0: कितनी खूबसूरत से कहानी जैसा लग रहा है आपका, ये पूरा का पूरा आफ्टर केयर प्रोग्राम और उदयन केयर प्रोग्राम। लेकिन अगर देखा जाए तो वाकई बहुत सारी मेहनत लगी होगी, और सबसे बड़ी मेहनत जो मुझे नजर आ रही है कि आपको ये बच्चे तो मिल गए होंगे, लेकिन इन बच्चों के लिए माता पिता ढूंढना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भाई जिस तरीके के माता पिता और उनका समर्पण जरूरी है, वो डेडिकेशन आज के जमाने में अपने बच्चों के लिए भी माता पिता का टाइम निकालना, समय दे पाना बड़ा मुश्किल है। सो कैसे किया इन्होंने ये जरूर जानेंगे। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं आज डॉक्टर किरण मोदी जी के साथ। उदयन केयर की फाउंडर और मैनेजिंग ट्रस्टी है। एक लंबा सफर इन्होंने तय किया है, इतने सारे बच्चों की प्रैक्टिकली है माँ है। और आप खुद ही देखिए ना, इनकी परवरिश से आज इतने सारे होम्स हैं और इतने सारे बच्चे हैं जो एक उज्जवल भविष्य देख पा रहे हैं। डॉक्टर किरण, किस प्रकार के और काम, और जैसे आपने कहा कि आपके पास शुरुआत में ही 37 ऐसे पेरेंट्स मिले, ऐसे मेंटर पेरेंट्स आपको मिल गए जो कि आपकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। सो एज पेरेंट, क्या वो 24 घंटे इन बच्चों के साथ रहते थे इन घरों में, और अगर हाँ तो ये किस तरीके से पॉसिबल हुआ?
1: नहीं, ऐसा है कि मेंटर पेरेंट्स जो हैं वे आर ऑल वॉलंटियर्स। जब वो स्वयं सेवी हैं, वो एक पैसा भी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं लेते हैं, बल्कि दे आर आवर बिगेस्ट रिसोर्स बिल्डर्स। वे अपने अपने जानकार लोगों को भी लाते हैं, वो वॉलंटियर्स लाते हैं, वो धन की भी व्यवस्था करते हैं, बच्चों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है उसके प्रति भी ध्यान देते हैं। उसके लिए उनका वहाँ रहना ज़रूरी नहीं है। हर होम में जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, कितने स्टाफ होनी चाहिए, जिसमें सोशल वर्कर से लेके मेंटल हेल्थ वर्कर से लेके स्पेशल एजुकेटर, जितने भी उन लोगों ने बताया है गवर्नमेंट की तरफ से, उन सारे स्टाफ होते हैं। उन स्टाफ को भी गाइड करना हमारे मेंटर्स करते हैं, उनको भी गाइड करते हैं, क्योंकि हम लोग सभी सीजन्ड पेरेंट्स थे। हम लोगों ने अपने बच्चे पैदा किए थे, उनको बड़ा किया था, हम लोगों ने देखा है जीवन क्या है, तो हम लोग अपने स्टाफ को बहुत अच्छे से गाइड कर पाते थे, बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड कर पाते थे। जहाँ जिसकी ज़रूरत हो उसके हिसाब से मेंटर पेरेंट्स अपना टाइम निकाल के बच्चों को जाके मिलते थे, स्टाफ को मिलते थे, मिलते हैं और उनको गाइड करते हैं। तो ये सिस्टम है। और ख़ास करके हम लोग ऐसा सोचते हैं कि आसपास के नेबरहुड में भी बच्चों की अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी कनेक्शंस इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आपके अपने माता पिता नहीं हैं, आपको कम्युनिटी कनेक्शंस तो चाहिए ना। और उसके अलावा भी हम लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कोई भी बच्चा अगर होम में आ जाता है, हमारी पूरी चेष्टा रहती है किसी तरह उसके परिवार को ढूंढ के उसके परिवार को स्ट्रेंथन किया जाए, एक फैमिली स्ट्रेंथन हो जिससे कि बच्चा अपने परिवार में वापस जा सके। हमने ये भी देखा जब बच्चे संस्थाओं में आते हैं, न केवल वो अपनी भाषा भूल जाते हैं, अपना कल्चर भूल जाते हैं, अपना लैंग्वेज भूल जाते हैं, सब उनका खो जाता है, उनका धर्म खो जाता है। अगर वो अपने परिवार में बड़े होते हैं उसी माहौल में, वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो ये हम लोगों का बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे के परिवार मिल जाएं और बच्चे अपने परिवारों में वापस जा सकें, और कहीं किसी को कोई ज़रूरत हो उसको हम लोग किसी तरह भी सपोर्ट कर सकें। जिन बच्चों के परिवार नहीं मिल पाते हैं, वो बच्चे हमारे घरों में होते हैं, इनमें से भी अब अडॉप्शन वगैरह में भी कुछ बच्चे जाने लगे हैं। तो पूरी कोशिश ये रहती है कि बच्चे को लॉन्ग टर्म उनको पेरेंटिंग मिल सके। जो बच्चे रह जाते हैं उनके लिए मेंटर पेरेंट्स लॉन्ग टर्म पेरेंट्स हैं। वो आफ्टर केयर में आ जाते हैं तो भी मेंटर पेरेंट्स उन्हीं के पेरेंट्स हैं। जब उनकी शादियां हो जाती हैं तभी भी हम ही लोग उनके पेरेंट्स हैं। तो इस तरह से हर लेवल पे हमने कोशिश की कि एक बच्चे को परिवार वाला कि परिवार की क्या अहमियत है ये समझ में आए, क्योंकि अल्टीमेटली वी वॉन्ट देम टू बी फैमिली पीपल टुमारो।
0: वाकई डॉक्टर किरण, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो आपने जैसे कहा कि बहुत सारे बच्चे, मतलब 17 घर और 12 बच्चे हर घर में, इतने सारे बच्चे हैं, लेकिन इन बच्चों की उम्र कितनी है, एज अर्ली एज कितने छोटे बच्चे को लिया जाता है इन होम्स में, और 18 साल तो आपने बताया है कि उसके बाद वो आफ्टर केयर में जा सकते हैं।
1: जी, तो पहले हमारे 17 होम्स हमने बना लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने ये धीरे धीरे रियलाइज करना चालू किया कि बच्चे अगर अपने परिवार में वापस जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तब हमने अपने होम्स के नंबर्स कम करने चालू किए, जिससे कि डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर सकें रादर देन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। इसमें हम लोगों को पूरा परिवारों को ढूंढना, उन परिवार वालों के संग काम करना, बच्चों को वापस भेजना, ये सब कुछ आ जाता है, और कहीं उनको कोई रिसोर्सेज की ज़रूरत हो उनको हेल्प करना। इसमें ये पूरा काम ऐसा होता है जिसमें कि किसी तरह बच्चे के जीवन में एक स्टेबिलिटी आ सके।
0: भाई देखिए, अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत आसान काम है तो बहुत मुश्किल है। सो बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी मुश्किलें जरूर इन राहों में आई होंगी। क्या थी वो चुनौतियां और किस तरीके से उन्होंने इन हर्डल्स को पार किया, जरूर जानेंगे। बस आप जुड़े रहेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। एक प्यारा सा गाना और आप कहीं मत जाना। फील गुड, फील लाइव।

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

का प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उस पर रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छत पताती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

0: तो साधु नेता।
1: इस क्या कहती हैं आप?
0: मैं सच कहती हूँ, तुम तो मेरे गुरु हो। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला।
1: आप शास्त्र पुराण भी जानती हैं?
2: मैंने क्या सिखाया है आपको?
0: क्यों नहीं सिखाया ये गीत?

0: दत्तात्रेय जैन, अब ये गीत हमसे नहीं गाया जाएगा।
1: क्यों?
0: इससे बड़ी आप कोई क्या गा सकता है? आपने तो जान डाल दिया इस गीत में।
2: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं डॉक्टर किरण मोदी जी के साथ, जो फाउंडर और मैनेजिंग ट्रस्टी हैं उदयन केयर की। डॉक्टर किरण, सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली करने जाएं तो ये बहुत मुश्किल होता है। किस प्रकार के चैलेंजेस आप फेस करती हैं? देखिए, मैं समझ सकती हूँ सबसे बड़ा चैलेंज फंड्स का रहता ही है, लेकिन इसके अलावा रिसोर्सेज को सही मायने में पहुँचाना, उन बच्चों के लिए आप माता पिता तो बनते हैं, लेकिन कई बार ना बड़ा मुश्किल होता है कि आप प्रैक्टिकली माँ बाप बन पाएं। और कई बार ऐसा भी लगता है कि कहीं इन बच्चों के दिलों में कहीं कुछ वॉइड तो नहीं रह गया, कहीं कोई वैक्यूम तो नहीं रह गया। तो किस प्रकार के चैलेंजेस फेस करते हैं आप?
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे ऐसा लगता है फंड्स एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि हम लोगों ने शुरू से डिसाइड किया था गवर्नमेंट फंडिंग नहीं लेंगे, हम लोग अपने आप अपने फंड्स रेज करेंगे, तो वो हम करते रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है मेंटल हेल्थ। यू कैन इमेजिन, एक बच्चा अपने परिवार से जब बिछुड़ता है और बिछुड़ने के बाद अपने घर से लेकर के हमारे बच्चों के घर तक पहुंचने के बीच में जो प्रक्रिया है, सड़क पर आना, सड़क पे भी टॉर्चर होना, पुलिस, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, ये सारे कुछ होते हुए फिर वो अंत में हमारे तक आते हैं, ऐसा कुछ उनको उनके मेंटल हेल्थ पे हर चीज़ का असर पड़ता है। फिर आप एक बच्चों के घर में आ जाते हैं, वहाँ पर भी अगर आपके पास अच्छे काउंसलर्स और सोशल वर्कर्स नहीं हों, तो बच्चों को उनकी मानसिक स्थितियों को कैसे उनको बचाया जाए, उनको कैसे समझाया जाए कि अपने आप पर कैसे विश्वास रखो और आगे बढ़ो, ये सारा एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। और वी आर वेरी लकी कि हमने शुरू दिन से ही मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इज इंट्रेंसिक पार्ट ऑफ उदयन घर प्रोग्राम, जिसमें हमारे पास चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकाइट्रिस्ट हैं, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं और काउंसलर्स हैं, सोशल वर्कर्स तो हैं ही, तो ये लोग सब मिलके एक टीम की तरह, और ऊपर से पेरेंट्स, मेंटर पेरेंट्स, हम लोग सब एक टीम की तरह एक एक बच्चे की बात को समझते हैं, एक केस मैनेजमेंट की तरह, बच्चे की क्या जरूरतें हैं, मानसिक जरूरतें क्या हैं, किस चीज के कारण उसको एक ट्रॉमा महसूस हो रहा है, ये ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड केयर, इसकी हम जो ट्रेनिंग है हम अपने सारे स्टाफ को दिलाते हैं, और हम लोग सब ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड केयर के अनुसार बच्चे को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बच्चे की मेंटल हेल्थ

0: प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि ये तो बहुत गहरा गांव छोड़ता है माता पिता से अलगाव, तो इसमें टाइम लगता है, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को आपस में एक परिवार की तरह वो रहें और बड़े हों, जिससे कि एक सेंस ऑफ बॉन्डिंग एंड बिलोंगिंग होगी। जब आपकी एक बॉन्डिंग होगी आपस में, तो मोर पॉसिबिलिटी कि आपको वो अकेलापन नहीं करेगा इतना ज़्यादा जितना कि खलसा। तो हम लोग ये सारा कुछ करने की कोशिश करते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि हमने एक रिसर्च किया और जिसमें निकल के आया जो बच्चे आफ्टर केयर जिनको नहीं मिलता है उनके लिए कितना नुकसानदायक है, वहीं से हम लोगों ने जो प्रोग्राम्स चालू किए आफ्टर केयर प्रोग्राम्स आउटरीच बाहर के बच्चों के साथ भी, और उसी के तहत हम लोगों ने और भी बहुत सारे जैसे केयर लीवर्स इनको बोलते हैं क्योंकि ये केयर छोड़ चुके होते हैं, तो इन केयर लीवर्स को किस तरह से आपस में जोड़ा जाए वो अपने आप में एक दूसरे के लिए बहुत बड़ा संबल बन सके। इस आइडिया से हमने पहला केयर लीवर नेटवर्क दिल्ली में चालू कराया था, आज वो इतना आगे बढ़ गया है और उसकी तरह पूरे हिंदुस्तान में 13 या 15 आफ्टर ये केयर लीवर्स नेटवर्क बन गए हैं अलग अलग शहरों में, जहाँ ये बच्चे खुद आगे ये यूथ आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। तो मेरे को लगता है सबसे बड़ा सहारा तो वही है जब आप एक दूसरे के काम आ सके।
1: वाकई डॉक्टर किरण, एक बड़ा पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगी, जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, अपनी फैमिली बनाने लगते हैं, तो क्या कभी आपको लगा कि कोई परेशानी नहीं आई, ये अपने परिवार को और ज्यादा संजो कर रख पाते हैं?
0: ऐसा तो मेरे पास कोई हमने स्टडी नहीं की है कि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये बच्चे अधिक अच्छे से अपने परिवार को संजो पाते हैं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। क्योंकि आज वैसी ही अगर आप देखिए तो शादी एक मतलब एक अजीब सा एक माहौल होता जा रहा है, एक आम परिवार में बड़ा हुआ लड़का या लड़की भी अपनी शादी को नहीं बचा पा रहे हैं, बार बार शादियाँ टूटने लगी हैं। तो इन बच्चों के लिए जिन्होंने शुरू से ही टूटे हुए परिवार देखे और कितना भी मेंटल हेल्थ की आपने करी कोशिश करी, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप इतने स्ट्रेंथ अपने आ जाए, लेकिन ये कांस्टेंट इनको हम लोग का सुपरविजन होता है, कांस्टेंट इनसे बातचीत होती है, तो काफ़ी जगह जहाँ ये प्रॉब्लम में खड़े होते हैं हम लोग इनकी हेल्प कर पाते हैं। इसमें खाली एक इमोशनल हेल्प की बात नहीं है, इसमें और भी है, जॉब छूट जाती है। अब जैसे कोविड के समय में जब जॉब छूट गई बच्चों की, कितनी उनको दिक्कतें हुई होंगी आप सोच सकते हो, क्योंकि उनके पास और कोई परिवार तो नहीं था ना, जो था ये उदयन परिवार ही था। इसी तरह बराबर किसी किसी के जीवन में आपने कमाना भी चालू कर दिया है, लेकिन अचानक एक्सीडेंट होता है और आपकी तबीयत खराब हो जाती है, उसके लिए एक बहुत बड़ा आपको हेल्प चाहिए हेल्थ के लिए। तो इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें होती ही रहती हैं जिसमें हम लोग बराबर अपने बच्चों के संग जुड़े रहते हैं, और जो बच्चे अभी कुछ लड़कियां लड़के तो 35 साल 36 साल के भी हो गए, बट वी आर स्टिल इन टच विद एवरीवन। और मुझे बड़ा गर्व है कहते हुए कि 3,500 से ज़्यादा बच्चे इन घरों से निकल चुके हैं, और इस वक्त हमारे यहाँ कम से कम भी 120 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, सो वी आर इन टच विद एवरीवन।
1: आप खुद ही सोचिए कि 1994 में शुरू हुआ ये खूबसूरत सा सफर, आज इतनी लंबी जर्नी को क्रॉस करके आज करीबन 3500 ऐसे बच्चे हैं जो अपना एक भविष्य बना रहे हैं, और आप सोचिए कितने ऐसे लोग हैं जो शायद इससे वंचित हैं। सो उन्हीं के लिए खास कार्यक्रम है कि आपके लिए एक जगह है और उसका नाम है उदयन केयर। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं डॉक्टर किरण मोदी जी के साथ, जो कि फाउंडर और मैनेजिंग ट्रस्टी है उदयन केयर की। डॉक्टर मोदी, अब एक बड़ा अहम सवाल, बहुत सारे लोग आपको सुन पा रहे हैं हमारे इस रेडियो के जरिए और बहुत सारे दिलों में भावनाएं जागी होंगी। सो अगर कोई आपके साथ वॉलंटियर करना चाहता है, कोलैबोरेट करना चाहता है, कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता है, सो एसोसिएट करना चाहता है, कैसे किया जा सकता है?
1: जी, तो हमारा सारा प्रोग्राम बहुत जबरदस्त वॉलंटियरिंग के ऊपर आधारित है। अभी हमारे और भी कई सारे प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में बात भी नहीं कर पाए हैं और आपका शायद समय खत्म हो जाएगा। बाकी प्रोग्राम्स की बात करने के लिए कभी और आप समय निकालिएगा, लेकिन आज यहाँ पर जो आपका ये प्रश्न है, हम लोग हर लेवल पे वॉलंटियर्स की आस करते हैं और उनको तलाश करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, जिससे कि वो अपना काम और अधिक अच्छे से बच्चों के साथ कर सके। अगर किसी वॉलंटियर के पास कितना समय उसके पास पॉसिबल है, उसके अकॉर्डिंगली और बच्चों की ज़रूरतों को देखते हुए हम उनके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। हमारे पास हर तरह के वॉलंटियर्स आते हैं, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट्स हों, कॉलेज इंटर्न्स हों, कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ हों। बहुत सारी कॉरपोरेट्स के साथ हमारे टाई अप हैं, जहाँ के एम्प्लॉयज़ एक प्रोग्रामेटिक वे में आकर के हमारे बच्चों के साथ जुड़ते हैं। हमारी रिसर्च स्टडीज़ में भी वॉलंटियर्स हमें चाहिए होते हैं, जो कि हमारे डेटा कलेक्ट करें। हमारे पास बहुत तरह की चीज़ें हैं जो कि वॉलंटियर्स बहुत आराम से कर सकते हैं बच्चों के साथ, बच्चों के लिए आ करके उनके साथ उनको पेंटिंग सिखाना, डांस सिखाना, कुछ भी, मतलब स्काई द लिमिट। वॉलंटियर की इच्छा होनी चाहिए कि वो समय दें, हमारे पास उनके लिए दुनिया भर के काम।
0: तो भाई, अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके पास मौका है, बहुत ही सिंपल है। यानी उदयन केयर पर जाइए और इनसे कनेक्ट हो जाइए। और अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय है जो आप इस दुनिया को देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए। जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

0: सुनो हरदीप, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे।
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: नौ बरस लंबी थी ना।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम एक लंबी जर्नी पर थे डॉक्टर किरण मोदी जी के साथ, जो कि फाउंडर और मैनेजिंग ट्रस्टी हैं उदयन केयर की। डॉक्टर किरण, ढेर सारे सवाल आपसे पूछे और आपके दिल की इतने सारे प्यार को आपने उदयन केयर का एक खूबसूरत सा नाम दिया और इतने सारे बच्चों को आप ये प्यार दे पा रही हैं। वैसे आज के जमाने में मैंने देखा है कि जमाना बहुत ही सेल्फिश हो गया है, तो जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे सभी सुनने वालों को?
1: मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जमाना ज्यादा सेल्फिश हो गया है, और खास करके जो यूथ है, जो जेंजी जिनको हम बोलते हैं, या उनके पहले वालों को मिलेनियल्स, हर एक कोई, इवन जनरेशन अल्फा, सब लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। और ये जनरेशन तो मुझे लगता है बहुत ही इस बात के लिए, उनको पता है कि हमें कुछ करने की ज़रूरत है। मैं खाली अकेला नहीं चल सकती, मेरे साथ मुझे औरों को भी लेके चलना है। जो चीज़ हम इस जनरेशन में देख रहे हैं, एक ज़माना था हम लोग भी बच्चे थे, मुझे बहुत पसंद था ये सब करना, लेकिन मैंने नहीं देखा था मेरे फ्रेंड्स में कोई भी इतना आगे बढ़ता था और कुछ करने की कोशिश करता था। लेकिन आज आप देखिए, हर स्कूल में, हर कॉलेज में ये सिखाया जाता है कि बच्चों को ज़रूर कहीं ना कहीं वॉलंटरी सर्विस करनी है। आज पेरेंट्स, अच्छे अच्छे पेरेंट्स भी चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे परिवारों से आए हैं, बहुत पैसे वाले परिवारों से आए हैं, वे भी अपने बच्चों को एक्सपोजर देना चाहते हैं कि बच्चे आएँ इन संस्थाओं में काम करें। तो मुझे लग रहा है कि ज़माना बदल रहा है, हर एक कोई कुछ करना चाहता है दूसरों के लिए। अब ये ज़माना वैसा नहीं है कि जहाँ हम खाली खुद ही का सोच रहे हैं।
0: भाई वाह, सुनकर बड़ा अच्छा लगा, और बहुत ही पॉजिटिव नोट पर किरण जी ने आज ये बताया है कि भाई चाहे वो हमारी आज की जनरेशन है या पुरानी जनरेशन है, दिलों में आज भी मानवता जिंदा है, और बस इसी आस के साथ ये कार्यक्रम भी जिंदा है। यूं ही मानवता फैलाते रहेंगे तभी हम जिंदगी में खुशियां पाएंगे। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर किरण सभी से?
1: बस यही बोलूंगी, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। आइए हमारी वेबसाइट पे आइए, वहाँ पे सारे नंबर्स लिखे हैं, हमें कनेक्ट करिए। वी विल फाइंड अ राइट प्रोजेक्ट फॉर यू एज पर योर अवेलेबिलिटी। अगर आपके पास सिर्फ एक घंटा एक हफ्ते में, उसके लायक भी प्रोजेक्ट मिलेगा। अगर आप चाहें आप 6 घंटे रोज के दें, उसके लिए भी प्रोजेक्ट मिलेगा।
0: सो स्वीट। तो भाई आपके लिए अब एक जगह है, वो है उदयन केयर। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर किरण आपसे बात करके, और एक बहुत ही खूबसूरत काम आप कर रही हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं और तहे दिल से धन्यवाद कि आज आपने अपना कीमती समय निकाला और हमसे बातचीत की।
1: मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया।
0: दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन ऐसे ही नहीं, एक प्यारा सा गाना सुना रही हूँ और आपसे वादा कर दिया कि अगले हफ्ते मैं आऊंगी आपके पास। तब तक के लिए आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: मशहूर हो जाए।
1: जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ, और आज की हमारी कहानी है काली सलवार, जिसे लिखा है सादत हसन मंटो ने।
3: दिल्ली आने से पहले वो अंबाला छावनी में थी, जहां कई गोरे उसके ग्राहक थे। इन गोरों से मिलने जुलने की वजह से वो अंग्रेजी के 10-15 शब्द सीख गई थी। इनको वो आम बातचीत में इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जब वो दिल्ली में आई और उसका कारोबार ना चला, तो एक दिन उसने अपनी पड़ोसन तमंचा चान से कहा, दिस लाइफ वेरी बैड, यानी ये जिंदगी बहुत बुरी है जिसमें खाने को ही नहीं मिलता। अंबाला छावनी में उसका धंधा बहुत अच्छा चलता था। छावनी के गोरे शराब पीकर उसके पास आ जाते थे। वो 3-4 घंटे में ही 8-10 गोरों को निपटा कर 20-30 रुपए पैदा कर लिया करती थी। अगर वो उससे कुछ रियायत चाहते तो वो सिर हिलाकर कह दिया करती थी, साहब हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आती। और अगर वो उससे जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़ करते तो वो उनको अपनी जुबान में गालियां देना शुरू कर देती। वो हैरत में उसके मुंह की तरफ देखते तो वो उनसे कहती, साहब तुम एकदम उल्लू का पट्टा है, समझा? ये कहते वक्त अपने लहजे में गुस्सा न लाती, बल्कि बड़े प्यार से उनके साथ बातें करती। यहाँ दिल्ली में जब वो आई थी, एक भी गोरा उसके घर नहीं आया था। 3 महीने उसको हिंदुस्तान के शहर में रहते हो गए थे, जहाँ उसने सुना था कि बड़े लाट साहब रहते हैं जो गर्मियों में शिमला चले जाते हैं। मगर सिर्फ 6 आदमी उसके पास आए थे, सिर्फ 6, यानी महीने में 2। और इन 6 ग्राहकों से उसने, खुदा झूठ ना बुलवाए, तो 18.5 रुपए वसूल किए थे। 3 रुपए से ज्यादा पर कोई मानता ही नहीं था। सुल्ताना ने इनमें

0: से 5 आदमियों को अपना रेट 10 रुपए बताया था, मगर ताज्जुब की बात है इनमें से हर एक ने यही कहा, भाई हम 3 रुपए से एक कौड़ी ज्यादा नहीं देंगे। न जाने क्या बात थी कि इनमें से हर एक ने उसे 3 रुपए के काबिल समझा। चुनांचे जब छठा आदमी आया तो उसने खुद उससे कहा, देखो मैं 3 रुपए एक टाइम के लूंगी, इससे एक धेला तुम कहो तो मैं ना लूंगी, अब तुम्हारी मर्जी, रहना है तो रहो वरना जाओ। छठे आदमी ने यह सुनकर तकरार ना की और उसके यहाँ ठहर गया। जब दूसरे कमरे में वो दरवाजा बंद करके अपना कोट उतारने लगा तो सुल्ताना ने कहा, लाइए 1 रुपया दूध का। उसने 1 रुपया तो न दिया, लेकिन नए बादशाह की चमकती हुई अठन्नी जेब में से निकाल कर उसको दे दी और सुल्ताना ने भी चुपचाप ले ली कि चलो जो आया गनीमत है। 18.5 रुपये 3 महीने में, 20 रुपये महीना तो इस कोठे का किराया था जिसको मकान मालिक अंग्रेजी भाषा में फ्लैट कहता था। इस फ्लैट में ऐसा पखाना था जिसमें जंजीर खींचने से सारी गंदगी पानी के जोर से एकदम नल में नीचे गायब हो जाती थी और बड़ा शोर होता था। शुरू शुरू में तो शोर ने उसे बहुत डराया था। पहले दिन जब वो शौच जाने के लिए उस पखाने में गई तो उसकी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। फारिग होने के बाद जब वो उठने लगी तो उसने लटके हुए जंजीर का सहारा ले लिया। उस जंजीर को देखकर उसने ख्याल किया, चूंकि ये खास लोगों की रहने की जगह है इसलिए यह जंजीर लगाई गई होगी कि उठते वक्त तकलीफ ना हो और सहारा मिल जाए। मगर जैसे ही उसने जंजीर को पकड़कर उठना चाहा, ऊपर खटखट की आवाज हुई और फिर एकदम पानी इस शोर के साथ बाहर निकला कि डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। खुदा बख्श कमरे में अपना फोटोग्राफी का सामान ठीक कर रहा था और साफ बोतलों में हाइड्रोकोलीन डाल रहा था कि उसने सुल्ताना से पूछा, क्या हुआ, ये चीख तुम्हारी थी? सुल्ताना का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, ये मुआ पैखाना है या क्या है? बीच में ये रेलगाड़ी की तरह जंजीर क्यों लटका रखी है? मेरी कमर में दर्द था, मैंने कहा चलो इसका सहारा ले लूंगी, पर इस मुई जंजीर को छेड़ना था कि वो धमाका हुआ कि मैं तुमसे क्या कहूँ। इस पर खुदा बख्श बहुत हंसा और उसने सुल्ताना को उस पैखाने के बारे में सब कुछ बता दिया था कि ये नए फैशन का है जिसमें जंजीर हिलाने पर सब गंदगी जमीन के नीचे धस जाती है। खुदा बख्श और सुल्ताना आपस में कैसे मिले ये एक लंबी कहानी है। खुदा बख्श रावलपिंडी का था। एंट्रेंस पास करने के बाद उसने लॉरी चलाना सीखा। चुनांचे 4 साल तक वो रावलपिंडी और कश्मीर के बीच लॉरी चलाने का काम करता था। इसके बाद कश्मीर में उसकी दोस्ती एक औरत से हो गई। उसको भगाकर वो लाहौर ले आया। लाहौर में चूंकि उसको कोई काम न मिला तो इसलिए उसने अपनी औरत को पेशे पर बैठा दिया। 2-3 साल तक ये सिलसिला जारी रहा और फिर वो औरत किसी और के साथ भाग गई। खुदा बख्श को मालूम हुआ कि वो अम्बाला में है। वो उसकी तलाश में अम्बाला आया जहाँ उसको सुल्ताना मिल गई। सुल्ताना ने उसको पसंद किया, चुनांचे दोनों का संबंध हो गया। खुदा बख्श के आने से सुल्ताना का कारोबार एकदम चमक उठा। औरत चूंकि अंधविश्वासी थी इसलिए उसने समझा कि खुदा बख्श बड़ा लक्की है जिसके आने से इतनी तरक्की हो गई। चुनांचे इस विश्वास ने खुदा बख्श की अहमियत उसकी नजर में और बढ़ा दी। यहाँ वो गोरों की फोटो खींचता रहता। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी छावनी में बहुत से गोरों से जान पहचान हो गई। चुनांचे वो सुल्ताना को वहीं ले गया। यहाँ छावनी में खुदा बख्श के जरिए कई गोरे सुल्ताना के पक्के हो गए और उसकी आमदनी भी दुगनी हो गई। सुल्ताना ने कानों के लिए बूंदे खरीदे, 5.5 तोले की 8 कंगड़ियां भी बनवा ली, 10-15 अच्छी अच्छी साड़ियां भी जमा कर ली, घर में फर्नीचर वगैरह भी आ गया। कुल मिलाकर अम्बाला छावनी में वो बड़ी खुशहाल थी। मगर एकाएक न जाने खुदा बख्श के दिल में क्या समाई कि उसने दिल्ली जाने की ठान ली। सुल्ताना इनकार कैसे करती जबकि खुदा बख्श को अपने लिए बड़ा लकी समझती थी। उसने खुशी खुशी दिल्ली जाना कबूल किया। सोचा कि इतने बड़े शहर में जहां लाट साहब रहते हैं उसका धंधा और भी चलेगा। चुनांचे जल्दी जल्दी घर का भारी सामान बेच बाज कर वो खुदा बख्श के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ पहुंचकर खुदा बख्श ने 20 रुपए पर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया जिसमें वो रहने लगे। एक ही किस्म के नए मकानों की लंबी सी कतार सड़क के साथ साथ चली गई थी। म्युनिसिपल कमेटी ने शहर का एक भाग खास वेश्याओं के लिए रख दिया था ताकि वो शहर में जगह जगह अड्डे ना बनाए। नीचे दुकानें थी और ऊपर दो मंजिला रिहायशी फ्लैट। चूंकि सब इमारतें एक ही डिजाइन की थी, इसलिए शुरू शुरू में सुल्ताना को अपना फ्लैट तलाशने में बड़ी मुश्किल होती थी। पर जब नीचे लॉन्ड्री वाले ने अपना बोर्ड घर की पेशानी पर लगा दिया तो उसको एक पक्की निशानी मिल गई। बोर्ड पर लिखा था, यहाँ मैले कपड़ों की धुलाई की जाती है। ये बोर्ड पढ़ते ही वो अपना फ्लैट तलाश लिया करती थी। इस तरह उसने बहुत सी निशानियां कायम कर ली थी। मसलन बड़े बड़े अक्षरों में जहाँ कोयले की दुकान लिखा था, वहीं उसकी सहेली हीराबाई रहती थी, जो कभी रेडियो घर में गाने जाया करती थी। जहाँ यात्रियों के खाने का सारा इंतजाम है लिखा था, वहीं उसकी दूसरी सहेली मुख्तार रहती थी। पलंग के कारखाने के ऊपर अनवरी रहती थी, जो उस कारखाने के सेठ के पास नौकर थी। चूंकि सेठ साहब को रात के वक्त अपने कारखाने की देखभाल करनी होती थी, इसलिए वो अनवरी के पास ही रहते थे। दुकान खोलते ही ग्राहक थोड़ी आते हैं। चुनांचे जब एक महीना तक सुल्ताना बेकार रही तो उसने यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी। पर जब दो महीने गुजर गए और कोई आदमी उसके कोठे पर न आया तो उसे बहुत चिंता हुई। उसने खुदा बख्श से कहा, क्या बात है खुदा बख्श, हमें आए आज पूरे दो महीने हो गए, किसी ने इधर का रुख नहीं किया। मानती हूँ आजकल बाजार बहुत मंदा है, पर इतना मंदा भी तो नहीं कि महीने भर में कोई शक्ल ही देखने ना आए। खुदा बख्श को भी ये बात बहुत अरसे से खटक रही थी, मगर वो खामोश था। वो इसके आगे कुछ कहने ही वाला था कि सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। खुदा बख्श और सुल्ताना दोनों ने इस आवाज की तरफ ध्यान दिया। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। खुदा बख्श ने लपक कर दरवाजा खोला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये पहला ग्राहक था जिससे 3 रुपए में सौदा तय हुआ। उसके बाद 5 और आए, यानी 3 महीने में 6, जिनसे सुल्ताना ने 18.5 रुपए वसूल किए। 20 रुपए महीना तो फ्लैट के किराए में ही चले जाते थे। पानी का टैक्स और बिजली का बिल अलग था। इसके अलावा घर के दूसरे खर्चे थे, खाना पीना, कपड़े लत्ते, दवा दारू, और आमदनी कुछ भी नहीं थी। 18.5 रुपए 3 महीने में आए तो उसे आमदनी तो नहीं कह सकते। सुल्ताना परेशान हो गई। 5.5 तोले की 8 कंगनियां जो उसने अंबाले में बनवाई थी आहिस्ता आहिस्ता बिक गई। आखिरी कंगनी की जब बारी आई तो उसने खुदा बख्श से कहा, तुम मेरी सुनो और चलो अंबाले में, यहाँ क्या धरा है भाई। होंगे यहाँ लाट साहब, पर हमें तो ये शहर रास नहीं आया। तुम्हारा काम भी वहाँ खूब चलता था, चलो वहाँ चलते हैं। जो भी नुकसान हुआ उसको अपना सिर सदका समझो। लो इस कंगनी को बेच कर आओ, आज रात की गाड़ी से ही यहाँ से चल देंगे। खुदा बख्श ने कंगनी सुल्ताना के हाथ से ली और कहा, नहीं जाने मन, अंबाला अब नहीं जाएंगे, यही दिल्ली में रहकर कमाएंगे। तुम्हारी चूड़ियां सब की सब वापस आएंगी। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बड़ा कारसाज है, यहाँ भी वो कोई ना कोई सबब बना ही देगा। सुल्ताना चुप हो गई। चुनांचे आखिरी कंगनी भी हाथ से उतर गई। सूने हाथ लेकर उसको बहुत दुख होता था, पर क्या करती, पेट भी तो आखिर किसी काम धंधे से भरना था ना। 5 महीने गुजर गए और आमदनी खर्च के मुकाबले चौथाई से भी कुछ कम रही तो सुल्ताना की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। खुदा बख्श भी अब सारा सारा दिन गायब रहने लगा था। सुल्ताना को इसका भी दुख था। इसमें कोई शक नहीं कि पड़ोस में उसकी 2 मिलने वालियां मौजूद थी, उनके साथ वो अपना वक्त काट सकती थी। हर रोज उनके यहाँ जाना और घंटों बैठे रहना उसको बुरा लगता था। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता उसने इन सहेलियों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया। सारा दिन वो अपने सुनसान मकान में बैठी रहती, कभी सुपारी काटती रहती, कभी पुराने फटे कपड़ों को सीती रहती, और कभी बाहर बालकनी में आकर जंगले के पास खड़ी हो जाती और सामने रेलवे रोड में खड़े और चलते इंजनों की तरह घंटों बेमतलब देखती रहती। अंबाला छावनी में जब वो रहती थी तो स्टेशन के पास ही उसका मकान था, मगर वहां उसने कभी इन चीजों को ऐसी नजरों से नहीं देखा था। अब तो कभी कभी उसके दिमाग में ये ख्याल आता कि ये जो सामने रेल की पटरियों का जाल सा बिछा है और जगह जगह से भाप और धुआं उठ रहा है, बहुत सी गाड़ियां हैं जिनको चंद मोटे मोटे इंजन इधर उधर धकेलते रहते हैं। सुल्ताना को कभी कभी ये इंजन सेठ मालूम होते थे, जो कभी कभी अंबाला में उसके यहाँ आया करते थे। खुदाबख्श से उसने कई बार कहा, देखो मेरे हाल पर रहम करो, यहाँ घर में रहा करो, मैं सारा दिन यहाँ बीमारों की तरह पड़ी रहती हूँ। मगर उसने हर बार सुल्ताना को ये कहकर तसल्ली दी, जाने मन मैं बाहर कुछ कमाने की फिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में ही बेड़ा पार हो जाएगा। पूरे 5 महीने हो गए थे मगर अभी तक ना सुल्ताना का बेड़ा पार हुआ था ना खुदाबख्श का। मुहर्रम का महीना सिर पर आ रहा था मगर सुल्ताना के पास काले कपड़े बनवाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुख्तार ने लेडी हिमल्टन की एक नए ढंग की कमीज बनवाई, उसकी आस्तीनें काली जॉर्जेट की थी, जिसके साथ मैच करने के लिए उसके पास काली सैटन की सलवार थी जो काजल की तरह चमकती थी। अनवरी ने रेशमी जॉर्जेट की एक बड़ी उम्दा साड़ी खरीदी थी, उसने सुल्ताना से कहा था वो इसी साड़ी के नीचे सफेद बॉस्की का पेटीकोट पहनेगी क्योंकि ये नया फैशन है। इस साड़ी के साथ पहनने को अनवरी ने काली मखमल का एक जूता भी लिया था जो बड़ा नाजुक था। सुल्ताना ने जब ये तमाम चीजें देखी तो उसको इस एहसास से बहुत दुख हुआ कि वो मुहर्रम मनाने के लिए ऐसा लिबास खरीदने की हैसियत तक नहीं रखती। अनवरी और मुख्तार के पास ये लिबास देखकर जब वो घर आई तो उसका दिल बहुत दुखी था। उसे ऐसा मालूम होता था कि थोड़ा सा उसके अंदर हो गया है, घर बिल्कुल खाली था। खुदाबख्श वैसे ही हमेशा की तरह बाहर था। देर तक वो दरी पर गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेटी रही, पर जब उसकी गर्दन ऊंचाई की वजह से अकड़ सी गई तो उठकर बाहर बालकनी में चली गई ताकि गमगीन ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दे। बाजार में ऐसे आदमी चलने शुरू हो गए थे जो ताक झाक करने के बाद चुपचाप घर का रुख करते हैं। ऐसे ही एक आदमी ने गर्दन ऊंची करके सुल्ताना की तरफ देखा। सुल्ताना मुस्कुरा दी और उसको भूल गई क्योंकि अब सामने पटरियों पर एक इंजन आ गया था। सुल्ताना ने गौर से उसकी तरफ देखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल उसके दिमाग में आया कि इंजन ने भी काला लिबास पहन रखा है। ये अजीबोगरीब ख्याल दिमाग में से निकालने की खातिर जब उसने सड़क की ओर देखा तो उसे वही आदमी बैलगाड़ी के पास खड़ा नजर आया जिसने उसकी तरफ ललचाई नजरों से देखा था। सुल्ताना ने उसे हाथ से इशारा किया। उस आदमी ने इधर उधर देखा और सुल्ताना से इशारों में पूछा, किधर से आऊं? सुल्ताना ने उसे रास्ता बता दिया। वो आदमी थोड़ी देर खड़ा रहा मगर फिर बड़ी फुर्ती से ऊपर चलाया। सुल्ताना ने उसे दरी पर बैठाया। जब वो बैठ गया तो उसने बातचीत शुरू करने के लिए कहा, आप ऊपर आते डर रहे थे? वो आदमी ये सुनकर मुस्कुराया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ?
1: डरने की बात ही क्या थी?
0: इस पर सुल्ताना ने कहा, मैंने ये इसलिए कहा कि आप देर तक वहीं खड़े रहे और फिर कुछ सोच कर आए। वो ये सुनकर फिर मुस्कुराया, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं तो ऊपर वाले फ्लैट की तरफ देख रहा था, वहां कोई औरत खड़ी अपने मर्द को ठेंगा दिखा रही थी, मुझे ये मंजर पसंद आया, फिर बालकनी में सब्ज बल्ब रोशन हुआ, मैं कुछ देर के लिए ठहर गया। सब्ज रोशनी मुझे बहुत पसंद है, आंखों को बहुत अच्छी लगती है। ये कहकर उसने कमरे का जायजा लेना शुरू किया। फिर वो उठ खड़ा हुआ। सुल्ताना ने पूछा, आप जा रहे हैं? आदमी ने जवाब दिया, नहीं मैं तुम्हारे मकान देखना चाहता हूँ, चलो मुझे तमाम कमरे दिखाओ। चलिए। सुल्ताना ने उसको तीनों कमरे एक एक करके दिखा दिए। उस आदमी ने बिल्कुल खामोशी से उन कमरों का मुआयना किया। जब वो फिर उसी कमरे में आ गए जहां पहले बैठे थे तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम शंकर है। सुल्ताना ने पहली बार गौर से शंकर की तरफ देखा। वो ठीक ठाक कद मामली शक्ल सूरत का आदमी था मगर उसकी आंखें सबसे अलग साफ शफाक थी। कभी कभी उसमें एक अजीब किस्म की चमक भी पैदा होती थी। गठीला और कसरती बदन था, खाकी रंग की गर्म पैंट पहने था, सफेद कमीज थी जिसका कॉलर गर्दन पर से ऊपर को उठा हुआ था। शंकर कुछ इस तरह दरी पर बैठा था कि मालूम होता था कि शंकर की बजाय सुल्ताना ग्राहक है। इस एहसास ने सुल्ताना को थोड़ा परेशान कर दिया, चुनांचे उसने शंकर से कहा, फरमाइए। ये सुनकर वो लेट गया। मैं क्या फरमाऊं? तुम ही कुछ फरमाओ, तुम ही ने तो मुझे बुलाया है। सुल्ताना ये सुनकर चकरा गए मगर इसके बावजूद उसे बेख्तियार हंसी आ गई। आप काम क्या करते हैं? शंकर ने जवाब दिया,
1: यही जो तुम करती हो।
0: क्या तुम क्या करती हो?
1: मैं कुछ नहीं करती। तो मैं भी कुछ नहीं करता,
0: सुल्ताना ने भन्ना कर कहा। यह तो कोई बात ना हुई, आप कुछ ना कुछ तो जरूर करते होंगे ना।
1: शंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तो तुम भी तो कुछ ना कुछ जरूर करती होगी।
0: झक मारती हूं।
1: तो मैं भी झक मारता हूं।
0: तो आओ झक मारे।
1: मैं हाजिर हूं, मगर झक मारने के दाम मैं कभी नहीं दिया करता।
0: होश की दवा करो, ये लंगर खाना नहीं।
1: तो मैं भी वॉलंटियर नहीं।
0: सुल्ताना यहां रुक गई। उसने पूछा, ये वॉलंटियर क्या होते हैं? जाने तुम क्या उटपटांग बातें करते हो, बोलो रहोगे?
1: इसी शर्त पर जो मैं पहले बता चुका हूं।
0: सुल्ताना उठ खड़ी हुई, तो जाओ रास्ता पकड़ो।
2: शंकर आराम से उठा, पतलून की जेबों में उसने अपने दोनों हाथ ठूंसे और जाते हुए कहा,
1: मैं कभी कभार इस बाजार से गुजरा करता हूँ, जब भी तुम्हें जरूरत हो बुला लेना, मैं बहुत काम का आदमी हूँ।
2: शंकर चला गया और सुल्ताना काले लिबास को भूलकर देर तक उसके बारे में सोचती रही। इस आदमी की बातों ने उसके दुख को बहुत हल्का कर दिया था।
0: शाम को जब खुदा बख्श आया तो सुल्ताना ने उससे पूछा, तुम आज सारा दिन किधर गायब रहे?
1: पुराने किले के पास से आ रहा हूँ, वहाँ एक बुजुर्ग कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं, उन्हीं के पास हर रोज जाता हूँ कि हमारे दिन फिर जाएं।
0: कुछ उन्होंने तुमसे कहा?
1: नहीं, अभी वो मेहरबान नहीं हुए, पर सुल्ताना मैं जो उनके खिदमत कर रहा हूँ वो अकारत कभी नहीं जाएगी। अल्लाह का फजल अगर शामिल हाल रहा तो जरूर वारे न्यारे हो जाएंगे।
2: सुल्ताना के दिमाग में मुहर्रम मनाने का ख्याल समाया हुआ था। खुदा बख्श से रोनी आवाज में कहने लगी,
0: सारा सारा दिन बाहर गायब रहते हो, मुहर्रम सिर पर आ गया है। कुछ तुमने इसकी फिक्र की कि मुझे काले कपड़े चाहिए? घर में फूटी कौड़ी नहीं, कंगनियां थी सो वो एक एक करके बिक गई। तुम ही बताओ क्या होगा, यूं फकीरों के पीछे कब तक मारे मारे फिरा करोगे? मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ दिल्ली में खुदा ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। मेरी सुनो तो आप काम शुरू कर दो, कुछ तो सहारा हो ही जाएगा।
2: खुदा बख्श तरी पर लेट गया और कहने लगा,
0: पर ये काम शुरू होने के लिए भी तो थोड़ा कुछ सरमाया चाहिए।
2: सुल्ताना ने बात काट कर कहा,
0: तुम खुदा के लिए कुछ करो, चोरी करो या डाका मारो, पर मुझे एक सलवार का कपड़ा जरूर ला दो। मेरे पास सफेद बॉस्की की कमीज है, उसको मैं काला करवा लूंगी। सफेद निनॉन का एक दुपट्टा भी मेरे पास है, वही जो तुमने मुझे दिवाली पर लाकर दिया था, ये भी कमीज के साथ रंगवा लिया जाएगा। सिर्फ सलवार की कसर है सो वो तुम किसी ना किसी तरह पैदा कर दो। देखो तुम्हें मेरी जान की कसम है, किसी ना किसी तरह जरूर ला दो। मेरा मरा मुंह देखो अगर ना लाओ।
1: मैं कहां से लाऊं, अफीम खाने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं।
0: कुछ भी करो मगर मुझे 4.5 गज काली साटन ला दो। तुम अगर चाहो तो जरूर इतने पैसा पैदा कर सकते हो। जंग से पहले ये साटन 12-14 आने गज मिल जाती थी, अब 1.25 रुपए गज के हिसाब से मिलती है। 4.5 गजों पर कितने कितने रुपए खर्च हो जाएंगे?
1: अब तुम कहती हो तो मैं हीला करूंगा।
2: ये कहकर खुदा बख्श उठा, चलो अब इन बातों को भूल जाओ, मैं होटल से खाना ले आऊं। होटल से खाना आया, दोनों ने मिलकर निपटाया और सो गए। सुबह हुई, खुदा बख्श पुराने किले वाले फकीर के पास चला गया और सुल्ताना अकेली रह गई। कुछ देर लेटी रही, कुछ देर सोती रही, इधर उधर कमरों में टहलती रही। दोपहर का खाना खाने के बाद उसने अपना सफेद निनॉन का दुपट्टा और सफेद बॉस्की की कमीज निकाली और नीचे लॉन्ड्री वाले को रंगने के लिए दे आई। कपड़े धोने के अलावा वहां रंगने का काम भी किया जाता था। ये काम करने के बाद उसने वापस आकर फिल्मों की किताब पढ़ी, जिसमें उसकी देखी हुई फिल्मों की कहानी और गीत छपे हुए थे। ये किताब पढ़ते पढ़ते वो सो गई। जब उठी तो 4 बज चुके थे, क्योंकि धूप आंगन में मोरी के पास पहुंच चुकी थी। नहा धोकर फ्री हुई तो गर्म चादर ओढ़कर बालकनी में आ खड़ी हुई। तकरीबन एक घंटा सुल्ताना बालकनी में खड़ी रही। अब शाम हो गई थी, बत्तियां रोशन हो रही थी, नीचे सड़क पर रोशन के आसार नजर आने लगे थे। सर्दी थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी मगर सुल्ताना को ये नागवार महसूस ना हुई। वो सड़क पर आते जाते टांगों और मोटरों की तरफ एक अरसे से देख रही थी। अचानक उसे शंकर नजर आया। मकान के नीचे पहुंचकर उसने गर्दन ऊंची की और सुल्ताना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सुल्ताना ने गैर इरादी तौर पर हाथ का इशारा किया और उसे ऊपर बुलवा लिया। शंकर ऊपर आया तो सुल्ताना बहुत परेशान हुई कि उससे क्या कहे। दरअसल उसने ऐसे ही बिना सोचे समझे इशारा कर दिया था। शंकर भी ऊपर चला आया जैसे उसका अपना ही घर हो। पहले दिन की तरह वो गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेट गया। जब सुल्ताना ने देर तक उससे कोई बात ना की तो उसने कहा, तुम मुझे 100 दफा बुला सकती हो और 100 दफा ही कह सकती हो कि चले जाओ। मैं ऐसी बातों पर कभी नाराज नहीं हुआ करता। नहीं बैठो, तुम्हें जाने को कौन कहता है। शंकर इस पर मुस्कुरा दिया, तो मेरी शर्तें मंजूर हैं।
1: कैसी शर्तें,
2: सुल्ताना ने हंसकर कहा। क्या निकाह कर रहे हो मुझसे।
1: निकाह और शादी कैसी,
2: ना तुम उम्र भर किसी से निकाह करोगी ना मैं। ये रस्में हम लोगों के लिए नहीं। छोड़ दो इन फिजूल की बातों को, कोई काम की बात करो।
1: बोलो क्या बात करूं।
2: तुम औरत हो, कोई ऐसी बात शुरू करो जिससे दो घड़ी दिल बहल जाए। इस दुनिया में सिर्फ दुकानदारी नहीं, कुछ और भी है।
1: साफ साफ कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो।
2: जो दूसरे चाहते हैं। शंकर उठकर बैठ गया।
1: तुम में और दूसरों में फिर क्या फर्क रहा।
2: तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं, उनमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो पूछनी नहीं चाहिए। सुल्ताना ने थोड़ी देर तक शंकर की इस बात को समझने की कोशिश की, फिर कहा, मैं समझ गई हूँ, तो कहो क्या इरादा है।
1: तुम जीते मैं हारी, पर मैं कहती हूँ आज तक किसी ने ऐसी बात कबूल ना की होगी।
2: तुम गलत कहती हो, इस मोहल्ले में तुम्हें ऐसी सादा लो औरतें भी मिल जाएंगी जो कभी यकीन नहीं करेगी कि औरत ऐसी जिल्लत कबूल कर सकती है जो तुम बगैर किसी एहसान के कबूल करती रही हो। लेकिन इनके ना यकीन करने के बावजूद तुम हजारों की तादाद में हो। तुम्हारा नाम सुल्ताना है ना।
1: हाँ सुल्ताना ही है।
2: शंकर उठ खड़ा हुआ और हंसने लगा। मेरा नाम शंकर है।
1: ये नाम भी ऊटपटांग होते हैं।
2: चलो आओ अंदर चले। शंकर और सुल्ताना दरी वाले कमरे में वापस आए तो दोनों हंस रहे थे, न जाने किस बात पर। जब शंकर जाने लगा तो सुल्ताना ने कहा, शंकर मेरी एक बात मानोगे। शंकर ने जवाब में कहा, पहले बात बताओ। सुल्ताना कुछ झेप सी गई।
1: तुम कहोगे कि मैं दाम वसूल करना चाहती हूँ, मगर कहो कहो रुक क्यों गई हो।
2: सुल्ताना ने हिम्मत से काम लेकर कहा,
1: बात यह है कि मुहर्रम आ रहा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि काली सलवार बनवा सकूं। यहाँ के सारे बखेड़े तो मुझसे सुन ही चुके हो। कमीज और दुपट्टा मेरे पास मौजूद है जो मैंने आज रंगवाने के लिए दे दिया है।
2: शंकर ने यह सुनकर कहा,
1: तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूं जिससे तुम काली सलवार बनवा सको।
2: नहीं, मेरा मतलब यह है कि अगर हो सके तो तुम मुझे काली सलवार बनवा दो।
1: मेरी जेब में तो इत्तेफाक से ही कुछ होता है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा। मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें ये सलवार मिल जाएगी।
2: लो बस अब खुश हो गई। सुल्ताना के बूंदों की तरफ देखकर शंकर ने पूछा,
1: क्या ये बूंदे तुम मुझे दे सकती हो।
2: सुल्ताना ने हंसकर कहा,
1: तुम इनका क्या करोगे, चांदी के मामूली बूंदे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए के होंगे।
2: इस पर शंकर ने कहा, मैंने तुमसे बूंदे मांगे हैं, इनकी कीमत नहीं पूछी। बोलो देती हो।
1: ले लो।
2: ये कहकर सुल्ताना ने बूंदे उतारकर शंकर को दे दिए। सुल्ताना को कतई यकीन नहीं था कि शंकर अपना वादा पूरा करेगा, मगर 8 रोज के बाद मुहर्रम की पहली तारीख को सुबह 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो शंकर खड़ा था। अखबार में लिपटी हुई चीज उसने सुल्ताना को दी और कहा, साटन की काली सलवार है, देख लेना, शायद लंबी हो। अच्छा अब मैं चलता हूँ। शंकर सलवार देखकर चला गया और कोई बात उसने सुल्ताना से ना की। उसकी पतलून में शिकने पड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। ऐसा महसूस होता था कि अभी अभी सोकर उठा है और सीधा इधर ही चलाया है। सुल्ताना ने कागज खोला, साटन की काली सलवार थी, ऐसी ही जैसी वो अनवरी के पास देख कर आई थी। सुल्ताना बहुत खुश हुई। बूंदों और इस सौदे का जो अफसोस उसे हुआ था, इस सलवार ने और शंकर के वादे निभाने ने उसे दूर कर दिया था। दोपहर को वो नीचे लॉन्ड्री वाले से अपनी रंगी हुई कमीज और दुपट्टा लेकर आई। तीनों काले कपड़े जब उसने पहन लिए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो अनवरी दाखिल हुई। उसने सुल्ताना के तीनों कपड़ों की तरफ देखा और कहा, कमीज और दुपट्टा तो रंगा हुआ महसूस होता है, पर हाँ ये सलवार नहीं है। कब बनवाई? सुल्ताना ने जवाब दिया, आज ही दर्जी से लाई हूँ। ये कहते हुए उसकी नजरें अनवरी के कानों पर पड़ी। ये बुंदे तुमने कहाँ से लिए हैं? अनवरी ने जवाब दिया, आज ही मंगवाए हैं। इसके बाद उनमें कोई बात नहीं हुई।

Radio 107.8 FM पर ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर वन। हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी डेडिकेशन से और डिटरमिनेशन से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ किसी की स्टोरी ही नहीं बताता है, बल्कि आपको मोटिवेट करता है कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। कभी ना हार कर रुकिएगा मत, हमेशा लाइफ में ट्राई करते रहिएगा, देखिएगा आपको एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। और मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा आज इस एपिसोड को फिर से लेकर आ गई हूँ, जिसमें आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। एक ऐसे लेजेंड की कहानी भी लेकर आई हूँ जिनका नाम सुनते ही इंडिया के एक आइकॉनिक स्पोर्ट की याद आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेजर ध्यानचंद की। जी हाँ, इंडिया के लेजेंडरी हॉकी प्लेयर जिनको दुनिया हॉकी का जादूगर के नाम से भी जानती है। पर उससे पहले एक सवाल आपसे, अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिया के सबसे लेजेंडरी हॉकी प्लेयर्स में से एक का नाम बताइए, तो शायद सबसे पहले जो नाम आपके दिल में आएगा वो होगा ध्यानचंद। जी हाँ बिल्कुल, इनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है इस फील्ड में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक नॉर्मल, एक यंग लड़का कैसे इंटरनेशनल हॉकी का एक ऐसा नाम बन गया जिसका जिक्र आज भी रिस्पेक्ट के साथ किया जाता है। उनकी जर्नी हमें सिर्फ हॉकी के गोल्स और विक्ट्रीज के बारे में ही नहीं बताती है, बल्कि ये जर्नी हमें बताती है कि टैलेंट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन टैलेंट के साथ ग्रेटनेस में बदलने के लिए हार्डवर्क और डिसिप्लिन भी उतना ही जरूरी है। जी हाँ, मेजर ध्यानचंद का नाम इंडियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री के गोल्डन चैप्टर्स में लिखा हुआ है। उन्होंने इंडिया के ओलंपिक स्टेज पर रिप्रेजेंट किया और इंडियन हॉकी को दुनिया के सामने एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी दी। उनके गेम की सबसे खास बात तो थी उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैट कंट्रोल। जी हाँ, हॉकी स्टिक और बॉल के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी इम्प्रेसिव थी कि स्पेक्टर्स से उन्हें देखकर हैरान रह जाते थे, और इसी वजह से उन्हें ये नाम मिला था हॉकी का जादूगर। लेकिन दोस्तों, कभी भी किसी लेजेंड की कहानी उस वक्त से स्टार्ट नहीं होती है जब वो फेमस हो जाता है। कहानी स्टार्ट होती है उस वक्त से जहां पर वो एक बिगनर की तरह स्टार्ट करता है, जब ना कोई स्पॉटलाइट होता है, ना कोई फेम, ना ही कोई तालियां, बस होती है प्रैक्टिस, पेशेंस और अपने गोल पर फोकस। मेजर ध्यानचंद की स्टोरी में भी हमें यही सब देखने को मिलता है, एक ऐसे यंग मैन की जर्नी जिन्होंने अपने टैलेंट को डिसिप्लिन के साथ डेवलप किया और धीरे धीरे इंडियन हॉकी के ग्रेटेस्ट नामों में से एक इनका नाम शामिल हो गया। और दोस्तों, आज के एपिसोड में हम सिर्फ उनकी अचीवमेंट्स को ही नहीं गिनेंगे, बल्कि उनके बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने उस मुकाम को हासिल किया। तो चलिए इसी के साथ इस जर्नी को भी शुरू करते हैं। आज बहुत सारी बातें होने वाली है इनके बारे में, पर इसी के साथ मैं लेकर आ जाती हूँ आपके लिए बेहद ही खूबसूरत गाने भी। तो चलिए पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आता है आपके लिए कुछ खास जर्नीज जो आपको मोटिवेट करती हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए शायद कुछ बातें बताती हैं जिनसे आपको लगता है ना कि आप भी कुछ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास सब कुछ होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, नहीं, हमारे पास कुछ ना होते हुए भी अगर हम मेहनत करें, लगन से अगर उसके ऊपर काम करें ना, हम भी सब कुछ अचीव कर सकते हैं। और अब जब हम मेजर ध्यानचंद जी, हाँ, उनकी जर्नी की जब हम बात कर रहे हैं, हॉकी लेजेंड की बात हम कर रहे हैं आज, तो चलिए अब लाइफ के उनके उस चैप्टर में एंटर कर रहे हैं जहाँ पर उनकी हॉकी जर्नी ने एक्चुअल शेप लेना शुरू किया था। दोस्तों, जब हम किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं तो हमें अक्सर उनकी अचीवमेंट नजर आती है, लेकिन उन अचीवमेंट्स के पीछे की जो बिगनिंग है वो शायद हम भूल जाते हैं। मेजर ध्यानचंद की स्टोरी भी एक सिंपल बिगनर से ही स्टार्ट हुई थी। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को अलाहाबाद, जो आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां पर हुआ था। उनके फादर शमशेर दत्त सिंह ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। आर्मी एनवायरमेंट की वजह से उनका जो चाइल्डहुड है एक जगह पर परमानेंटली नहीं रहा और फैमिली को अलग अलग जगहों पर रहना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि हॉकी उनकी लाइफ में कब आया। फिर दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि चाइल्डहुड में ध्यानचंद का हॉकी के साथ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कनेक्शन नहीं था। उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन भी ज़्यादा कंटिन्यू नहीं की और यंग एज में ही आर्मी को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन आर्मी ही वो जगह बनी जहाँ पर उन्हें हॉकी टैलेंट को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिली। जी हाँ, 1922 में लगभग 16 साल की उम्र में ध्यानचंद इंडियन आर्मी में सोल्जर के रूप में लगे। आर्मी में उन्हें हॉकी खेलने की अपॉर्चुनिटी मिली और धीरे धीरे उनका टैलेंट सबके सामने आने लगा। उनकी नेचुरल एबिलिटी के साथ एक और क्वालिटी थी, वो थी प्रैक्टिस करने की विलनेस। जी हाँ, वो सिर्फ मैच खेलने वाले प्लेयर ही नहीं थे बल्कि वो अपने गेम को इम्प्रूव करने के लिए कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते थे। और दोस्तों, यही वो पॉइंट है जहाँ हम उनकी जर्नी को अपनी लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। आपके पास टैलेंट हो सकता है, आप नेचुरली किसी सब्जेक्ट में अच्छे हो सकते हैं, किसी स्पोर्ट में अच्छे हो सकते हैं, या फिर कहीं तो किसी क्रिएटिव फील्ड में आपकी नेचुरल एबिलिटी हो सकती है, लेकिन टैलेंट सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर उस टैलेंट को प्रैक्टिस नहीं मिलेगी तो वो टैलेंट वहीं का वहीं रह सकता है। मेजर ध्यानचंद ने अपनी एबिलिटी को प्रैक्टिस और डिसिप्लिन के साथ डेवलप किया। उनके हॉकी स्किल्स इम्प्रूव होते गए और आर्मी के हॉकी सर्कल्स में उनकी रेपुटेशन बनने लगी। उनके खेलने के स्टाइल में बॉल कंट्रोल और ड्रिबलिंग की एक अलग क्वालिटी थी। धीरे धीरे वो सिर्फ एक आर्मी प्लेयर ही नहीं रहे बल्कि इंडियन हॉकी टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर में शामिल होने लगे। और फिर आया वो मोमेंट जब उनकी टैलेंट को इंटरनेशनल स्टेज मिलने वाली थी। जी हाँ, 1928 में इंडियन एम्स्टरडेम ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले थे। ये वो टाइम था जब इंडियन हॉकी दुनिया के सामने अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस स्टेब्लिश करने जा रही थी और ध्यानचंद की जर्नी का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट बनने वाली थी। सोचिए दोस्तों, एक यंग इंडियन आर्मी सोल्जर जो कुछ साल पहले तक अपने गेम को इम्प्रूव कर रहा था, अब ओलंपिक स्टेज पर इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा था। लेकिन उनकी स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अभी बाकी था, क्योंकि उनकी सक्सेस का एक सीक्रेट सिर्फ उनका टैलेंट ही नहीं था बल्कि उनकी प्रैक्टिस और डेडिकेशन की स्टोरी आज भी इंस्पायर करती है लोगों को। तो इसी के बारे में आगे और भी जानेंगे, पर अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम चल रहे हैं मेजर ध्यानचंद की जर्नी के साथ। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं मेजर ध्यानचंद की जर्नी के उस पार्ट पर जो उनकी सक्सेस का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन माना जाता है, और वो है प्रैक्टिस और डेडिकेशन। जी हाँ दोस्तों, एक फेमस लाइन है, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। लेकिन मेजर ध्यानचंद की लाइफ हमें इस लाइन का रियल मीनिंग समझाती है। आज जब हम उन्हें हॉकी का जादूगर कहते हैं, उनका बॉल कंट्रोल, ड्रिबलिंग और गेम्स रीडिंग और गेम रीडिंग देखकर लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन ये मैजिक किसी एक दिन का नहीं आया हुआ है, बल्कि इसके पीछे थी रेगुलर प्रैक्टिस, डिसिप्लिन और अपने गेम को बेटर बनाने की एक भूख। लेकिन दोस्तों, ध्यानचंद के बारे में एक और पॉपुलर स्टोरी बताई जाती है कि वो रात में भी हॉकी प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन स्टोरी का लेसन बिल्कुल क्लियर है कि प्रैक्टिस के लिए कमिटमेंट होना। सोचिए दोस्तों, आज हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने गोल के लिए डेली टाइम निकाल पाते हैं? बहुत कम होंगे। हाँ, बोलते हैं कि कल से स्टार्ट करूंगा, पर फिर कल आता है और हम कहते हैं कि मंडे से पक्का, और मंडे आते आते कोई नया रीजन मिल जाता है। ऐसा होता है ना हम सबके साथ। लेकिन सक्सेस के लिए सिर्फ मोटिवेशन ही काफी नहीं होती है, बल्कि मोटिवेशन कुछ टाइम के लिए आप स्टार्ट करा सकती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको कंटिन्यू करवाता है। ध्यानचंद की जर्नी में ये कंसिस्टेंसी क्लियरली दिखती है। आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हॉकी को टाइम देना, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना और मैचेस में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना, ये सब एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन मांगता है। और जब प्रैक्टिस स्टार्ट होती है तो मैच के प्रेशर में भी कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और इसी का रिजल्ट हमें उनके गेम में दिखता भी है। उनका बॉल कंट्रोल इतना इम्प्रेसिव था कि स्पेक्टर्स को लगता है कि जैसे कि हॉकी बॉल उनकी स्टिक के साथ ही चिपकी हुई हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट लेसन है कि टैलेंट आपको अपॉर्चुनिटी तो दे सकता है, लेकिन प्रैक्टिस आपको अपॉर्चुनिटी के लायक बनाती है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो डेली रिवीजन करना आपकी प्रैक्टिस है, अगर आप सिंगर हैं तो डेली रियाज करना आपकी प्रैक्टिस है, अगर आप एथलीट हैं तो डेली ट्रेनिंग लेना आपकी प्रैक्टिस है, और अगर आप किसी करियर में ग्रो करना चाहते हैं तो डेली लर्निंग आपकी प्रैक्टिस है। इसलिए अपने गोल को सिर्फ ड्रीम मत रखिए, उसके लिए एक रूटीन बनाइए। छोटी छोटी प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस होती है। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद की प्रैक्टिस ने उन्हें सिर्फ एक बेटर प्लेयर ही नहीं बनाया, बल्कि इसी डेडिकेशन ने उन्हें इंटरनेशनल स्टेज पर पहुंचाने के लिए भी रेडी किया। और फिर वो मोमेंट आया जब उनकी स्किल्स को ओलंपिक स्टेज पर दुनिया देखने वाली थी। फिर साल आया 1928, एम्स्टर्डम ओलंपिक्स। इंडिया की हॉकी टीम और ध्यानचंद का नाम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हिस्ट्री में एक नया चैप्टर लिखने वाला था, तो इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ अर्जित सिंह आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और दोस्तों आज हम सक्सेस मंत्रा में चल रहे हैं मेजर ध्यानचंद की जर्नी के साथ। अब हम मेजर ध्यानचंद की जर्नी के उस चैप्टर में आ गए हैं जहाँ पर हम उनके टैलेंट, उनके प्रैक्टिस और डेडिकेशन को दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग स्टेज में पहचान मिलने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, अब बात

के एम्स्टर्डम ओलंपिक में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता। जी हाँ, ध्यानचंद टूर्नामेंट के टॉप परफॉर्मर में से एक रहे थे। उन्होंने इंडिया हॉकी को इंटरनेशनल रेपुटेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और ये सब एक मेडल की स्टोरी नहीं थी, ये इंडिया के लिए एक न्यू बिगनिंग थी। ओलंपिक हॉकी में इंडियन टीम का डोमिनेंस आगे भी कंटिन्यू हुआ। फिर आया 1932 लॉस एंजल ओलंपिक्स, जी हाँ, जिसमें इंडिया ने एक बार फिर से गोल्ड मेडल जीता। ध्यानचंद ने उस टूर्नामेंट में भी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी थी। अब सोचिए दोस्त, एक बार गोल्ड मेडल जीतना अचीवमेंट है, लेकिन रिपीटली वर्ल्ड स्टेज पर परफॉर्म करना क्या होता है, उसके लिए टैलेंट के साथ कंसिस्टेंसी भी चाहिए। और यही ध्यानचंद की स्टोरी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। फिर आया साल 1936 जिसमें बर्लिन ओलंपिक्स आए। इस बार ध्यानचंद इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन थे। बर्लिन ओलंपिक्स का एटमॉस्फेयर भी काफी डिफरेंट था, दुनिया की नजर गेम्स पर थी और इंडिया से हॉकी में स्ट्रांग परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशंस भी थी। फाइनल में इंडिया का सामना जर्मनी से हुआ और इंडिया ने जर्मनी को 8-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। जी हाँ, ध्यानचंद ने फाइनल में 3 गोल्स को स्कोर किया। दोस्तों, ये सिर्फ एक मैच ही नहीं था, ये इंडिया हॉकी के गोल्डन एरा की एक आइकॉनिक विक्ट्री बन गई। और यहाँ हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सक्सेस मंत्रा सीखते हैं कि प्रेशर बढ़ने पर अपनी प्रिपरेशन पर ट्रस्ट करना। जी हाँ, जब आपने जनरली मेहनत की है और जब आपने अपने स्किल्स पर टाइम इन्वेस्ट किया होता है तो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आप अपना बेस्ट देने के लिए रेडी रहते हैं। ध्यानचंद की ओलंपिक जर्नी हमें ये भी बताती है कि सक्सेस एक बार मिलने के बाद रुकना नहीं चाहिए। 1928 का गोल्ड मेडल उनकी जर्नी का एंड नहीं था। फिर 1932 में भी फिर से एक बार परफॉर्मेंस दी और 1936 में कैप्टेंसी और फिर एक और गोल्ड। यानी कि सक्सेस के बाद भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जरूरी है। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी ऐसा हो सकता है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ गए, जर्नी खत्म नहीं होती। एक जॉब मिल गई, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी ग्रोथ खत्म हो गई। एक अचीवमेंट अगर मिल गई तो लर्निंग खत्म नहीं होती। रियल सक्सेस तब होती है जब हम एक अचीवमेंट के बाद नेक्स्ट गोल के लिए रेडी हो जाएं। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उसके बारे में जो है बहुत जरूरी। चलिए अब हम बात करने वाले हैं उस वजह की जिसने मेजर ध्यानचंद को सिर्फ एक सक्सेसफुल हॉकी प्लेयर ही नहीं बल्कि हॉकी का जादूगर बना दिया। दोस्तों, जब किसी प्लेयर को दुनिया लेजेंड कहती है तो उसके पीछे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी होता है। ध्यानचंद के केस में वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज थी उनका कंट्रोल, टाइमिंग, ड्रिबलिंग और गेम को समझने की एबिलिटी। उनके गेम को देखने वाले स्पेक्टर्स अक्सर उनकी स्किल से अमेज्ड हो जाते थे। वो बॉल को इतने कंट्रोल के साथ मूव करते थे कि डिफेंडर के लिए उनको रोकना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। आप इमेजिन कीजिए, एक प्लेयर बॉल लेकर ओपोनेंट के गोल की तरफ बढ़ रहा है, सामने डिफेंडर्स भी है, प्रेशर है, लेकिन फिर भी बॉल उनकी स्टिक से कंट्रोल के बाहर नहीं जा सकती थी। और यही ध्यानचंद के गेम की स्पेशलिटी थी। उनकी हॉकी सिर्फ स्पीड पर डिपेंड नहीं करती थी, उनकी टाइमिंग, बैलेंस, ऑब्जर्वेशन और इंटेलिजेंस भी थी। और दोस्तों, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट लेसन भी मिलता है कि किसी भी फील्ड में सिर्फ हार्डवर्क करना इनफ नहीं होता है बल्कि आपको अपने स्किल को स्मार्टली यूज करना भी आना चाहिए। 1936 में बर्लिन ओलंपिक से जुड़ी एक और फेमस स्टोरी भी है कि कहा जाता है कि एडोल्फ हिटलर ध्यानचंद के गेम से बहुत इम्प्रेस्ड हुए थे और उन्हें जर्मनी की तरफ से ऑफर भी देने की बात कही जाती थी, लेकिन हिस्टोरियंस के पास इस स्पेसिफिक ऑफर की स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्री कंफर्मेशन नहीं मिलती है। इसलिए रेडियो पर इस फैक्ट की तरह प्रेजेंट करने की बजाय पॉपुलरली टोल्ड स्टोरी कहना ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि ध्यानचंद का गेम इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी था कि उनके ओपोनेंट्स और स्पेक्टर्स उनकी स्किल्स को रिस्पेक्ट करते थे। और दोस्तों, फेम के बीच सबसे इंपॉर्टेंट बात तो थी कि उनकी सिंप्लिसिटी। आज जब हम किसी सेलिब्रिटी एथलीट की बात करते हैं तो फेम, फॉलोअर्स और पब्लिसिटी नेचुरली डिस्कशन का पार्ट बन जाता है, लेकिन ध्यानचंद की लेगेसी सिर्फ फेम पर बेस्ड नहीं है, उनकी आइडेंटिटी बनी थी परफॉर्मेंस और स्पोर्ट्समैनशिप से। और ये हमारे लिए भी एक पावरफुल लेसन है। आप कितने फेमस हैं ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन आप अपने काम में कितने सिंसियर हैं, कितने डिसिप्लिन्ड हैं और दूसरों के साथ कितनी ह्यूमिलिटी से बिहेव करते हैं, ये आपकी रियल पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइन।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजी स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और चलिए अब बात करते हैं हम मेजर ध्यानचंद की जर्नी के उस पहलू की जो कि है उनकी हॉकी अचीवमेंट्स के बारे में कि वो कितनी ज्यादा इंस्पायरिंग है, उनकी सिंप्लिसिटी और ग्राउंडेड पर्सनैलिटी। दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए, आपने अपने कंट्री के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है और दुनिया आपकी गेम की फैन है और आपको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इतनी फेम और रिकॉग्नाइजेशन के बाद भी अपने आप को ग्राउंडेड रखना इजी नहीं होता है, लेकिन मेजर ध्यानचंद की लेगेसी हमें ये सिखाती है कि रियल ग्रेटनेस सिर्फ अचीवमेंट में नहीं है बल्कि कैरेक्टर में भी होती है। उनका करियर इंडियन आर्मी से जुड़ा रहा है और आर्मी के डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ने उनकी पर्सनैलिटी को शेप करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हॉकी के फील्ड पर भी टीम वर्क, पेशेंस और डिसिप्लिन उनके गेम के इम्पॉर्टेंट रोल रहे। और दोस्तों ये वैल्यूज सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए ही नहीं है बल्कि आप कॉलेज में हैं, ऑफिस में हैं या टीम के साथ काम कर रहे हैं, टीम वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी हर जगह इम्पॉर्टेंट होती है। मेजर ध्यानचंद की जर्नी का एक और इम्पॉर्टेंट लेसन है कि सक्सेस मिलने के बाद भी अपने फंडामेंटल्स को मत भूलिए। आज हम सक्सेस को लेकर अक्सर नंबर मेजर करते हैं कि कितने मार्क्स आए, कितने फॉलोअर्स हैं, कितना पैकेज है या कितनी रिकॉग्नाइजेशन मिली है, लेकिन सक्सेस का एक और साइड भी है कि आपने अपने स्किल्स को कितना इम्प्रूव किया है, आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं, आप सक्सेस मिलने के बाद आप अपने दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों मेजर ध्यानचंद की लेगेसी आज भी यंग एथलीट्स को इंस्पायर कर रही है। उनके बर्थ एनिवर्सरी 29 अगस्त को इंडिया में नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन हमें स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस भी याद दिलाता है। आज के डिजिटल टाइम में हम स्क्रीन पर बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, ऐसे में स्पोर्ट्स हमें फिजिकली एक्टिव रखने के साथ डिसिप्लिन, टीम वर्क और पेशेंस भी सिखाता है। तो अगर आप किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो उसे सिर्फ कंपटीशन के लिए नहीं अपनी पर्सनैलिटी और लाइफस्टाइल के लिए भी देखिए। और मेजर ध्यानचंद की स्टोरी से एक ब्यूटीफुल लेसन भी मिलता है कि सक्सेस आपको एक बड़ा नाम दे सकती है लेकिन आपका कैरेक्टर आपको एक बड़ा इंसान बनाता है। तो दोस्तों इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ।

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ आरजे सिंह आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और अब इस सक्सेस मंत्रा में हम पहुँच गए हैं हमारे फाइनल सेगमेंट में, हमारी फाइनल इस जर्नी में जिसमें आज हम चल रहे हैं मेजर ध्यानचंद की जर्नी के साथ। पिछले सेगमेंट्स में हमने मेजर ध्यानचंद की जर्नी के यंग आर्मी सोल्जर से लेकर हॉकी के जादूगर और इंडियन स्पोर्ट्स के लेजेंडरी नाम तक बनते हुए देखा है। हमने उनकी शुरुआत, प्रैक्टिस, डेडिकेशन और ओलंपिक अचीवमेंट्स और उनकी पर्सनालिटी के बारे में जाना। लेकिन दोस्तों, आप सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि मेजर ध्यानचंद की स्टोरी से हमें लाइफ में क्या क्या सीख मिलती है। तो चलिए उनकी जर्नी से मिलने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सक्सेस मंत्रास को याद कर लेते हैं एक बार। पहला मंत्र है कि टैलेंट को प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ध्यानचंद के पास नेचुरल टैलेंट था, लेकिन उन्होंने उस टैलेंट को प्रैक्टिस के थ्रू उसको पॉलिश किया। आपके पास भी कोई टैलेंट हो सकता है, सिंगिंग का, राइटिंग का, स्पीकिंग का, स्पोर्ट्स का या फिर टेक्नोलॉजी का, लेकिन टैलेंट को स्किल बनाने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी है। दूसरा मंत्र है डिसिप्लिन को रूटीन बनाइए। मोटिवेशन हर दिन सेम नहीं रहेगा, कुछ दिन एनर्जी होगी और कुछ दिन बिल्कुल मन नहीं करेगा, लेकिन डिसिप्लिन का मतलब मन हो या ना हो, अपने गोल के लिए एफर्ट्स करना जरूरी है। तीसरा मंत्र है कंसिस्टेंसी मैटर करती है। एक दिन की हार्ड वर्क से कोई लेजेंड नहीं बनता, डेली की छोटी छोटी एफर्ट्स को मिलाकर बड़ी अचीवमेंट क्रिएट करती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई गोल है तो हर दिन उसके लिए एक स्मॉल स्टेप लीजिए। चौथा मंत्र है प्रिपरेशन पर ट्रस्ट करिए। ओलंपिक स्टेज पर परफॉर्म करना ईजी नहीं था, लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन कॉन्फिडेंस देती है। लाइफ में भी जब प्रेशर आए तो पैनिक करने की बजाय अपनी प्रिपरेशन पर ट्रस्ट कीजिए। पांचवा मंत्र है टीम वर्क और रिस्पेक्ट। इंडिविजुअल टैलेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन टीम के बिना सक्सेस डिफिकल्ट हो सकती है। लाइफ में भी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स और मेंटर्स के सपोर्ट के बिना कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता। इसलिए दूसरों को रिस्पेक्ट कीजिए और साथ में ग्रो करना सीखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट सक्सेस मंत्र है कि सक्सेस के बाद भी हम्बल रहिए। मेजर ध्यानचंद की लेगेसी हमें बताती है कि ग्रेटनेस सिर्फ मेडल और फिर अचीवमेंट से ही नहीं मिलती है, बल्कि अचीवमेंट के बाद आप कितने ग्राउंडेड रहते हैं ये आपके कैरेक्टर को डिफाइन करता है। दोस्तों, आज की कहानी हॉकी से शुरू हुई थी, लेकिन इसका मैसेज हर फील्ड के लिए है। अगर आप स्टूडेंट है तो डिसिप्लिन रखिए, करियर में है तो कंसिस्टेंसी रखिए, किसी ड्रीम के पीछे है तो पेशेंस रखिए, और अगर कभी लगे कि प्रोग्रेस स्लो है तो याद रखिए कि स्लो प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस होती है। तो आज का फाइनल सक्सेस मंत्रा कि टैलेंट आपको शुरुआत दे सकता है, लेकिन डिसिप्लिन, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी ही आपको एक्सीलेंस तक लेकर जाएगी। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और आपके लिए एक छोटा सा मैसेज कि खुद पर बिलीव कीजिए, मेहनत करते रहिए और अपने सपनों के लिए एक स्टेप लेते रहिए, तभी आप अपनी मंजिल के पास पहुंच पाएंगे। इसी के साथ मेरा वक्त हो गया है आप सभी से इजाजत लेने का। मिलूंगी अगले

हफ्ते फिर से किसी और नए सक्सेस मंत्र के साथ, किसी और नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको जुड़े रहना है रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: सिटी का जंक्शन 107.8 FM फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन, अपना रेडियो स्टेशन,
1: मन का रेडियो बजने दे जरा।
2: सिमारो विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

0: ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारूमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।
1: योर सिटी योर रेडियो फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मानोरचना 107.8 FM।
2: वेल हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार सत श्री अकाल राम राम जय माता दी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आरजे सागर आ चुका हूँ लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप लोग सुन रहे रेडियो मानोरचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइव। ये शो हर बार की तरह यही बोलूंगा बहुत खास है और होता भी है भैया, बहुत सारी चीजें आपको बताते हैं, पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं, इंडस्ट्री के बारे में आपको बताते हैं, कंपनी के बारे में बताते हैं, कंपनी की यूएसपीज के बारे में आपको बताते हैं, कंपनीज की जो फाउंडर्स होते हैं उनके बारे में आपको बताते हैं, उनके बैकग्राउंड के बारे में, उनके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बारे में, पूरी इंडस्ट्री का एक स्ट्रक्चर आपको समझाते हैं। तो एक तरीके से आप अवेयर तो हो रहे हैं, साथ साथ आप एजुकेट भी हो रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस शो इज रियली रियली स्पेशल फॉर अस। So, आज फिर से हाजिर हूँ लेकर के अपना वही शो जिसमें हम लोग वापस से शुरू करेंगे अपना पूरा प्रोसेस का, एक आप कह सकते हैं यात्रा पर निकलेंगे। इंडस्ट्री से शुरुआत करेंगे, इंडस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे, तो उसके बाद फर्दर मूव ऑन करते करते हम कंपनी की तरफ आएंगे, हम कंपनी के बारे में आपको बताएंगे, वो पूरा प्रोसेस वैसे ही चलेगा। लेकिन फिलहाल मेरा सलाम कबूल करिए, लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील लाइव।
3: ना इज्जत की चिंता ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन।
4: गुरुदेव यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए।
3: हाँ गुरुदेव।
4: ना

रुमाल बनाए, ऊपर अकेले बिल अंदर नकली घी और चाय, पॉपलीन का बदल के नंबर टेरी लीन बनाए, या बेईमानी तेरा आसरा बोल के लूटता जाए।

हीरा बन के हम सन्यासी, काम है चलते रहना, मौका है तकदीर बना लो हाँ।

महाराज पधारे, चिमटा चरक चिलम और चेले साथ साथ हैं सारे, टिकटे लेकर भी गाड़ी में खड़े शरीफ।

वेलकम बैक। आई होप आपको गाने पसंद आई। नाउ विद दिस नोट अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। मैं आरजे सागर, शो का नाम है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। दोस्तों आज के शो में जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले उसकी इंडस्ट्री को समझते हैं। सो दिस कंपनी डील्स इन फैशन टेक। फैशन टेक फैशन और टेक्नोलॉजी को मिलाकर बनी हुई एक इंडस्ट्री है, एक बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो करता हुआ सेक्टर। और इंडिया में हमें जो देखने को मिलता है फैशन और टेक्नोलॉजी का ब्लेंड, उसने लिटरली मतलब इस इंडस्ट्री को एक नई शेप दी है, एक नई उड़ान दी है, एक नई ग्रोथ दी है, जहां पर आपको बहुत सारे इनोवेटिव डिजाइंस देखने को मिलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, रिटेलिंग, इवन कस्टमर एक्सपीरियंस, सब कुछ काफी एनहेंस हुआ है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, IoT, ब्लॉकचेन, और ये बहुत लंबी लिस्ट है। तो टेक ये जो है, जब से इस फैशन इंडस्ट्री में आया है तब से इसमें बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली हैं। तो आज हम इस मार्केट को समझेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम आज की कंपनी को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं फैशन टेक मार्केट इंडिया में क्या है। देखिए, आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, डिजिटल मार्केट प्लेसेस देखने को मिलती हैं, तो ये सब कुछ हो पाता है इस एक इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी के आ जाने के बाद से, जहां पर डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक, सप्लाई चेन से लेकर मैनेजमेंट तक, रिटेल से लेकर कस्टमर एंगेजमेंट तक सब कुछ शामिल होता है। स्मार्ट टेक्सटाइल्स, वियरेबल टेक्नोलॉजी लाइक स्मार्ट क्लोदिंग, जिसमें हेल्थ को मॉनिटर किया जाता है। अब फैशन के साथ हमारी हेल्थ को मॉनिटर किया जा रहा है, हमारे हार्ट रेट को मॉनिटर किया जा रहा है, इट्स अ ग्रेट थिंग। AR/VR सॉल्यूशंस, जिसकी वजह से आप वर्चुअली ट्राई कर सकते हो कौन सा कपड़ा आपके ऊपर सूट करेगा और कौन सा नहीं करेगा, जो आपके ओवरऑल शॉपिंग एक्सपीरियंस को काफी बेहतर बनाता है। AI ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स, जो आपके हिसाब के स्टाइल आपको दिखाते हैं, आपके हिसाब से आपको फैशन जो है वो रेकमेंड करते हैं, और जैसी भी आपकी डिमांड होती है उस तरीके से आपके लिए कुछ क्रिएट करके देते हैं। देन इसके बाद सस्टेनेबल फैशन इनोवेशंस, जो टेक्नोलॉजी की वजह से हो पा रहा है, जिसमें हम वेस्ट को रिड्यूस करते हैं और प्रमोट करते हैं एथिकल प्रैक्टिसेस को। सो दिस इज फैशन टेक इंडस्ट्री इन इंडिया। अब ये मैंने आपको मेजर मेजर पिलर्स बताए कि किन किन वर्टिकल्स के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद हम ये समझेंगे कि फैशन टेक मार्केट इवॉल्व कैसे हो रही है इंडिया में। बट इन द मीन टाइम स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

0: तेरा प्यार है।
1: उम्मीद है कि आपको गाना पसंद आए। नाउ विद दिस नोट अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। मैं हूं आरजे सागर, शो का नाम है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और दोस्तों, आज की जो इंडस्ट्री है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सब कुछ आपको समझाने की यहां पर कोशिश की जाएगी। इंडस्ट्री का नाम है फैशन टेक। फैशन और टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक शब्द बना है फैशन टेक, जिसकी वजह से हमारी फैशन इंडस्ट्री इंडिया में बहुत रैपिडली इवॉल्व हुई है और अभी भी होती जा रही है। और देखिए, फैशन बहुत पहले से है, लिटरली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रही है हमारे बीच में हमेशा से। तो अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, फैशन चेंज होगा, लेकिन फैशन इस टर्म को हम सीधा लेकर जाएंगे बैक इन 100 years ago, 200 years ago, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। आप जहां तक जा सकते हैं वहां तक इसको लेकर जाइए, क्योंकि उस टाइम पर भी जब कपड़े नहीं थे हमारे पास, टेक्सटाइल नहीं हुआ करता था, लोग बनाया करते थे, अपने हिसाब से कपड़े बनाते थे, अपने हिसाब से ज्वेलरी बनाते थे। सो फैशन वॉज स्टिल देयर। अब यहां पर समझेंगे कि इंडिया में फैशन टेक कैसे इवॉल्व हुई है। सबसे पहला पॉइंट आता है शिफ्ट टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। पैंडेमिक के बाद से बहुत कुछ बदला है, हमारा ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा होता गया है और लोग भी ऑनलाइन प्रेफर करने लगे हैं, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री ग्रो हुई है। क्योंकि फैशन के साथ एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं, टेक, दैट मींस टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है पैंडेमिक के बाद, जो लोगों का टेस्ट चेंज हुआ है ऑनलाइन।

आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और प्रोडक्ट आपके घर पे, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा है। नाउ दिस इज द न्यू फैशन, मानिए इस बात को। लोग अब पूछने लगे हैं, भैया इको फ्रेंडली है क्या आपका जो कपड़ा है, क्या आप उसमें क्या किस तरह की प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, आप जिस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं आपने इस फैब्रिक को, इस टेक्सटाइल को, या जिस तरीके से आप ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कहीं आप मदर नेचर को नुकसान तो नहीं पहुंचाते हैं। या सिमिलर टू कार्स, जैसे कार्स में सेफ्टी पूछी जाने लगी है, वो एक नया फैशन बन चुका है। सो हाँ, फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। एंड देन इसके बाद अगला पॉइंट आता है जो सबसे क्रूशियल है, दैट इज पर्सनलाइज्ड कस्टमर इंगेजमेंट। देखिए, आपको पर्सनलाइज करके दिखाया जाएगा कपड़ा। मानकर चलिए आपने व्हाइट टी शर्ट देखी जो आपको थोड़ी रेट्रो वाइब देगी, तो आपको रेट्रो वाइब की ही जीन्स दिखाई जाएगी, वैसे ही शूज दिखाई जाएंगे, और जो एल्गोरिदम है वो आपके टेस्ट को समझेगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप उस प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो आपको वैसे ही वो इंगेज करके रखेगा, क्योंकि वैसे से ही ऑप्शंस आपको दिखाए जाएंगे। दैट्स हाउ ये जो इंडस्ट्री है वो इवॉल्व होती जा रही है, और हमेशा से होती आई है, आगे भी होती रहेगी। बट ये आप समझ सकते हैं कि मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है। नाउ विद दिस नोट हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक। उम्मीद कर रहा हूं जितना अभी तक आपको समझाया गया है उतना आप समझ पाए हैं फैशन टेक को। आगे बात करेंगे फैशन टेक मार्केट के हाइलाइट्स के बारे में, बट फिलहाल आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैं हूं आरजे सागर। शो का नाम है आत्मनिर्भर भारत। पेश है यहां पर ये गाने आपके लिए, फील गुड फील।

फील गुड फील लाइव। दोस्तों मेरा नाम सागर शोकन, आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की, और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवश्रवण 107.8 एफएम। तो आज की जो कंपनी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसकी केस स्टडी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, वो जिस इंडस्ट्री में डील करती है उस इंडस्ट्री का नाम है फैशन टेक। आइए थोड़े सा इसके हाईलाइट समझते हैं। पहला आता है इंटीग्रेशन ऑफ AI एंड ML, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये लिटरली मतलब बहुत तेजी से यहाँ पर जो है हमें देखने को मिला है कि हर एक कंपनी जो है इन टूल्स का सहारा ले रही है, जिसकी वजह से इनकी डिमांड बढ़ी है, नए नए ट्रेंड्स आते जा रहे हैं, कस्टमर बिहेवियर को प्रिडिक्ट किया जा रहा है, सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। तो इस वजह से आप कह सकते हैं फैशन टेक मार्केट जो इंडिया में डील करती है उसका वन ऑफ द मेजर हाईलाइट्स है इंटीग्रेशन ऑफ AI एंड ML। उसके बाद है AR VR फॉर वर्चुअल शॉपिंग एक्सपीरियंस। मानकर चलिए आपको कोई कपड़ा ऑर्डर करना है, कोई गूगल्स आपको ऑर्डर करनी है, वॉच आपको ऑर्डर करनी है, आप उसको पहले अपने घर पर चेक कर सकते हैं। आपके पास AR VR का ऑप्शन है अच्छा खासा। बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं इसमें जो लिटरली मतलब चीजों को टॉप नॉच रखना चाहते हैं और अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को अपनी सबसे पहली प्रायोरिटी समझते हैं। वहां पर आप घर से चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर वो कलर सूट करेगा, और वो कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है उतना एक्यूरेसी के साथ आपको रिजल्ट दे पाए। उसके बाद थर्ड मेजर हाईलाइट है 3D प्रिंटिंग एंड डिजिटल फैशन। ऐसे भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो आपको मौका देते हैं एक्सप्लोर करने का 3D प्रिंटिंग, जहां पर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड एक्सेसरीज, कस्टमाइज्ड अपेरल्स जो है वो बनवा सकते हैं। आप कमांड देंगे, आपको लगेगा यू आर द ओनर जिसने ये सब कुछ सेलेक्ट किया है। और एक नया बिजनेस भी स्टार्ट हुआ है इसमें, POD प्रिंट ऑन डिमांड। मतलब लिटरली लोग इन टूल्स की हेल्प से एक साइड बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं और अच्छा खासा पैसा कमा पा रहे हैं। सो या, दिस इज वन ऑफ द मेजर हाईलाइट्स इन फैशन टेक मार्केट इन इंडिया, 3D प्रिंटिंग एंड डिजिटल सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जो मेजर हाईलाइट है, दैट इज स्मार्ट वेयरेबल्स एंड टेक्सटाइल्स। देखिए मेजर हाईलाइट है, लेकिन आप सब लोग फेमिलियर हैं इस एक टर्म से, स्मार्ट वेयरेबल्स से, कि किस तरीके से हम जो है स्मार्ट बैंड्स पहनते हैं, स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं, स्मार्ट क्लोथिंग आ गई है जो हमारी ओवरऑल हेल्थ को मेजर भी करती है और साथ साथ हमें काफी ट्रेंडिंग लुक भी देती है। सो या, वन ऑफ द मेजर हाईलाइट्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत कुछ बदला है। देन उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है ये सस्टेनेबिलिटी, एंड ये चीज अगेन हर एक सेगमेंट में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी की वजह से लिटरली मतलब बहुत कुछ चेंज हुआ है, लोग अब जागरूक हो गए हैं। चाहे आप बात करें Tier 1 की, चाहे आप बात करें Tier 2 की, चाहे आप बात करें Tier 3 की, किसी भी पर्टिकुलर आप क्राइटेरिया को यहां पर पिक करें, आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी, सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात की जाने लगी है। क्योंकि सिटीजन्स को अभी समझ आ गया है कि मदर नेचर को बचाना है हमें, और ये सब कुछ हमें करना होगा बाय जस्ट सिंपली शिफ्टिंग आवर चॉइसेस। तो इसलिए शायद कंपनीज भी अभी से एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर बहुत फोकस कर रही है। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पाए हैं कि क्या क्या हाईलाइट्स है फैशन टेक मार्केट के इंडिया में। अब लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बात करेंगे ड्राइविंग फैक्टर्स की, कि कौन कौन से वो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं जो इंडिया में इस एक इंडस्ट्री को ड्राइव करते हैं और जिसकी वजह से यहां पर ये इंडस्ट्री ग्रो हो पा रही है, मतलब टूल्स की बात करेंगे। पर फिलहाल मजा लीजिए इन गानों का, क्योंकि अभी वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील।

फील गुड फील लाइव। नाउ विद दिस नोट अपने शो को आगे लेकर चलेंगे दोस्तों। मैं आरजे सागर, शो का नाम है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और आज यहां पर हम जिस कंपनी की स्टडी आपके लिए लेकर आए हैं, दैट डील्स इन फैशन टेक इंडस्ट्री, और यहां पर हम फैशन टेक को अच्छे से समझ रहे हैं फिलहाल। अब हम बात करने वाले हैं जहां पर ना, यहां पर ड्राइविंग फैक्टर्स की। पहला ड्राइविंग फैक्टर, ग्रोइंग ई कॉमर्स पेनिट्रेशन। देखिए, जितना ज्यादा ई कॉमर्स बढ़ता जा रहा है, जितनी ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स बढ़ती जा रही हैं, उतनी ही ज्यादा फैशन टेक मार्केट ग्रो होती जा रही है। रीजन, क्योंकि ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड हैं। अब जब लोग अपने फोन को इतना यूज कर रहे हैं, सब कुछ फोन पे दिख जाता है, फोन पर मल्टीपल ऑप्शंस दिख जाते हैं, इतने सारे पोर्टल्स हैं, इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, और सब आपको सारी फैसिलिटीज फोन पर ही प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, उस एक पर्टिकुलर ग्रोथ को फ्यूल मिलेगा। सेकेंड फैक्टर, राइजिंग इंटरनेट एंड स्मार्टफोन यूसेज। अब काफी अफोर्डेबल प्राइस पर आपको स्मार्टफोन मिल जाता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी गांव गांव तक पहुंच गई है। तो इन सब चीजों की वजह से अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है, स्मार्टफोन मिल गया है, ऑनलाइन फैशन शॉपिंग जो है वो एक मेन स्ट्रीम चीज बन गई है। स्पेशली अगर हम बात करें टीयर टू एंड टीयर थ्री सिटीज की, जहां पर लोगों के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है, बहुत बड़े बड़े मॉल्स नहीं होते हैं, बट स्टिल दे कैन चूज, और दुनिया के जो भी बेस्ट फैशन प्रोवाइडर्स हैं उन सब में से वो सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी तरह की चीजें जो है मॉडिफाई करा सकते हैं, अपनी पसंदीदा चीजों को एक पर्सनलाइज्ड टच वो दे सकते हैं। थर्ड जो ड्राइविंग फैक्टर है, दैट इज टेक सेवी मिलेनियल्स एंड जेन ज़ी। देखिए, यंगस्टर्स हमारी जो कंट्री है उसमें बहुत ज्यादा है, बहुत पॉपुलेशन है, 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में यंगस्टर्स की है। और यंगस्टर्स क्योंकि वो काफी इनोवेटिव माइंडसेट वाले होते हैं और उन्हें पर्सनलाइज्ड फैशन एक्सपीरियंस चाहिए, टेक सेवी भी होते हैं, और कंपनीज इन सारे क्राइटेरियाज पे खरी उतर पा रही है, तो इसकी वजह से भी ये इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। फोर्थ पॉइंट, अगेन बोलूंगा, सस्टेनेबिलिटी फोकस किया जा रहा है। अब जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी उतना ही ज्यादा वो यूएसपी बनती चली जाएगी। जो कंपनी जितना ज्यादा सस्टेनेबल मॉडल लेकर आएगी उतना ही ज्यादा तरक्की करने वाली है लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो, क्योंकि लोग अब पूछने लगे हैं लिटरली। देन उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है सरकार का सपोर्ट एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स। देखिए, सरकार के बिना कुछ नहीं हो पाता है। अगर कोई भी इंडस्ट्री ग्रो कर पाती है तो उसके पीछे बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सरकार का होता है, सरकार मुहिम चलाती है। जैसे ब्रॉडर व्यू से अगर देखा जाए तो इंडिया में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए सरकार के द्वारा, लाइक डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन सब ने मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम यहाँ पर तैयार किया जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप्स हुए, यहाँ पर स्टार्ट हुए, लोगों ने भी उनको एक्सेप्ट किया, अपने दिलों में जगह दी और डिमांड बढ़ती चली गई। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिनकी वजह से ये इंडस्ट्रीज ग्रो होती हैं, और फैशन टेक भी उसी का एक रिजल्ट है कि यहाँ पर इतना तेजी से ग्रो हो रही है। उम्मीद कर रहा हूं यू गॉट द पॉइंट। तो हमने आपको अभी पांच ऐसे ड्राइविंग फैक्टर्स के बारे में बताया, ग्रोइंग ई कॉमर्स पेनिट्रेशन, राइजिंग इंटरनेट एंड स्मार्टफोन यूजेज, टेक सेवी मिलेनियल्स एंड जेन ज़ी, फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नमेंट सपोर्ट एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स। नाउ विद दिस नोट हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे और बताएंगे आपको कुछ चीजें जो जुड़ी हुई हैं फैशन टेक से। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको गाने पसंद आए और हमारे शो को आप पसंद कर रहे हैं, और ये भी उम्मीद कर रहा हूँ साथ साथ कि आज की जो इंडस्ट्री हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर फैशन टेक, जिसमें हमारी आज की कंपनी डील करती है, उसको आप समझ पा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है उतना फेमिलियर आपको करा दें इस एक इंडस्ट्री से। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, अगर कोई नया प्लेयर आना चाहता है इस मार्केट में तो कैसे आ सकता है? मतलब देखिए, वो टोटली आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस होने वाला है, बट स्टिल जितना हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, जितनी रिसर्चेज हम कर पाते हैं, उनके आधार पर कुछ पर्टिकुलर ऐसी स्ट्रेटजीज हम आपको बता सकते हैं जिस हिसाब से आप चल सकते हैं, मतलब एक बार देखा जा सकता है। पहली रहेगी, अपनी नीश आपको आइडेंटिफाई करनी होगी। ऑल्दो फैशन टेक बहुत एक ब्रॉड कैटेगरी है, उसमें भी आपको पर्टिकुलर एक नीश सेट करनी होगी कि किस तरह का फैशन आप ऑफर करना चाहते हैं और कौन आपका टारगेट कस्टमर रहेगा। सेकंड जो स्ट्रेटजी हो सकती है, दैट इज लेवरेज टेक्नोलॉजी, क्योंकि ऑलरेडी हमें डिस्कस कर रहे हैं कि टेक बेस्ड इंडस्ट्री है और उसमें सारी कंपनीज कोशिश कर रही हैं जितना हो सकता है उतना अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस बना पाए। लाइक AI में इन्वेस्ट करते हैं, AR में इन्वेस्ट करते हैं, VR में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे एक यूनिक सर्विस, एक यूनिक प्रोडक्ट अपने कस्टमर तक पहुंचा पाए, डिलीवर कर पाए और कस्टमर को कन्विंस कर पाए कि आप यहां से खरीद सकते हैं, VR द बेस्ट। तो ये आपको करना होगा, एक बार देखा जा सकता है। थर्ड स्ट्रेटजी रह सकती है फोकस ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल है लगभग हर एक इंडस्ट्री में, क्योंकि कस्टमर इज द गॉड। अगर कस्टमर खुश है आपके प्रोडक्ट से तो वापस आएगा, बाकी लोगों को भी रेकमेंड करेगा और इस तरीके से कंपनी ग्रो करेगी। अगर कस्टमर खुश नहीं है, आपको उसकी खुशी से फर्क नहीं पड़ता, तो शायद प्रॉब्लम होगी आपके लिए, आपको चीजों को हमेशा ऑल्टर करना होगा। इसलिए हमेशा कस्टमर एक्सपीरियंस को अपनी प्रायोरिटी बनाकर चलिएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी आपकी हो सकती है कोलैबोरेट विद टेक स्टार्टअप्स। अब देखिए, समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई इंसान स्टार्ट करना चाहता है, फैशन का सेंस है, समझते हैं फैशन को, लोगों की डिमांड को समझते हैं, क्या नई चीजें आने वाली है फ्यूचर में वो देख पाते हैं, बट टेक में हाथ थोड़ा सा तंग रह जाता है। तो ऐसे में आप जो बाकी टेक स्टार्टअप्स हैं जो कटिंग एज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं हमें, उनके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू कैन जस्ट एंटर अ मार्केट जो ऑलरेडी काफी ग्रो कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी हो सकती है बिल्ड एन ओमनी चैनल प्रेजेंस, मतलब एक ऐसी आपको प्रेजेंस अपनी बनानी होगी जहां पर आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही चैनल्स पर केटर कर पाए अपने कस्टमर्स को। अगर ऑनलाइन कोई आना चाहता है उसके लिए भी आपके पास अच्छी सर्विस हो, ऑफलाइन भी आपको बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है लेंसकार्ट, स्टोर्स भी काफी अच्छे हैं और आप ऑनलाइन अगर जाते हैं तो आपको उनके पोर्टल पे भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो सबसे ट्रेंडिंग अभी है, जो आज हम लगभग हर एक सेगमेंट में देख पा रहे हैं, दैट इज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ये आपको फॉलो करना होगा क्योंकि अल्टीमेटली जो एनवायरमेंटल कॉन्शियस कंज्यूमर्स हैं वो आपकी तरफ जरूर आएंगे और वो काफी लॉयल रहने वाले हैं आपके साथ अगर आप ये वाली प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। देन इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, उसमें आपको खुद को एंगेज करना होगा, लाइक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सोशल मीडिया कंटेंट आपको बनाना होगा ताकि आप एक ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंच पाए। देन उसके बाद अंडरस्टैंड लोकल प्रेफरेंसेस, आपको ये भी समझना होगा कि इंडिया में भी बहुत सारे रीजन्स हैं और हर रीजन में किस तरह का टेस्ट लोग पसंद करते हैं। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फेस्टिवल्स, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बहुत ही जनरलाइज कर देते हैं चीजों को, लाइक नॉर्थ इंडिया का कपड़ों पहनने का तरीका अलग होता है ट्रेडिशनल क्लोथ्स की अगर बात करें, और वहीं पर साउथ इंडिया का बिल्कुल अलग होगा। तो इस तरीके से हमें समझना होगा कि किस एरिया में किस चीज की प्रेफरेंस है और रूट्स क्या बोलती है, कैसे हम उनके ट्रेडिशनल फैशन को आज के जो हमारा फैब्रिक है, आज का जो हमारा फैशन है, उसके साथ अलाइन करके उन्हें दिखा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो अगर आप फॉलो करते हैं या कोई भी ऐसा नया प्लेयर फॉलो करता है तो उसकी काफी हेल्प होने वाली है इस एक मार्केट में खुद को एस्टेब्लिश करने में, आप ट्राई कर सकते हैं। नाउ विद दिस नोट हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बात करेंगे आज की कंपनी की फाइनली।

उम्मीद कर रहा हूँ जो पूरा प्रोसेस अभी तक आपको इंडस्ट्री के बारे में बताया समझ आया है और आप ये फिगर आउट कर पाए हैं कि आपके लिए कैसे एक रोड मैप बन सकता है उस एक इंडस्ट्री में अपना कदम जमाना अगर आपको है तो। अब इसी के साथ अपने शो में आगे बात करेंगे आज की कंपनी की। फाइनली आज की कंपनी बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि ये कंपनी अब ऑपरेशनल नहीं है, बट इस कंपनी के बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी क्योंकि दिस कंपनी वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। हम आज ये की बात कर रहे हैं लेकिन बहुत पहले ये कंपनी जो है प्रिडिक्शन जैसी चीजों के ऊपर काम करती थी। डिजिटल ब्रांड के तौर पर ये कंपनी निकल के सामने आई थी। कंपनी का नाम है स्टॉक बाय लव। स्टॉक बाय लव वॉज एन इंडियन फास्ट फैशन डिजिटल ब्रांड जिसका फोकस था ट्रेंड लेड अपेरल्स के ऊपर, एक्सेसरीज के ऊपर, यंग वेमेन के लिए। जैसे उस टाइम पर, ये 2012-13 की बात हो रही है, उस टाइम पर जो मार्केट प्लेस प्लेयर्स हुआ करते थे उनके पास अपनी वैल्यू चेन नहीं हुआ करती थी, बट इस कंपनी ने अपनी खुद की एंटायर वैल्यू चेन जो है वो बनाई वहां पर। वैल्यू चेन से मेरा मतलब है डिजाइन से लेकर के सोर्सिंग से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के सेल्स तक सब कुछ इन्होंने किया बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड डेटा। फैशन क्योंकि बहुत तेजी से चेंज होता है, ठीक है, डिस्काउंट्स बहुत तेजी से आते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं फैशन वर्टिकल की जब हम बात करते हैं, क्योंकि आज हम फैशन टेक की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अपने पीक टाइम में इसने फैशन टेक के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और वही एक फंडामेंटल था कि जो ट्रेडिशनली ई कॉमर्स कंपनीज कंट्रोल करती हैं प्रोडक्शन को, उसको थोड़ा सा ब्रेक कर पाएं और नया कुछ दे पाएं फ्लेवर लोगों को। दिस कंपनी वॉज स्टार्टेड इन 2012-2013, इस फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट हुई थी 2012-13 के बीच में नई दिल्ली में, और बहुत सिंपल से थॉट के साथ कि डेड इन्वेंट्री को हटाते हैं, डिस्काउंट वॉर्स को हटाते हैं और कुछ अमेजिंग देते हैं। टेक, सप्लाई चेन, ट्रेंड डेटा, इन सारी चीजों को इन्होंने कंपाइल किया था उस टाइम पर, व्हाट एग्जैक्टली कस्टमर्स आर लुकिंग फॉर। सो दैट वॉज द टाइम जब इस कंपनी ने इस एक थॉट के साथ प्रोडक्शन अपना स्टार्ट किया, एंड इट वॉज रियली रियली रियली फास्ट विदाउट ओवर स्टॉकिंग। और ये बहुत रेयर होता है फैशन इंडस्ट्री में, अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ओवर स्टॉक होता है बॉस। इस कंपनी के पास बहुत सारे SKUs थे लेकिन ओवर स्टॉक कभी नहीं रही। सो दैट्स हाउ दिस कंपनी वॉज रियली रियली स्पेशल। सो ऑन दिस नोट लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बात करेंगे फाउंडर्स की, उन ब्रिलियंट माइंड्स की जिन्होंने इस कंपनी को जो है एस्टेब्लिश किया और आगे बढ़ाया था। बट इन द मीन टाइम स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

भारत कहानियां कामयाबी की और आप लोग सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम फील गुड फील लाइव। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं जिस कंपनी की, उसका नाम हम आपको बता चुके हैं, स्टॉक बाय लव। ठीक है, स्टॉक से मतलब STOCK वाला स्टॉक नहीं है, ये STALK वाला स्टॉक है। स्टॉक मतलब किसी को देखना, ऑब्जर्व करना, नोटिस करना, वो वाली चीज। तो नोटिस करिए, खरीदिए, प्यार करिए, सिंपल फंडामेंटल, मतलब टाइटल में ही इतना कुछ छुपा हुआ है। इस कंपनी के फाउंडर्स की अगर बात करें तो तुषार अहलूवालिया, शिखा अहलूवालिया, निश्रित श्रीवास्तव एंड आशना चोपड़ा, चार इस कंपनी के को फाउंडर्स थे। तुषार की बात करेंगे, वन ऑफ द प्रिंसिपल को फाउंडर्स जिन्होंने इस कंपनी को जो है स्टार्ट किया। ठीक है, प्रीवियसली ही वॉज पार्ट ऑफ मल्टीपल कंपनीज, मल्टीपल ई कॉमर्स वेंचर्स, इंटरनेट के पूरे इकोसिस्टम में आप कह सकते हैं कि अच्छे से समझते थे, बहुत पहले से वहां पर अच्छे खासे मजे हुए प्लेयर, मजे हुए लीडर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी जो है स्टार्ट करी, बाद में इस कंपनी को बंद करने के बाद उन्होंने दूसरी अपनी कंपनी स्टार्ट करी, बट इन्होंने अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन किया पूरे के पूरे ई कॉमर्स इकोसिस्टम में थ्रू मल्टीपल वेंचर्स। नेक्स्ट नेम इज शिखा अहलूवालिया, ये फैशन एक्सपर्ट हैं एंड शी यूज्ड टू बी वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ दिस कंपनी, जो हैवीली इन्वॉल्व थी डिजाइन में, ट्रेंड में, क्योंकि खुद फैशन की एक्सपर्टीज लेकर के आती हैं, समझती हैं फैशन को, लोग क्या चाहते हैं, लड़कियां क्या चाहती हैं, स्पेशल डेट्स पर, स्पेशल ओकेजंस पर किस तरह की चीजों की डिमांड होती है। सो दैट्स व्हाट शिखा अंडरस्टूड एंड दैट्स हाउ ये कंपनी जो है आगे बढ़ पाई थी और लोगों के बीच में अपना नाम जमा पाई थी। अदर को फाउंडर्स वर निश्रित श्रीवास्तव एंड आशना चोपड़ा, ये दोनों भी प्लेयर्स थे इस कंपनी के, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट पिलर्स, बट ये भी जो है इंटरनेट बैकग्राउंड से आते थे, रॉकेट इंटरनेट बैकग्राउंड। ठीक है, जहां पर मुलाकात हुई थी इनकी तुषार से। अब इनकी एजुकेशन की बात करें तो यहां पर मैं थोड़ा सा आपसे माफी मांगना चाहूंगा आज के लिए, क्योंकि पब्लिक सोर्सेज मैंने बहुत कोशिश करी ढूंढने की, बट लिटरली इनके एंटरप्रेन्योरियल जो पूरा ट्रैक था उसके ऊपर तो फोकस किया गया, बट स्पेसिफिक डिग्रीज के ऊपर फोकस नहीं किया गया। लेकिन इतना पता है, ये चारों ही लोग डिजिटल बैकग्राउंड से आते थे एंड ये इन चारों लोगों का आप कह सकते हैं कोर एक्सपर्टीज थी, और चारों फैशन को समझते थे, फैशन में कुछ नया करना चाहते थे, लोगों को नया टेस्ट, नया फ्लेवर देना चाहते थे। दैट्स हाउ दे स्टार्टेड दिस वेंचर टुगेदर, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द लिमिटेड पब्लिक अवेलेबिलिटी ऑफ देयर डिटेल्स, हम बहुत ज्यादा जानकारी नहीं जुटा पाए एंड मोर ओवर कंपनी भी अब ऑपरेशनल नहीं है, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। बट उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक जितना आपको बताया उतना आप समझ पाए हैं कि एक्सपीरियंस वो अलग अलग जगह से गेन करके आए एंड कैसे वो आगे जाके आपके काम आता है। लेते हैं अब एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आज का हमारा ब्रांड है स्टॉक बाय लव। अब इस कंपनी के हम यूएसपीज की बात करेंगे। फर्स्ट प्राइम यूएसपी, वर्टिकल इंटीग्रेशन। होता क्या है, फैशन इंडस्ट्री में अधिकांश कंपनी ऐसे ऑपरेट करती हैं कि थर्ड पार्टी ब्रांड्स जो होते हैं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स उनके पास होते हैं। अब वहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे लूपहोल्स होते हैं, सप्लाई चेन को संभाल पाना बहुत बड़ा टास्क होता है एक्चुअली। इन्वेंट्री ओवर स्टॉक ना हो जाए, अंडर स्टॉक ना रह जाए, ठीक है, स्टॉक आउट ना हो जाए, ये सारी चीजें होती है। बट इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने थर्ड पार्टी ब्रांड्स के ऊपर रिलाई ही नहीं किया। हर एक आइटम इनका खुद से डिजाइन किया, खुद से सोर्स किया, खुद से प्रोड्यूस किया, विद इन देयर टाइम, बाय देयर ओन सप्लाई चेन, ठीक है। फास्टर रिलीज इनकी हुआ करती थी, डिजाइन को 8 से 14 दिन का ये बनाया करते थे। ट्रेडिशनली हुआ करता था 45 से ज्यादा डेज का रखा करते थे, एक टैट रखा करते थे टर्न अराउंड टाइम, कि 45 दिन में ये स्टॉक बिक जाएगा। लेकिन इनकी स्ट्रेटेजी थी कि 14 दिन में, 8 से 14 दिन ये मैक्सिमम टाइम हमें लेना है, और इस टाइम पीरियड में हमें अपना सारा स्टॉक सेल करना है। डेटा ड्रिवन डिसीजंस थे इनके, ठीक है, क्या बनाना है ताकि बहुत हैवीली जो है डिस्काउंट करने की नौबत ही ना आए कि आपके पास डेड स्टॉक पड़ा हुआ, आपको डिस्काउंट लगाना पड़ रहा है। ये डेटा ड्रिवन फैसले लिया करते थे। सेकंड यूएसपी वाज टेक लेड ऑपरेशंस, ठीक है। यहाँ पर ये डिजाइन को मैनेज करने के लिए, डिमांड फोरकास्टिंग करने के लिए, प्रोडक्शन प्लानिंग करने के लिए रियल टाइम में लिटरली मतलब टेक का इस्तेमाल करते थे। टेक को अपने डिजाइन इस तरीके से किया हुआ था, एल्गोरिथम को इस तरीके से डिजाइन किया हुआ था कि ये अपनी सारी चीजों को यहाँ पर फॉरकास्ट कर सके और समझ सके कस्टमर कब क्या मांगेगा, उसके आधार पर एक लमसम जो है टाइम पीरियड में चीजें बना दिया करते थे और उसको सेल किया करते थे। ट्रेंड फोकस्ड, थर्ड यूएसपी, ठीक है। दे चेज्ड हाइपर ट्रेंडी कलेक्शंस, जहाँ लिटरली मतलब जो यंग फीमेल कंज्यूमर्स थी इनके पास, एंड जाहिर सी बात है कि फीमेल कंज्यूमर्स के पास ऑप्शन ज्यादा होने चाहिए, दैट इज द थंब रूल। तो यहाँ पर जेनरिक स्टाइल के ऊपर गए नहीं, ये उसके ऊपर गए कि जो यंग फीमेल्स हैं उनको क्या चीज रेजोनेट करेगी, क्या चल रहा है मार्केट में, क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, संभावना के ऊपर बहुत ज्यादा इन्होंने खेला। एंड फोर्थ यूएसपी वाज मार्जिनल इकोनॉमिक्स, ठीक है। खुद की सप्लाई चेन थी तो जाहिर सी बात है बहुत कम प्रमोशन के साथ भी ये काम कर सकती थी। मतलब मोरओवर इट्स नॉट अबाउट द प्रमोशन, इट्स अबाउट कि इन्होंने वो चीज एक्सेल कर ली थी कि 14 दिन में स्टॉक बेचना है। अब बना भी खुद रहे हैं, डिजाइन भी खुद कर रहे हैं, सोर्स भी खुद कर रहे हैं, भेज भी खुद ही रहे हैं, एंड कस्टमर तक जा रहा है, सेल भी खुद ही कर रहे हैं। सो दे डिडंट नीड एनीवन। तो वो एक चीज इन्होंने एक्सेल करी थी, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि वो एक तरीके से कस्टमर को भी फायदा होगा, क्योंकि जब आप इनहाउस से सारी चीजें कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप कस्टमर के लिए वो पॉकेट फ्रेंडली चीज हो सकती है। दैट वॉज अ थिंग। अब इसी के साथ वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कंपनी के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। लेकिन जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक, मैं सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी, और आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानवश्ना 107.8 के साथ। फास्ट फैशन रिटेल गेम की हम लोग यहां पर अब बात करेंगे, क्योंकि हमारी कंपनी जो है वो अब ऑपरेशनल नहीं है। कंपनी बंद हुई, कंपनी बहुत अच्छी थी, कंपनी एक्चुअली सारी चीजें एक्सेल करके आई थी, लेकिन उसके बावजूद क्या प्रॉब्लम हुई? देखिए, फास्ट फैशन रिटेल गेम है ना जो, ये बहुत ब्रूटल है, केवल भारत में नहीं, ग्लोबली इन्वेंटरी रिस्क होता है, ठीक है। कॉम्पिटिशन, मतलब यकीन मानिएगा कि बहुत भयंकर कॉम्पिटिशन होता है। चीप इम्पोर्ट्स आते हैं, हैवी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट आती है, जिससे मार्जिन्स जो है स्क्वीज हो जाते हैं। स्टॉक बाय लव के साथ क्या हुआ, फंडिंग नहीं मिली फर्स्ट थिंग, ठीक है, उस टाइम पर, क्योंकि बहुत ज्यादा उनको नहीं लगा होगा, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा कि ये इतना फास्ट पेस चल रहे हैं तो क्या कारीगर होगा, नहीं होगा, वो सारे ऑप्शंस वहां पर जो है उन्होंने वे किए होंगे, तो शायद नहीं किया होगा इन्वेस्ट। बट हाँ, मेजर एक फंडिंग राउंड के थ्रू इनको आप कह सकते हैं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। कंपनी ने रिपोर्टेडली, जो रिपोर्ट्स बोलती हैं, वेंडर्स को पैसे नहीं पे कर पाए थे, इन्फ्लुएंसर्स को पैसे पे नहीं कर पाए थे, ऑर्डर्स फुलफिल नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से बहुत सारी ऑनलाइन कंप्लेंट्स आई थी और ऑपरेशनल कोलैप्स वहां पर हुआ। तो कहीं कोई लूप होल रहा उनके एंड पर, जहां से वो सारी की सारी साइकिल जो है वो ट्रैक से उतर गई और अनफॉर्चुनेटली कंपनी को बंद होना पड़ा। कंपनी इज अगेन आई एम सेइंग नो लॉन्गर एक्टिव, अपना ऑपरेशन शट डाउन कर चुके हैं आफ्टर क्रैश एंड फंडिंग इश्यूज, बट बहुत कुछ सिखा कर गए हैं कि फैशन इंडस्ट्री में नई डेफिनेशन क्रिएट की जा सकती है, बट वो गलती जो इन्होंने करी वो नहीं करनी है, उससे आगे बढ़ना है और उससे सीख करके आगे जाना है और तब जाके जो है अपना नाम कमाना है। तो ट्रेंड फॉलो करिए, वो सारी चीजें फॉलो करिए, लोगों को क्या चाहिए वो दीजिए, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी सारी चीजें बिल्कुल मैं कहूंगा टिप टॉप रखनी होंगी, ताकि कोई ऐसी नौबत ना आए कि कंपनी को बंद करना पड़े, ऑपरेशंस को बंद करना पड़े। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की चीजें हम लोग आपको समझा पाए हैं। फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो को कंक्लूड करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक, मैं सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की, फील गुड फील लाइव। सो अब बात करेंगे थोड़ा सा आपके लिए इनसाइट्स की, कुछ बात करना चाहूंगा मैं यहाँ पर। टेक की अगर आप बात करते हैं फैशन इंडस्ट्री में, इट्स नॉट जस्ट कोड, इट्स सप्लाई चेन, दैट इज द मेन टेक, दैट इज द मेन टेक्नोलॉजी जो एक्सेल करना होता है किसी भी एक एंटरप्रेन्योर को। अगर आप लॉजिस्टिक्स को नेल नहीं कर पाएंगे, इन्वेंटरी को नेल नहीं कर पाएंगे, तो टेक्नोलॉजी अकेली आपको नहीं जिता पाएगी इस गेम में। दैट इज द ब्रूटल ट्रूथ, ऑनेस्टली बॉटम लाइन यही है। फास्ट फैशन इज अ मार्जिन वॉर, जो छोटे प्लेयर्स होते हैं ना उनको इजीली क्रश कर दिया जाता है, क्योंकि ग्लोबली बहुत सारे जायंट्स बैठे हुए हैं, चीप इंपोर्ट्स कर दिए जाते हैं। तो अगर जो स्मॉल प्लेयर्स हैं अगर वो इजीली स्केल अप नहीं करेंगे, जल्दी से स्केल अप नहीं करेंगे, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। इसलिए स्केल अप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस एक गेम में, और फंडिंग की यहां पर गारंटी होती नहीं है। इवन आपके पास वीसी की बैकिंग है, एक स्टार्टअप का ऑपरेशन तब भी फेल हो सकता है, बिकॉज फास्ट फैशन की बात कर रहे हैं हम लोग। अपने आप में बहुत ब्रूटल एक इंडस्ट्री हो जाती है वो, जहां पर लिटरली एक वॉर जोन जैसा आपको कंपटीशन नजर आएगा। सो दिस कंपनी वॉज एक्चुअली एन अटेम्प्ट टू मर्ज फैशन सप्लाई चेन एंड टेक टू रीराइट हाउ ऑनलाइन अपेरल्स वर मेड एंड सोल्ड इन इंडिया। उस एक दास्तान को दोबारा लिखने के लिए नई परिभाषा से ये कंपनी आई थी। अनफॉर्चुनेटली इट कुडंट वर्क आउट दैट वे, बट ठीक है, बहुत कुछ हमें सिखा करके गई। सो या हियर वी वांट टू थैंक दिस कंपनी स्टॉक बाय लव, जिन्होंने इतना कुछ हम इंडियंस को नया करके दिखाया 2012-13 में। नाउ ऑन दिस नोट दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं आज का शो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। फिलहाल अपने शो को यहां पर कंक्लूड करना चाहेंगे, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। अपना ख्याल रखिए तब तक। नाउ दिस इज योर दोस्त एंड होस्ट आरजे सागर साइनिंग।

0: यहाँ तो नहीं आया बेटी, पुल पे होगा शायद।
1: पुल पे? वहाँ अकेला क्या करे?
2: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
3: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
4: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप, मैं हूं साक्षी आपके साथ और प्रोग्राम ऑल इज वेल लेकर के आई हूं। और आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, सीजनल फ्लू या H1N1 क्या है, और आजकल केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, और ये जो ऐसे जो हमें फील हो रहे हैं, ये बॉडी में जो इतने चेंजेस आ रहे हैं, सर्दी खांसी आम है या फिर ये H1N1 है, क्या सही है या क्या नहीं सही है, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए या कौन सी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, क्या खुद से मेडिसिन लेना सही है, ये बहुत सारे सवाल हमारे मन में आ रहे हैं। और ऐसे में देखिए हॉस्पिटल्स में भी केसेस बढ़ रहे हैं और साथ ही हम सोच ये रहे हैं कि घर पर ही इसे ट्रीट कर लें, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं है कि अगर ये H1N1 हुआ या कोई और कोई बड़ी बीमारी हुई तो इसका खतरा कितना बड़ा हो सकता है। और आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं आज के हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर रोहित मुखर्जी, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन। डॉक्टर, सबसे पहले तो मैं एक स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
5: थैंक यू फॉर हैविंग मी मैम।
4: डॉक्टर, जो हमारा पहला सवाल है आपसे, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि आजकल सर्दी खांसी जुकाम बुखार बहुत ज़्यादा आम हो रहा है, तो ये आजकल जो मौसम बदल रहा है तो ये सीजनल फ्लू है या फिर H1N1 का खतरा?
5: तो मैम, जैसा कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, यूजली हमारे इंडिया दिल्ली NCR में जो चेंजिंग वेदर होता है वो डिफाइन होता है जुलाई अगस्त सितंबर एंड देन वो जो स्मोकी सीजन होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो मैम यूजली इस चेंजिंग वेदर में बहुत रैम्पेंट हो जाता है वायरल का एक से दूसरे में जंप करना, जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉस इन्फेक्टिविटी जो होती है। यूजली हर साल मैम ये इन्फ्लुएंजा ही होता है और इन्फ्लुएंजा ही H1N1 होता है, बट एवरी 2 to 3 ईयर्स इन्फ्लुएंजा अपने आप को म्यूटेट यानी कि धीरे धीरे चेंज करता है। तो जैसे ही चेंज करता है और वो एक समय ऐसा आता है कि वो ऐसा विरुलेंट यानी बहुत ही इन्फेक्टिव वैरायटी जब बन जाती है तब ये रैम्पेंटली फैलता है, जो कि हमारे यहाँ पे अभी देख रहे हो आप कि बहुत ज्यादा पैंडेमिक जैसा हो गया ये।
4: करेक्ट।
5: तो इन्फ्लुएंजा और H1N1 एसेंशियली सेम ही है, बट एवरी 2 to 3 ईयर्स और 4 ईयर्स वो ऐसा चेंज हो जाएगा कि बहुत रैम्पेंटली फैलेगा। अब आती है बात मैम सवाल कि ये इस बार ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो इस बार मोस्ट लाइकली मैम एंटीजेनिक इसको शिफ्ट कहते हैं, जिसमें इन्फ्लुएंजा का जो DNA लेवल जो है वो पूरा जो है वो शिफ्ट करके बहुत ही ज्यादा इन्फेक्टिव वराइटी का बन गया है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग सिक पड़ रहे हैं। तो ये रीजन है मैम कि चेंजिंग वेदर में क्यों फैलता है और ये इस बार क्यों ज्यादा कर रहा है।
4: डॉक्टर, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि अगर इसके सिम्टम्स की बात करें, क्योंकि बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं और इसी वजह से लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, घर पर ट्रीट कर रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम जब बढ़ जा रही है और एक स्टेज तक पहुंच जा रही है तब रियलाइज हो रहा है कि नहीं, शायद से अब अलार्मिंग है, तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं वो जरा हमें बताएं।
5: तो मैम इस सीजन में आप देखेंगे कि हम यूजली इन्फ्लुएंजा जो कॉमन फ्लू होता है वो होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, सबके मैम सिम्टम्स शुरुआती सेम ही होते हैं, फीवर होता है, बॉडी एक होता है। इन्फ्लुएंजा में मैम यूजली जैसे किसी को अंडरलाइंग अगर एस्थमा है या ब्रीदिंग इशू है तो उसको खांसी ज्यादा होगी, हो सकता है उसको सांस का इशू भी हो, बलगम आए, ये सारी चीजें मैम बहुत कॉमन है इन्फ्लुएंजा में होना, जो कि ओवरलैप करती है डेंगू और चिकनगुनिया से, बॉडी एक और फीवर के साथ। अब हम डिसाइड ये करना है कि यूजली सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, खुद से ही ठीक हो जाती है 90% लोगों में, 10 to 15% वारंट हॉस्पिटल विजिट्स या फिर हॉस्पिटल में ओपीडी में दिखाना, या इवन लेस देन 5% विल रिक्वायर एडमिशंस। अब वो कब मैम अपने को इवैल्यूएट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि हमें हॉस्पिटल जाके मिलना है। तो अगर मैम फीवर इज बियॉन्ड 3 days अगर आ रहा है, इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू योर कन्वेंशनल पैरासिटामोल, खांसी में कहीं बलगम में खून आ जाता है, या ब्रीदिंग इशू बढ़ जाता है प्रोग्रेसिवली, या फिर वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है और ओरल इंटेक डाउन हो जाता है, तो ये सारी चीजें हैं मैम कि इन पेशेंट्स को तुरंत ही अपने नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाना है ताकि वो बेसिक इन्वेस्टिगेट कर सके अपना, जैसे कि एक अपना एक्सरे हो गया जस्ट टू सी द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज एंड मेडिसिन इमीजिएटली स्टार्ट कर सके. घर पे बैठे बैठे मैम ये सारी जो एंटीवायरल्स एंटीबायोटिक्स और मल्टीविटामिंस और ये जो एनसेड्स करके दवाइयां होती हैं जिनसे फीवर टूटता है, ये घर पे बिल्कुल स्ट्रिक्टली नहीं लेनी है. क्योंकि मैम यूजली डेंगू में जो पेशेंट्स होते हैं या फिर जिनको मैम लिवर का इशू होता है या जिनका खून पतला होता है या फिर जो एंटी प्लेटलेट्स पे होते हैं या जिनको पेट में कहीं पे पॉलिप होने का जिसको पता भी नहीं होगा होगा और उसने अगर एनसेड ले लिया और बाई चांस उसका खून ज्यादा पतला हो गया तो उनको मैम ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है जो बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है.
4: बिल्कुल डॉक्टर, बहुत ही सारी जानकारी आप हमें दे रहे हैं, लोगों से साझा कर रहे हैं, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक लूंगी जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें, तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील लाइफ.
6: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए. डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह छूकूद करेगा तो मर जाएगा. क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
7: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है. ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं.

धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, स्पंदीबा तवारिश। यहां हमारा इंटरवल होता है, ये तो अंतरत यानी कि वक्फा मध्यांतर। यह इंटरवल हो सकता है 15 मिनट का है, या 15 घंटे का, या 15 महीने का, लेकिन जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ, जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जाइएगा नहीं, मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं, चाहिए।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं ऑल इज वेल. और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर रोहित मुखर्जी, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से. डॉक्टर, बहुत सारी बातें हो रही है H1N1, ये बहुत बड़ा एक आजकल केस जो है ये फैला हुआ है, हर जगह इसके केसेस हमें नजर आ रहे हैं. बीमारी इतनी बहुत जल्दी जल्दी फैल रही है. मैं आपसे जानना चाहती हूँ ये स्प्रेड कैसे हो पा रहा है इतनी जल्दी, क्योंकि एक जने को है दूसरे जने को बहुत तेजी से फैल रहा है, और किस तरह से वो भी हमें बताएं.
1: यूजली मैम H1N1 जो इन्फ्लुएंजा ए या बी है वो एक से दूसरे से मैम जो स्प्रेड करता है वो एयर ड्रॉपलेट मैकेनिज्म होता है. अब एयर ड्रॉपलेट मतलब मैम आप और मैं अगर लेट्स से विद इन 6 feet की अगर दूरी पे हैं एंड इफ आई एम इन दैट सेम क्लोज एनवायरनमेंट एज यू, और अगर मैं खांसी कर रहा हूँ या मैं छींक मुझे आ रही है या मैं बात कर रहा हूँ या मेरे से सांस लेते हुए अगर कोई ड्रॉपलेट्स नाक से निकल रहे हैं मुंह से निकल रहे हैं तो दे विल बी सस्पेंडेड इन द एयर. तो वंस दोस सस्पेंडेड एयर ड्रॉपलेट्स व्हिच आर कैरिंग द पार्टिकल्स viral particles they get deposited जब वो आपके नाक या आपके गले के जो लाइनिंग होती है जब उस पर डिपॉजिट हो जाएगा तो फिर दो चीजें डिटरमिन होती हैं कि या तो वो वहीं पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा या वो वहां से ब्रीच करके बैरियर को अपना अंदर पाथ अपना डायरेक्ट कर लेगा. अगर वो न्यूट्रलाइज हो गया तो दैट मींस कि अब आप प्रोटेक्टेड हो. ये सारी चीजें प्रोटेक्शन हम लोग इम्पार्ट कैसे कर सकते हैं, मास्क से, वैक्सीनेशन से, अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखने से, एंड दैट्स अबाउट इट. अगर मैम ये वायरल पार्टिकल जो डिपॉजिट हुआ था इसने जो अपना बैरियर है इसको ब्रीच करके अंदर एंट्री ले ली तो फिर मैम ये क्रॉस अपना पूरी बॉडी में स्प्रेड करेगा, वायरल पार्टिकल्स मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके मैम ग्रेजुअली फिर वो पूरा एक सिकनेस सिंड्रोम जो होता है वो मैनिफेस्ट करेगा.
0: बिल्कुल.
1: तो ये मैम एक से दूसरे से जो स्प्रेड होता है ये एयर ड्रॉपलेट मैकेनिज्म से होता है.
0: बिल्कुल डॉक्टर, कोविड का जो खतरा था उसकी वजह से भी लोग काफी ज्यादा परेशान रहे थे उस टाइम पर, अगर हम COVID-19 की बात करें. अब आ गया है H1N1, सिम्टम्स काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ क्या ये भी उसी की तरह खतरनाक है, क्या इससे भी उतना ही डर उतना ही खतरा हमें महसूस करना चाहिए और उतनी सावधानी हमें रखनी चाहिए जितना कोविड के टाइम पर था.
1: मैम कोविड और इन्फ्लुएंजा एसेंशली जो एक से दूसरे फैलने का तरीका है वो सेम ही है, बट केस फैटलिटी रेट मतलब अगर 100 लोगों को कोरोना होगा और 100 लोगों को इन्फ्लुएंजा होगा तो देखा जाए तो कोविड का ज्यादा केस फैटलिटी रेट हाई था क्योंकि वो बिल्कुल ही हमारे लिए नया था बिकॉज वी वर नॉट एक्सपोज टू दैट प्रायरली.
0: करेक्ट.
1: इन्फ्लुएंजा का मैम इतना हाई इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग एवरी ईयर वी गेट एक्सपोज टू इट. इट इज जस्ट दैट ग्रेजुअली व्हेन द डीएनए ऑफ द वायरस चेंजेस टू दैट एक्सटेंट कि वो ज्यादा विरुलेंट हो जाता है तो फिर वो ज्यादा थोड़ा तंग हमें कर जाता है, जैसे ज्यादा दिन के लिए बुखार, ज्यादा बदन दर्द, ज्यादा दिन के लिए खांसी, ये सारी चीजें वो दे जाता है. अगर आप 1-on-1 कंपेयर करो तो कोविड वाज फार मोर फेटल देन इन्फ्लुएंजा फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस, जैसे कि उसमें खून को क्लॉट थक्के बनाने की कैपेबिलिटी थी. उसके अंदर मैम बेसिकली इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स यानी बॉडी के अंदर अपना एक ऑटो इम्यून यानी जलन का पदार्थ बनाने का रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा था. इन्फ्लुएंजा में नहीं है. तो जो कोविड में जान जाती थी वो यूजली क्लॉट्स या फिर अपना सेल्फ इम्यूनिटी को अनचेक्ड फ्लेयर होना उसकी वजह से प्रॉब्लम आती थी. इन्फ्लुएंजा में ये चीज नहीं देखी जाती. इन्फ्लुएंजा में यूजली देखा जाता है जो नॉर्मल वायरल करते हैं ये लोग अपना वायरस जो है यूजली अपना बॉडी एक बहुत ज्यादा करेगा, कफ कर सकता है और बहुत दिनों के लिए जनरलाइज बॉडी एक वीकनेस ये कर सकता है. दैट्स अबाउट इट.
0: जी, कई सारे लोग हैं ऐसे जो इसको बहुत ही ज्यादा नॉर्मल ले रहे हैं या फिर इसके बारे में इतना नहीं, लापरवाही जो है वो दिखा रहे हैं. लेकिन लापरवाही अगर आप दिखा रहे हैं तो इसका जो खामियाजा है आप ही को भुगतना पड़ेगा. इसीलिए कोशिश कीजिए अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगती है और अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन बहुत ही अलार्मिंग है तो कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और एक सही मेडिकेशन लें, अपने आप सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना लें. चलिए इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम. फील गुड फील लाइफ.
2: सिमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए.

0: वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं ऑल इज वेल. और बहुत सारी आज हम बातें कर रहे हैं. हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं डॉक्टर रोहित मुखर्जी, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन, SSB हार्ट एंड मस्ती स्पेशलिटी हॉस्पिटल से. बहुत सारी बातें हो रही हैं डॉक्टर आपसे, और मैं अगला सवाल अब आपसे जानना चाहूंगी. H1N1 का खतरा काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें यह खतरा जो है ज़्यादा जो है रिस्क फैक्टर में वो आते हैं, वो हमें बताएं.
1: यूजली मैम जो OPD में हम लोग देखते हैं, यूजली जो 18 to 35, 45, 55 तक, दीज आर पेशेंट्स हु वुड यूजली रिस्पॉन्ड टू OPD ट्रीटमेंट्स. ये लोग अपना OPD में ही अपना दवाई लेके ठीक हो जाते हैं. अज्यूमिंग मैम somebody has, किसी को एस्थमा है, किसी को शुगर है, किसी को प्रायरली कभी कोविड निमोनिया की वजह से लंग्स में कोई डैमेज फाइब्रोसिस था, या किसी को पहले TB था, या कोई डायबिटिक हाइपरटेंसिव किडनी डिजीज, या फिर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट है, तो ये सारे पेशेंट्स मैम ज्यादा वल्नरेबल रहते हैं कि इनके अंदर सिवेरिटी ज्यादा हो सकती है इन्फ्लुएंजा या H1N1 की. बच्चों में जैसे कि कह सकते हैं कि ब्रॉडली स्पीकिंग बच्चे या जो बुजुर्ग होते हैं, इनकी इम्यूनिटी या तो डेवलपिंग होती है या फिर अंडर डेवलप्ड हो जाती है. तो दीज आर ऑल्सो द कैटेगरीज विच नीड टू वॉच आउट फॉर द सिम्टम्स, जो कि मतलब अगर है लक्षण है तो उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ये नॉर्मल बुखार है. अगर सेकेंड थर्ड डे के बियॉन्ड फीवर जा रहा है या सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, वर्सन कर रहे हैं, तो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ पेशेंट्स हु मस्ट रिपोर्ट टू देयर फैमिली डॉक्टर एट वंस.
0: डॉक्टर, सबसे ज्यादा मैं कहूंगी कि जो डर है लगता है जो प्रेगनेंट है, और जब पूरी उनको तो लग ही रहा है डर, लेकिन उनके साथ साथ पूरी फैमिली को लग रहा है कि कहीं उनको ये इन्फ्लुएंजा ना हो जाए, कहीं H1N1 ना हो जाए, लेकिन क्या अगर ये हो जाता है तो क्या उससे कुछ डेंजरस ऐसा हो सकता है, या कॉम्प्लिकेशंस कुछ बढ़ सकते हैं, या बच्चे पर क्या कोई असर पड़ सकता है इसका?
1: हम इन्फ्लुएंजा का पर से बच्चे पर अगर इनसाइड द वूम्ब है, मतलब कि अगर अगर माँ के अंदर है बच्चा, तो इन्फ्लुएंजा का कोई ऐसी स्टडी नहीं है जो डिक्टेट करे कि उस पर कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा. एब्सोल्युटली नॉट. बट यस, अगर प्रेगनेंसी है और अगर इन्फ्लुएंजा होता है, तो यस यू आर मोर वल्नरेबल देन द जनरलाइज पॉपुलेशन. यू नीड टू वॉच आउट फॉर. ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खतरे की बात है. प्रेग्नेंट फीमेल्स डू यूजुअली हैव लेस इम्यूनिटी कंपेयर टू अ नॉर्मल पर्सन, तो उनको थोड़ा ज्यादा देख के चलना पड़ता है. एंड यू कैन नॉट सेल्फ मेडिकेट डेफिनेटली अ प्रेग्नेंट वुमन एट होम. यू नीड टू वॉच आउट फॉर फ्यू मेडिसिंस. दो कुछ मेडिसिंस आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते प्रेगनेंसी में, तो वो आप खुद से डिसाइड नहीं कर पाओगे. इसके लिए आपको अपनी गायनेक या अपना फैमिली फिजिशियन आपको चाहिए. तो अगर है प्रेगनेंसी में किसी को लक्षण, तो तुरंत ही चेक कराएं.
0: बिल्कुल डॉक्टर, कई बार ऐसे होता है कि हम खुद से दवाइयाँ लेनी शुरू कर देते हैं, तो शुरुआत में होता है कि हम पैरासिटामोल से शुरू करते हैं, क्योंकि अगर फीवर आया है तो अक्सर यही दिया जाता है या फिर यही हम इनटेक भी करते हैं. लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये उसके बाद भी खत्म नहीं हो रही है. पैरासिटामोल लेने के बाद भी बुखार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या ये सिचुएशन अलार्मिंग है? और अगर हाँ, तो आप हमें बताएं कि क्या सिचुएशन है और कैसे इसे डील करना चाहिए और कब हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए?
1: H1N1 अगर होता है, किसी को लेट्स से पॉजिटिव आती है रिपोर्ट, या फिर किसी को लक्षण आते हैं, और पैरासिटामोल इज द सेफेस्ट मेडिसिन टू बिगिन विद. अगर पैरासिटामोल लेके भी अगर फीवर सेटल नहीं हो रहा है, तो आई वुड रेकमेंड कि पेशेंट को कोल्ड स्पंजिंग करा जा सकता है फॉर अ डे और मे बी फॉर 2 डेज. बट दैट डज नॉट मीन बाय द सेकेंड डे आप अपने आप ही मेफ्टाल फोर्ट या आईब्यूजेसिक प्लस ये सब दवाइयां बिल्कुल खुद से नहीं खा सकते, अनलेस यू हैव अ CBC रिपोर्ट विच गवर्न्स कि प्लेटलेट नॉर्मल है. अगर किसी के प्लेटलेट्स लो हुए और किसी ने अगर ये मेफ्टाल या NSAID कैटेगरी की मेडिसिन ले ली टू ब्रेक द फीवर पैटर्न, तो फिर वो कैटास्ट्रोफिक मतलब कि बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी कर सकता है किसी पेशेंट में, अगर वो ब्लीडिंग टेंडेंसी किसी की अंडरलाइंग जो थी और वो अनमास्क थी. तो इसलिए मैं कहूंगा कि घर पे सबसे सेफेस्ट मेडिसिन है गुड हाइड्रेशन, रेस्ट, फूड, पैरासिटामोल एंड दैट्स इट. अगर सेकेंड डे तक आपका सेटल होता दिखता है, दैट्स इट, आपको और कुछ नहीं करना. अगर थर्ड डे तक ये परसिस्ट कर रहा है, बढ़ रहा है, सिचुएशन खराब हो रही है, सच एज की ब्रेथलेसनेस हो रही है, आपको खांसी में बलगम आ रहा है, रेड कहीं खून का थक्का दिख जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है कि आपसे पैरासिटामोल भी नहीं खाई जा रही, ना खाना खाया जा रहा है, देन यू मस्ट रिपोर्ट टू योर डॉक्टर.
0: अक्सर हम ये सोचते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी हमारे साथ कुछ होता है, कि कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, इसे नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और थोड़ी बहुत हम मेडिसिन ले लेंगे, घर पर ही ठीक हो जाएंगे. लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और जब ये दिक्कतें बढ़ जाती हैं, तब हमें लगता है कि अब तो पैसे हमें खर्चने पड़ेंगे. लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब वो इनिशियल स्टेज पे था, तो शायद से हो सकता है कि आपको उतने पैसे ना लगे या उतनी आपको वो बीमारी ना जकड़े जितना कि उस टाइम पर आप अभी परेशान हो रहे हैं. इसलिए पहले से पहले ही, चाहे वो H1N1 हो या कोई भी बीमारी अगर आपको है, हम पहले से ही जो है खुद से मेडिसिन ना लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें. और डर जो है शायद से बाद में ज्यादा आपका बढ़ जाए, ना कि उस टाइम पर जब वो इनिशियल स्टेज पे है। तो इसीलिए आपको इस बात का ख्याल रखना है। और चलिए इसी के साथ अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मैनवरेच 107.8 FM। फील गुड फील।

0: वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं ऑल इज वेल। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रोहित मुखर्जी, जिनसे हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं H1N1 के बारे में। डॉक्टर, मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहती हूँ, और वो ये कि अगर वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो क्या H1N1 की भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है?
1: तो यस मैम, H1N1 की वैक्सीन जो आती है वो अवेलेबल है इंडियन मार्केट में। ये एवरी 2 ईयर्स इसको अपडेट करते हैं स्ट्रेन्स को। वैक्सीन्स के मैम बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। जो यूजुअली सबसे प्रेवलेंट है, मतलब जो यूजुअली रूटीनली प्रिस्क्राइब होती है, वो आपकी एग कल्चर बेस्ड वैक्सीन होती है, जो कि डेड वैक्सीन एक तरीके से कह सकते हो होती है, और जो बहुत सेफ होती है, वो थ्रू आउट द एज ग्रुप्स किसी को भी लगाई जा सकती है। ये यूजुअली मैम जुलाई में लग जानी चाहिए, क्योंकि इंडिया का जो मौसम है वो यूजुअली जुलाई से ऑनवर्ड्स चेंज होता है अगस्त ऑनवर्ड्स। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, ये 6 महीने की इसकी अपनी इम्यूनिटी इम्पार्ट करता है। 6 महीने के बाद ग्रेजुअली ये डिक्लाइन करनी शुरू कर जाती है, एंड बाय 9th month इट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल। तो अगर किसी को वैक्सीनेट करना है वो जुलाई के मंथ में करा जा सकता है, ताकि बाय 14 days, 15 days इट टेक्स टाइम टू किक इन, द इम्यूनिटी टेक्स टाइम टू किक इन। तो बाय अगस्त ऑनवर्ड्स यू आर अंडर द प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ द अपना वैक्सीन की जो कवरेज होती है। अब किसको लेनी चाहिए मैम वैक्सीन? यूजली आई वुड सजेस्ट एनी Anybody who's less than maybe 18 and above 65 must take the vaccine each year अपना जुलाई के मंथ में। Anybody who falls between this age group who has low immunity has a tendency to fall sick more than 3 times a year due to viral infections, influenza and all, in common flu जो होता है, या जो diabetic है, hypertensive है, या जिसको dialysis पे है, या जिसका repeated hospital चक्कर लगता है for one of their family members, तो इनको definitely vaccinate करना चाहिए।
0: डॉक्टर, H1N1 के होने के बाद, रिकवर होने के बाद भी क्या कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, या फिर कफ या वीकनेस कुछ टाइम तक रह सकती है?
1: मैम, ये जैसे इस बारी का जो H1N1 है, नाउ दिस वे वेयर व्हाट वी आर सीइंग इज कि पेशेंट्स को प्रोलॉन्ग्ड जनरलाइज्ड बॉडी एक वीकनेस रहती है, बिकॉज दिस इज अ न्यू वायरल मेकओवर जो आया है, तो दैट्स द रीजन द बॉडी इज टेकिंग टाइम टू क्लियर द वायरल लोड जो जिसने इन्फेक्ट किया था। यूजली नॉर्मली वायरल इन्फेक्शन में टेक्स अबाउट 7 to 10 days फॉर रिकवरी। दिस वायरल इन्फेक्शन जो इस बार का है, 2026 का स्वाइन फ्लू जो H1N1 है, इट टेक्स मोर देन एटलीस्ट 2 weeks, एनीवेयर बिटवीन 2 weeks to 2 months। तो वन मस्ट बी प्रिपेयर्ड कि अपना हाइड्रेशन, खाना पीना, रेस्ट, ये करना जरूरी है।
0: जी डॉक्टर, मेरा कुछ और सवाल आपसे जरूर रहेंगे आखिरी में, और अगर रिकवरी के दौरान की बात की जाए तो पेशेंट को किन चीजों का ध्यान रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है?
1: मैम, रिकवरी में व्हाट आई वुड पे मोर अटेंशन टुवर्ड्स इज गुड रेस्ट, गुड हाइड्रेशन, गुड कैलोरी इनटेक, एंड द मेडिसिंस व्हिच हैव बीन गिवन बाय योर डॉक्टर, सच एज मल्टी विटामिंस टू और एनी अदर मेडिसिंस, सच एज मे बी नेबुलाइजर्स और इनहेलर्स और एंटी हाइपरटेंसिव और डायबिटिक मेडिसिंस, दे नीड टू बी कंप्लाइड टू द डॉट। मतलब वो अच्छे से लेना जरूरी है। अगर आप सिर्फ H1N1 की मेडिसिन लोगे और अपनी बीपी की मेडिसिन भूल जाओगे, या डायबिटीज की भूल जाओगे, या अपनी आस्थमा की भूल जाओगे, तो द रिकवरी विल बी डिलेड इनएविटेबली।
0: जी डॉक्टर, H1N1 के 5 golden rules अगर आपको कहें सबसे याद रखने के लिए तो वो कौन से होंगे?
1: सबसे पहला तो मास्क पहनना है पब्लिक स्पेसेस पे। अगर खांसी आती है या छींक आती है तो मे बी अपना रुमाल यूज करें, या फिर अपनी कोनी के अंदर आप खांस के या छींक के उसको आप रोक सकते हैं। दूसरा, घर से जब निकलें तो ब्रेकफास्ट करके निकलें, खाली पेट ना निकलें। थर्ड इज, अपना खाने पीने पे अपना देखें कि बाहर का खाना अवॉइड करें, घर का ही खाना खाएं, ताकि उससे इम्यूनिटी आपकी ठीक रहे। रेगुलर एक्सरसाइज करें, और अगर हो सके डेफिनेटली ईयर ऑन ईयर वैक्सीनेट जुलाई के मंथ में कर सकें, तो आप अपने आप को और अपने घर वालों को सिवियर इन्फेक्शन से बचा सकते हैं।
0: जी थैंक यू सो मच डॉक्टर, इतनी सारी जानकारी आपने हमें साथ हमारे बांटी है, साझा करी है। मैं आपके तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप स्टूडियो आए और इतनी सारी जानकारी दी।
1: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी।
0: इसी के साथ वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इसी के साथ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस बड़ी बीमारी से, H1N1, इस फ्लू से, चाहे वो सीजनल फ्लू हो चाहे वो H1N1 है, इससे आप दूरी बनाए रखें। और जिसको भी है, या अगर आपको खुद को है, तो खुद भी अवेयर होना है और दूसरों को भी अवेयर करना है, और उनके साथ 6 फीट की दूरी तो आपको रखनी जरूरी है। चलिए इसी के साथ अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सुनते रहिए रेडियो 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन

0: और ये बिल्लू ने पूरी जान से बल्ला घुमा दिया और ये लगा छक्का।
1: ये क्या किया, मेरी सारी साड़ी खराब कर दी, बदतमीज कहीं का। बोल दो तेरे घर जाकर अभी तेरी मम्मी को।
2: आंटी जी, इतनी सी गलती पर हमारी मम्मी को बुलाते हो और रोज अपने कचरे से सड़क गंदी करते हो, आपकी मम्मी को बुलाएं?
3: अनजाने में की गई गलती गलती नहीं होती, पर जानबूझकर की गई गलती के लिए अनजानापन क्यों?
4: हेलो एवरीवन, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूं गौरी मल्होत्रा, आपकी अपनी कम्युनिटी मेंबर, और मेरे शो क्रिएटिव मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्रिएटिव मंच में हमारे साथ हैं फरीदाबाद की दो बेहद प्रतिभाशाली और युवा संगीतकार बहनें, 17 वर्षीय हमसिनी कौशिक और 13 वर्षीय स्माही कौशिक। संगीत इन दोनों की जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हमसिनी ने महज 4 साल की उम्र में गायन शुरू किया और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखा। वहीं स्माही ने 6 साल की उम्र से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। इसके अलावा कोविड लॉकडाउन के दौरान दोनों ने वेस्टर्न म्यूजिक, सॉन्ग राइटिंग और कॉम्पोजिशन को एक्सप्लोर किया और धीरे धीरे अपनी एक अलग म्यूजिकल आइडेंटिटी बनाई। करीब 3 साल पहले ये दोनों द गोपी गर्ल्स के नाम से डिवोशनल सिस्टर डुओ के रूप में पहचानी जाती थी। इनके कौन दिशा में लेके चला रे कन्हैया और व्हेन आई एम इन वृंदावन जैसे गानों को खूब प्यार मिला और खूब सराहा गया। आज ये दोनों द श्यामाज और द फूल्स नाम से अपनी क्रिएटिविटी के दो अलग अलग पहलू दुनिया के सामने रख रही हैं। द श्यामाज के जरिए ये अपनी हिंदुस्तानी शास्त्रीय जड़ों और भारतीय डिवोशनल म्यूजिक को कंटेम्प्रेरी साउंड के साथ जोड़ती हैं। इनका गीत जेंजी की भक्ति, भक्ति संगीत को एक फ्रेश और युवा अंदाज में प्रस्तुत करने के लिए काफी लोकप्रिय हुआ। वहीं फूल्स इनके ओरिजिनल म्यूजिक का प्लेटफॉर्म है, जहां ये अपनी फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस और लाइफ स्टोरीज को इंडी पॉप, हिंग्लिश, इंग्लिश इलेक्ट्रॉनिक और एक्सपेरिमेंटल साउंड्स के जरिए एक्सप्रेस करती हैं। सबसे खास बात तो ये है दोस्तों कि ये दोनों बहनें अपने संगीत का काम खुद ही करती हैं। सॉन्ग राइटिंग और कॉम्पोजिशन से लेकर रिकॉर्डिंग, अरेंजमेंट्स, प्रोडक्शन, मिक्सिंग और मास्टरिंग तक। वहीं हमसिनी साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स भी कर रही हैं और म्यूजिक प्रोडक्शन के टेक्निकल साइड को भी गहराई से सीख रही हैं। तो आइए दोस्तों, आज क्रिएटिव मंच में इन दोनों प्यारी बहनों का स्वागत करते हैं, द श्यामाज और द फूल्स की बेहद टैलेंटेड सिस्टर्स हमसिनी कौशिक और स्माही कौशिक का। आप दोनों का क्रिएटिव मंच में बहुत बहुत स्वागत है।
5: थैंक यू सो मच मैम हमें यहाँ पे बुलाने के लिए।
4: ओके, तो सबसे पहले मैं आप दोनों से ये जानना चाहूंगी और हमारे लिसनर्स भी ये जानना चाहेंगे कि आपने इतने अपने मतलब स्टार्टिंग में म्यूजिक की जो शुरुआत की, वो आपका पैशन था या हॉबी थी?
5: इट वॉज लाइक अ हॉबी, हॉबी ही थी पहले तो, पर वो धीरे धीरे पैशन बना एंड उसके बाद अब करियर।
4: और आपने किस एज से सीखना शुरू किया था, ये भी एक बार आप अपने मुंह से बताइए दोनों जने।
5: तो मैंने एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। मेरा फर्स्ट बर्थडे था, जब मुझे किसी ने एक छोटा सा कैसियो दिया था, छोटा सा कीबोर्ड, एंड वो क्योंकि मेरे घर पे था ही, इसलिए जब मैं 4 साल की हुई तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे पियानो क्लास भेज दिया।
4: अच्छा।
5: एंड इस वजह से फिर मैंने पियानो सीखा एंड फिर जब पियानो बजाते बजाते वो गाने भी सिखाते ही हैं, तो गाने सीखते सीखते बजाते बजाते मैं गाने भी लग गई, तो उनको लगा मैं अच्छा गाती हूँ, तो इस वजह से फिर उन्होंने मुझे वोकल क्लासेस में भी डाला एंड दैट इज़ द थिंग दैट स्टार्टेड इट ऑल।
4: ओके, और स्माही ने कब से सीखना शुरू किया?
6: मैंने 6 ईयर्स की जब थी तब से, और मेरा शुरुआत में तो डांस में इंटरेस्ट था, बट फिर उनसे सीखते सीखते फिर मेरा भी उसी में इंटरेस्ट,
4: मतलब वो उसको देखते देखते एक इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हो गया। ओके, और मम्मी पापा का क्या इसमें रोल था, मतलब वो ही तो चाहते होंगे ना कि तुम म्यूजिक में आओ, या तुम लोगों ने जिद की कि नहीं हमें म्यूजिक क्लासेस भेजा जाए?
5: तो जब से मैं बचपन में, जब बहुत छोटी थी, लाइक हमेशा मुझे सारी चीज़ें कराई, मैं स्केटिंग में भी नेशनल्स तक खेल चुकी हूँ एंड आर्ट वर्क एंड डांस लाइक लॉन टेनिस सम लाइक एवरीथिंग दे कवर,
4: मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज।
5: हाँ, लाइक जो अच्छा लगे कि कुछ तो मिल जाएगा ऐसा। तो फिर मुझे कुछ मिल भी गया, मुझे म्यूजिक मिला एंड लाइक म्यूजिक मुझे सबसे अच्छा लगता था, तो दैट्स व्हाट आई चोज।
4: ओके, सो बचपन में आप दोनों के लिए म्यूजिक ज्यादा मतलब शौक था या पढ़ाई की तरह डिसिप्लिन के रूप में लेते थे उसे?
6: ओके, सो हम दोनों चीज़ों में से कुछ ज़्यादा प्रेशराइज मम्मी पापा कभी नहीं करते थे दोनों चीज़ों में ही. हम बहुत फन रूप में और बहुत आराम से सब कुछ करते थे, कभी प्रेशराइज नहीं किया और
5: डिसिप्लिन कुछ
6: डिसिप्लिन
5: नहीं था.
6: सभी बहुत इंजॉयमेंट से, लाइक पढ़ाई करने का मन करा तो पढ़ाई कर ली, म्यूजिक करने का मन करा तो वो कर लिया, लाइक सब कुछ बहुत लाइट एंड चिल था.
4: मतलब कभी वो प्रेशर नहीं रहा दोनों चीज़ों को लेकर भी
6: नहीं.
4: और वैसे एक थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है कि तुम पढ़ाई में दोनों कैसे हो ये बताओ.
6: अच्छा वो तो अच्छा है.
4: जिंदगी में क्या होता है, जो बच्चे म्यूजिक डांस वाले होते हैं उनका थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्ट कम
6: नहीं,
4: होता
6: इतना है. तो हमें लाइक लगता है नहीं अच्छा स्कोर करना चाहिए.
4: अच्छा तो अब एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, क्या आप दोनों को याद है कि पहली बार स्टेज पर परफॉर्म करने का क्या एक्सपीरियंस था आप दोनों का, और कब किया, कहाँ किया और कौन किस एज में किया?
6: मैं तब थी 2 इयर्स की.
4: अच्छा.
6: और मैंने ना कोई रैंडम परफॉर्मेंस चल रहा था, एक स्टेज लगी थी हमारी सोसाइटी में, तो मैंने वहाँ पे ऐसे ही चढ़ के गा दिया. मुझे कोल्ड हुआ था, बहुत गंदी आवाज़ थी, तो
5: खास खास के गाया,
6: खास के एकदम गंदा सा गाया था मैंने. और फिर बेसिकली मम्मी ने बचपन से हमें स्टेज पे भेजा है, तो हमें कभी स्टेज फ्राइट या नर्वसनेस हुई नहीं, वो हमारी पर्सनालिटी बन गई, हमें लाइफ का हिस्सा ही था, तो हमें कभी ऐसा नहीं हुआ.
5: मुझे अभी भी याद है जब ये ऐसे खास खास के गा के आई थी माइक पर, इतना खुश होके फिर कूद कूद के आई थी कि ओ माय गॉड मैंने गाना गाया
4: स्टेज पर. गाया
6: हाँ.
4: मतलब वो स्टेज फियर वाली बात कभी
6: नहीं
4: रही आप दोनों,
6: बचपन से
5: हमारी लाइफ का एक पार्ट बन गया.
4: नाइस. अच्छा तो अब इसी के साथ कौन सा हमें गाना सुनाओगे आप अपना जो बेस्ट?

वाओ, अमेजिंग, बहुत ही प्यारी आवाज है आप दोनों की, मतलब गॉड गिफ्ट ही है ये एक तरीके से, बट सच में बहुत प्यारी आवाज है। और इस गाने की स्टोरी क्या है वो हम लिसनर्स इनसे जानेंगे, लेकिन अभी हम ले रहे हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से हमारी आज की प्यारी प्यारी ये जो मेहमान आई है इनसे हम अपनी वार्तालाप को जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और हम आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमसिनी और स्माही। तो अभी आप दोनों ने हमें ये गाना सुनाया, इसकी स्टोरी क्या है, थोड़ा सा हम इसके बारे में जानना है।
1: तो कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, ये गाना सभी ने सुना होगा। ये हमारी मम्मी का फेवरेट गाना था।
0: अच्छा,
1: तो उन्होंने लाइक हमें बोला कि इसको चलो डिवोशनल सॉन्ग बनाते हैं, है ना। तो फिर उनका फेवरेट गाना था, फिर हमने बनाया। एंड जब हम गोपी गर्ल्स थे, द गोपी गर्ल्स, तभी हमने गाना रिलीज़ किया था। एंड ये अनएक्सपेक्टेडली बहुत वायरल हो गया था एंड सभी लोगों ने बहुत पसंद किया इस गाने को।
0: और दूसरी बात मैं जानना चाहूँगी, ये द गोपी गर्ल्स क्या था, आपका प्रोजेक्ट था तो, क्या किस तरीके से, इसके बारे में बताइए।
1: तो द गोपी गर्ल्स एक डुओ ही था, स्पिरिचुअल डुओ। एंड तब हम बहुत छोटे थे, 3 साल पहले की बात है। आई वॉज इन 9th class एंड शी वॉज इन 5th class। यस, तो इट वॉज लाइक द सेम। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लाइक हमें लर्निंग ऐसा लग रहा था कि हमारी स्टॉप हो रही है, तो इस वजह से हमने थोड़ा सा ब्रेक लेने का डिसाइड किया हमारे पेरेंट्स ने, क्योंकि उनको लगता था कि अभी हमें इंडस्ट्री में अभी नहीं उतरना चाहिए एंड वी नीड टू वेट एंड लर्न फर्स्ट। तो दैट्स व्हाई वी,
0: मतलब म्यूजिक पूरा सीखा आपने?
1: yes,
0: मतलब ट्रेनिंग ली क्लासिकल म्यूजिक की।
2: पिछले 3 साल के ब्रेक के बाद अब वापस से
0: दोबारा से कम बैक हुआ है बहुत ही जोश के साथ। अमेजिंग। ओके, तो अभी तक हमने बात की आपने कब से म्यूजिक सीखना शुरू किया और कौन सा आपका सॉन्ग वायरल हुआ कैसे, लेकिन अब मैं जानना चाहूंगी दो बहनों की स्टोरी, मतलब दोनों जब एक साथ काम करें। देखो हम लोगों में तो मेरी भी अपने भाई बहन है लेकिन बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बट तुम दोनों बताओ जब तुम दोनों एक साथ काम करते हो तो कैसा वो कॉम्बिनेशन रहता है, वो अच्छी बात है या लड़ाइयाँ भी होती हैं, किस तरीके से?
2: ओके, सो बेसिकली साथ में रह रहे कि हमारे थॉट्स और डिसीजंस बहुत ऑलमोस्ट सेम हो चुके हैं। और ऐसी बात नहीं है कि लड़ाई नहीं होती, होती है, बट ऐसी बातों को लेके होती है कि ये सही है या वो गलत है।
0: एग्जैक्टली, वही मेरे को जानना था।
2: तो वो हमारी लास्ट डिसीजन तो हमारी मम्मा ही लेती है।
0: अच्छा।
2: हमारे घर के क्रिटिक है वो, अगर हमारे में हम बीच में लड़ाई हो जाती है कि ये अच्छा है तो हम उनको लाते हैं कि अब आप बताओ ये अच्छा है, फिर वो फाइनल डिसीजन लेती है, फिर हम उसको फॉलो करते हैं। और मतलब साथ में रह के ये भी हो गया कि हम बिना एक दूसरे से कंसल्ट करे कोई डिसीजन नहीं लेते हैं।
0: अच्छा।
2: तो एक दूसरे की हाँ ना तो बहुत,
0: मतलब वो राय भी बहुत जरूरी है दोनों की एक दूसरे के आपस में, ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए ये चीज तो। और जैसे आपने अभी अपनी मम्मा का जिक्र किया तो मुझे ये बताओ मम्मा भी क्या म्यूजिक से रिलेटेड है या?
2: हमारे दोनों पेरेंट्स IT के बैकग्राउंड।
0: अच्छा,
2: तो फर्स्ट वही लाई है म्यूजिक।
0: ओके, नाइस। बट फिर भी वो आपको फुल ऑन सपोर्ट करते हैं मम्मी पापा हर चीज़ में?
2: बहुत ज़्यादा सपोर्ट।
0: ये बहुत अच्छी बात है अगर फैमिली से सपोर्ट हो, मदर पेरेंट मतलब मदर फादर का, बहुत ही अच्छी बात है ये। ओके, तो अब मुझे ये बताओ हमसिनी और स्माही, एक क्वालिटी जो स्माही को हमसिनी की ज़्यादा अच्छी लगती है और तुम्हें इसकी, ये बताओ।
2: मुझे दीदी का क्रिएटिव माइंड और उनका बहुत म्यूजिकल माइंड है, वो उनको बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है।
0: और आपको?
1: मुझे उसकी प्रेजेंस चाहिए, लाइक जैसे एक्सप्रेशंस देती है वो, जैसी उसकी स्टेज प्रेजेंस है, बहुत अच्छी है।
0: नाइस। और तुम इसे दीदी बोलते हो वैसे?
2: DU। अच्छा, उसका भी निकनेम बना।
0: और अगर तुम दोनों को एक दूसरे की कोई म्यूजिकल क्वालिटी बतानी हो तो क्या है दोनों की, मतलब अपनी अपनी डिफरेंट?
2: उनकी वोकल रेंज।
0: अच्छा।
2: उनके रिफ्स, रन्स, उनकी वोकल्स बहुत अच्छे हैं एंड लाइक उसके साउंड में ना, उसकी वोकल्स में बहुत इमोशन है एंड आई वांट दैट। बहुत इमोशन के साथ गाती है, बहुत फीलिंग के साथ गाती है।
0: ठीक है, तो फीलिंग की जहाँ बात हुई है, मैं चाहूँगी कुछ एक बार फिर से बढ़िया सा कुछ सुनाया जाए हमारे लिसनर्स को।

0: वाओ ब्यूटीफुल, इतनी सूदिंग आवाज है ना आप दोनों की, और जब एक साथ गाते हो बहुत ही मतलब बहुत सुंदर लग रहा था। और लिसनर्स मैं आपको बता दूं, ये दोनों मुझे पहले ऐसा लगा था कि ये ट्विंस हैं, लेकिन ये है नहीं ट्विंस। कितने इयर्स का गैप है दोनों में?
1: 4 साल का।
0: बिल्कुल, आप इनके पेज पर जाएंगे ना फॉलो करना और तब देखना, ये बिल्कुल ट्विंस लगती हैं रील्स में। तो आई वाज आल्सो कंफ्यूज्ड, बट तुम्हारी आवाज जब एक साथ आती है अमेजिंग, बहुत ही सुरीला।
1: थैंक यू सो मच।
0: ओके लिसनर्स, तो वक्त हो चला एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से अपनी इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे हमारी प्यारी बहनों के साथ। तब तक सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

क्यों ना एक काम किया जाए, मरने के बाद भी जिया जाए, अंगों को अपने दान किया जाए और जिंदगी को एक बार फिर से जिया जाए, एक बार फिर से जिया जाए। जब आप अपने ऑर्गन्स डोनेट करते हैं तो आप सिर्फ एक जिंदगी नहीं बचाते बल्कि आप भी उनमें जिंदा रहते हैं। वी सपोर्ट ऑर्गन डोनेशन, डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन, स्टूडेंट वेलफेयर MRIIRS और रेडियो मानव रचना 107.8 FM की ओर से एक खास पहल, डोनेट ऑर्गन्स एंड सेव लाइव्स। डोनेट ऑर्गन्स एंड सेव लाइव्स। आप मदद करेंगे ना?

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो बहुत ही प्यारी बहनें, सुरीली बहनें, जिनका नाम है हमसिनी और स्माही। तो स्माही और हमसिनी, आप मुझे ये बताओ, कोविड लॉकडाउन ने आपकी म्यूजिक जर्नी को किस तरह से बदला?
1: तो कोविड लॉकडाउन का टाइम हमारे लिए लाइक अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा लकी टाइम रहा, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम था। पूरे दिन तो खाली ही रहते थे।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे ऐसी बात नहीं कि हमने टाइम पास नहीं किया, टीवी नहीं देखा, वो भी बहुत देखा, बट फिर भी टाइम बच जाता था। तो इस वजह से हमने लाइक एक हॉबी, लाइक हमने सोचा कि अपनी हॉबी को थोड़ा सा ब्रशअप करते हैं और ज़्यादा। तो मैंने लॉकडाउन में खुद से पियानो सीखा एंड गिटार सीखा, तो उससे लाइक मेरी म्यूजिकल जो ब्रेन है और डेवलप हुआ, एंड मुझे पता चला कि आई वांट टू क्रिएट म्यूजिक, नॉट ओनली सिंग इट।
2: और हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी थी, हर चीज़ करी थी लॉकडाउन में, जैसे सॉन्ग राइटिंग करा, थोड़ा कंपोजिंग एक्सप्लोर करी। तो लाइक लॉकडाउन में हमने अपना फर्स्ट गाना भी लिखा था।
1: हाँ,
0: फर्स्ट गाना कौन सा था वो?
1: तो हमारे पापा का बर्थडे था, एंड हमें समझ नहीं आ रहा था क्या गिफ्ट दें, कि कार्ड बनाएं, कि क्या करें, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था। तो हमने एट लास्ट यही सोचा कि चलो गाना बनाते हैं।
0: वाओ,
1: जो कि हमारी बस के नहीं था, बट फिर भी हमने सोचा चलो गाना बना लेते हैं।
2: शी वाज 10 इयर्स ओल्ड, आई वाज 6।
1: तो हमने फिर गाना बनाया, जो कि लाइक बहुत मुश्किल लगा था हमें, बट लेकिन हमने लाइक बहुत चाइल्डिश सा गाना बनाया था, बट फिर भी इट वाज लाइक फन टू हियर।
0: अभी भी सुना सकते हो आप?
1: मुझे बस इसकी एक लाइन याद है,

0: ये अभी भी हमारे चैनल पर भी है।
1: नहीं नहीं गाना तो बहुत अच्छा है और हम चाहेंगे ये पूरा गाना भी हम सुने, क्योंकि अगर किसी को अपने फादर को विश करना तो गाना गा के कर सकते हैं। बट ये वैसे बड़े कमाल की बात है कि तुम कह रही हो तुम 10 ईयर्स की थी उस टाइम, तुम 6 साल की थी, तो इतने में इतनी छोटी उम्र में बच्चों में इतना होता है पेशेंस कि वो गाने बना ले, तो कैसे ये चीज।
2: एक्चुअली हमारी मेन इंस्पिरेशन, एक्चुअली हमारी एक फ्रेंड थी, उसने हमें इंट्रोड्यूस किया एक सिंगर टेलर स्विफ्ट से।
1: ओके
2: तो हम उससे बहुत इंस्पायर हो गए, एंड क्योंकि उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि वो अपने गाने खुद लिखती थी, तो दैट वॉज द थिंग दैट इंस्पायर्ड मी टू राइट माई ओन सॉन्ग्स। तो फिर मुझे लाइक उसकी तरह बनना था ऑफकोर्स, तो मैंने भी सोचा कि मुझे भी अपने गाने लिखने, चाहे कुछ भी हो जाए अब तो मैं लिखूंगी।
0: और उसी की वजह से हम वेस्टर्न म्यूजिक से इंट्रोड्यूस हुए थे और तब से लेके अब तक वही हमारी आइडल है कि हमें उसके जैसा बनना है।
1: एग्जैक्टली चलो आई विश कि आप वैसे ही बने।
0: वी विश टू।
1: और क्या, और आप लोगों ने उस टाइम लॉकडाउन के टाइम प्रोडक्शन और रिकॉर्डिंग्स का भी कुछ ट्राई किया या नहीं? बट जैसे मैंने, हाँ तब तक नहीं, कब से ये चीज स्टार्ट किया आपने?
2: When I was in 9th class, जब हम गोपी गर्ल्स थे उस टाइम, तब मैंने 2 गाने प्रोड्यूस किए थे, कौन दिशा में लेके चला रे कन्हैया और When I'm in वृंदावन। तब ही मुझे पता चला था कि, उससे पहले मुझे पता नहीं था कि म्यूजिक प्रोडक्शन जैसी भी कोई चीज़ होती है, मुझे लगता था गाने बन जाते होंगे बस ऐसे ही,
0: हमने कभी सोचा ही नहीं था। हमें तो ये भी नहीं पता था कि वायरल क्या होता है।
2: हाँ
0: तो बेसिकली मेन चीज़ तो हमारी गोपी गर्ल से ही हुआ था, हमें पता चला था कि ऐसा कुछ होता है
2: कि गाने बनाते हैं फिर पोस्ट करते हैं रिलीज करते हैं, लाइक हमें एक प्रोसेस के बारे में पता चला था। एंड उसके बाद प्रोडक्शन मैंने 9th क्लास में स्टार्ट करी, एंड तब तो मैं लाइक यूट्यूब वगैरह से सीखती थी, इधर उधर से वेबसाइट वगैरह से नॉलेज कभी इधर से ली कभी।

0: ऑफ कोर्स अभी कंटिन्यू है,
1: अभी कंटिन्यू है,
0: तो आगे इसी में सोचा है
1: ऑफ कोर्स।
2: और आपने भी कुछ प्रोडक्शन और इसका सोचा हुआ है?
1: भी शुरू कर चुकी हूँ धीरे धीरे, साथ में सीख के,
2: मतलब उसी की लाइन पर आप चल दियो, दैट्स ग्रेट। अच्छा एक चीज मुझे और बताओ, जैसे तुमने बताया पियानो और गिटार, कैसे यूट्यूब से सीखा था तब?
1: हाँ, यूट्यूब से।
2: तो ये पॉसिबल है कि कोई भी सीख सकता है इजिली?
1: हाँ देखो, सीख सकता है। राइट टेक्निक तो नहीं आई थी, बट आ गया था कि ठीक है गाने बजा सकते हैं हल्का फुल्का। लाइक खुद को अकंपनी करने के लिए, अगर गाने के साथ अकंपनी करना, तो उतना तो मुझे आ गया था लाइक खुद से। लाइक ऑफ कोर्स टीचर से तो सीखने की अलग बात होती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, तो वही हम यहाँ पे ये भी मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि सारा यूट्यूब पे भी निर्भर नहीं रहना, बट एक गुरु की तो नीड डेफिनेटली होती है। ओके, तो अब हमें कौन सा सॉन्ग सुनने को मिलेगा? आपने बताया आप गिटार भी इतना अच्छा बजाते हो, पियानो भी, तो अभी क्या हम गिटार पे कुछ सुन सकते हैं? हमारे लिसनर्स वेट कर रहे हैं आपकी आवाज में और आपका मधुर गिटार सुनने के लिए।
1: सिस जय जय शिव शंभू।

0: वाओ, अमेजिंग. इसके लिए तो क्लैप बनती है. इतना मीठा, इतना अमेजिंग और इतना सुर में, बहुत ही मजा आ गया.
1: थैंक यू सो
0: और
1: मच.
0: जो आपने हारमोनीज किए हैं, टू गुड, बहुत ही प्यारा. मतलब इतनी प्यारी आवाजें, शायद हमारे लिसनर्स को भी आज बहुत मजा आ रहा होगा जो ये सुन रहे होंगे.
1: थैंक यू सो मच.
0: तो अब मुझे ये जानना है आपसे कि द गोपी गर्ल से द श्यामाज का क्या सफर था ये?
1: तो द गोपी गर्ल्स में वी वर जस्ट सिंगर्स. गोपी गर्ल्स के दौरान हमें पता चला कि म्यूज़िक बनाना चाहिए हमें. तब हमने सिर्फ दो गाने प्रोड्यूस किए थे, है ना.
0: ओके.
1: तो बेसिकली गोपी गर्ल्स में हम अपने स्टाइल से कुछ नहीं गाते थे. तो वहाँ पे हम बस नॉर्मल जेनरिक भजन्स गाते थे. हमने अपना स्टाइल ढूंढा नहीं था तब तक. फिर
0: अच्छा.
1: इसलिए हमने 3 ईयर्स का गैप लिया, लर्निंग करी, अपना स्टाइल ढूंढा. एंड देन
0: उसके
1: वे
0: बाद श्यामाज
1: श्यामाज में हम अपने स्टाइल से चीज़ें गाते हैं, अपने स्टाइल से बनाते हैं. एंड अब हमें हमारा स्किल भी लाइक मच बेटर है उस टाइम से, ऑफकोर्स.
0: वाओ. और जो ये कौन दिशा में लेके चला रे कन्हैया जो है, और दूसरा आपने व्हेन आई एम इन वृंदावन जैसे सॉन्ग्स को लोगों का जब इतना प्यार मिला, तो उस समय क्या एक रिएक्शन, क्या फीलिंग, क्या कैसा लगता है तब?
1: तो हमें पता ही नहीं था कि लाइक हम सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते थे. पेरेंट्स ने कभी लाइक ज़्यादा हमें करने नहीं दिया. तो हमें पता ही नहीं था कि वायरल जैसी भी कोई चीज़ होती है.
0: छोटे
1: एंड
0: भी तो थे तब.
1: हाँ, ऑफ कोर्स. तो हमें कुछ पता ही नहीं था. हमने बस ऐसे वीडियो बनाई एंड पोस्ट कर दी. एंड फिर हम वायरल हुए. लाइक हमें पता चला लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, इतने फॉलोअर्स आए. तो हमें ऐसे हैरानी थी रही थी, ओ माई गॉड, ऐसा भी कुछ होता है. और आसपास के लोग जैसे हल्का फुल्का की रिकग्नाइज करने लग जाते, तो वो लगता है कि ऐसा
0: वृंदावन
1: जाते थे तो लोग लाइक बहुत लोग हमें रिकग्नाइज भी करने लग गए
0: अच्छा.
1: थे. तो फिर हमें ऐसे हैरानी थी, ओ माई गॉड, वाओ,
2: दिस इज कॉल्ड

0: वायरल
1: फेमस हो रहे हैं।
2: यस
1: तो मुझे ये बताओ, जैसे तुम फेमस हो रहे थे तो स्कूल में कैसा रहता था सबका रिएक्शन, फ्रेंड्स का और टीचर्स का? थोड़ा
2: इट वॉज नॉर्मल, लाइक हमें तो वो पहले से ही जानते थे तो उनका लाइक कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया। लाइक हाँ थोड़ा सा लाइक म्यूजिक टीचर्स का हाँ थोड़ा
1: तुम्हारी तरफ झुकाव ज्यादा हो गया होगा कि भाई ये बच्चियाँ तो बहुत अच्छा गाती हैं तो इन्हें हर इवेंट में लेना ही है, लीड सिंगर बनाना ही है। वो तो होता ही है। चलो बहुत मज़ा आ रहा है आज हमें लिसनर्स इनसे बात करके, दोनों से बहुत ही अमेजिंग बातें और अमेजिंग गाने हम सुन रहे हैं और आप तक लेकर आ रहे हैं। तो अभी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक का वक्त हो चला है, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही सुरीली दो बहनें मौजूद हैं जिनका नाम है हमसिनी और स्माही। तो हमसिनी और स्माही, अब मुझे ये बताइए कि ये जेंजी की भक्ति का आइडिया कैसे आया, और क्या आप चाहती थी कि आज के यंग जनरेशन डिवोशनल म्यूजिक से कुछ नया तरीके का कनेक्शन बनाए?
1: तो बहुत फनी स्टोरी है। 2025 में जून में हमारे पेरेंट्स ना एक ऐसी आइडिया लेके आए, गाना है हमें हरि नाम बट माया सताती है। तो हम दोनों तो हंस रहे थे उन पे, क्या लिख के लाए हो आप। तो लाइक हमें तो बड़ा फ़नी लगा, ऑफ कोर्स था ही वो फ़नी। तो लाइक वो भी कहते नहीं नहीं गाना बनाएंगे, इसका गाना बनाएंगे। तो नवंबर तक लाइक उनको टाइम लग गया गाना लिखने में, तो उन्होंने नवंबर तक लाइक उन्होंने पूरा गाना ख़त्म कर दिया। तो फिर वो हमारे पास लाए फिर से कि चलो अब इसको बनाओ।
0: गाना मम्मी पापा लिख कर लाए?
1: हाँ, मम्मी पापा लाए।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो लाइक एक्चुअली यही होता है हमेशा कि वृंदावन, वो हमें हमेशा वृंदावन ले जाते थे। हम बोलते थे नहीं चलो गोवा चलते हैं ना। तो लाइक ऐसे थोड़े से हमारे जेंजी और मिलेनियल्स में भी थोड़े क्राइसिस हो जाता है, तो उसी पर उन्होंने गाना लिख दिया। तो इस वजह से लाइक उन्होंने हमें बोला कि चलो बनाओ इसको। तो मैं कहते ऐसे थोड़ी, इतना फ़नी गाना कोई बनाता है क्या, ऐसे थोड़ी। तो लाइक फिर मैंने उसको टला दिया, नवंबर में भी मैंने नहीं बनाया। मैंने बोला कि अरे ऐसे थोड़ी गाना बनाते हैं, छोड़ो ना। तो उसके बाद अप्रैल में उन्होंने बोला एक बार बना के तो देखो, अप्रैल 2026 में, तो बना के तो देखो क्या क्या लाइक अच्छा भी तो लग सकता है। फिर मैंने बनाया, बट जब बनाया तो आई जेन्युइनली लाइक दैट। एंड उसके बाद ना जब भी हम कोई गाना बनाते हैं ना, हमारी आदत है कि हम लाइक जो क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स है ना, उनसे एक बार रिव्यू लेते हैं सुना के, है ना। तो हमने ऐसे 5-10 लोगों को ऐसे सुनाया, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो हमें थोड़ा और कॉन्फिडेंस था कि हाँ हाँ इतना भी बुरा नहीं, अच्छा लगेगा। तो फिर हमें लाइक कॉन्फिडेंस है कि हाँ चलो रिलीज़ करते हैं। फिर हमने अप्रैल 28 को हमने इसको रिलीज़ कर दिया आखिरकार। एंड उसके बाद मई 1st से पहले पहले ही वो वायरल हो गया था, तो लाइक इट वर्क्ड।
0: तो क्या हम सुन सकते हैं इस गाने को?
1: हाँ जरूर।
2: गाना है हमें हरि नाम बट माया सताती है, गाना है हमें हरि नाम बट माया सताती है। जाना तो है वृंदावन बट गोवा बुलाता है, बट गोवा बुलाता है। खाना है सात्विक फूड बट मोमो दिख जाता है, खाना है सात्विक।

0: बताती है।
1: वाओ, फुल ऑन जेंजी की फील, मतलब एकदम।
2: इसके पीछे एक और बहुत फनी स्टोरी है। आपको पता है हमने कभी आज तक अपनी लाइफ में मोमोज नहीं ट्राई किए थे।
1: अच्छा।
2: एंड फिर इस गाने पे हमने मोमो यूज किया, तो लाइक हमने मम्मी पापा से जिद की प्लीज हम इसके शूट में मोमो तो यूज करेंगे।
1: फिर ट्राई किया,
2: फिर हमारे घर पे मोमो आए। तो जब हमने शूट किया था तब आखिरकार पहली बार जिंदगी में हमने मोमोज ट्राई किए।
1: तो कैसा लगा?
2: बहुत अच्छे लगे। उसके बाद हमने 4-5 बार खा लिए
1: बस। लेकिन थोड़ा गले की वजह से मम्मी पापा नहीं खाने देते होंगे, तो वे उसकी जो चटनी होती है तीखी, इसीलिए। और वैसे बहुत अच्छी चीज नहीं है मोमोज, बचपन से ऐसी सारी चीजें टेस्टी लगती हैं हमें भी लगती हैं। ओके, तो अब बात करते हैं फूल्स की, कि ये द श्यामा से बिल्कुल अलग और ज्यादा पर्सनल साइड है। फूल्स आपके लिए एक्चुअली क्या है, इसके बारे में हमें जानना है।
2: तो जब से मैं 10 साल की उम्र से गाने लिख रही हूँ, तो मैं बहुत सारे गाने लिखती थी। तो ज़्यादातर गाने मेरी लाइफ से इंस्पायर होते थे, छोटे छोटे जो मोमेंट्स होते हैं उनसे इंस्पायर होकर मैं गाने लिखती थी। तो इसलिए मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जिनमें मैं उन गानों को बना के रिलीज़ कर पाऊँ। सो फूल्स एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं अपनी पर्सनल फीलिंग्स वाले गानों को रिलीज़ करती हूँ। तो फूल्स जेनेरिक टॉपिक्स पर ही होते हैं, जैसे कि एक गाना है हमारा एंड ऑफ द वर्ल्ड, जो मैंने इस बारे में लिखा था क्योंकि हमारे फरीदाबाद में बहुत बड़ा थंडर स्टॉर्म आ रहा था एंड मुझे ऐसा फील हुआ कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा लग रहा है दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने वो गाना लिखा। तो ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स पे वो गाने बेस्ड है। तो वो हमारे एक ओरिजिनल सॉन्ग्स की कलेक्शन है जो कि हमें अलाउ करती है अपनी दूसरी आर्टिस्टिक साइड को दिखाने के लिए।
1: तो बेसिकली आपके जो रियल इंसिडेंट्स हैं लाइफ के, उसके छोटे छोटे कुछ कुछ आप गाने की फॉर्म में वो फूल्स पर डालते हैं।
2: ऑफ कोर्स।
1: तो इसका नाम फूल्स क्यों रखा आपने?
2: तो फूल्स PHOOL, फूल हिंदी में मतलब फ्लावर होता है एंड इंग्लिश में प्रोनंसिएशन के टाइम पे तो फूल पागल होता है ना। तो उसके बाद फूल्स हमने ऐसे ही सोचा कि इट वुड बी फन, है ना। फूल भी बहुत कलर्स के होते हैं, है ना। तो हमारे गाने कोई बहुत ही डल होता है, कोई बहुत सैड होता है, कोई इतना एनर्जेटिक और हैप्पी होता है। तो बहुत सारे फ्लेवर्स एंड कलर्स ऑफ सॉन्ग्स हैं हमारे। तो इस वजह से हमने फूल्स रखा। और हम दो हैं तो हम एस लगाने वाले थे पहले तो, बट फिर हमने ऐसे ही स्टाइल के लिए जी लगा दिया, तो PHOOL फूल्स।
1: ओ, जेन जी स्टाइल।
2: यस।
1: ओके, नाइस। आप दोनों जैसे बहुत ही यंग हो, अभी इतनी कम एज है, आप 8th में हो, आप 12th में हो, तो इतना कुछ अचीव करना थोड़ा ओवरवेलमिंग नहीं लगता आपको?
2: तो मुझे लगता है, हमें लगता है कि अभी तो हमने कुछ ज़्यादा अचीव नहीं किया है, बिकॉज हमारे ड्रीम्स आर वेरी बिग बचपन से ही एंड हमें अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। तो दिस इज़ जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट।
1: नाइस। और इसके साथ ये बताओ कि जैसे आपकी एज के जो बच्चे हैं वो बहुत चीज़ों में बिजी रहते हैं, तो आपको कभी ये तो नहीं लगता कि हमारा चाइल्डहुड मिस हो रहा है?
3: कभी नहीं। हमारे लिए तो वी हैव द बेस्ट वर्जन ऑफ आर चाइल्डहुड।
1: एग्जैक्टली, क्योंकि एक जो ये एक्स फैक्टर आप में ऐड हुआ है ना, वो बहुत ही अमेजिंग है।
3: किसी भी चीज के लिए मम्मी पापा ने कभी प्रेशराइज नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो बहुत चिल फन चाइल्डहुड।
2: बाकी बच्चे हमारे हमसे जेलस होते थे, भाई तुम्हारे पेरेंट्स इतने चिल की हुए क्या है।
1: एग्जैक्टली।
2: तो हमारा चाइल्डहुड हमारे लिए तो बहुत फन रहा है हमेशा से, अभी भी है।
1: नहीं, जरूर रहना भी चाहिए, और आगे भी मैं यही प्रे करूंगी कि ऐसे ही खूब खुश रहो आप दोनों और खूब फेमस हो। और दूसरा ये बताओ कि जैसे अभी आपने करियर म्यूजिक में ही बनाने का सोचा, राइट? तो अगर म्यूजिक ना होता तो किस में करियर बनाते?
2: हमने प्लान भी रखा ही नहीं है, सोचा भी नहीं प्लान बी के बारे
1: कभी
2: में,
1: कभी तो सोचा होगा।
3: बेसिकली मम्मी पापा ने बोला है कि अगर प्लान भी होता है ना तो प्लान ए पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते।
2: तो हमारा एक ही प्लान है, दैट वी वांट टू बिकम अ ग्लोबल आर्टिस्ट।
3: इंटरेस्ट है दूसरी चीजों में, बट है वही
1: तो ठीक है, ग्लोबल आर्टिस्ट ठीक है। आपको प्लेबैक सिंगिंग में है इंटरेस्ट या परफॉर्म करने में इंटरेस्ट है?
2: हमें परफॉर्म करने में
1: लाइव परफॉर्म
2: बहुत मजा आता
3: है। बट बचपन में ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। बेसिकली दियो ना बचपन से बहुत एक शाय और इंट्रोवर्टेड बच्ची थी बहुत ज़्यादा, और वो गाती अच्छा थी, तो शी ऑलवेज थॉट ओके आई विल बी अ प्लेबैक सिंगर। बट उसके बाद देन आई स्टार्टेड सिंगिंग, वी हैड द डुओ गोपी गर्ल्स, फिर धीरे धीरे हमने परफॉर्म करना शुरू किया। और हमने तो बचपन में ये भी नहीं सोचा था कि हम साथ में भी कुछ करेंगे। मैं बचपन से डांसिंग करना चाहती थी, तो वो सिंगर बनती, मैं डांसर बनती, हमारा था ही नहीं कुछ। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है अब डुओ बन गया गोपी गर्ल्स में, फिर अब शामाज, अब हम एक अलग अलग इमेजिन ही नहीं कर पाते अब कि अब तो साथ में ही है।
1: अब वैसे आप डांस करते हो?
3: हाँ, हाँ थोड़ा बहुत करते।
2: हमारे गानों के शूट्स में शी ऑलवेज डांस।
1: अच्छा।
2: एंड स्टेज पर भी शी लाइक उसके एक्सप्रेशन ही बहुत अच्छे, हैंड डांस ही अच्छा करती है बहुत।
1: स्टेज पर तो डेफिनेटली वो चीज करनी चाहिए।
3: यस ऑफ कोर्स।
1: ओके, तो अब मुझे ये बताओ अगले 5-10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हो?
2: आई थिंक अगले 5-10 साल में हम खुद को लाइक एक ग्लोबल लेवल पे देखते हैं, जहाँ पे लाइक सारा पूरा वर्ल्ड हमारे म्यूजिक को इजीली सुन पाता है एंड लाइक सभी सुनते हैं एंड पसंद करते हैं। सो लाइक दैट इज आवर ड्रीम ऑफ कोर्स।
1: वाओ, बेस्ट विशेस हमारी आपके साथ हमेशा रहेंगी। ओके लिसनर्स, बहुत मज़ा आ रहा है आज हमें हमसिनी और स्माही के साथ। सो अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक पर से आने के बाद एक जल्दी से करेंगे रैपिड फायर राउंड। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: और अब हम करेंगे रैपिड फायर राउंड हमारी आज की स्पेशल गेस्ट जो है उनके साथ, हमसिनी और स्माही के साथ। तो आर यू रेडी?
1: यस।
0: ठीक है, तो जल्दी जल्दी आंसर देने हैं, राइट? 1, 2, 3 स्टार्ट। सिंगिंग या सॉन्ग राइटिंग?
1: बोथ।
0: क्लासिकल या वेस्टर्न?
1: बोथ।
0: स्टूडियो रिकॉर्डिंग या लाइव परफॉर्मेंस?
1: बोथ।
0: द श्यामा द फूल्स?
1: बोथ।
0: अपना फेवरेट सॉन्ग?
2: बहुत सारे, बहुत डिफिकल्ट।
0: एक बताना पड़ेगा,
2: ये बहुत डिफिकल्ट।
0: अपना अपना एक बता दो।
2: ये पॉसिबल ही नहीं है तो।
0: ओके ठीक है, स्किप करते हैं। एक आर्टिस्ट जिसके साथ आप अपना कोलैबोरेशन करना चाहते हैं?
1: टेलर स्विफ्ट एंड सोनू निगम।
0: वाओ, एक टेलर स्विफ्ट और एक सोनू निगम, गुड। म्यूजिक के बिना अगर लाइफ होती तो कैसी होती?
1: फिर तो लाइफ में
2: लाइफ ही नहीं है।
0: ओह माय गॉड, बहुत डीप दे दिया है तुमने आंसर। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे आप फ्यूचर में जरूर सीखना चाहते हैं?
1: वायलिन फॉर श्योर।
0: दोनों?
1: सितार।
0: ओके नाइस, दोनों इंस्ट्रूमेंट्स बहुत प्यारे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आज आपके साथ। और अब लास्ट में एक एंडिंग क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जो आपकी एज के जितने भी बच्चे हैं या टीनेजर जो भी कह लो, जो हमारा ये शो भी सुन रहे हैं, बहुत से इसमें ऐसे होंगे जो आपकी एज के आज सुन रहे होंगे बच्चे ये शो, तो आप उन्हें अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे आगे फ्यूचर में बनने की, जिन्हें कभी कभी मौका भी नहीं मिलता, बट आप उन्हें किस तरीके से गाइड करना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे?
3: आई वुड जस्ट से दैट जस्ट डू इट, इट्स नाउ और नेवर। क्योंकि अगर हम ये सब सीखने के लिए बड़े होने तक का वेट करते तो शायद अभी हम यहाँ तक भी ना होते।
0: एग्जैक्टली,
1: लाइक अपना पैशन हमेशा फॉलो करो एंड जस्ट नेवर गिव अप।
0: वाओ, बहुत ही अमेजिंग बात आपने बोली है। इतने छोटे हो लेकिन बातें आपकी बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने हमारे लिसनर्स को। ओके, अब रैपिड फायर राउंड के बाद एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? अभी कुछ हैं रिसेंटली जो आपके फैंस को सुनने को मिलेंगे, हमको सुनने को मिल सकते हैं?
1: तो अभी फूल्स में हमारा एक गाना रिलीज होने वाला है, होपलेस, जो कि मैंने 2 साल पहले लिखा था एंड इट्स रियली गुड, बहुत बहुत मजा आएगा उसको सुनने में।
3: 30 अगस्त को रिलीज हो रहा है।
0: वाओ, हम प्रे करते हैं बहुत ही उसे भी खूब लाइक्स, खूब व्यूज मिले आपके सॉन्ग को। बेस्ट विशेस हमारी आपके साथ है। और अब एंड में आप कौन सा गाना हमारे लिसनर्स को सुनाना चाहोगे?
1: सो दिस सॉन्ग इज कॉल्ड टॉपिक। कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं था,

0: Made a syndicate, yeah, without a logic. Oh, topic. God, topic. Will it ever be iconic? Topic.
1: वाओ, इतने मज़ेदार गाने कैसे बना लेते हो आप लोग. सो थैंक यू सो मच हमसिन एंड माही, आज आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे शो में आके बहुत ही चार चांद लगाए. थैंक यू सो मच, और हमारी बेस्ट विशेज हमेशा आपके साथ रहेंगी. और लिसनर्स, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, और अगले हफ्ते फिर से ऐसे ही दिलचस्प मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए मुझे यानी गौरी मल्होत्रा को दीजिए इजाज़त, और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

0: Hi, I'm Digmanshu Dhulia. You're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM. Feel good, feel live.
1: Well, hello, good afternoon, namaskar, sat sri akal, ram ram, jai mata di, assalamu alaikum dosto. Main hu RJ Sagar, aaya hu lekar ke show Voice of Youth. Now this show is really special to us. Reason nahi, yahan par har bar hum ek expert ko lekar ke aate hain apne show mein, jo apne domain ke expert hote hain, maharat hasil ki hoti hai, aur yahan par hum log baat karte hain skills ki. आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत कलाकार मौजूद हैं जिनका नाम है ओमकार चौहान. इनके बारे में बात करेंगे. ओमकार एक कंटेंट क्रिएटर हैं, ओमकार एक एक्टर हैं, ओमकार एक फिल्म मेकर हैं. बहुत सारी बातें हम यहाँ पर जान रहे होंगे. अभी अभी रिसेंटली इन्होंने 1,00,000 फॉलोअर्स का जो है एक मुकाम हासिल किया है. 1,00,000 फॉलोअर्स जो है इनके हो गए हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए इनका स्वागत करेंगे. हाय ओमकार, वेलकम टू आवर शो.
2: हेलो, थैंक यू कॉन्ग्रेस के लिए.
1: जी जी, उनका पहला प्रश्न मेरा रहेगा, अपने बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को. बहुत सारे लोग इस टाइम आपको सुन रहे हैं, आप क्या करते हैं अपने शब्दों में बताइए.
2: मैं एक अभी रिसेंट तो मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, बट मैं थिएटर बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ और 5-6 सालों से थिएटर कर रहा था और 1 साल से कॉन्टेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, जिसमें कॉमेडी मिक्स है अपना, जिसपे हम वर्क कर रहे हैं लगातार. तो यही है अभी तो जो रिसेंटली चल रहा है.
1: ये सब शुरू कैसे हुआ सिलसिला?
2: सिलसिला कॉलेज टाइम से वैसे स्टार्ट हुआ था. मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से. एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग हूँ, जूनियर इंजीनियर. तो फाइनल ईयर में मेरे सीनियर थे जब वो स्टार्ट हुआ सिलसिला. जब वो लोग गए दिन इंटरव्यू हुआ वो उनका, तो कैंपस सिलेक्शन होता है. कैंपस सिलेक्शन मैंने देखा था कि जो लड़के 95% लेके आ रहे हैं और उनके कंपेरिजन में जो लड़के हैं जो 65% 55% लेके आ रहे हैं, दोनों के रिजल्ट लाने में जो मेहनत का फर्क है ना बहुत ज्यादा है. मतलब ऐसा समझ लो कि एक लड़का जो दिन भर खेलता रहता है, शाम को 2 घंटा पढ़ लेता है, वो 50-60% आराम से लेके आ सकता है. लेकिन जो लड़का आप मतलब 95% को लाना है, वो बहुत पढ़ता है. मतलब दिन के 10-12 घंटे पढ़ता ही है मिनिमम. तो वहां देखने को मुझे ये मिला कि दोनों के जो सैलरी में डिफरेंस था वो बहुत कम था. किसी का 14 पे सिलेक्शन हो रहा है 14,000 पे, दूसरे बंदे का 15 पे हो रहा है. जो 95 लेके आया उसका 15 पे हो रहा है, जो 50 लेके आया उसका 14 पे हो रहा है. तो ये एक वो था कि यार ये तो नहीं करना, कि इसके लिए इतना मेहनत करके कोई फायदा नहीं है. तो पहली बार मैंने क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से था और बहुत ही बढ़िया था इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो मैंने एक्सपेरिमेंट कंटेंट बनाना स्टार्ट किया. जैसे होता है ना कि माइक बना लो आप, है ना, 150 रुपए के खर्चे में ये स्पीकर बना लो, वायरलेस माइक बना लो, ये ट्यूबलाइट को अलग अलग तरीके से टेक्निकली मैं जोड़ जा रहा हूँ. वो ट्यूबलाइट वायरलेस ही बना लेते हैं, बैटरी जो खराब है उसको जोड़ जाड़ के, वैसे बहुत सारे वीडियोज बनाया. उसी सेम टाइम पे एक क्रिएटर थे हमारे इंडियन हैकर, जिनका अभी 5,00,000 हुआ था, ठीक है. तो फिर मैंने जब एनालाइज किया तो मुझे समझ आया कि यार ये कॉन्टेंट तो ऑलरेडी मतलब इंडियन हैकर तकरीबन 3 साल पहले ही बना चुके हैं. तो मुझे लगा नहीं यार फिर तो बेकार जा रहा हूँ, मतलब गलत जा रहा हूँ इस रास्ते पे, क्योंकि लोगों ने करके छोड़ दिया है. मैं अभी 3 साल उनके पहले वाली चीज को कर रहा हूँ. तो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया. ब्लॉगिंग किया मैंने अच्छा खासा और रिजल्ट भी ठीक ठाक था. तो मतलब एक टाइम के बाद वो भी हो गया, सचुलेट हो गया कि मजा नहीं आ रहा है. फिर हुआ कि वाइंस बनाएंगे, उस टाइम पे अमित बढ़ाना, भुवन बाम, इन सबका ट्रेंड चल रहा था थोड़ा बहुत. ये अपने पूरब झा तो उनके साथ हर्ष मनवाल के साथ आते थे सब लोग. तो उस टाइम पे वाइंस उन्होंने स्टार्ट किया हमने भी. ये बात है 2019 एंड की, नवंबर दिसंबर तक की. तो वो चला 10-15 वीडियो बनाया, बट टीम टूट गई. टीम जाते थे मतलब उस टाइम पे तो आपके लॉन्ग फॉर्मेट का जमाना था, शॉर्ट्स का कुछ था ही नहीं. टिकटॉक पे थोड़ा बहुत कंटेंट बनाते थे एक आध दो, लेकिन लॉन्ग फॉर्मेट ज्यादा पॉपुलर था. तो मतलब 10-15 वीडियो बनाने के बाद टीम टूट गई. तो पहली बार मेरे एक सीनियर हैं, कॉलेज में थे, शिव कुमार शुक्ला, जो अभी के टाइम पे वो स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं थे अपने नोएडा वगैरह में, सबके लिए ओपन करते हैं ये, आप जानते होंगे शायद उनको, हर्ष बिजरान और भी लोगों का माइक ओपन करते हैं. तो उन्होंने पहली बार मुझे इन्वाइट किया कि ओमकार तुम वीडियो बनाना क्यों बंद कर दिया. तो मैंने बताया कि यार टीम टूट गई, बन नहीं पा रहा है वीडियो, लड़के ही नहीं यहाँ काम करना चाहते हैं. तो पहली बार मैं बिहार से यहाँ आया दिल्ली, दिल्ली में कहा फरीदाबाद। तो यहाँ पे मैं मिला टीम से, बहुत लोग कर रहे हैं थिएटर, तो पहली बार पहले मोमेंट में शिव कुमार शुक्ला जी ने हमें मिलवाया तैयब आलम से, और तैयब आलम बहुत जल्दी दोस्त बन गया, और तैयब दोस्त बन गए मेरे की, क्योंकि हम दोनों सेम कैटेगरी के थे, दोनों यूट्यूब के काम करना चाहते थे, दोनों ही सेम हाइट के, मतलब मैं थोड़ा सा लंबा वैसे 4 इंच तैयब से, क्या कि दोनों लगभग सिमिलर हाइट के हैं, और तो हमारे थॉट्स बहुत सारे मैच होते थे तैयब और मेरे, तो हम दोस्त बन गए, अच्छी बात है। शिव कुमार शुक्ला जी फिर हाइड हो गए, मिलवा के, पता नहीं वो उनका उतना ही रोल था हमारे लाइफ में, मिलवाए और तैयब में दोस्त बने। फिर तैयब में ही मुकेश भाड़ी सर हैं हमारे थिएटर के, अच्छा खासा मतलब बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, जो मंडी ड्रामा स्कूल से पास आउट हैं, एनएसपी में आइटम रिपेक्टिव वर्क करा हुआ है, एसआरसी में करा हुआ है, तो फरीदाबाद में मुझे लगता है कि बहुत मतलब अच्छा उम्दक लगा रहे हैं फरीदाबाद के, बहुत नाम है उनका मुकेश भाड़ी सर का, तो उनसे इंट्रोडक्शन हुआ मेरा, और वहां पे देख के मुझे लगा कि यार ये थिएटर करना है मुझे, ये थी एक जर्नी की शुरुआत। तो पहली बार 2019 नवंबर की बात है, एंड में जाके मतलब आप ऐसा समझ लो 2020 जनवरी से स्टार्ट हुआ सिलसिला थिएटर वाला, उसके बाद तो यूट्यूब मैंने बंद ही कर दिया, यार यूट्यूब कौन ही करेगा अब थिएटर, मुझे मुझे था कि एक्टिंग सीखना है, और एक्टिंग में मेरे साथ प्रॉब्लम क्या था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे साथ कि मैं वो ना लड़ता था कि अगर मैं किसी बुक को पढ़ने जा रहा हूं तो मैं एक चैप्टर पढ़ के खुश नहीं होता हूं, मतलब ऐसा समझो आप कि अगर एक बुक है जिसमें 12 चैप्टर है तो मैं 12वें चैप्टर पढ़ना चाहता हूँ, कि अगर अगर कोई आया मुझे कि पहला चैप्टर पढ़ा दिया, कोई आया थर्ड पढ़ा दिया, कोई आया नाइन्थ पढ़ा दिया, कोई ट्वेल्थ पढ़ा दिया, तो मैं खुश नहीं हो पाता हूँ, मुझे लगता है नहीं यार और वो क्या बच गया जो रह गया मेरे से, तो वो चीज था। 2.5 साल तक लगातार यहाँ काम करते रहे फरीदाबाद में, लेकिन बहुत अच्छा वर्क नहीं होता है, थिएटर के सिलसिला ऐसे स्टार्ट हुआ था। उसके बाद मंडी ड्रामा स्कूल मैं गया हिमाचल, वहां भी 1 साल का था हमारा डिप्लोमा था एक्टिंग में, फिर वो वहां से निकलने के बाद बहुत सारे टीचर के साथ काम किया, आयाज खान, समीप सिंह, रॉबिन सर, एनएसडी में एज एन गेस्ट आर्टिस्ट काम किया, ग्वालियर, हिमाचल, पंजाब, बहुत जगह कर्नाटक मैंने 550+ किए, फिर जाके कहीं ना कहीं कॉन्टेंट क्रिएशन आया, क्योंकि हमारे कुछ यहाँ पे मतलब सीनियर है दीपक गर्ग जिनका आईडी है दीपक गर्ग से नाम गर्ग के नाम से, हसलिंग राजन, राजन भाई हैं, तैयब, ये लोग अच्छा कर रहे थे, तो फिर इनकी राह कदम तो फिर आगे हम लोग चलो यार अब करते हैं शुरू।
0: बिल्कुल बिल्कुल तो बहुत उत्तम,
2: ये था जर्नी शुरू में।
0: तो अभी तक हमने ओमकार चौहान की जर्नी के बारे में बात करी है, आगे हम कंटेंट को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, आपको इस शो के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कि ओमकार कंटेंट कैसे बनाते हैं जिसमें आपकी हेल्प हो सकती है, कि आप एग्जैक्टली कैसे अपने कंटेंट की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें लेना होगा एक म्यूजिकल ब्रेक। स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइफ।

0: वेल वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो चल रहे हैं पर वॉइस ऑफ यू, तो आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो 107.8 एफएम के साथ। और आज के हमारे जो मेहमान हैं हमारे शो में वो हैं मिस्टर ओमकार चौहान। ओमकार से पहले हमने जाना है कि इनकी यात्रा कैसे शुरू हुई कंटेंट की, और पूरा बता के इन्होंने थिएटर से कैसे शुरुआत हुई और उसके बाद कैसे कैसे जो है सफर यहाँ तक पहुँचा। ओमकार, बात करना चाहूँगा कॉन्टेंट का, बताइए थोड़ा सा कॉन्टेंट कैसे बनाया जाता है, आप कैसे अपना कॉन्टेंट बनाते हैं, थॉट कैसे आता है, कैसे लिखते हैं, सब कुछ बताइए।
1: कंटेंट तो ऐसा है कि अभी के टाइम पे तो कंटेंट इतना सैचुरेट हो चुका है, कोई भी आइडिया आप सोचते हो तो पता लगता है ऑलरेडी सब बन चुका है। तो सबसे पहला पहली मुश्किल हमारी ये रहती है कि यार हम क्या डिफरेंट कर सकते हैं, क्योंकि ना फर्स्ट थिंग तो वर्क करना ही नहीं चाहिए। जैसे कोई भी अगर आइडिया आप लेके आ रहे हो और उसको वर्क कर रहे हो तो मतलब वो फर्स्ट थिंग है, तो ना फर्स्ट ड्राफ्ट मुझे लगता है नहीं बनाना चाहिए, तो सेकेंड ड्राफ्ट थर्ड ड्राफ्ट पे काम करना ज्यादा बेहतर होगा। तो हमारे मतलब मेरे पास इस केस में अपना बता पाऊंगा, जो भी आइडिया दिमाग में आता है फिर उसको एक बार लिखते हैं, फिर उसको होल्ड पर डालते हैं, फिर दूसरी बार जाते हैं तो लगता है यार क्या लिखा है, तो और बेहतर लिख सकते हैं, ठीक है, फिर डेली राइट करते हैं। बिकॉज मैं बहुत अच्छा राइटर नहीं हूँ, एक्टर मैं ठीक हूँ बट राइटर में बहुत अच्छा नहीं हूँ। तो जो भी आइडिया जाते हैं तीन बार चार बार मैं लिखता हूँ, फिर लिखने के बाद उसको एडिट्यूट करके देखते हैं तो बहुत बार कॉन्टेंट बन जाता है, बहुत बार वो खुद ही मजा नहीं आता है देख के, क्योंकि क्या होता है ना कि एक अपना थॉट को इमेजिन करना एक ये चीज है, और उसको एग्जीक्यूट करके आउटपुट निकालना दोनों में बहुत डिफरेंस है। हम सोच तो लेते हैं कि ऐसा ऐसा कंटेंट बना लेंगे लेकिन बनता नहीं है। तो मैं भी इसी राह में हूँ, लगातार सर्चिंग चल रही है, बट यही कि प्रोसेस यही है कि आप पहले अच्छा कंटेंट सोचते हो, फिर उसको टीम के साथ बनाते हो, बना के एग्जीक्यूट करके डालते हो, बहुत बार लोगों को पसंद आ जाता है, बहुत बार नहीं आता है। तो इसमें बहुत हार्ड वर्क प्रोसेस तो नहीं है लेकिन है लंबा अच्छा था जाइए।
0: बिल्कुल, अगर कोई इंसान है जो कंटेंट बनाने की शुरुआत करना चाहता है उसको प्रोसेस अगर आप समझाना चाहें, प्रोसेस क्या होता है कंटेंट क्रिएशन का?
1: सबसे पहली बात तो आपको खुद को जानना होगा कि यार आप क्या बेस्ट कर सकते हो। जैसे होता है ना कि मैं बिहार से हूँ, तो मैं अगर भोजपुरी कंटेंट बनाऊं या भोजपुरी से रिलेटेड बनाऊं तो मैं बहुत आसानी से बना सकता हूं, ठीक है। कोई अगर हरियाणा से बिलोंग कर रहा है तो रीजनल कंटेंट अच्छा बना सकता है वो, लेकिन वहां भी प्रॉब्लम है कि फिर पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि रीजनल कंटेंट में पैसा है तो यूट्यूब पे है, यूट्यूब और फेसबुक से कमा सकते हो, अर्न कर सकते हो अच्छा खासा, लेकिन आप इंस्टा से नहीं कर सकते हो। हिंदी कंटेंट से आप इंस्टा से पैसा बना सकते हो, मतलब अर्न कर सकते हो अच्छा खासा। तो सब मिला जुला के बात यही है कि कोई भी अगर स्टार्ट करना चाहता है तो उसको खुद को समझना होगा कि वो क्या बेस्ट कर सकता है, ठीक है। अगर मैं मुझे मतलब कॉमेडी पसंद खुद ही नहीं है और मैं कॉमेडी वाली वीडियो बनाने लगूँ तो मुझे बहुत लंबा टाइम लगेगा, बहुत लंबा, मतलब दो साल तीन साल चार साल बाद में थोड़ा बहुत मैं अच्छा कर पाऊंगा। तो वही वाली बात है कि खुद को समझना ज्यादा जरूरी है। अगर कोई है कि जिस नीच से आता है और उसमें कंटेंट बना ले, आपका नॉलेज किसमें ज्यादा है ना, बैक बेंचर होता है वो मुफ्त बोलने वाले पंचेज दोस्तों का रोस्ट करते रहते हैं, तो उनमें जो क्वालिटी होता है वो जो वीडियो बनाते हैं उस टाइप की तो वो चल जाती है चीजें उनकी। लेकिन जो जैसे बहुत बार लोग आते हैं कि उनने देख के स्टार्ट कर दिया, कह रहे अरे यार वो कर रहा है, मेरा दोस्त तो वो अच्छा कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, तो वो वाला पॉसिबल नहीं है। आप अपने आप को आपको जानना पड़ेगा कि आप क्या बेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो इसमें तो यही चीज है।
0: बिल्कुल, तो बेसिकली आपको ऑथेंटिक रहना पड़ेगा पहले, फिगर आउट करने के लिए कि आपको क्या बनाना है, तो जो आपके अंदर से चीज आ रही है एग्जैक्टली फॉलो दैट पार्ट। Now, this note, लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। We'll take the show ahead, we'll talk about so many things. Just stay tuned with us. Feel good, feel live.

0: वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो यहां पर चल रहा है वॉइस ऑफ यूथ, आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो 107.8 एफएम के साथ और हम एक ही चीज आपसे बोलते हैं, फील गुड, फील लाइव। और ये कोशिश करते हैं आपको हम एग्जैक्टली सेम जो चीज है वो कन्वे भी कर पाए। आज हमारे साथ यहां पर ओमकार चौहान एक कंटेंट क्रिएटर हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। अभी तक हमने सारी चीजें लगभग इनसे जान ली हैं। ओमकार, अगला प्रश्न मेरा रहेगा पैसों के बारे में। क्या कंटेंट क्रिएशन को एक ऐसे माध्यम के तौर पर देखा जा सकता है जहां पर आप सस्टेन कर सकते हैं, लंबे टाइम तक दाल चावल का जुगाड़ अच्छा हो सकता है यहाँ से?
1: जहां तक बात है अर्निंग का, वो ये कि अगर आप सिर्फ अर्न करने के लिए आ रहे हो फिर तो मतलब नहीं बनता है आने का कंटेंट क्रिएशन में, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन से आपको होता ना कि आपको प्यार हो जाएगा ना तो आप पैसा अच्छा कमा पाओगे। जैसे होता ना कि हम व्यूज के पीछे भागेंगे, व्यूज नहीं आएगा, हम अच्छे कॉन्टेंट के पीछे भागेंगे, पैसा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो मेनली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बोलने में चाह रहा हूँ कि हम अच्छा कंटेंट बनाने के लिए अगर आ रहे हैं कि हम कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, हमारे अंदर क्रिएटिविटी है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, फील्ड कोई भी हो, है ना, हो सकता है वो फाइनेंस हो सकता है वो टेक हो सकता है वो कॉमेडी हो, एंटरटेनमेंट हो, कुछ भी, एनीथिंग एल्स। तो अगर आप इस चीज के लिए आ रहे हो कि मेरे पास इस चीज का नॉलेज है और मैं अच्छा कर सकता हूँ तो पैसा आ जाएगा, लेकिन आप आ रहे हो क्योंकि पैसा कमाना है तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से पैसा कमा सकते हैं। तो उसका तो बस यही है कि अगर अच्छा कंटेंट बना सकते हो पैसा कमाया जा सकता है, बहुत अच्छा कमाया जा सकता है। और इसमें ये कि अगर बैकअप लेके आ रहे हो आप तो एक मतलब है कि मुझे करना ही यही करना है, सिर्फ यही करना है, तो आप कमा सकते हो। और मैं इतना तो कह सकता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन से आप एक अपनी जनरेशन को बिल्कुल चेंज कर सकते हो। जैसे मैं मिडिल क्लास से आता हूँ तो मिडिल क्लास से मैं अपर क्लास में जा सकता हूँ अगर मैं ढंग का काम करूँ तो, लेकिन अगर मैं क्रिएटिव नहीं हूँ और जबरदस्ती लगाऊं किसी चीज को करने में तो पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिख रहा है कि वो है अर्न कर पाओगे आप। तो ये चीज है कि मतलब अच्छे कंटेंट के पीछे जाओगे तो अर्न कर लोगे, और ऐसा कि पैसा कमाने के लिए आ रहे हो तो शायद ना करता हूँ, जिसका मैंने एनालाइज करा यही है मेरा काम सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पैसे के जरिए क्या क्या होते हैं ये अगर आप बता पाए। पैसे के जरिए क्या होते हैं, कैसे कैसे पैसा आता है कंटेंट के थ्रू?
1: अच्छा ओके, पैसे के जरिए सबसे सिंपल जो है वो है फेसबुक, क्योंकि फेसबुक का मोनेटाइजेशन प्रोसेस बहुत मतलब बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, वो इतना आसान है कि आप ऐसा समझो कि फेसबुक वाला आपके व्यूज में लाख पार हुआ किसी भी कॉन्टेंट पे, कोई भी वीडियो उसके चला के लाख व्यू तो डॉलर में स्टार्ट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फॉलोअर पर डिपेंड ही नहीं है, वो 2,000, 2,500, 3,000, 5,000 कितने भी फॉलोअर्स पैसे बनने लगते हैं वहां पे। और यूट्यूब का है तो लंबा प्रोसेस है, आपको भी बताएगी वो, अभी तो 1,000 था और 1,000 वॉच आवर था ना, और 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यू था, वो तो बढ़ के अब 2,000 सब्सक्राइबर और आई थिंक 8,000 और हो गया, वो वॉच आवर हो गया है, तो कुछ वो चेंज हुआ अभी अचीव हुआ है, चेंज हुआ है, तो उस पर थोड़ा सा वो कि आप यूट्यूब से कमा सकते हो। तीसरा जो सबसे मेन पॉइंट है वो है इंस्टाग्राम डायरेक्ट कोई पैसा नहीं देता, वहाँ ब्रांडिंग अगर अच्छी है हमारी तो ब्रांड से हम पैसा उठा सकते हैं अच्छा खासा, बहुत अच्छा पैसा आता है, इंस्टेंट पैसा जो है इंस्टाग्राम ही देता है, लेकिन इंस्टाग्राम डायरेक्ट नहीं देता है, ब्रांड्स आती हैं हमसे कोलैब करती हैं क्योंकि हमारे पास ऑडियंस है, तो हम उस ऑडियंस के बेस पे हम उनसे चार्ज लेते हैं अच्छा खासा और हम ब्रांड को प्रमोट करते हैं, तो ये एक वे होता है जहाँ पे हम पैसा बना सकते हैं वहां से। ठीक है, और दूसरी एक चीज में और इम्पोर्टेंट थिंग है जो मुझे लगता है बताना चाहिए वो ये कि आप अगर रीजनल कंटेंट क्रिएटर हो तो इंस्टाग्राम पे डिपेंड मत हो, आपको फेसबुक और यूट्यूब पे डिपेंड होना है कि वो कंटेंट बनाना है जो फेसबुक और यूट्यूब पे चल रहा है। और अगर आप रीजनल कंटेंट नहीं बनाते हो, आप हिंदी कंटेंट बनाते हो, तो आप एक तरह को इंस्टाग्राम पर डिपेंड हो सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। तो यही है मेरा आंसर।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे सवाल यहाँ पर खत्म होते हैं ओमकार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई भी ऐसी चीज है जो मैं ना पूछ पाया हूँ और आप कहना चाहते हो तो प्लीज फील फ्री।
1: सब ठीक है, मुझे लगता है इतना ही इनफ रहेगा अभी के लिए।
0: बिल्कुल दोस्तों, आप लोग भी जाकर के
1: बहुत बहुत इनवाइट करने के लिए,
0: आप लोग भी जाकर के ओमकार भाई का कंटेंट जो है चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, ओमकार चौहान नाम से आपको ये इंस्टाग्राम पर दिख जाएंगे, बहुत ही फेमस हम कह सकते हैं एक पर्सनालिटी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया ओमकार भाई, तहे दिल से शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आगे के लिए, आप जो भी काम करें आप उसमें सफल हो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अगले दोस्तों नाउ दोस्तों वक्त अपने शो यहाँ पर कंक्लूड करने का। उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला पॉइंट मैं आपको समझा पाया हूँ, आज के शो से कुछ मूल्य आप लोगों को हम दे पाए हैं। शो पसंद आया तो 8010781078 इस नंबर तक अपनी कोई भी मन की बात हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल मैं चलता हूँ, नाउ दिस इज योर दोस्त एंड होस्ट आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई, किसान का बेटा हूँ, ये गर्व से कहता हूँ। किसान भाइयों, आज बात हो रही है हरी मिर्च के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिर्च का जो मूल स्थान है वो मैक्सिको है और दूसरे दर्जे पर ग्वाटेमाला माना जाता है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में मिर्चें 17वीं सदी में पुर्तगालियों के द्वारा और इसके बाद ये पूरे भारत में बड़ी तेजी से फैल गई। और किसान भाइयों, मिर्चों में जो कैप्सेसिन होता है, कैप्सेसिन में बहुत सारी दवाइयां बनाने वाले तत्व पाए जाते हैं, खास तौर पर जैसे कैंसर रोधी और तुरंत दर्द दूर करने वाले तत्व पाए जाते हैं। ये खून को पतला करने और दिल की बीमारियों को रोकने में भी मदद करता है। मिर्चें उगाने वाले एशिया के मुख्य देश भारत, चीन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कोरिया, तुर्की और श्रीलंका हैं। उत्तरी और केंद्रीय अमेरिका में यूगोस्लाविया, स्पेन, रोमानिया, बुल्गारिया, इटली और हंगरी। लेकिन दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना, पेरू और ब्राजील हैं। लेकिन भारत संसार में मिर्च पैदा करने वाले देशों में मुख्य देश माना जाता है। इसके बाद चीन और पाकिस्तान का नाम आता है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान मिर्च पैदा करने वाले भारत के मुख्य राज्य हैं। तो ये तो बात मैंने आपको बता दी कि मिर्च कहाँ कहाँ पैदा की जाती है। पर किसान भाइयों, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे मिट्टी की तैयारी कैसे हो, इसकी पैदावार के लिए किस्मों का कैसे ध्यान रखा जाए। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ साझा करूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्न।

0: आंखें।
1: दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। किसान भाइयों, आज आपसे बात हो रही है हरी मिर्च के बारे में। अगर हम मिट्टी की बात करें तो मिर्च हल्की सी भारी हर तरह की मिट्टी में उगाई जा सकती है। अच्छे विकास के लिए हल्की उपजाऊ और पानी के अच्छे निकास वाली जमीन जिसमें नमी हो, इसके लिए अनुकूल होती है। हल्की जमीनें भारी जमीनों के मुकाबले अच्छी क्वालिटी की पैदावार देती हैं और मिर्च के अच्छे विकास के लिए जमीन की पीएच 6-7 अनुकूल मानी जाती है। तो ये तो रही मिट्टी की बात, अब कर लेते हैं किस्मों की बात। एक किस्म है जिसका नाम है CH1। ये किस्म PAU लुधियाना द्वारा बनाई गई है। ये दरमियाने कद वाली किस्म है। इसका फल दरमियाने आकार और हल्के हरे रंग का होता है, जो पकने के बाद गहरे लाल रंग का हो जाता है। इस किस्म का फल बहुत कड़वा और आकर्षित भी होता है। ये किस्म गलन रोग को सहने योग्य है। इसकी औसतन पैदावार 95 से लेकर 100 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। अब एक और किस्म है जो जानी जाती है CH3 के नाम से। ये किस्म पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना द्वारा बनाई गई है और इसके फल का आकार CH1 के आकार से बड़ा होता है। इससे कैप्सेसिन की मात्रा 0.52% होती है और इसकी औसतन पैदावार 100 से 110 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। एक और किस्म है जो जानी जाती है CH27 के नाम से। किसान भाइयों, इस किस्म के जो पौधे हैं वो लंबे होते हैं और ज़्यादा समय तक फल देते हैं। इस किस्म के फल दरमियानी लंबे यानी 6.7 सेंटीमीटर पतले छिलके वाले, शुरू में हल्के हरे और पकने के बाद लाल रंग के होते हैं। ये किस्म पत्ता मरोड़, फल और जड़ गलन, रस चूसने वाले कीट जैसे के मकोड़ा और जुए की रोधक है। इसकी औसतन पैदावार 90 से लेकर 110 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। तो ये तो रही किस्मों की बात। आगे आपसे बात करूंगा कि जमीन की तैयारी कैसे की जाए। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए अन्नदाता।

दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। किसान भाइयों, मिर्चों के बारे में आज आपसे बात कर रहा हूं। सबसे अहम बात है जमीन की तैयारी।

तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, खेत को तैयार करने के लिए 2 से 3 बार जुताई करें और हर एक जुताई के बाद कंकड़ों को तोड़ें। बिजाई से 15 से 20 दिन पहले रूड़ी की खाद 150 से लेके 200 क्विंटल प्रति एकड़ डालकर मिट्टी में अच्छी तरह मिला देनी चाहिए। खेत में 60 सेंटीमीटर के फासले पर मेड़ और खालियां बनाएं। इसके अलावा एजोस पीरिलियम 800 ग्राम प्रति एकड़ और फास्फोबैक्टीरिया 800 ग्राम प्रति एकड़ को रूड़ी की खाद में मिलाकर खेत में डाल देना चाहिए। तो इस तरह से ज़मीन की तैयारी की जाती है। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, टमाटर और मिर्च की खेती एक ही या नज़दीक वाले खेत में बिल्कुल ना करें। क्यों? क्योंकि दोनों की बीमारियां एक जैसी होती हैं और इस कारण एंथ्राक्नोस और बैक्टीरिया वाली बीमारियों के बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। मिर्च के साथ प्याज और धनिये की खेती करने से आमदनी में वृद्धि होती है और नदीनों को रोका जा सकता है। कीड़ों की रोकथाम के लिए मिर्च के साथ प्याज, लहसुन या मैरी गोल्ड की खेती की जा सकती है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं अन्नदाता।

दोस्तों, एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। किसान भाइयों, मिर्च की फसल के बारे में आज आपसे बात हो रही है, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ बिजाई का तरीका। देखिए, बिजाई का एक अपना समय होता है। नर्सरी लगाने का उचित समय अक्टूबर के आखिर से मध्य नवंबर तक होता है। नर्सरी को 50% छांव वाले जाल से ढक दें और इर्द गिर्द कीट पतंगे रोकने वाला 40 या 50 मैश नायलॉन का जाल लगाएं। पनीरी वाले पौधे 30 से 40 दिनों में आमतौर पर फरवरी मार्च में तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा बात आती है बिजाई के फासले की, तो इसको भी जरा ध्यान से सुने। कतारों का फासला 75 सेंटीमीटर और पौधों का फासला 45 सेंटीमीटर रखें। बीज की गहराई की बात करें तो पनीरी 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई में बोएं, और बिजाई का जो ढंग है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। यानी मिर्च की जब भी आप बिजाई करें तो मिर्च की बिजाई पनीरी लगाकर ही करें। तो ये रही बिजाई की बात, लेकिन आगे कुछ और भी ज़रूरी बातें हैं आपके साथ साझा करूँगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, अन्नदाता।

दोस्तों, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की। किसान भाइयों, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं मिर्चों के बारे में, अब बात आती है सिंचाई की। ये फसल अधिक पानी में नहीं उग सकती, इसलिए सिंचाई आवश्यकता अनुसार ही करें। हाँ, अधिक पानी देने के कारण क्या होता है, पौधे के हिस्से लंबे और पतले आकार में बढ़ते हैं और इसके जो फूल होते हैं ना, वो गिरने लग जाते हैं। सिंचाई की मात्रा और फासला मिट्टी और मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर पौधा शाम के 4 बजे के करीब मुरझा रहा हो तो इससे सिद्ध होता है कि पौधे को सिंचाई की जरूरत है। फूल निकलने और फल बनने के समय सिंचाई बहुत जरूरी होती है। कभी भी खेत या नर्सरी में पानी खड़ा ना होने दें, इससे फंगस पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। तो किसान भाइयों, इन सारी बातों का ख्याल रख कर के मिर्च की फसल को उगाया जाए तो आपकी फसल बेहतर होगी, और फसल बेहतर होगी तो आपको इसका दाम भी बेहतर से बेहतर मिलेगा। इसी बात के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे आज्ञा चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, लेकिन चलते चलते सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, इन दिनों बात हो रही है रचनाकार मधु कांकरिया के बारे में। उनके बारे में पिछले एपिसोड में मैंने आपसे बहुत सारी बातें की थी। उनका कहना है कि हर एक देश का, समाज का अपना स्वतंत्र बोध होता है और युग बदलने के साथ साथ उसका बोध भी बदलता रहता है, जिसका रूप साहित्य में देखने को मिलता है। जिस तरह व्यक्ति और समाज एक दूसरे के परिपूरक हैं, ठीक उसी तरह साहित्य और युग बोध भी अनुपूरक हैं। एक के बिना अन्य की कल्पना असंभव है, ऐसा कहना है मधु कांकरिया का। लेकिन इनके बारे में आज के एपिसोड में और बहुत सारी बातें आपके साथ साझा करूंगा। फिलहाल आवाज की दुनिया के दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, मधु कांकरिया का युगबोध सजग, सतर्क और स्पष्ट है। अपनी कहानियों में उन्होंने तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को भली भांति भांप कर यथार्थ वर्णन किया है। जो प्रवृत्तियां, परिस्थितियां, समस्याएं उन्हें एक बेहतर समाज के निर्माण में बाधक प्रतीत हुई हैं, उनका हल प्रस्तुत करने का यत्न भी एक शुद्ध साहित्यकार की भांति किया है। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण मधु कांकरिया की कहानियों में समाज का वास्तविक यथार्थ अंकित हुआ है, जहां कल्पना के अटने की ज्यादा गुंजाइश देखने को नहीं मिलती है। सूरज पालीवाल के मुताबिक मार्क्सवाद जीवन और जगत को देखने की स्वस्थ दृष्टि देता है, जिसका प्रभाव मधु कांकरिया के जीवन और रचना जगत में देखा जा सकता है। वो मार्क्सवादी नहीं है, लेकिन उसकी विरोधी भी नहीं है, इसलिए उनकी रचनाओं का आकाश विस्तृत है। घर परिवार की सीमाओं का जो बार बार अतिक्रमण होता है, उसके सूत्र इसी मार्क्सवाद के प्रभाव में देखे जा सकते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
2: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, मधु कांकरिया का रचना संसार बहुत विस्तृत है, जिसके कारण वो अपने समकालीन रचनाकारों जैसे मालती जोशी, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, राजी सेठ, अनामिका, उषा प्रियंवदा, सुधा अरोड़ा, नासिरा शर्मा और सूर्य बाला से अलग और विशिष्ट हैं। दोस्तों, मधु कांकरिया के व्यक्तित्व का खुला दर्शन उनके साहित्य में परिलक्षित होता है। वो ड्राइंग रूम में बैठकर लिखने वालों में से नहीं हैं। वो उन गलियों में जरूर भटकती हैं जहां उनके पात्र हैं। वो फॉर्मूला टाइप कहानी में विश्वास बिल्कुल नहीं करती। जीवन जैसा है उसको वैसा ही साहित्य में उतारने की कोशिश उनकी हमेशा रहती है। जीवन में जो स्त्री हार रही है उसे वीर बाला या झांसी की रानी बनाकर बहुत नहीं दिखाती हैं। यही उनकी लेखन की खासियत है जो और लेखकों से उनको अलग करती है। इनके बारे में बातों का सिलसिला जारी रहेगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है मधु कांकरिया के बारे में, उनके लेखन के बारे में। मधु कांकरिया की हर एक कहानी समकालीन दौर से इस प्रकार संबंधित है कि प्रत्येक पाठक खुद को उसमें जरूर पाता है। अगर स्त्री की बात करें तो 20वीं सदी के अंतिम दशक की लेखिकाओं ने स्त्री मुक्ति की समस्याओं को अपने अनुभवों, भोगी हुई जिंदगी की यातनाओं, मुक्ति की छटपटाहट और बेचैनी को वाणी प्रदान की है। आज की स्त्री अपने सामने उपस्थित चुनौतियों को स्वीकार करती है, सामंती परिवेश की जकड़न और रूढ़ मर्यादाओं को तोड़ती है, साथ में सकारात्मक रूप से अपने दृढ़ व्यक्तित्व को भी वाणी प्रदान करती है। मधु कांकरिया की कहानी, जिसका नाम है दाखिल। कहानी दाखिल में पति द्वारा प्रताड़ित स्त्री यानी सुकीर्ति के जीवन का जिक्र हुआ है। अब सुकीर्ति के बारे में किस तरह से जिक्र किया है मधु ने, आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, मैं आपसे जिक्र कर रहा था मधु कांकरिया की उस कहानी का जिसका शीर्षक है दाखिल। दाखिल में पति द्वारा प्रताड़ित स्त्री यानी सुकीर्ति के जीवन संघर्ष का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। सुकीर्ति के प्रति पति का व्यवहार कैसा था, ये छोटे से विक्रम यानी जो बेटा है उसके कहने से पता चलता है कि मैंने फेंके हैं ये चाकू यहाँ, मुझे डर था कहीं पापा गुस्से में ये चाकू ही तुम पर ना फेंक दें। उस दिन जो गरम गरम चाय किस तरह फेंकी थी पापा ने आपके ऊपर। दोस्तों, सुकीर्ति अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में दाखिला कराना चाहती है, लेकिन पति के ना होने से ये काम सहज नहीं था। वो अपने भाई को पति बनाकर बच्चे के एडमिशन का प्रयास करती है और आखिरकार अनेक संघर्ष के बाद वो इसमें सफलता पाती है। पितृसत्तात्मक समाज में एक अकेली स्त्री का जीवन बहुत ही कठिन और संघर्षशील होता है। पुरुष के बिना नारी के अस्तित्व को आज भी लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं, ये हकीकत है और यही सत्य है। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर सुनते रहिए फहीम के साथ यादों का सफर।

आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, भारतीय नारी के विषय में पहले से ही पवित्र संकल्पना रही है कि वो किसी भी प्रतिकूल या नकारात्मक स्थिति में अपने सतीत्व का विसर्जन नहीं करेगी, क्योंकि ये नारी का आभूषण है। उसकी पवित्रता पितृ सत्ता की वैचारिकी और उससे तराशी स्त्री सोच से आबद्ध रही है। लेकिन आज के युग तक आते आते इस दृष्टिकोण में काफी कुछ बदलाव आए हैं। जीवन मूल्य के प्रति बदले हुए चिंतन के कारण वर्तमान में स्त्री स्वतंत्रता के साथ जीवन बिताना चाहती है। अगर उसकी स्वतंत्रता पर जबरदस्ती लगाम लगा दी जाए तो उसका मन आजादी के लिए तड़पने लगता है। वो किसी न किसी तरह स्वतंत्र होने की सोच में डूब जाती है। फिर रास्ता कोई भी हो, सही हो या गलत हो, उसे परवाह नहीं रहती। दोस्तों, मधु कांकरिया की एक कहानी है जिसका नाम है चूहे को चूहा ही रहने दो। इस कहानी के बारे में आपसे जिक्र करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है मधु कांकरिया के बारे में और उनकी लेखन के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था, उनकी एक कहानी है जो कि बड़ी मशहूर है, नाम है चूहे को चूहा ही रहने दो। ये कहानी एक प्रतिशोध परायण स्त्री का बयान बनती है। एक बार नायिका हिम्मत करके अपने छोटे भाई के मित्र से हाथ मिला लेती है तो उसका पति उसके हाथों को दीवार पर रगड़ देता है ताकि स्पर्श के चिन्ह मिट जाएं। नायिका कहती है, मेरे पति ने मेरी देह की जमीन पर ऐसी हदबंदी कर दी थी, ऐसे कटीले बाड़े डाल रखे थे कि मैं किसी हम उम्र इंसान से बात करने तक तरस जाया करती थी। पति से बदला लेने के लिए एक अजनबी से शारीरिक संबंध बनाकर घोषित करती है, हाँ, आज की ये रात अकस्मात नहीं थी, इसके मेघ खंड मेरे अवचेतन में जाने कितने वर्षों से खंड खंड इकट्ठे हो रहे थे, आज की रात मेरे प्रतिशोध की रात है। तो इस तरह से दोस्तों मधु कांकरिया ने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज में फैली जो कुरूतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनको खत्म करने का प्रयास किया और जो स्त्रियां हैं उनको जागरूक करने की कोशिश की। इनके बारे में अगले एपिसोड में आपसे और भी बहुत सारी बातें करूंगा। फिलहाल इजाजत चाहता हूं। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। नमस्ते, खुदा हाफिज़।

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना। टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ।
1: बिटिया का ब्याह किया, साथ ही हवन कुंड में उसकी चिता को होम किया। सारी जिंदगी दबाते रहे, संवारते रहे, अनुशासन के सांचे में ढालते रहे। पराए घर जाना है, सामंजस्य बिठाना है। तू पराई है, हमारी जाई है। जा बिटिया जा, ये सब तेरा अपना नहीं, बीता हुआ सपना सा है। तुझे उस घर को अपनाना है, उसे संवारना है, दोनों खानदानों की मर्यादा को बढ़ाना है। लो बाबुल, आज तुम्हें पराया कर उस अजनबी घर को लिया अपना। पर यह क्या, यहाँ भी इतिहास दोहराया गया। हरसू मुझे पराया ठहराया गया। 14 वर्षों का वनवास काट कर भी उन्हें अपना बना न सकी, उनकी बन न सकी, एक निगोड़ा विश्वास तक हासिल कर न सकी। बाबुल, तुम तो पहले ही हवन कुंड में बिटिया की चिता को होम कर चुके हो। अब ये बिटिया पराई, पराए घर की जाई, जाए कहाँ, अपना बनाए किसे, अपना जहाँ बनाए कहाँ। क्या धरती में समा जाए, क्या धरती में समा

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लेकर आते हैं आपके लिए उन सेलिब्रिटीज को जिन्हें चाहते हैं आप, प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी रूपी गीतों की बौछार जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आलम आरा से लेकर आज तक की रिलीज फिल्म के गीत, गजल, भजन, फिल्मी, गैर फिल्मी, कुछ भी। शर्त सिर्फ इतनी कि वो हमारे सेलिब्रिटी की पसंद के हो, और ऑफ कोर्स आपको तो पसंद आएंगे ही क्योंकि आपके लिए आपके प्रिय सेलिब्रिटी ही तो चुनकर लाते हैं संगीत की आकाश गंगा से सितारे रूपी गीत। और दोस्तों, अगली बार आप अपनी महफिल में किस सेलिब्रिटी को सुनना चाहते हैं आप मुझे बता सकते हैं, और कैसा लग रहा है आपको रेडियो मानव रचना और सृजन भी, SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे बेहदी खास मेहमान हैं डॉक्टर राम सिंह हलचल जी। आप कविता लिखते हैं, आप गीतकार हैं और आप डिजास्टर्स मैनेजमेंट से भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राम सिंह हलचल जी, आपका स्टूडियोज में बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: और हलचल जी, जो हमारे दोस्त आप लोगों से सबसे पहले जानना चाहते हैं वो यही कि आपके लेखन की शुरुआत कब, क्यों, कैसे हुई, आपका प्रेरणा स्रोत क्या रहा?
1: हमारे स्कूल में एक बार एजुकेशन ऑफिसर आए
0: जी,
1: तो हमारे हिंदी के टीचर थे डॉक्टर सुनहरी लाल
0: जी।
1: आजकल वो हास्य कवि हैं।
0: अच्छा।
1: डॉक्टर सुनहरी लाल तुरंत के नाम से कविताएं पढ़ते
0: क्या बात है।
1: तो हमारे वो हिंदी के अध्यापक थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं उनके स्वागत में कुछ नया करते हैं जो स्कूलों में ना होता हो।
0: अच्छा।
1: तो फिर उन्होंने दो विद्यार्थी चुने जिनको लड़की बनाया उन्होंने, साड़ी पहनाई।
0: अच्छा।
1: और हम दोनों को कुर्ता पजामा पहनाया और एक गीत लिखा उन्होंने पहली बार उस क्लास में बैठ करके कि लाओ लाओ रे सुमंगल हार, अतिथि आए मेरे अंगना। ये उन्होंने हम सबके सामने बैठ कर लिखा। तो उसके बाद गेट पर जा करके चारों लड़के जो हैं, दोनों साड़ी पहनी थी, दोनों पजामा कुर्ता, पुष्प वर्षा की और ये गीत गाया। तो उस गीत को सुनने के बाद फिर एजुकेशन जो ऑफिसर थे एनएस तौलिया जी, उन्होंने बड़ी तारीफ की और आशीर्वाद दिया हमको कि भाई आप लोग अच्छे बने, और उनको कहा सौभाग्यवती रहो। ये बड़ा हंसी का पात्र बना। गीत बहुत अच्छा रहा, उन्होंने भी बड़ी तारीफ की कि भाई बहुत अच्छा गीत है। तो उस समय मुझे लगा कि मैं भी लिख सकता हूँ।
0: अच्छा, वो आपके आपको अंदर प्रेरणा दे गया
1: जी। और फिर तब से मैंने कुछ लिखना शुरू किया, लिखता रहा, लिखता था, दोस्तों को सुनाया और दे दिया। लेकिन मेरा एक मित्र है संजीव, उसको मैंने जितनी रचना दी उसने संभाल कर रखी।
0: क्या बात है।
1: तो उसने कई जगह इस्तेमाल भी किया।
0: अच्छा।
1: लेकिन बाद में फिर उसने कहा कि यार ये तुम्हारी रचना है ना, मैं एक जगह प्रिंट करता हूँ।
0: ओह क्या बात है।
1: तो फिर उसने वो रचनाएं सारी प्रिंट की।
0: क्या बात है। तो मैं गुजारिश करूंगी, आपने बताया कि आपने कहाँ से आपके लेखन की शुरुआत हुई, एक रचना हमारे दोस्तों को दे दीजिए इस मौके पर।
1: तो मैं एक मानसिकता कहें या स्थिति कहें, वो महिलाएं जो काम करती हैं, नौकरी करती हैं, नौकरी पेशे वाली महिलाएं
0: जी, स्वागत।
1: तो उनके मन मस्तिष्क में क्या चलता है, क्या इंतजार करती हैं वो एक मैंने मन उनका लिखने की कोशिश की
0: जी। स्वागत स्वागत।
1: क्या सच में विशेष है वह सातवां दिन जिसके इंतजार में वह मन क्रम वचन से रहती है? शायद हाँ, वह विशेष वार रविवार ही है। शनिवार को कार्यस्थल से घर लौटते समय एक विजेता की भांति वह मन में पूर्णता का एहसास लिए हुए घर पहुंचती है।
0: बहुत खूब।
1: एक लंबा उच्छ्वास भरकर वह घर पहुंचते ही अपने बैग और पर्स को सहेज कर रखने के बाद खुद को बिस्तर पर निढाल होकर मुक्त छोड़ देती है।
0: क्या बात है।
1: और आंखें बंद करके उस विशेष दिन के इंतजार की खुशियां मनाना शुरू कर देती है। मन ही मन योजना बनाने लगती है।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: शरीर की थकान और मशीनी स्वभाव से मुक्त होकर कल देर तक सोऊंगी, भोर के अलार्म को भी अवकाश दूंगी।
0: क्या बात है।
1: ऐसा निश्चय करती है।
0: क्या बात है।
1: थोड़ी देर इन्हीं विचारों के उधेड़ बुन के बाद उसे याद आता है कि शाम हो गई है, चाय बनाती हूँ परिवार के साथ साथ, थोड़ी सी मैं भी ले लेती हूँ। चाय की चुस्की के बाद कुछ नमकीन या बिस्किट लेकर खुद को योजना के मार्ग से वापस बुला लेती है।
0: क्या बात है।
1: और शाम की रसोई बनाने में तल्लीन हो जाती है। रात का खाना परिवार को खिलाकर खुद भी थोड़ा सा भोजन का स्वाद लेकर सोने चली जाती है और बिस्तर पर आंखें बंद कर काम काज के ही सपनों में खो जाती है।
0: क्या बात।
1: अगले दिन वह सुखद दिन अपनी सुहानी भोर के साथ प्रस्फुटित हो जाता है जिसे हम सभी रविवार या इतवार कहते हैं। आंखें खुलते ही एक विचार मन में आता है कि आज सरपट भागती जिंदगी से निजात पाऊंगी, आज घर की सफाई और रसोई के काम जल्दी से निपटा कर कपड़े भी धोने हैं और बालों में मेहंदी लगाने के लिए फिर स्नान करना है और न चाहते हुए भी वह जल्दी ही उठ जाती है। इन सारे कामों में कब सांझ ढल जाती है उसे पता ही नहीं चलता।
0: क्या बात।
1: थोड़ी देर लेट कर वह टीवी देखती है और फिर शाम की चाय के लिए रसोई में लग जाती है। जिस रविवार के सुकून की चाह में वह 6 दिन की जद्दोजहद करती है वह कब गुलर के फूल की तरह खिलता है पता ही नहीं चलता। वह दिवस मुट्ठी में जो रेत की भांति फिसलता है। रात को जब बिस्तर पर विश्राम करती है तो सोचती है क्या सच में रविवार सुकून के लिए था या नित्य से भी अधिक कार्य लेकर आया और थका कर चला गया। उसके बाद आंखें फिर से 7वें दिन के इंतजार में खो जाती हैं। सच में यह रविवार कितना आराम और कितना सुकून की मृग मरीचिका उसे खूब तड़पाती है सताती है और एक उम्मीद की थाली में ना उम्मीदी का स्वप्निल पकवान परोसकर चली जाती है और वह इसे खुशी से या मजबूरी से ही ग्रहण कर जाती है। ऐसा लगता है इंतजार के तेल में जल रही सुकून की बाती अपनी मध्यम रोशनी से नित्य की संघर्ष भरी जिंदगी में उत्साह का संचार करती है और अगला दिवस सोमवार के रूप में बिन बुलाए मेहमान की तरह स्वयं प्रकट हो जाता है और फिर उस मशीनी जीवन की शुरुआत कर जाता है। देखते हैं कब इस भागदौड़ भरी जिंदगी और थका देने वाली जिंदगी के अंधेरे में सुकून की रोशनी आएगी और उसे आंशिक या पूर्ण रूप से सुकून दे जाएगी।
0: झिलमिल सितारों का,
1: झिलमिल सितारों का।

0: Welcome again to Radio Manav Rachna with Feel Good Feel Live 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में सृजन लेकर और आज हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान हैं डॉक्टर राम सिंह हलचल जी। आप कवि हैं, गीतकार हैं, आप व्याख्ता हैं। राम सिंह हलचल जी, डॉक्टर साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, आपको पढ़ा गया दैनिक दर्पण, शब्दों की आत्मा, परशुराम, महासभा मासिक, काव्य मंजरी, प्रतिलेख, बहुत लंबी लिस्ट है आपके पत्र पत्रिकाओं की। गुजारिश होगी आप अपने सफर के बारे में हमारे दोस्तों को बताइए।
1: मैंने जब लिखना शुरू किया
0: जी
1: तो एक पहली पुस्तक मेरे एक मित्र ने छापी हलचल के स्वर नाम से।
0: ओ।
1: तो उस पुस्तक को कुछ लोगों को दिया, कुछ लोगों ने जब कार्यक्रम हुआ तो उसमें भी वितरित हुई, तो लोगों ने पढ़ा, तो पढ़ने के बाद उनको लगा अच्छा आप ऐसा भी करते हैं।
0: अच्छा।
1: क्योंकि मेरे चेहरे से शायद वो रचनाएं मेल नहीं खाती थी। चेहरा देख करके लोगों को वो, क्योंकि मैं मार्शल आर्ट भी करता था उस समय पर और इस कारण से जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, इसके कारण से तो श्रृंगार रस की कविताएं या दैनिक रचना लोगों को पढ़ने में लगा अच्छा ये आपका दूसरा रूप भी है।
0: क्या?
1: तो फिर लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई हमारी एक पत्रिका है, आप उसमें लिख सकते।
0: अच्छा, ये उल्टा हो गया, पहले आपकी किताब आ गई फिर पत्र पत्रिका। ये तो आमतौर पर होता ही हूँ कि पहले पत्र पत्रिकाओं में लोग छपते हैं,
1: हाँ जी,
0: बाद में किताबें आती हैं। दोस्तों, मैं भी कवित्री हूँ, आप लोग जानते हैं कि पहले पत्र पत्रिकाओं से शुरुआत होती है, किताब बहुत बाद में आती है। डॉक्टर राम सिंह हलचल जी के साथ उल्टा हुआ, पहले इनकी पुस्तक आई जिसके बारे में हम बात करेंगे ही अलग से, और फिर बाद में इनकी पत्र पत्रिकाएँ आई।
1: जी बिल्कुल ही मेरे लिए उल्टा है।
0: गुजारिश करूंगी इस मोड़ पर अपनी एक रचना हमारे दोस्तों को दे दीजिए।
1: आज के समय में जैसे कुछ भी उच्छृंखलता होती है तो कहते हैं ये बड़ा कन्हैया बन रहा है।
0: जी,
1: लेकिन वास्तव में कृष्ण बनना इतना आसान नहीं है।
0: इतना आसान नहीं।
1: मैंने कृष्ण के जीवन को पढ़ा है, उसके बाद मैंने कुछ लिखा है कि जो लोग कहते हैं कि ये कन्हैया है वास्तव में कृष्ण को जानते ही नहीं
0: जानते।
1: तो मैंने उनके जीवन पर लिखा है कि सरल नहीं है कृष्ण हो पाना।
0: क्या बात, बहुत ही
1: कि सरल नहीं है कृष्ण हो पाना, गुरुता को लघु होना पड़ता है, जीवन के निथावन कुंड में समिधा सम जलना पड़ता है, 14 बरस तक जननी के आंचल से दूर भी रहना पड़ता है, 3 लोग मुख में धरकर भी घुटनों के बल चलना पड़ता है।
0: बहुत खूब।
1: सरल नहीं है कृष्ण हो पाना, गुरुता को लघु होना पड़ता है, परहित का आदर्श धारने गोकुल भी त्यागना पड़ता है, कर्म भूमि की रज संवारने जन्म भूमि को तजना पड़ता है, सरल नहीं है कृष्ण हो पाना।
0: क्या बात है।
1: त्याग सनातन की मर्यादा पूतना का वध करना पड़ता है, महिलाओं पर हाथ उठाना सनातन की परंपरा नहीं है, लेकिन पूतना राक्षसी थी, महिला थी वो, और इस सनातन की मर्यादा को भी उन्होंने तोड़ा, तो इसलिए लिखा मैंने त्याग सनातन की मर्यादा पूतना का वध करना पड़ता है, देश धर्म समाज रक्षा हित मामा का वध करना पड़ता है, सरल नहीं है कृष्ण हो पाना,
0: बहुत खूब,
1: गुरुता को लोग होना पड़ता है, कान्हा कुमार को छोड़ स्वभाव ग्वाला भी बनना पड़ता है, गौरस माखन बांट सभी को निचोर कहना पड़ता है, सरल नहीं है कृष्ण हो पाना, गुरुता को लघु होना पड़ता है, ग्वाल बाल संग मिलकर के गोवर्धन भी उठाना पड़ता है, काली दाह में जाकर कालिया नाग का मर्दन भी करना पड़ता है, सरल नहीं है कृष्ण,
0: बहुत खूब,
1: दुष्ट शिशुपाल के अपमानों का शतक भी सुनना पड़ता है, गालियां दी उन्होंने वो भी सुनी उन्होंने, मुक्त हुई 14,000 रानियों का सम्मान भी करना पड़ता है,
0: क्या बात,
1: सरल नहीं है कृष्ण हो पाना, गुरुता को लघु होना पड़ता है,
0: वाह वाह वाह,
1: अपनों के प्राण घात से बचने अपनों को छलना पड़ता है, वंशी त्याग के कर्म में रथ का भार थामना पड़ता है,
0: क्या

0: सरल नहीं है कृष्ण होता है। स्वाभिमान के मान को तजकर अपमान को सहना पड़ता है, अपनों की प्राण सुरक्षा हित रण छोड़ कहना पड़ता है, सरल नहीं है कृष्ण होता
1: है। सरल नहीं कृष्ण।
0: ऐश्वर्य द्वारिका का तज निर्धन मित्र को गले लगाना पड़ता है, निज तोड़ प्रतिज्ञा धर्म की खातिर कर्मे चक्र उठाना पड़ता है, सरल नहीं है कृष्ण हो पाना।
1: बहुत
0: महासमर में सारथी से विराट योगेश्वर बन जाना पड़ता है, धर्म विजय की खातिर गीता अध्याय 18 बांचना पड़ता है, सरल नहीं है कृष्ण होता है। कुरुक्षेत्र में गांडीव उठा अर्जुन अभिप्रेरणा दर्शाना पड़ता है, दुर्योधन का मर्दन कर गांधारी का शाप भी सहना पड़ता है,
1: क्या
0: गांधारी ने शाप दिया उनको, सरल नहीं है कृष्ण। प्रेम विरह की शीत अग्नि में स्वयं को ही जलाना पड़ता है, शाश्वत जग में प्रेम अमर है उद्धव को समझाना पड़ता है, सरल नहीं है कृष्ण होता। निज कुल बंधु बांधवों के हित सागर में नगर बसाना पड़ता है, नारी तो सुधा द्रौपदी का भरी सभा में चीर बढ़ाना पड़ता है, सरल नहीं है कृष्ण होता, सरल नहीं है कृष्ण होता, सरल नहीं है कृष्ण।
1: जिसकी रचना
0: जिसकी

0: Welcome again to Radio Manav Rachna with Feel Good, Feel Live 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर. और आज हमारे साथ हमारे बेहदी बेहदी बेहदी खास मेहमान हैं डॉक्टर राम सिंह हलचल जी. आप कविता गीत लिखते हैं, गीतकार हैं, डिजास्टर्स मैनेजमेंट के लिए भी आप काम करते हैं. डॉक्टर साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है.
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद.
0: डॉक्टर साहब आपकी पुस्तकें आई एहसासों का नूर, हलचल के स्वर, पिता, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, गुलदस्ता, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई. गौतम भी लिस्ट है आपकी पुस्तकों की. गुजारिश करूंगी अपने सफर के बारे में हमारे दोस्तों को बताइए.
1: मैंने जब लिखना शुरू किया तो कुछ साझा संकलन छपे, कुछ अपनी व्यक्तिगत रचनाएं जब एकत्र हुई तो वो छपी
0: जी.
1: तो पहले हलचल का स्वर छपी, उसके बाद फिर एहसासों का नूर, और इस बीच में साझा संकलन भी छपते रहे. तो ध्यान में क्या आया कि लोग रचना पढ़ते हैं अगर मन को भाती है
0: जी.
1: तो जब मन को भाती है तो वो उसको ढूंढते हैं कि किसने लिखी
0: है, वाह.
1: और फिर उससे संपर्क करने की कोशिश करते हैं
0: जी.
1: इस बीच प्रवीण जी एक टीवी पर अपना कविता पाठ चलाते हैं, सतमूला कवियों की चौपाल
0: जी.
1: उसमें उन्होंने मुझे संपर्क किया, राम सिंह जी आपसे मिलना है.
0: मतलब आपको टीवी पर भी देखा गया
1: जी. तो 4-5 बार जाना हुआ मेरा सतमूला कवियों के चौपाल में. तो उन्होंने कहा, राम सिंह जी आप ना अलग अलग चीजें लिखते हैं, एक जैसा नहीं लिखते, तो ये वैविध्य आता कहाँ से है?
0: क्या बात है.
1: तो मैंने उनको दो पंक्तियां कही.
0: स्वागत.
1: मैंने कहा, जब मानव का वरद पुत्र उसका सोने पथ पर कोई संबल हरता है.
0: क्या बात है.
1: जब मानव के वरद पुत्र का सोने पथ पर कोई संबल हरता है, वो किसी दृश्य को देखकर मचलता है, तब ये मानव का वरद पुत्र तन्मय होकर कविता करता है. तो उन्होंने कहा, आप हमारे शो पर आइए और कविता कीजिए.
0: गुजारिश करूंगी कि रचना आप हमारे स्टेशन के लिए भी दे दीजिए मोड़ पे.
1: तो जो नारी मन पर लिखा मैंने
0: जी, स्वागत.
1: कि वो अपने लिए कुछ नहीं चाहती. अगर वो चाहती है तो क्या चाहती है,
0: क्या चाहती है?
1: वो मैंने शब्दों के रूप में उसको ढालने की कोशिश की.
0: स्वागत.
1: वो कहती है, मैं नहीं चाहती तुमसे बराबरी का हक. मैं नहीं चाहती तुमसे चांद तारों पे घर.
0: बहुत खूब.
1: मैं तो तुमसे अपने एहसासों और अपनी भावनाओं की कदर चाहती हूँ.
0: बहुत खूब, बहुत खूब.
1: मैं तो तुमसे अपने एहसासों और अपनी भावनाओं की कदर चाहती हूँ. मैं न ढेरों सुख सुविधाएं चाहती हूँ, न मैं ढेरों गहने भवन चाहती हूँ.
0: बहुत खूब.
1: मैं तो बस आपके मन में अपने लिए थोड़ी सी फिक्र चाहती हूँ.
0: क्या बात.
1: न ऋचाएं, न कथाएं, न छंदों की गीता. न ऋचाएं, न कथाएं, न छंदों की गीता. मैं न अपना इतिहास गान चाहती हूँ, बस तुम्हारी रातों की नींदों में और भोर की चितवन में थोड़ा सा अपना जिक्र चाहती हूँ.
0: बहुत खूब.
1: मैं नहीं चाहती तुमसे आगे निकलना. मैं नहीं चाहती पीछे पीछे भी चलना. मैं चाहती हूँ शून्य बनकर साथ चलना.
0: बहुत खूब.
1: ताकि तुम्हारी शक्ति बढ़ जाए मेरे जुड़ने से. बस तुम जैसा अंक हम सफर चाहते हैं.
0: क्या बात.
1: बस तुम जैसा अंक हम सफर चाहते हैं.

महावीर का जो जीवन है वो ऐतिहासिक नहीं है और बुद्ध का जो जीवन है वो भी ऐतिहासिक नहीं है। इतिहास दो कौड़ी का है क्योंकि हमारी पकड़ बहुत गहरी है। हम ये कहते हैं कि जब भी जितने बुद्ध हुए उन सबका जो सार निचोड़ है वो हमने फिर गौतम बुद्ध में पढ़ लिया, फिर हमने गौतम बुद्ध के नाम से लिख दिया। फिर आगे कोई बुद्ध होगा, गौतम बुद्ध तब तक भूल जा चुके होंगे, बिछड़ गए होंगे इतिहास की पुरानी रास्तों पर, भूल चुके होंगे। फिर नया बुद्ध सारे बुद्धों में जो होता है उसको फिर से पुनर्जीवित कर देगा। लेकिन कथा वही है, नाम बदल जाते, रंधन बदल जाते, लेकिन कथा वही है, गीत वही है, धुन वही है, टेक वही है। इसलिए सारी बातें बुद्ध के जीवन में जो लिखी है तुम ऐसा मत सोचना कि वो सच सच ऐतिहासिक अर्थों में नहीं है। कई बातें ऐसी हैं जो दूसरे बुद्धों के जीवन में घटी होंगी और कई बातें ऐसी हैं जो आने वाले बुद्धों के जीवन में घटेंगी।

पर निचोड़, हमने इत्र लिखा, पश्चिम गुलाबों की रूपरेखा लिखता है, एक एक गुलाब का हिसाब रखता है। हम कहते हैं एक एक गुलाब का हिसाब रखने से सार भी क्या है, सब गुलाब अपनी मूलभूत सत्ता में समान होते हैं। इसलिए हमारे सत्य सार्वलौकिक, सार्वभौम है, शाश्वत है। पूछा है तुमने मनुष्यों में जो प्रथम बुद्ध हुए होंगे, नहीं कोई प्रथम नहीं हुआ, प्रथम के भी पहले बहुत हुए, तो प्रथम कहने का कोई अर्थ नहीं, और अंतिम भी कोई नहीं होगा, अंतिम के बाद भी होते रहेंगे। प्रश्न है कि किस मार्ग से गए होंगे वे, उनका गुरु कौन था, उनके पहले इतना ही समय हो चुका था जितना हमारे पहले हुआ है, क्योंकि समय अनंत है, इसमें हिसाब नहीं लगाया जा सकता। मैंने सुना है एक म्यूजियम में, म्यूजियम का गाइड एक यात्रियों के दल को चीजें दिखा रहा था, फिर उसने एक अस्थि पंजर बताया और कहा कि ये 1 करोड़ 3 साल 7 दिन पुराना है। यात्री भी थोड़े चौंके, 1 करोड़ वर्ष 3 साल 7 दिन पुराना, उनका 1 करोड़ तो ठीक, मगर ये 3 साल और 7 दिन इतना हिसाब रखा है। उसने कहा कैसे पता चला ये 3 दिन और 7 दिन का, ये 3 साल और 7 दिन का, तो उसने कहा ऐसे पता चला कि आज से 3 साल 7 दिन पहले इस म्यूजियम का जो डायरेक्टर है उसने मुझे कहा था कि ये 1 करोड़ वर्ष पुराना, तब मैं उसमें जोड़ता जाता हूँ क्योंकि 3 साल 7 दिन बीत चुके, अतीत अनंत है। तुम क्या सोचते हो कि हम बुद्ध के 2500 साल बाद हुए, 2500 साल बाद, तो क्या तुम सोचते हो अतीत की अनंतता में धन 2500 साल जुड़ गए, अतीत की अनंतता में क्या जोड़ोगे, क्या कटाओगे? अनंत अतीत की दृष्टि से तो कुछ भी नहीं बीता है, 2500 साल कुछ भी नहीं बीते, बीता ही नहीं कुछ। अनंत में कुछ जोड़ो तो बढ़ता नहीं और घटाओ तो घटता नहीं। उपनिषद का वचन तुम्हें याद है ना, पूर्ण में पूर्ण को जोड़ दो तो पूर्ण बड़ा नहीं होता, और पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दो तो पूर्ण छोटा नहीं होता। पूर्ण का अर्थ ही ये होता है, उसमें जोड़ा नहीं जा सकता और घटाया नहीं जा सकता, कितना ही जोड़ते चले जाओ। अनंत का ख्याल करो, हमसे पहले अनंत काल बीत चुका है। अनंत का अर्थ ही होता है कि जिसका कभी कोई प्रारंभ नहीं था, अब उसमें 2500 साल जोड़ने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जितना काल हमसे पहले बीता है उतना ही काल बुद्ध के समय में भी बीत चुका था, उतना ही, और हमारे बाद भी 2500 साल बाद जब कोई आएगा और चर्चा करेगा तब भी उतना ही काल बीता है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए किस मार्ग से गए होंगे उनके पहले जो बुद्ध गए थे, अनंत अनंत बुद्ध स्वभावतः उसी मार्ग में से उन्होंने अपना मार्ग चुना होगा। उनके पहले जो अनंत दीप स्तंभ हुए थे उन्हीं की रोशनी में उन्होंने अपनी खोज की होगी। यहाँ कोई पहला नहीं और यहाँ कोई अंतिम नहीं, हम सब संयुक्त। तुम ऐसा सोचो, तुम अपने पिता से पैदा हुए, तुम्हारे पिता अपने पिता से पैदा हुए होंगे, पिता के पिता और किसी से पैदा हुए होंगे। तुमने कभी ऐसा सोचा कि पहला आदमी किससे पैदा हुआ? वैसे ये भी प्रश्न है, पहला आदमी किससे पैदा हुआ? पहला आदमी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी कोई आदमी पैदा होगा पिता की जरूरत पड़ेगी, माँ की जरूरत पड़ेगी, किसी से पैदा होगा, पहला आदमी हो ही नहीं सकता, और ना अंतिम आदमी हो सकता है, क्योंकि जो है वो रहेगा, मिटता नहीं, जो है था और रहेगा। इसका तुम्हें बोध आ जाए, ये विस्तार का तुम्हें थोड़ा स्मरण आ जाए, ये कठिन है स्मरण करना, क्योंकि हमारी बुद्धि की बड़ी सीमा है, कितने खींचो तानो हम कहते कोई तो हुआ होगा पहले, हमारा मन पूछ ही चला जाता है, कोई तो हुआ होगा पहले, कभी तो अंत होगा। इसे और तरह से देखो, हम कहते हैं जगत असीम है, सोचो चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, प्रकाश की गति से चलो, प्रकाश बड़ी तीव्र से तीव्र गति है, 1,86,000 मील प्रति सेकंड प्रकाश की गति से तुम्हारा हवाई जहाज चला जा रहा है, या और भी बड़ी गति खोज लो, क्या तुम कभी ऐसी घड़ी में आओगे जहां तुम जगत की सीमा पर पहुंच जाओ? समझना, इस पर दार्शनिक बहुत चिंतन करते रहे कि ऐसी कोई जगह आएगी जहां तख्ती लगी हो कि यहां समाप्त

0: हो गया संसार, अब आगे मत जाना नहीं तो गिर पड़ोगे। मगर अगर आगे गिर पड़ने को भी जगह है तो अभी संसार बाकी। अगर सीमा भी खींची जा सकती है कि यहाँ संसार समाप्त हो गया, तो सीमा तो बनती ही दो से, तो यहाँ से कोई और चीज शुरू हो गई। हर अंत शुरुआत, हर द्वार कहीं खुलता है कहीं बंद होता है। अगर तुम एक ऐसी जगह पहुंच गए, ठीक है, यहाँ होता है ऐसा कि तुम पहुंच गए महाराष्ट्र खत्म गुजरात शुरू, ये यहाँ हो जाता है, लेकिन गुजरात तो होना चाहिए ना, तो महाराष्ट्र खत्म कैसे होगा? महाराष्ट्र खत्म हो जाता है गुजरात शुरू हो जाता है, हिंदुस्तान खत्म हो जाता है पाकिस्तान शुरू हो जाता है। जहाँ कुछ खत्म होता है वहाँ तत्क्षण कुछ शुरू हो जाता है। अगर ये विश्व कहीं खत्म होता हो और एक रेखा आ जाती है, यहाँ तख्ती लगी चुंडी चौकी बनी, बस आगे मत बढ़ना, यहाँ संसार खत्म, तो उसका मतलब है आगे कुछ तो होगा। नहीं, ऐसी चुंडी चौकी पर तुम कभी ना पहुंचोगे, ऐसी कोई चुंडी चौकी है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, होना ही असंभव है। क्योंकि जहां भी रेखा खींचनी हो तो रेखा दो के बीच खींचती, और अगर दूसरा मौजूद है तो अभी अंत नहीं आया, तो रेखा खींची नहीं सकती, रेखा असंभव है। जब हम कहते हैं जगत असीम है तो हम कहते हैं आकाश असीम, और जब हम कहते हैं जगत अनंत है तो हम कहते हैं समय काल की धारा अनंत। समय और आकाश दोनों अनंत है, यहाँ न कभी कोई प्रथम हुआ और न कोई अंतिम होगा। चौथा प्रश्न, आपके चरणों में सिर रखकर अपना प्रेम प्रकट करना मेरा ध्येय था, जिसके कारण मुझे संन्यास लेने में अड़चन नहीं हुई, कृपया बताएं कि गुरु की क्या जिम्मेदारी है, मुझे कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया, मैं आपसे चकित हूँ। पहली तो बात, क्या मुझ पर कोई मुकदमा चलाने का इरादा है? गुरु की जिम्मेदारी, गुरु जाने, तुम जान के क्या करोगे? अगर जिम्मेदारी पूरी न की गई तो अपनी झंझट बखेड़ा खड़ा करोगे? गुरु की जिम्मेदारी गुरु जाने, तुम अगर पूछना ही हो तो शिष्य की जिम्मेदारी पूछो, क्योंकि वो तुम्हें करनी है। अपनी बात पूछो, अपनी बात तो तुमने नहीं पूछी, तुम फिक्र कर रहे हो कि गुरु की क्या जिम्मेदारी। जैसे तुम्हारा काम तो अब पूरा हो गया क्योंकि चरणों में सिर रख दिया, बात खत्म हो गई। हालांकि चरणों में सिर अभी रखा नहीं, नहीं तो जिम्मेदारी पूछते नहीं। जब चरणों में सिर रख ही दिया तो बचा क्या? अब बात खत्म हो गई, अब जो मर्जी उसको करो, अब जैसा लगे करो, ये गर्दन काटनी हो तो काट दो, अब कोई बात न रही पूछने की। लेकिन तुमने चरणों में सिर रख के जैसे गुरु पे अनुकंपा की कि अब बोलो, हम तो कर दिए जो करना था, अब आपकी तरफ से क्या होगा, जो कि हमने तो सिर रख दिया, सिर में है क्या? सिर काट के बेचने जाओगे कितने में बिकेगा? ऐसा हुआ कि अकबर के पास फरीद कभी कभी आता था, अकबर फरीद के पास भी कभी कभी जाता था, फरीद अनूठा फकीर था। जब अकबर फरीद के पास जाता या फरीद अकबर के पास आता तो अकबर सिर झुका के उसके चरणों में प्रणाम करता था। अकबर के वजीरों को बात न जचती थी, उनको बड़ा आखरता था कि बादशाह और किसी फकीर के चरणों में सिर झुका है। आखिर उनसे न रहा गया, पर उन्होंने कहा ये शोभा नहीं देता, आप अपना सिर झुकाएं फकीर के कदमों, इसकी कोई जरूरत नहीं, साधारण आदमी जैसा आदमी आपने समझा क्या है, आप क्यों इतना अपने को विनम्र कर लेते? तो अकबर ने कहा तुम एक काम करो, इसका उत्तर तुम्हें शीघ्र दूंगा, अभी रुको। कोई महीने 15 दिन बाद एक आदमी को फांसी हुई, अकबर ने उसका गर्दन कटवा ली और अपने वजीरों को कहा कि इसको बाजार में जाके बेचो। सुंदर आदमी था, सुंदर चेहरा था, आंखें बड़ी प्यारी थी, साफ सुथरा करके सोने की थाली में रख के वजीर उसको बाजार में बेच ले रहा। जिसकी दुकान पे गया उसी ने कहा हटो बाहर निकलो, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ, इसको करेंगे क्या लेके? आदमी का सिर किस काम आता है? अगर हाथी का सिर होता तो कुछ काम भी आ जाए, हरिन का सिर हो तो कुछ सजावट के काम आ जाए, इसको हम रखेंगे क्या? ये बदबू आएगी और गंदगी होगी, हटो। कोई आदमी दो पैसा देने को तैयार नहीं हुआ। वजीर बड़े हैरान हुए, लौट के आया अकबर से कहा कि दुखी हैं हम, लेकिन कोई आदमी दो पैसा देने को तैयार नहीं, उल्टे लोग नाराज होते। जिसके पास हम गए उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसको करेंगे क्या? तो अकबर ने कहा ये तुम्हारे लिए मेरा उत्तर, आदमी के सिर की कीमत क्या है? दो पैसे में भी कोई लेने को तैयार नहीं। तुम सोचते हो मेरा सिर काट के किसी दिन तुम बेचने जाओगे तो कोई खरीदे? तो जिसकी दो कौड़ी कीमत नहीं है उसको अगर मैंने किसी फकीर के चरणों में झुका दिया, तुम्हें अड़चन क्या है? जिसका कोई मूल्य नहीं। का नाम झुकाना है। सिर में मूल्य नहीं है, इसको जानना ही सिर का झुकाना है। तुमने झुकाया होगा सिर, लेकिन यही सोच के कि बड़ा गजब कर रहे, बड़ी अनूठी घटना तुम कर रहे हो। देखो सिर झुका रहे हो, तुम्हारे मन में इच्छा है कि सिर को कोई बड़ा मूल्य है। मैं जानता हूँ कि तुमने बड़ी अड़चन से झुकाया होगा, बहुत दिन सोचा होगा, विचारा होगा, लेकिन तुम्हारे सोच विचार से कुछ सिर में मूल्य नहीं आ जाता। सिर झुकाने का अर्थ यह है कि तुमने ये कहा इस सिर में तो कुछ भी नहीं है, अब सिर के आगे कुछ यात्रा हो जाए। सिर में तो कुछ नहीं पाया, अब सिर के पार जाने की अभी प्रगट की। इसलिए पूर्व में हम सिर झुकाते हैं, गुरु के चरणों में जाते हैं। हम ये कहते हैं कि सिर से तो कुछ मिला नहीं, सिर की तो दौड़ धूप खूब कर लिए, सिर को तो मारा धापी खूब कर ली, इससे कुछ मिला नहीं। पीड़ा पाई, असंतोष पाया, अतृप्ति पाई, ज्वर ग्रस्त रहे, दुख स्वप्न देखे, सिर से तो कुछ मिला नहीं। ये तो हम आपके सिर में रख, ये तो आपके पैरों में रख देते हैं ये सिर। अब कुछ ऐसा बताएं कि सिर के ऊपर कैसे जाएं? सिर का कोई मूल्य नहीं है, यही घोषणा सिर झुकाने में। तुम पूछते हो कि मैंने तो अपना सिर आपके चरणों में रख दिया, अब बताएं कि गुरु की जिम्मेवारी क्या है? तुम सोचते हो तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हारा काम शुरू हुआ। सिर में तो कुछ था नहीं, कचरा तुमने चढ़ा दिया पैरों से, अब भूल जाओ सिर को। अगर नहीं भूले और याद रखा तो चढ़ाया ही नहीं। और अब पूछो कि शिष्य की जिम्मेवारी क्या है, अब मैं क्या करूं? ये तो कोई करने जैसी बात न थी, ये तो सिर्फ शुरुआत है करने की, क्योंकि बहुत बड़ा काम नहीं हो गया, इससे कुछ क्रांति नहीं हो जाएगी। अब क्या करूं? व्यर्थ तो छोड़ दिया, अब सार्थक को कैसे तलाशूं? ये पूछो। लेकिन तुम पूछते हो गुरु की जिम्मेवारी क्या है, तुम्हारा मतलब ये है कि हमारे तरफ का काम तो हमने कर दिया, अब आप बताएं आपकी जिम्मेवारी क्या है। ये बात ही शिष्य न होने का लक्षण। मेरी जिम्मेवारी मैं समझता हूँ, तुम उसे समझ भी ना सकोगे अभी। अभी तुम शिष्य भी नहीं हुए तो तुम गुरु की जिम्मेवारी तो कैसे समझ सकोगे? गुरु की जिम्मेवारी तो तभी समझ में आएगी जब तुम शिष्यत्व की गहराई में इतने उतर जाओगे कि तुम्हारे भीतर ही गुरु का जन्म होने लगेगा, तब तुम गुरु की जिम्मेवारी समझ सको। अभी तो तुम्हें आंख चाहिए, अभी तो तुम्हें विनम्रता चाहिए, सरलता चाहिए, ध्यान चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। ये तो सिर्फ घोषणा हुई तुम्हारी, तुमने शपथ ली कि हम झुक गए, अब हम करने को तैयार, अब जो कहेंगे हम करेंगे। लेकिन प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिक लोगों का यही भाव होता कि हम तो कर दिए जो करने योग्य था, अब जो करना हो आप करें। मैं करूंगा, लेकिन मेरे अकेले किए कुछ भी ना होगा, क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता परम, तुम अगर सांस दोगे तो ही होगा। मैं तो करूंगा, लेकिन अगर तुमने विरोध किया तो कुछ भी ना हो सकेगा। तुमने अगर द्वार दरवाजे बंद रखे तो ये सूरज की किरण बाहर ही खड़ी रहेगी और भीतर ना आ सकेगी। सूरज की किरण जोर जबरदस्ती से भीतर आ भी नहीं सकती, तुम्हें सहयोग देना होगा, द्वार दरवाजे खोलना होगा। अब तुम पूछते हो मुझे कैसे भरोसा है कि मुझे गुरु प्राप्त हो गए, ये तुम्हें भरोसे का सवाल ही नहीं। तुम्हें तो इतना ही भरोसा लाना है कि तुम शिष्य हो गए, बस इतना ही भरोसा आ जाए तो बात समाप्त हो गई, तुम्हारा काम तुम पूरा कर दो। कितनी बात तुम्हारी तुम पूरी कर दो कि तुम शिष्य हो गए, तुम्हारे शिष्य होने में ही भरोसा आ जाएगा कि गुरु मिल गए, और कोई उपाय नहीं, मैं और कोई प्रमाण नहीं जुटा सकता। जो भी प्रमाण जुटाऊंगा वो व्यर्थ होंगे, उनसे कैसे भरोसा आएगा? मैं लाख कहूं कि तुम्हें मिल गया, इससे कैसे भरोसा आएगा? तुम शिष्य बनोगे, उसी शिष्य बनने में कुछ रस धार बहेगी, कुछ प्राणों में गुनगुनाहट उठेगी, कुछ मस्ती जगेगी, उसी मस्ती में प्रमाण मिलेगा कि गुरु मिल गए, अब अकेला नहीं हो। तुम अपने अकेलेपन में भी एकांत में जब मौन बैठोगे तब तुम पाओगे कि कोई मौजूद है। तुम अपने भीतर भी झांकोगे तो पाओगे कोई मौजूद है। तुम्हारा हाथ किसी के हाथ में, चलते उठते बैठते जैसे जैसे तुम शिष्य बनते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें लगता जाएगा कि गुरु सांस। एक घड़ी ऐसी आती है कि तुम तो विसर्जित ही हो जाते हो, तुम्हारे भीतर गुरु ही विराजमान हो जाते। अभी तो सिर झुकाया है, अभी हृदय में विराजमान करना होगा और उसी के साथ प्रमाण मिलेगा। शिष्य का ऐसा भाव होता है। स्वामी योग प्रीतम ने एक गीत लिखा है, जब तुम अपना माधुर्य लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते, तेरी स्वर लहरी का आलिंगन पाते ही हृदय वीणा हौले से झंकृत हो जाती है, तेरी मस्ती की धुन बजने लगती मुझ में, मेरे तन मन की पंखुड़ियां खुल जाती हैं, छिड़ जाता कैसा राग तुम्हारे कंठों से, अंतस आंगन में कोटि दीप जल जाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। जाने कैसा जादू है तेरी चितवन में, मन के सब खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं, मन का सारा काठिन्य पिघल जाता पल में, जन्मों जन्मों के पाप साफ धुल जाते हैं, जब तुम निज करुणा जल बरसाते हो मुझ पर, मेरे भीतर सत झरने बह जाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। तेरे भीतर से बरस रहा है प्रेमामृत, जो प्यासे चातक पी जाते हैं महाभाग, तू एक छबीला फूल जगत की बगिया का, वे धन्य भ्रमर जो लूट रहे तेरा पराग, जब तुम अपना आशीष लुटाते हो मुझ पर, मेरे नभ में सौ सौ सूरज उगाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। शिष्य का भाव ऐसा है, वो तो आंखें खोल कर जैसे चातक चंद्रमा को निहारे, ऐसा गुरु को निहारता है। प्रमाण नहीं पूछता, तुम्हारी आंख ही धीरे धीरे प्रमाण देने लगेगी। जैसे जैसे तुम्हारी आंख खुलेगी और रोशनी तुम्हारे भीतर उतरेगी, वैसे वैसे प्रमाण मिलेगा। वो तो अपने हृदय को खोल के बैठ जाता, वो तो अपनी सब साज सुरक्षा छोड़ देता, वो तो अपने हृदय पर से सब द्वारपाल हटा देता, वो तो कहता आओ जब भी आओ, दिन रात सोते जागते मेरा हृदय खुला पाओ। धीरे धीरे गुरु की पग ध्वनि हृदय के पास सुनाई पड़ने लगती। पूछा है, मैं आपसे चकित हूँ, सुंदर है, चकित हो ये शुभ है, लेकिन इतने से ही काम नहीं होगा। चकित होना अच्छी शुरुआत है, तुम आश्चर्य से भर गए हो, लेकिन ये आश्चर्य भाव जल्दी ही खो जाएगा अगर आगे न बढ़े। आश्चर्य भाव तो ऐसा ही है जैसे हम कार को चलाना शुरू करते तो बैटरी से कार शुरू होती, मगर बैटरी से चलती नहीं, शुरू हो गई फिर तो इंजन से चलती, फिर तो पेट्रोल से चलती। चकित भाव तो कार में बैटरी की भांति है, यात्रा शुरू हो जाती है, लेकिन तुम इसी के सहारे रहे तो ज्यादा देर नहीं चल पाएगी। आश्चर्य से जो भर गया ये शुभ लक्षण है, इस घड़ी में वो झुक जाता है, लेकिन बस इस पर ही मत रुक जाना, बहुत आगे जाना है। ये तो पहला कदम हुआ। बहुत अभागे हैं जिनको आश्चर्य भी नहीं होता, जो चकित भी नहीं होता। तुम सौभाग्यशाली हो कि चकित तो हुए, चौंके तो, विस्मय तो आया, रहस्य की थाप तो पड़ी, थोड़ा धक्का तो लगा, मगर इस धक्के को ही लेके मत बैठना, नहीं तो धीरे धीरे ये धक्का भी खो जाएगा और तुम वैसे के वैसे रह जाओ। ये जो थोड़ा सा धक्का लगा है, इस धक्के का उपयोग कर लो और चल पड़ो। यात्रा बड़ी और बहुत करने को पड़ा है, शायद उसी चकित भाव ने तुमने आके सिर भी झुका दिया है। तुम्हारे सिर झुकाने में समर्पण मालूम नहीं होता, चकित भाव मालूम होता है। कभी कभी आदमी भौचक्केपन में कुछ कर जाता है, लेकिन वो कुछ बहुत दूरगामी पाठे नहीं बन सकता, कुछ और गहराई में झुकना पड़ेगा। नहीं जो झुका कर किसी दहरी पर, झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में, न पाया कहीं तृप्ति का एक कण भी, यहाँ जल कहाँ आपका हर कुआं है, तने इंद्रधनुष है मगर वायु भी सब, यहाँ आद्र बादल कहाँ सब धुआं है, चखे फल यहाँ के सभी तिक्त कटु है, मिला शांति मधुरस तुम्हारे स्मरण में, जहाँ से चखो छार में जग समंदर, यहाँ खूब निर्झर मगर सब जहर के, किरण जाल मोहक मगर सब छलावा, यहाँ विश्व मुझे दंश है हर लहर के, नहीं छाओ शीतल जगत यह मरुस्थल, गिरा हार थक कर तुम्हारे चरण में, नहीं जो झुका कर किसी दहरी पर, झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में। चलो झुका कहीं झुका, इतने पर ही मत रोक, रुके रह जाना, झुकना तो शुरुआत है मिटने की, मिटे बिना ना चलेगा, और तुमने झुकते से ही मिटने के खिलाफ आयोजन शुरू कर दिए। तुम पूछते हो कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया है, तुम पूछते हो कि गुरु के कर्तव्य क्या है, गुरु की जिम्मेवारी क्या है, तुम गुरु का हिसाब रखने लगे, तुमने गलत बात पहले से ही उठा ली। फिर मेरे साथ ज्यादा देर न चल सकोगे, ये मैं तुम्हें कह दूं, मेरा हिसाब जिसने रखा वो ज्यादा देर मेरे साथ चला नहीं, वो ज्यादा देर चल ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत होशियार है, चालाक है, वो रत्ती रत्ती हिसाब लगा के चलता है। मेरे साथ जुआरियों की दोस्ती, जो हिसाब किताब रखते नहीं, जिन्होंने एक दफा दांव पर लगा दिया तो फिर लौट कर देखा नहीं, फिर उन्होंने कहा कि अब ठीक, अब तुम जो करो सो ठीक, अब तुम जो कहो सो ठीक, तुमने अगर अपनी बुद्धि बचाई तो सिर उठ उठ जाएगा, बार बार चरण चूक चूक जाएंगे, तो ये तो बात ही भूल जाओ। मेरे कर्तव्य का मुझे पता है, मेरी जिम्मेवारी मुझे मालूम, तुम्हें मालूम होने से कुछ लाभ भी ना होगा। तुम अपना कर्तव्य पूछो, तुम अपनी जिम्मेवारी पूछो, तुम्हारी जिम्मेवारी अब यह है कि जो सिर झुका है उसे काट ही डालना है, तुम्हारी जिम्मेवारी यह है कि अभी झुके हो अब बिल्कुल मिट जाना, मिट कर ही तुम हो सकोगे, खोकर ही तुम पा सकोगे, तुम जाओ तो ही परमात्मा। आखिरी प्रश्न, यद्यपि मैं सिख परिवार से आया हूँ तो भी 25 वर्षों तक मेरा विश्वास ईसाइयत में रहा, लेकिन आपकी पुस्तकें पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यह तो बड़ी जीवंत बात है और मेरे लिए ईसाइयत का प्रभाव समाप्त हो गया। आप पर पूरा ईमान आ गया है, लेकिन मन अभी भी अशांत, देर रात तक आपका साहित्य पढ़ता हूँ तो ही कहीं नींद आती, कृपा कर मेरा मार्गदर्शन कर। देखो 25 साल की श्रद्धा इतनी जल्दी टूट गई तो श्रद्धा न रही होगी, फिर 25 साल की श्रद्धा इतनी जल्दी टूट गई तो मुझको जो श्रद्धा आ गई उसको टूटने में कितनी देर लगेगी। श्रद्धा तो तुम्हारी 25 साल वाली भी न टिकी, और ये श्रद्धा भी तुम्हारी ये कितनी देर टिकेगी। तुम्हारा तर्क में समझा, तुम्हारा तर्क से अधिये है कि वो श्रद्धा ईसाइयत पर थी, ये श्रद्धा आप पर, ये तो फर्क हुआ, लेकिन तुम तो वही के वही हो। ईसा पर श्रद्धा हो कि बुद्ध पर कि महावीर पर, इससे अंतर नहीं पड़ता, असली अंतर तो श्रद्धा किसकी है उसमें रूपांतरण हो तो ही पड़ता है। अब तुम सिख परिवार में पैदा हुए तो नानक पे श्रद्धा रही होगी बचपन, ईसा पे आ गई, मुझे पढ़ा वो भी चली गई, कल कुछ और पढ़ लोगे, कल किसी और को सुन लोगे, ये भी तुम्हारी श्रद्धा को परखो, तुम्हारी श्रद्धा श्रद्धा नहीं। अब फर्क समझना, जिसने सच में ही नानक पर श्रद्धा की है वो मुझे सुन के नानक पर श्रद्धा नहीं छोड़ता, मुझ पर श्रद्धा आ जाती और नानक पर श्रद्धा बढ़ जाती। जिसको सच में ही ईसा पर श्रद्धा रही वो मुझे सुन के ईसा पर श्रद्धा नहीं छोड़ता, मुझ पर श्रद्धा आ जाती, ईसा पर श्रद्धा और गहरी हो जाती, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ कुछ ईसा और नानक के विपरीत तो नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो वही है जो उन्होंने कहा है। और निश्चित ही जीसस ने जो कहा वो 2000 साल पुरानी भाषा में कहा, उससे तुम्हारा तालमेल उतना नहीं बैठ सकता जितना मेरा बैठ सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूँ। नानक ने कहा वो 500 साल पुरानी भाषा, 500 साल लंबा फासला है, नानक में और मुझ में ठीक 500 साल का फासला है, 500 साल छोटा फासला नहीं, सब भाषा बदल गई, सत्य को कहने का ढंग बदल गया, सत्य को समझने की प्रक्रिया बदल गई, लोग बदले, लोगों का मन बदला, वातावरण बदला, इस सारी बदलाहट में मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो तुम्हारे मन के ज्यादा अनुकूल पड़ेगा, ये स्वाभाविक है, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा बोल रहा हूँ। नानक उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे, जीसस उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मैं 20वीं सदी से बोल रहा हूँ, मैं अत्याधुनिक मन से बोल रहा हूँ। स्वभावतः तुम्हें मेरी बात ज्यादा ठीक से पकड़ में आ जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात पकड़ में आ गई तो तुम्हें नानक की बात भी पकड़, तुम अहोभाव से भर जाओगे कि नानक पर श्रद्धा तो थी लेकिन अभी तक ठीक ठीक साफ साफ नहीं हुआ, साफ साफ हो गई बात। महावीर की बात तुम्हें ठीक से पकड़ में आ जाएगी, बुद्ध की बात ठीक से पकड़, इसलिए तो बुद्ध नानक महावीर कृष्ण क्राइस्ट पर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा खंडित करने नहीं हूँ, तुम्हारी श्रद्धा को मजबूत करने को। अगर मैं कभी किसी के विपरीत बोलता हूँ तो सिर्फ इसीलिए कि वे धार्मिक व्यक्ति नहीं है, लोगों ने भ्रांति से उन्हें धार्मिक समझा है। तो ही अगर मैं जानता हूँ कि कोई व्यक्ति धार्मिक है तो मैं एक शब्द भी उसके विपरीत नहीं बोलता। हाँ, अगर किसी अधार्मिक व्यक्ति को किन्हीं भूल भ्रांतियों के कारण धार्मिक समझ लिया गया तो मैं जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, क्योंकि वो खतरनाक बात है। जैसे कभी पीछे किसी ने पूछा महर्षि दयानंद के संबंध में, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं महर्षि दयानंद के पक्ष में एक शब्द नहीं बोल सकता, मेरे लिए वे वैसे ही महात्मा है जैसे महात्मा गांधी। दोनों सामाजिक राजनीतिक आंदोलनकारी धर्म बहाना, लेकिन नानक या कबीर या कृष्ण या जरथुस्त या मोहम्मद या ईसा, उन्होंने जो कहा है वही मैं कह रहा हूँ, उससे अन्यथा कहने को कुछ है नहीं। सत्य एक है, जिन्होंने जाना है उसी एक सत्य को कहा है, भिन्न भिन्न ढंग से कहा होगा लेकिन एक ही सत्य को कहा है। वेद कहते हैं उस एक सत्य को ही ज्ञानियों ने अलग अलग ढंग से कहा। तो पहली तो बात यह है कि तुम अपनी श्रद्धा परखो, तुम्हारी श्रद्धा में कहीं भूल चूक है। नानक तो उठ गई, ईसा पर जम गई, मुश्क जम गई, मैं तुम्हारी श्रद्धा से खुश नहीं। साधारणतः तुम यही सोच रहे होगे कि तुम्हारा प्रश्न सुनकर मैं प्रसन्न होऊंगा कि चलो कितना अच्छा हुआ कि एक आदमी जीसस से टूटा और मेरा हुआ। इतने जल्दी कोई मेरा नहीं हो सकता, जो जीसस का न हुआ वो मेरा कैसे हो सकेगा। और अगर तुम मेरे हो गए हो तो तुम्हारे पास आंख आएगी जिससे तुम जीसस को पहचान पाओगे और पहली दफा जीसस को हो पाओगे, और वही आंख तुम्हें नानक का भी बना देगी। लेकिन तुमने श्रद्धा का अर्थ मालूम होता है कुछ तार्किक निष्पत्तियां मान रखा है, जो बात तुम्हारे तर्क को जच जाती फिर तुम चूकोगे, क्योंकि धर्म तर्क की बात ही नहीं। मैं जरूर तर्क का उपयोग करता हूँ, मैं तर्क पे सवारी करता हूँ, इसलिए कभी कभी तार्किकों को मेरी बात बहुत जच जाती, लेकिन वो भ्रांति में न रहे, जल्दी ही उनको चौंका दूंगा। देर अबेर नहीं लगेगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी कि मैं कोई ऐसी बात कहूंगा जो कि तर्क के बिल्कुल बाहर होगी, विपरीत होगी। तो तुम्हें मेरी बातें ठीक लग गई होंगी क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो तर्कयुक्त है, लेकिन तर्क का मैं उपयोग कर रहा हूँ साधन की तरह, ले जाना है तर्क के पार। जीसस ने तर्क का उपयोग नहीं किया, जीसस तो कह दिए जो कहना है। मैं तर्क का भी उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि ये सदी बिना तर्क की भाषा से और कोई भाषा समझ नहीं सकती, लेकिन ले जाना तो तर्क के पार, तो जल्दी ही तुम अड़चन में पड़ जाओगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपनी श्रद्धा पर फिर पुनर्विचार करो, तुम्हारी श्रद्धा भ्रांत रही, गड़बड़ रही, तुम्हारी श्रद्धा तर्क पर आधारित रही, इसलिए ईसाइयत तुम प्रभावित हो गए हो, क्योंकि ईसाइयत काफी तर्क जुटाती। ईसा ने तो कुछ तर्क नहीं दिए लेकिन ईसाइयत काफी तर्क जुटाती, क्योंकि ईसाइयत तो पश्चिम से आती, पश्चिम तो तर्क की दुनिया है, तो ईसाइयत को अगर अपने पैर पर खड़े रहना है तो उसे तर्क जुटाने पड़ते, तो ईसाइयत जचती होगी। लेकिन मेरे बस में पश्चिम का तर्क ही नहीं है, पूरब का तर्क भी है, और मेरे बस में तर्कातीत भी है, इसलिए फिर मेरा तर्क तुम्हें जच गया होगा, क्योंकि मेरे तर्क में पश्चिम के सारे तर्क में जो कुशलता है वो तो है ही, पूरब के तर्क जो मधुरिमा है वो भी, और तर्कातीत जो अनुभव है उसका रंग भी है, इसलिए तुम्हें जच गई होगी बात। लेकिन अब मौका आ गया है कि तुम अपनी श्रद्धा को ठीक पहचान लो, और ये अब तक की खड़ी वाली श्रद्धा को तुम फेंको, इसलिए अड़चन भी आ रही है। तुम कहते हो आप पर पूरा ईमान आ गया है, क्या ईसाइयत पर पूरा ईमान नहीं था? 25 साल था तो पूरे ईमान का क्या भरोसा, अभी पूरा है, अभी खिसक जाएगा। ये तुम्हारी आदत है, तुम जिससे भी ईमान ले आते हो मान लेते हो पूरा हो गया, फिर उतर जाएगा तो पूरी उतर जाएगा और तब तुम्हारी अड़चन साफ है। तुम कहते हो मन अभी भी अशांत है, अब ईमान आने से थोड़ी मन शांत होता, नहीं तो मन कभी का शांत हो गया होता। सिख घर में पैदा हुए थे, सिख धर्म पर ईमान रहा होगा, उससे मन शांत ना हुआ। फिर ईसाइयत 25 साल लंबा वक्त है, उससे मन शांत ना हुआ। मेरे साथ तो शायद 2-4 महीने की दोस्ती होगी, इससे कैसे मन शांत हो जाएगा। एक बात तो समझो कि भरोसा कर लेने से मन शांत नहीं हो जाता, मन शांत करने के लिए मन की अशांति के कारण तोड़ डालने पड़ेंगे। तुम्हें एक डॉक्टर पर भरोसा आ गया, इससे थोड़ी इलाज हो जाए। डॉक्टर पर भरोसा आ गया ये सहयोगी बात है, अब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके भी तो काम शुरू करोगे ना। तो तुमने इतना कह दिया कि आ गया डॉक्टर का भरोसा, लेकिन अभी भी बीमारी दूर नहीं हो रही, बात क्या है। और ईमान पूरा आ गया, ईमान आ गया इसको लाभ होगा, लेकिन इतना काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। दवा भी लेनी होगी, औषधि भी लेनी होगी और पथ्य भी स्वीकार करना होगा। कुछ बातें छोड़नी होंगी, कुछ बातें पकड़नी होंगी, रूपांतर करने होंगे। इसके पहले कि ये श्रद्धा भी खो जाए कुछ करो, इस श्रद्धा का उपयोग कर लो। जो हुआ अतीत में हुआ, जितने दिन बेकार गए गए, अब बेकार मत जाने दो। अब इस श्रद्धा के प्रभाव में कुछ कर गुजरो ताकि मन की व्यवस्था बदल जाए। तुम अशांत हो, उसका अर्थ है मन में अशांति के कारण होंगे। तुमने कभी ध्यान किया? बिना ध्यान के शांति ना आएगी। तुमने कभी पूजा की, भक्ति की? बिना पूजा भक्ति के शांति ना आएगी। तुमने कभी प्रेम किया? बिना प्रेम के शांति ना आएगी। और तुमने कभी विश्लेषण किया कि तुम्हारे मन की अशांति का मूल कारण क्या है? क्यों रात तुम सो नहीं पाते? तुम्हारा मन दौड़ता होगा, और धन कमा लूं, और बड़े पद तक पहुंच जाऊं, ये कर गुजरूं, वो कर गुजरूं। तुम्हारा मन दौड़ता रहता होगा, इसलिए तुम सो नहीं पाते। तो मन की दौड़ के जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको विदा करो। धन पाके क्या होगा, पद पाके क्या होगा, मौत आती, मौत की पगध्वनि सुनो, वो धन भी छीन लेगी, पद भी छीन लेगी। जागो और मन की व्यवस्था बदलो। अब अगर तुम मेरे प्रभाव में आ गए हो तो मेरी सुनो भी, उसके अनुसार थोड़ा करो भी, ध्यान करो, नाचो, गाओ, गुनगुनाओ, थोड़ा मस्ती में डूबो, अचानक तुम पाओगे अशांति गई। और जब अशांति जा चुकी होगी तब तुम्हें जो श्रद्धा आएगी वो असली श्रद्धा होगी, क्योंकि जिसके द्वारा अशांति चली गई हो फिर उसको छोड़ना असंभव हो जाएगा, और जिसके द्वारा सुख का थोड़ा सा स्वाद आ जाएगा उसको फिर कैसे छोड़ सकोगे। तुम्हें ईसा से कुछ भी सुख का स्वाद नहीं आ पाया, क्योंकि तुमने ईसा की मान के कभी कुछ किया नहीं, बाइबल पढ़ते रहे होगे। तो बाइबल पढ़ने से क्या होगा, ये तो ऐसे ही जैसे कोई पाकशास्त्र की किताब बैठे पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, भूख लगी है और मरा जा रहा है, और चिल्लाता है कि क्या करूं, पाकशास्त्र की किताब पढ़ रहा हूं फिर भी भूख नहीं मिटती। तो बाइबल तुम पढ़ते रहे हो, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। अब तुम मेरी किताबें मत वैसा ही उपयोग करने लगना जैसा बाइबल का किया था। बिल्कुल, अब तुम कह रहे हो कि जब रात नींद नहीं आती तो आप का साहित्य पढ़ता हूं तो कहीं नींद आती, तो तुम साहित्य का उपयोग इस तरह कर रहे हो नींद लाने की दवा की तरह। साहित्य का उपयोग करो जीवन को बदलने के लिए, जीवन को क्रांति देने के लिए। अच्छा हुआ क्योंकि नानक तो है नहीं, तुम अगर उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं था। ईसा तो अब है नहीं, तुम उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं था। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम किसी जीवित आदमी के करीब आ गए, संयोग है। इस सौभाग्य के क्षण का ठीक उपयोग कर लो तो फिर शायद श्रद्धा को और कहीं जाने की जरूरत न रहे, यही श्रद्धा तुम्हारा अंतिम पड़ाव बन जाए। जीवन अपने में न तो सुख है न दुख, देखने देखने की बात है, दृष्टि की बात है, कैसे देखते हैं इस पर सब निर्भर है। सुख और दुख हमारी व्याख्याएं, सुख और दुख तथ्य नहीं है, सुख और दुख हमसे बाहर नहीं है, सुख और दुख हमारे देखने के ढंग के परिणाम है, निष्पत्तियां हैं। वही बात एक व्यक्ति को सुख हो सकती,
1: वही बात दूसरे को दुख हो सकती और उसी बात में कोई निरपेक्ष भी रह सकता, न सुख हो न दुख हो। और कभी ऐसा भी होगा कि जो बात तुम्हें आज सुख थी कल दुख हो गई, और जो आज दुख थी कल सुख हो गई। और कभी ऐसा भी होगा, ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुम भी सुख और दुख के बाहर हो जाते हो, तटस्थ हो जाते हो। अगर कोई अपने जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण करे, सम्यक निरीक्षण करे, तो इस सत्य को खोजने के लिए शास्त्रों में जाने की जरूरत नहीं। सुकरात का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं। ठीक ठीक सम्यक निरीक्षण करके ही कोई जीवन योग्य जीने को पाता है। सुकरात से किसी ने पूछा कि तुम एक संतुष्ट सुअर होना पसंद करोगे या एक असंतुष्ट सुकरात? तो सुकरात ने कहा, मैं असंतुष्ट सुकरात होना पसंद करूंगा, संतुष्ट सुअर होना नहीं। क्यों? पूछा पूछने वाले ने। क्योंकि आदमी संतोष के लिए ही तो सब करता है। सुकरात ने कहा कि असंतुष्ट सुकरात एक दिन संतोष पा लेगा, और ऐसा संतोष फिर जैसे छीना नहीं जा सकता। संतुष्ट सुअर तो नाम मात्र को ही संतुष्ट है, अभी उसने असंतोष ही नहीं जाना। असंतोष के पार होना भी कैसे जानेगा? जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण हो तो हम सुख और दुख दोनों के पार हो जाते। क्योंकि एक सत्य रोज रोज साफ होने लगता है, हमारी व्याख्या है। अगर हमारी ही व्याख्या है तो हम मुक्त हो गए। सारे धर्मों का अगर सार सूत्र पकड़ना हो तो इस बात में पकड़ लेना कि जीवन में जो भी हम अनुभव करते हैं वो हमारी व्याख्या है। इसलिए हम जब चाहें तब स्वतंत्र हो सकते हैं, क्योंकि अपनी व्याख्या बदलना अपने हाथ में। अगर जीवन में सुख दुख हमसे बाहर होते तो बंधन हमसे बाहर होता। समझो, ऐसा नहीं है कि किसी ने तुम्हें कारागृह में डाल दिया है। अगर किसी ने कारागृह में डाला हो और जंजीरें पहनाई हो तो फिर तो तुम उसके हाथ में हो। मुक्त करेगा तो मुक्त होगे, मुक्त ना करेगा तो ना हो सकोगे। और किसी तरह मुक्त हो भी गए तो फिर भी पकड़े जा सकते हो, फिर दोबारा पकड़े जा सकते हो। तो तुम्हारी मुक्ति कोई बहुत गहरी मुक्ति नहीं हो सकती। जब अमुक्ति दूसरे पर निर्भर है तो मुक्ति भी दूसरे पर निर्भर रहेगी, और ये तो भारी परतंत्रता हो गई। मुक्ति में भी बंधे हैं तो ये तो भारी परतंत्रता हो गई। स्थिति ऐसी है कि तुमने मान रखा है कि तुम कारागृह में हो, ये तुम्हारी मान्यता है। जंजीरें असली नहीं है, सिर्फ मान्यता की है, सिर्फ धारणा की है। इसलिए जिस दिन तुम आंख खोल कर देखोगे जंजीरें पिघल जाएंगी, जंजीरें विसर्जित हो जाएंगी। ऐसा ही समझो कि जैसे रात सपने में तुमने पाया कि तुम कारागृह में पड़े हो और सुबह जाग के देखा कि अपने घर में हो। कारागृह तुम्हारी कल्पना का जाल था। बुद्ध के आज के सूत्र महत्वपूर्ण है। पहले सूत्र, पहले तीन सूत्र, सुसुखम वत् जीवाम वैरिनेसु अवेरिनो वैरिनेसु मनुष्येसु विहराम अवेरिनो। वैरियों के बीच अवेरी होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, वैरी मनुष्यों के बीच अवेरी होकर हम विहार करते। सुसुखम वत् जीवाम आतुरेसु अनातुरा आतुरेसु मनुष्येसु विहराम अनातुरा। आतुरों के बीच अनातुर होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, आतुर मनुष्यों के बीच अनातुर होकर हम विहार करते। तीसरा सूत्र, सुसुखम वत् जीवाम उत्सुकेसु अनुत्सुका उत्सुकेसु मनुष्येसु विहराम अनुत्सुका। आसक्तों के बीच अनासक्त होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, आसक्त मनुष्यों के बीच अनासक्त होकर हम विहार करते। इन सूत्रों के जन्म की कथा समझे। साक्य और कोली राज्यों के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेतों की सिंचाई करते थे। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपदवासी साक और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए रोहिणी नदी पर आए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे, अतः दोनों में झगड़ा हो चला। यह समाचार उनके मालिक साक और कोलियों को मिला। छत्री तो छत्री, तलवारें निकल गई। वे सेना को साथ लेकर तैयार होकर युद्ध करने के लिए निकल पड़े। भगवान बुद्ध रोहिणी तट पर ही ध्यान करते थे। उन्हें यह खबर मिली, वे आकर युद्ध को तत्पर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े हो गए। साथियों और कोलियों ने भगवान को देखकर हथियार फेंक वंदना की। भगवान ने कहा, महाराज यह कैसा झगड़ा है, किस बात के लिए झगड़ा है? दोनों राज्यों के राजाओं ने कहा, बनते कारण हम नहीं जानते। भगवान ने पूछा, फिर कारण कौन जानता है? अकारण तलवारें निकाल ली है, कारण भी न पूछा, कारण तो खोज लेते। उन्होंने कहा, शायद सेनापतियों को पता हो। सेनापतियों ने उप सेनापतियों की ओर इशारा किया, उप सेनापतियों ने सैनिकों की ओर, और अंततः बात नौकरों पर पहुंची। तब कहीं कारण का पता चला। नौकरों ने कहा, बनते पानी के कारण। बुद्ध ने कहा, पानी के कारण? पानी तो सदा से बहता है, लड़े तुम आज, झगड़ा पानी के कारण नहीं हो सकता। नौकरों ने कहा, समझे बनते, पहले कौन उपयोग करे? तो बुद्ध ने कहा, पहले के कारण, पानी के कारण नहीं। प्रथम कौन हो, पानी को दोष मत दो। बुद्ध हंसे और उन्होंने साखियों और कोलियों के प्रधानों से पूछा, महाराज पानी का क्या मूल्य है? राजा बहुत लज्जित हुए, शर्माते बोले, अल्प मात्र बनते, ना कुछ। पानी का क्या मूल्य? और मनुष्यों का? बुद्ध ने पूछा। राजा और भी सक्षम है और बोले, अमूल्य बनते, मनुष्य से ज्यादा मूल्यवान और क्या है? बुद्ध ने कहा, तो फिर सोचो, अल्प मात्र मूल्य के लिए अमूल्य को मिटाने चले हो, पानी के लिए खून बहाने चले हो, और नदी ऐसी ही बहती रहेगी। तुम गिरोगे, कटोगे, मरोगे, और नदी ऐसी बहती रहे, ऐसी ही बहती रहेगी, और नदी को पता भी ना चलेगा। आसार के लिए सार को गंवाते हो, कंकड़ पत्थरों के लिए हीरे जवाहरात फेंकने चले हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख है, चिंता है, अंधकार है। मुझे देखो, मेरे महासुख को देखो, क्या है इसका राज? यही कि मैं वैर रहित विहरता हूँ, यही कि सार को मैं सार और असार को असार देखता हूँ। और तब उन्होंने ये तीन गाथाएं कही। पहले तो इस कहानी के एक एक शब्द को समझिए। शास्त्रों में जो बोध कथाएं हैं, वो ऐसे ही पढ़ लेने के लिए नहीं, उनके शब्द शब्द में अर्थ और परत परत अर्थ है। एक परत उघाड़ोगे तो दूसरा परत अर्थ मिलेगा, और जितने गहरे जाओगे कथा में उतने ही चौंकोगे कि तू सीढ़ी दर सीढ़ी उतरते जा सकते हो। पहली बात, झगड़ा हुआ नदी के तट पर नौकरों में, झगड़ा हुआ नौकरों में, और मालिक खींचे चले आए। तो नौकर मालिक मालूम होते हैं और मालिक नौकर मालूम होते हैं, ये पहली बात ख्याल में लेने जैसी है। और ये मनुष्य के संबंध में बड़ी गहरी बात है। कहानी में शायद तुम्हें सीधी साफ हो भी ना सके, क्योंकि ये कहानियां ध्यान के विषय हैं। इन कहानियों पर खूब ध्यान कोई करे तो इनकी परतें उखड़ती हैं। पहली परत, आंखें, हाथ, नाक, कान नौकर है, और मालिक इनके पीछे खींचा हुआ चला आता है। आंख ने कह दिया सौंदर्य है, और तुम चले दीवाने हुए, और तुम्हें पता भी नहीं है कि सौंदर्य है या नहीं। आंख ने कह दिया, आंख पे भरोसा कर लिया। कान ने कह दिया और कान पे भरोसा कर लिया। स्वाद ने कह दिया और स्वाद पे भरोसा कर लिया। ऐसे नौकर चाकरों के बस में मालिक घिसटता है। और जिस दिन तुमसे कोई पूछेगा गहरे में कि ऐसा तुमने क्यों किया, तुम कहोगे

कारण पता नहीं, तुमने देखा नहीं? कोई आदमी किसी के प्रेम में पड़ जाए, पूछो उससे क्यों, वो कंधे पिचकाता है, वो कहता है क्यों का तो कुछ पता नहीं। एक आदमी धन के पीछे पागल होकर दौड़ रहा है, पूछो क्यों, शायद वो कह चुकी सब लोग दौड़ रहे, सारी दुनिया दौड़ रही इसलिए, और भी दौड़ रहे हैं इसलिए। एक आदमी पद के लिए पागल है, पूछो क्यों, शायद सास उससे हो ही ना, इंद्रियों ने कुछ खबरें दी, इंद्रियों की खबरों को मान के भीतर का मालिक चल पड़ा है। तो साथ और कोलियों के राज के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेतों की सिंचाई करते थे। दूसरी बात, यहां हम सब एक ही जीवन को भोग रहे हैं, इसलिए झगड़ा तो प्रतिपल हो सकता है, क्योंकि हर एक के बीच वही नदी बह रही है, उसी से जल मुझे लेना, उसी से जल तुम्हें लेना, जीवन एक है। तो हम सब पड़ोसी हैं। जीसस का बहुत प्रसिद्ध वचन है, अपने पड़ोसी को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को, और एक दूसरा वचन है कि अपने दुश्मन को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को। संत अगस्तीन से किसी ने पूछा कि दोनों वचन एक से लगते फिर भी बड़े भिन्न हैं। एक तरफ जीसस कहते हैं अपने पड़ोसी को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को, और एक तरफ जैसे कहते हैं दुश्मन को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को। तो अगस्तीन ने कहा, जहां तक मैं समझता हूं, दुश्मन और पड़ोसी दोनों एक ही के नाम है, जो पड़ोसी है वही तो दुश्मन है। तुमने ख्याल किया तुम्हारा दुश्मन है कौन? तुम्हारा पड़ोसी। जो दूर है उससे तो दुश्मनी नहीं होती, जो पड़ोस में उससे दुश्मनी होती, क्योंकि एक ही जीवन की नदी, उस पर दोनों दावेदार। छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है, बातें ही क्या है, झगड़े के लिए कारण भी कहां है, झगड़े योग्य कारण कहां है? तुम लड़े किन छोटी छोटी बातों पर हो? कभी किसी ने आधा फुट जमीन दबा दी, झगड़ा हो गया। तुमने कभी सोचा भी नहीं है कि झगड़ के तुम क्या गमा रहे हो। और एक बात तो स्वीकार करने की ही है कि ये जीवन हमारा साझी का जीवन है, हम सब एक ही जीवन जी रहे हैं। तो नदी तो एक है, जल सबको पीना है, प्यासे सब हैं, और स्वभावतः छीना झपटी हो सकती है, लेकिन छीना झपटी करने में मूढ़ता है, मूर्छा है। दोनों जनपदवासी एक ही नदी के जल से अपने खेतों को सींचते हैं। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपदवासी साखियों और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई के लिए नदी पर गए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे, अब पहले से कुछ लेना देना नहीं है, खेत सींचना असली बात होगी। असली बात है कि खेत सूख रहा है, धूप घनी है, जेठ की दोपहरी है, पानी देना जरूरी है, असली बात पानी देना है। पहले और पीछे का कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन जीवन के सारे झगड़े पहले और पीछे के झगड़े। इतना हम भूल जाते हैं पहले पीछे में कि खेत में तो एक तरफ पड़े रह गए, जब झगड़े ही शुरू हो गया तो नदी से किसी ने भी पानी नहीं दिया, खेत प्यासे के प्यासे खड़े, खेत रोते के रोते खड़े। यहां दूसरी ही बात चल पड़ी। कई बार ऐसा होता है कि मूल कारण तो एक तरफ पड़ा रह जाता है, व्यर्थ की बातें बीच में आ जाती, फिर हम मूल को तो भूल ही जाते, फिर हम उन व्यर्थ पर ही जूझते रहते। पहले और पीछे का सारा झगड़ा है, सारी प्रतियोगिता इस बात की है कि कौन पहले। जीसस का दूसरा प्रसिद्ध वचन है कि जो अंतिम है, जो अंतिम होने में समर्थ है, वे ही मेरे प्रभु के राज्य के मालिक होंगे। जो अंतिम होने में समर्थ है, इस जगत में सबसे बड़ी सामर्थ है अंतिम होने की सामर्थ। प्रथम तो कोई भी पागल होना चाहता है, प्रथम होने में कुछ विशिष्टता नहीं है, सभी प्रथम होना चाहते। प्रथम होना तो बड़ी सार्वजनिक बीमारी है, प्रथम होने का पागलपन तो सभी पर चढ़ा है, और ये प्रथम होने के पागलपन को ही मैं राजनीति कहता हूं।
इसलिए राजनीति सारे झगड़ों का मूल आधार है। जब तक दुनिया से प्रथम होने का रोग नहीं जाता तब तक दुनिया से राजनीति नहीं जाएगी, और जब तक राजनीति नहीं जाती तब तक युद्ध नहीं जाएंगे, तब तक हिंसा नहीं जाएगी। लाख समझाओ अहिंसा, इससे कुछ भी ना होगा। तुम हिंसा का सूत्र पकड़ो, हिंसा का सूत्र है मैं पहले, अहिंसा का सूत्र है मैं अंतिम होने को राजी, क्योंकि असली सवाल होने का है। आखिर में खड़ा हो जाऊंगा, सबसे पीछे खड़ा हो जाऊंगा, वहां खड़ा हो जाऊंगा जिस जगह से कोई धक्का देने को आए ही नहीं। पहले का झगड़ा था, और जब पहले का झगड़ा हो तो पानी भी गौण हो गया, खेत भी गौण हो गए। खेत और पानी तो छोड़ो, जिनके लिए खेत की सिंचाई की जा रही थी वे मनुष्य भी गौण हो गए, जिनके लिए भोजन जुटाने के लिए खेत खड़े थे वे मनुष्य भी गौण हो गए। झगड़ा हो चला, क्या है झगड़ा सारी दुनिया में? रूस का अमेरिका का झगड़ा क्या होगा? भारत पाकिस्तान का झगड़ा क्या होगा? चीन तिब्बत का झगड़ा क्या होगा? इसराइल इजिप्त का झगड़ा क्या है? वही झगड़ा है, उसी झगड़े की ये कहानी। और जब इक्का दुक्का आदमी पागल होता है तब तो हम पहचान लेते हैं, जब भीड़ पागल होती तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब समूह के समूह पागल हो जाते हैं तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।
3: युग तुम हो हट गए।
4: ओम शांति एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी।
5: आप एक्शन जो जुडिशरी एक्शन है वो तो लेंगे, लेकिन एक बार वो आपके पास आ गए फिर आपको उनके साथ क्या करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाए। रिफॉर्म करने के लिए एक्चुअली क्या चाहिए होता है? जैसे आपने कहा, एक तो मोटिवेशन कि हम अपने आप को ही नहीं आज रिफॉर्म कर पा रहे या हम अपने आप को ही नहीं हील कर पा रहे, तो हम औरों के लिए कहाँ से करेंगे? और दूसरा टाइम, टाइम फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
4: देन अगेन माइंडसेट्स हैं कि क्रिमिनल्स कभी नहीं होते, आप कुछ भी कर लीजिए। इनफैक्ट एक और बहुत बड़ा माइंडसेट हमारे साथ चलता है कि जो सपोजिटली लोअर वर्कर्स हैं, दे नेवर चेंज, यू नो, दे विल ऑलवेज बी लाइक दिस।
5: लेबलिंग, अगेन लेबलिंग। तो वो जितना लेबल हम करते जाएंगे तो वो जो स्टैम्पिंग है वो और ज्यादा होती जाती है। अगेन हम क्या कर रहे हैं, वही जो हमने कहा, उनको अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर फिट कर रहे हैं। अगर किसी ने कुछ भी ऐसा किया कर्म थोड़ा सा, हम कहेंगे लेबर, वो तो सारे ही ऐसे होते हैं, यू नो, बिलीफ सिस्टम, वो बिलीफ सिस्टम में उनको फिट कर लेते हैं। तो रिफॉर्मेशन करने के लिए टाइम चाहिए, पेशेंस, पेशेंस बहुत चाहिए, कंटिन्यूस दोनों तरफ से, जो जिसे रिफॉर्म होना है और जिसे वो करना है, दोनों के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए।
4: आई थिंक और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक बात है जो रिफॉर्म नहीं होने देती, वो समवेयर ये भी है, जो रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है उसको कंटिन्यूस अवेयरनेस है कि मैं रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा
5: हूँ। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग। और वो पहली बात जो उसकी कॉन्शियसनेस है वो ये है, अगर जो रिफॉर्म करने के निमित्त है, अगर उसके अंदर ये कॉन्शियसनेस होगी कि ये क्रिमिनल है, तो वो उसे रिफॉर्म नहीं कर सकता। उसका हर एक शब्द और हर एक एक्शन एक पनिशमेंट ही है, क्योंकि वो क्रिमिनल को कर रहा है। तो वो, और फिर एक रिफॉर्मर के अंदर एक नेचुरल संस्कार ये क्या बन जाता है, गलतियां निकालने का, कमजोरियां देखने का और जजमेंटल बनने का। दैट इज नॉट रिफॉर्मेशन, क्योंकि फिर तो आप एक सटल तरह से पनिशमेंट ही दे रहे हैं। नॉर्मली अगर आप एक सीन ऑफ क्राइम को देखते हैं या एक गलती होते हुए देखते हैं, किसी ने किसी के साथ गलती की, एंड आई एम थर्ड पर्सन, लेकिन जब इन्होंने इनको दर्द दिया, सो कॉल्ड, जैसे हम सोचते, और मुझे भी वो दर्द महसूस होना शुरू हो गया, तो आई एम ऑल्सो अ विक्टिम, एंड अब आई एम इन द रोल ऑफ रिफॉर्मिंग। लेकिन बिकॉज आई एम अ विक्टिम, तो मुझे लगता है इन्होंने अत्याचार किया।

0: as the person is, without judgment, without that good, bad, right, wrong. वो judgmental नहीं होना है. हम उसके साथ जिसने अटैक किया है या जिसने गलती की है उसके साथ एम्पथाइज करना अब शुरू कर सकते हैं, उनको समझना शुरू कर सकते हैं कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया. When I understand कि मेरे अंदर क्लैरिटी आई है, कोई मुझे जो चीजें जैसी हैं वैसे समझ में आने लग गई है, नाउ आई ओनली हैव टू एम्पावर. रिफॉर्म नहीं करना है मुझे, मुझे उनको सशक्त करना है. वो भी मेरी तरह ही आत्मा है लेकिन वो कुछ बातों को भूल चुकी है, तो मुझे सिर्फ उन बातों की स्मृति को लाना है. लेकिन मैं वो तब ला पाऊंगी जब मैं उनको वो रिस्पेक्ट से देख सकती हूँ. क्योंकि जैसे क्रिमिनल देखा, देयर यू गो,
1: जैसे हमने वो आत्मा देखा, आत्मस्वरूप अपना वाला जैसे मैं हूँ वैसे देखा. बट आई थिंक
0: तब हम वो वाइब्रेशन भेज पाएंगे जो एम्पावरमेंट क्रिएट करेगी. और वो एम्पावरमेंट के लिए तभी हम कर पाएंगे जब हम उनको जज नहीं करेंगे कि ये क्रिमिनल है, वो भी मेरी तरह एक आत्मा है. जैसे वो थॉट क्रिएट कर लिया, यू सी व्हाट यू विल डू मैजिक विद देम. वो आप उनको रिफॉर्म नहीं करते हैं बिकॉज द वर्क इज ऑल डन बाय मी माई सेल्फ. लेकिन वो खुद जो करने की उनको शक्ति चाहिए बस वो हमें देनी है, वो स्मृति वापस लानी है. और उसके लिए हम ये टैग हटा दें कि क्रिमिनल है, और गुड बैड ये जो जजमेंटल हम बनने की कोशिश करते हैं ये हटा दें, और उनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी, क्योंकि उस समय क्या हो गया है, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है. तो वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो हम सबको देते हैं, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी अगर हम उनको दें, अपने आप को वो एम्पावर कर देंगे. हमें नहीं करना. सोल कॉन्शियसनेस विल वर्क एवरीवेयर, एवरीवेयर. ये हम जो ऑलरेडी थॉट क्रिएट कर देते हैं, वो ऐसा कहेंगे, वो ऐसा करेंगे, तो हम वो ऑलरेडी एनर्जी ट्रांसमिट कर देते हैं एंड देन वो ऐसा ही करेंगे.
1: तो हर नेगोशिएशन पे एक एम्पावर होके हम खुद जा सकते हैं.
0: अभी क्या होता है, या तो हम सुपीरियर फील करते हैं या इंफीरियर फील करते हैं, और सोल कॉन्शियसनेस में वी आर इक्वल. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हम तो सोल कॉन्शियस हैं, सामने वाला तो नहीं है, वो अपने अहंकार में है. लेकिन जब हम उसे वो दृष्टि से देखेंगे, तो है तो आत्मा, वो सिर्फ भूली हुई है. तो जब हम उसको उस दृष्टि से देखेंगे तो उसके अंदर भी वो स्मृति जागृत होगी, और आत्मा के जो गुण है वो ऑटोमेटिकली जागृत हो जाते हैं. ये सारे गुण कुछ बोलने से जागृत नहीं होंगे. आप कितना भी बोल दीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, इट वोंट वर्क. इट हैज टू कम फ्रॉम डीप विदिन, बट इट्स वेरी डीप रूटेड. ये लगता है कि नहीं तो बहुत ईजी है, हम जाकर वहां सोचेंगे कि ये तो आत्मा है.
1: हम भूल जाते हैं ना उस वक्त, क्योंकि बाकी सारी चीजों ने फॉग किया होता है.
0: थॉट भी नहीं आना चाहिए कि सामने वाले ने गलती की है, सामने वाला एक अपराधी है, सामने वाला, ये थॉट ट्रेस में भी नहीं होगा. तब वो प्योरिटी ऑफ वाइब्रेशन, इसको हम कहेंगे प्योरिटी ऑफ थॉट, जहाँ एक इम्प्योरिटी का ट्रेस भी नहीं है, दैट विल रीच टू द अदर सोल. And that will bring about empowerment.
1: That's wonderful. Actually, अगर हम पूरे aspect को देखें तो सारे क्राइम जो सीन्स हैं और इस वक्त जिस हालात में पूरा समाज है, मुझे लगता है कि आज हम में से हर कोई क्रिमिनल है. थॉट में नहीं, मतलब एक्शन में नहीं तो कहीं ना कहीं थॉट में तो है ही, लेकिन एक्शन में भी हम में से हर तीसरा बंदा जो है, तीसरा व्यक्ति क्रिमिनल नजर आ रहा है. यहाँ अगर हम क्राइम के सीन से हटके अपने घर पे भी आ जाते हैं, तो यही फिलॉसफी शायद हम अपने रिफॉर्मिंग ऑफ किड्स, यू नो, रिफॉर्मिंग ऑफ चिल्ड्रन, हमारे कि हमारा बच्चा बात नहीं मान रहा है, यही सही रास्ता है, ये ऐसे करना चाहिए उसे, लेकिन वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, रिबेल हो रहा है, तो यहाँ शायद वो पनिशमेंट की वजह.
0: जितना हम पनिशमेंट को यूज करते हैं, तो मेजोरिटी केसेस में ये देखा जाता कि जो रिबेल होने की नेचर है वो संस्कार और भी ज्यादा कड़क होता जाता है. जो हम यू नो कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे बहुत जिद्दी हो गए हैं या बहुत ढीठ हो गए हैं, कि अब कितना भी बोलो वो नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा जो शिक्षा देने का तरीका था वो कहीं ना कहीं, यू नो, वी यूज अ शॉर्टकट मेथड बिकॉज अगेन लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ पेशेंस, एंड मोर देन दैट आई थिंक लैक ऑफ अवेयरनेस माई सेल्फ.
1: I don't know. See, that's the biggest thing.
0: Right.
1: क्योंकि कभी भी कोई पेरेंट जानते बूझते नहीं करना चाह रहा होगा, लेकिन शायद वो जान ही नहीं पाते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है इस पूरे एटीट्यूड.
0: तो अपनी अवेकनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि जब हम जागृत अवस्था में रहेंगे तो हम औरों को भी अपने साथ लेकर चलेंगे. और अभी भी आपने देखा होगा कि अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान जितना हम अपने आप को समझ लेते हैं और हमें अंदर का पूरा मैकेनिज्म समझ में आता है कि ये सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, हम औरों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं. यू नो, जब कोई सामने से गुस्सा करता है ना, फॉर एग्जांपल, हमें पता चलता है

0: कि ये गुस्सा गुस्सा नहीं है, एक्चुअली ये अंदर कोई दर्द है, ये अंदर हर्ट है कोई, और ये दर्द एक गुस्से के रूप में बाहर आ रहा है. तो पहले हम कैसे रिएक्ट करते थे, गुस्सा कर दिया मुझे कैसे गुस्सा कर दिया. अब समझ में आता है ये गुस्सा थोड़ी है, ये तो अंदर कितना दर्द है. सो नाउ यू कैन नॉट हैव हेट्रेड, यू विल हैव कंपैशन. वो खुद इतने दर्द में है तो वो आपको भी सही पर्सपेक्टिव में नहीं देख पा रहे, तो उन्होंने वो कर्म किया. लेकिन उनको किस चीज की आवश्यकता है, अब वही बात होगी, एक दर्द में है, अब मैं उसकी बात को लेके मैं भी दर्द में चले जाऊं, तो हम दोनों को हेल्प कौन करेगा. और फिर मैं उनको और दर्द दूं, बच्चे ने गलती की पेरेंट के साथ, तो पेरेंट भी दर्द में चला गया, बच्चे को और दर्द दिया. It's become a cycle. And then it is, how do we come out of this cycle? And then we say we're all in pain. Who will heal who? Everyone is a patient now. So that's why let me take up the responsibility. And इसीलिए जो हम कहते हैं meditation के लिए time नहीं है, या I don't have time for myself. What we don't realize is it's not just for myself. It's for my family also.
1: For my all loved ones, you know, जिनके लिए मैं ज़िंदगी देने को तैयार हूँ, सब कुछ करने को तैयार हूँ. Unawareness में मैं कहाँ तक कितना नुकसान. रिश्तों की बात करें, मतलब हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको मैं जरूर थोड़ा सा छूना चाहूंगी कि आज जो रिश्तों में इतनी कड़वाहट, इतनी दूरियां, इतना कम्युनिकेशन गैप इधर इधर होते हुए नजर आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की बात करें या किसी भी तरह का रिश्ता, तो वहां पे भी शायद एक भी अगर जागरूक अवस्था में.
0: ओनली वन, यू नीड ओनली वन. कई बार घरों में लोग कहते हैं, ओ जी मैंने अगर अपने ऊपर मेहनत की, लेकिन बाकी सब लोग तो वैसे ही हैं. लेकिन कोई बात नहीं, बाकी सब वैसे ही रहेंगे. वन पर्सन हैज टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो एक करे, उससे औरों को तो बेनिफिट होगा, औरों को प्रेरणा भी मिलेगी करने की.
1: और उस एक को ये नहीं समझना पड़ेगा कि मैं एहसान कर रहा हूँ, यू नो समवेयर, ये इसके साथ भी कि मैं ही करता जा रहा हूँ, मैं ही कब तक करूंगा, मैं ही कर रहा हूँ.
0: जब अभी जब हम कुछ करते हैं इस तरह से, तो हमें लगता है कि मैं एहसान कर रहा हूँ. लेकिन जब अवेयरनेस से करेंगे, तो हमें समझ में आएगा दिस इज द वे टू बी. इसके अलावा तो और कोई रास्ता ही,
1: और ये मेरे लिए जरूरी है.
0: वे दिस इज द नेचुरल वे ऑफ लिविंग. अभी तक जो हमारा वे ऑफ लिविंग था, बिटरनेस को पकड़ के, हर्ट को पकड़ के, दैट वॉज नॉट अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग. और सफरिंग किसके लिए, बहुत प्राउडली हम कहते हैं उन्होंने ये कहा, मैंने अभी तक वो बात नहीं भूली, इतने साल से मैंने वो बात पकड़ के रखी हुई है. नुकसान किसका है, उनका, वो भूल चुके, अपना. सारा दिन अपनी सफरिंग सेल्फ क्रिएटेड है. इवन ये अगर हमें समझ में आ जाए, बॉटम लाइन, आई क्रिएट माई ओन सफरिंग, टिल व्हेन,
1: टिल आई अंडरस्टैंड, टिल आई अवेक,
0: लेट मी स्टॉप नाउ. नोबडी क्रिएट सफरिंग फॉर मी, नोबडी कैन कॉज मी पेन, ओनली एंड ओनली मी. How much more do I want to cause pain for myself? When will I stop? That's it. And then, मेरे को लगता है 10 minutes अपने लिए निकालना
1: मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं. In fact, that's it. ये तो हम understand कर ही चुके हैं, और अब हर बार और clarity से आता जा रहा है कि meditation is empowering my own self. You know, healing की हम बात कर रहे थे, ना सिर्फ healing अपने लिए, पूरे परिवार के लिए, और gradually पूरे समाज के लिए. जो अब बात ये करते हैं कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं, तो ये दिस इज द वे एक्चुअली टू गो आउट एंड लाइक फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ. तो सर शिवानी, आज की इस बातचीत ने कई परिपेक्ष तोड़े हैं, एक नया अंदाज दिया है जिंदगी को देखने का, और किस तरह से क्राइम या क्रिमिनल्स को देखना है बड़े परिपेक्ष में देखें तो वो भी बदल रहा है. जिंदगी कितनी खूबसूरत है, हम में से हर कोई ऐसा ही चाहता है, लेकिन जिंदगी जीते जीते कई बार जब ऐसे मोड़ आते हैं, जब लगता है कि हम हर्ट हो गए या मुश्किलें बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाती हैं, ऐसे में हमने इन दिनों की बातचीत में ये जाना कि जब हम हर्ट होते हैं तो या तो हम रिवेंज लेते हैं, वी वॉन्ट टू लैश आउट, या फिर हम पनिश करना चाहते हैं उसे जिसने हमें हर्ट किया है, या फिर हम ये सोचते हैं कि रिफॉर्म किया जाए. और इस पर हमने बहुत ही नए नज़रिए से बातचीत की कि इस ज्ञान को जानते हुए, खुद को पहचानते हुए, और अध्यात्म या ध्यान का साथ देते हुए, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, इस एस्पेक्ट को अपने साथ रखते हुए जब अब इन मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो एक नया अंदाज था. आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और क्षमा की बात करते हैं कि किस तरह से क्षमा हमारे जीवन में लाई जा सकती है, क्षमा का सही परिपेक्ष क्या है. और इस पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
0: ओम शांति.
1: सिस्टर शिवानी, अब बहुत डिफरेंट हो गया है सब कुछ, देखने का तरीका बदला है, और जिस तरह से हम एक सशक्त होके सुबह के ध्यान से जो एक शक्ति लेकर हम दिन भर उस बात को याद रखते हैं कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई कैन चेंज, नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, ये हर्ट भी मैं खुद ही अपने आप को दे रही हूँ, तो बाकी चीज़ें दिखने लगती हैं। इसी से जुड़ा एक और एस्पेक्ट होता है क्षमा का, उसको भी हम सही परिप्रेक्ष्य में अगर देखना चाहें, कहीं ना कहीं जब हम क्षमा करते हैं, हम कहते हैं कि वी फॉरगिव यू समवेयर, हम ऊपर उठ जाते हैं। वो ऊपर उठना आज मुझे थोड़ा डाउटफुल लगने लग गया है, हमारे बहुत से दर्शकों को भी, ये कहीं सही नहीं है। तो सही परिपेक्ष क्या हो?
0: जैसे हमने देखा कि आज दिन तक हम समझते हैं कि दूसरा हमें हर्ट कर रहा है, तो तब हमने जो रिस्पॉन्सेस क्रिएट किए वो थे बदला लेने का, पनिश करने का। उससे अच्छा हमने समझा कि दूसरों को परिवर्तन करने का प्रयास करें। और एक जो ऑप्शन हमारे पास है, यू नो, बिकॉज दीज आर ऑल चॉइसेस दैट वी हैव, कि जब एक इमोशन हमारे अंदर क्रिएट होता है, व्हाट इज़ द चॉइस दैट आई हैव दैट टाइम? फॉरगिवनेस, फॉरगिव करना या क्षमा करना। जो आज दिन तक हम सुनते आए कि क्षमा बहुत, यू नो, क्षमा अगर हम कर देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इट्स द हाईएस्ट थिंग दैट समबडी कैन गिव इफ यू कैन टोटली फॉरगिव।
1: इनफैक्ट ये कहा भी जाता है कि आप बड़े बन जाओ ना, क्षमा कर दो,
0: क्षमा कर दो कि उसने तो गलती की, आप क्षमा कर दो। तो क्षमा करना, ये आज दिन तक हमने रियलाइज भी किया कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि यस, इफ आई फॉरगिव देन एवरीथिंग इज ओके, लेकिन जब उसको करने पर आते तो कहीं ना कहीं मुश्किल लगता, क्योंकि फिर वही बात पकड़ लेते, लेकिन उसने हमारे साथ ये किया तो अब मैं कैसे क्षमा करूं, उसने तो मुझे इतना तकलीफ दिया, अब मैं इसको कैसे क्षमा करूं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि क्षमा क्या है, और अगर मुझे फॉरगिव करना है किसी को तो मुझे क्या याद रखना पड़ेगा जिससे मेरे लिए फॉरगिव करना, और वो भी फॉरगिवनेस की राइट परसेप्शन से, और उसको जब राइट पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे कि एक्चुअली भी हम फॉरगिव किसको कर रहे हैं, लेकिन हमें फॉरगिव करना वो और इजी हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे आज भी हमारे पास बहुत फोन्स आते हैं, बहुत ईमेल्स आती हैं, या हम जब एक दूसरे से भी बात करते हैं, वी रियलाइज के ईच वन, जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक विक्टिम बन के बात करते हैं। आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ इतना धोखा हुआ, मेरे साथ इतना अत्याचार हुआ, मेरे इन लॉज मेरे साथ ये कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, यू नो, देयर इज अ होल लिस्ट। सो वी आर ऑलवेज अ विक्टिम, एंड तब हम उस विक्टिम की फीलिंग में हम अपनी पूरी लाइफ काट देते हैं। तो अगर हमें रियली फॉरगिव करना है, आई विल हैव टू कम आउट ऑफ दिस विक्टिम, यू नो, आई एम द विक्टिम, यू नो, मेरे पर अत्याचार किया जा रहा है, हमें इससे निकलना होगा। और इससे फिर हम तभी निकल सकेंगे जब हम ये रियलाइज करेंगे कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, जो कुछ कर रहा है मैं कर रही हूँ। अभी तक समझते थे आई एम विक्टिम क्योंकि आप कर रहे हैं, लेकिन जब मैं खुद कर रही हूँ तो कौन विक्टिम और कौन विक्टिमाइजर? सबसे पहले क्योंकि फॉरगिवनेस के लिए एक बहुत एलिवेटेड स्टेज चाहिए, फॉरगिवनेस के लिए हमें प्यार चाहिए। आई कैन ओनली फॉरगिव इफ आई एम फिल्ड विद लव, इफ आई नो द ट्रूथ, इफ आई एम एट पीस, देन आई कैन फॉरगिव। अगर मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, मुझे मेरे अंदर नफरत है और प्यार का बिल्कुल कोई ट्रेस ही नहीं, तो फॉरगिवनेस कहाँ, वो पॉसिबल नहीं। तो वो विक्टिम की फीलिंग से बाहर निकल आइए कि जो है वो मैंने क्रिएट किया है, फिनिश भी
1: मैं ही करूँ,
0: मुझे करना है। अगर किसी ने मुझे फिजिकली हार्म कर दिया, यू नो, कोई एक्सीडेंट है, कोई फिजिकल अब्यूज है, या कुछ भी इस तरह से है, कोई मारपीट हो जाती है, चोट लग जाती है एक दूसरे की वजह से, तो आई हैव टू रिमेम्बर कि मैं शरीर नहीं हूँ जिसको चोट लगी। क्योंकि जब मुझे ये लगता है मुझे चोट लगी, यू नो, जब मुझे चोट लगी, आई हेट यू फॉर इट, आपकी वजह से मुझे ये चोट लगी, या मेरे शरीर के अंग को ये हो गया, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, तो चोट किसको लगी? तो शायद उनकी गलती की वजह से मेरे शरीर को तो चोट लगी, लेकिन मुझे चोट किसकी वजह से लग रही है? मुझे चोट तो अपनी वजह से लग रही है। तो देन व्हाट हैपेंस, दैट नेगेटिविटी जो हम दूसरे के प्रति फील कर रहे हैं, बिकॉज इसमें प्रोसेस क्या है अंदर, कि जो हम दूसरे के प्रति वो नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, उसको आई हैव टू, और ऑप्शन क्या है, और माफ हम किसके लिए कर रहे हैं? से एक तो या तो फिजिकल पेन है, अगर मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है वो फिजिकल पेन हो गया, लेकिन साथ साथ मैंने अपने को क्या हार्बर कर दिया, इमोशनल पेन भी कैरी किया। अब जो वो इंसिडेंट होता है वो तो एक बार होता है, बट मैं उसको अंदर ही अंदर अगेन रिलिव करते जाती हूँ, तो ज्यादा पेन कौन दे रहा? तो उस समय इफ मतलब इसमें बड़ा बनना या क्या कहे इसको, लेकिन ये अपने लिए ही और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे साथ। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है एंड इफ आई होल्ड इट विद मी, the loss is only mine. I have no other choice, actually. Maybe it requires a lot of knowledge and enlightening, but I have no other choice than to forgive if I want to lead a healthy life. आगे नहीं तो मेरी जो बाकी जीवन है वो सिर्फ दर्द में बीतेगी और ऐसी जीवन की फिर क्वालिटी का क्या?
1: बिल्कुल. और यहाँ पीयर प्रेशर, यहाँ सोसाइटी, समाज एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है. हम क्यों नहीं समझ पाते और पूरा समाज जो है वो जिसके साथ ये घटा है उसे बार बार बार बार वो याद दिलाता जाता है कि आपके साथ क्या घटा है.
0: एब्सोल्युटली. और वो एक रबिन हो जाता है कि आपके साथ अत्याचार हुआ, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ. तो क्या होता है वो नेगेटिव, सी एवरी टाइम हम किसी के साथ इस तरह से कहते हैं वो ऑलरेडी दर्द में है, वी गिव मोर के और नेगेटिव. सारा खेल तो एनर्जी का है ना, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोई उस विक्टिम फीलिंग में भी है तो वो नेगेटिव एनर्जी में है, हमें क्या देना है. और तभी हमने देखा कि इफ आई एम इन दैट पीसफुल स्टेट तो मैं उस आत्मा को भी वो शांति की वाइब्रेशन, वो पावरफुल वाइब्रेशन देकर उसको उस दर्द से बाहर निकलने में मदद करूं.
1: पेन में हूँ
0: अगेन, अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मैं जो एक अगेन मैं विक्टिम हूँ, इस फ्रेम ऑफ माइंड से निकलना पड़ेगा. मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है या मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया है, वो एक बार हो गया है, ठीक है, अब मुझे विक्टिम बनकर कितना समय चलना है? दिस आई विल हैव टू आस्क, बिकॉज अदरवाइज मैं पूरी जीवन चल सकती हूँ विद दिस थॉट कि मैं विक्टिम हूँ, यू नो, और वो जीवन फिर क्वालिटी बहुत दर्द वाली होगी. तो उससे बाहर निकलना होगा कि मैं विक्टिम हूँ, एक इंसिडेंट था, ओवर, आई हैव टू मूव अहेड. विक्टिम वाली फीलिंग से बाहर निकलना होगा. और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जीवन है, जीवन की यात्रा में चीज़ें आएंगी, ये होता है, ऐसी चीज़ें होंगी, अगर कोई ऊपर नीचे बात हो जाती है, आई हैव टू मूव ऑन टेकिंग इट, कि इट्स अ लेसन विच हैज़ कम फॉर मी, आई हैव टू लर्न फ्रॉम इट, move on. I have a choice. जैसे कई लोगों की आदत सी हो जाती है कि जो उनको मिलता, जहाँ वो बैठते, जिसके साथ बात करते, वो वापस वही बात दोहराना शुरू कर देते हैं. आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? You know, even not, we're not talking of really, you know, victims on some big...
1: I can talk about myself, yeah. At times we start sharing, actually, itna zyada.
0: Aapko pata hai, mere saath kya hua? And wo ek record ki tarah play hota jata hai. Ke jahan baithe logon ke saath, apna, jaise bolte hai na, apna rona shuru kar dete hai. Ke mere saath kya hua? Mere saath kya hua? We are not able to move ahead. To mere saath jo hua... वो हुआ, लेकिन मैं जितनी बार उसको रिपीट करती हूँ और जितनी बार वो एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करती हूँ तो वो कितनी बार हो जाता है. सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इवन पहली बार जो किसी ने मेरे साथ कुछ किया गलत, लेकिन उसकी जो फीलिंग थी वो तो मैंने ही क्रिएट की, लेकिन ये जो बार बार मैं क्रिएट करती हूँ ये किसने क्रिएट की? मैंने की. तो आई हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स हैपन, I have to move on. वो एक रिकॉर्ड प्लेयर जैसे अटक जाता है ना नीडल, वहां पे उसी लाइफ के उस सीन पर आकर हम अटक जाते हैं और उसी सीन को बार बार दोहराते रहते हैं.
1: लेकिन बहुत मुश्किल होता है उसे बाहर निकला, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ विशियस सर्कल. अगेन शायद एक बार हमने पेन की बात की थी, तो एडिक्शन हो जाता है या वट एवर इट इज. It is, you know, at times I have seen people actually getting into it और वो निकलते ही नहीं, निकलना ही नहीं चाहते. और वो उस victimized जो खासकर जो ज़्यादा trauma से गुजरे होते हैं वो, तो वो कौन सी विल पावर है, कौन सी ऐसी बात है जो हम एक कोशिश कर सकते?
0: मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ और जो हुआ that is now over. अब मुझे focus सिर्फ किस पर करना है कि आगे क्या, क्योंकि पास्ट ठीक है वॉज नॉट वेरी नाइस, लेकिन मुझे फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए अंदर की स्थिति को ठीक करना ही पड़ेगा. क्योंकि अगर मेरी स्थिति ठीक नहीं होगी तो आगे की परिस्थिति भी ठीक नहीं होगी, एंड आई कंटिन्यू टू लिव इन दैट पेन. जैसे कई बार हमारे पास कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं या फैमिलीज आती जिनके घर में कुछ बात चल रही है, लाइक लेट्स से बच्चा डिप्रेशन में है या किसी बच्चे का डिवोर्स का कुछ चल रहा है, कुछ भी इस तरह का एक बहुत बड़ी बात होती है उस परिवार के लिए. तो सबसे पहली चीज जो हम उनके साथ शेयर करते हैं, स्टॉप डिस्कसिंग दिस इन द हाउस. स्टॉप इट, टोटली स्टॉप इट. क्योंकि जब तक आप उसको डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि एंडलेस है वो जो डिस्कशन होती है. जैसे कई पेरेंट्स हैं जिनकी बेटी घर आई है, यू नो, अपने हस्बैंड से अलग होकर आ गई है या वो प्रोसेस में चल रहे हैं. अब उस बेटी को उससे बाहर निकलना है, लेकिन सारा दिन घर में डिस्कशन क्या होती है?
1: वही हो रही होती है,
0: वही डिस्कशन हो रही है. तो हम उससे बाहर निकल रहे हैं या उसके अंदर और भी घुस रहे हैं, तो हमें इतना स्टॉप करना है कि हमारे थॉट में भी ना वो बात आए. लेकिन हम तो पूरा टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं, या वो ऐसा है, वो ऐसी है, यू नो दैट होल डिस्कशन. और जब भी फैमिली आती है, रिलेटिव्स आते हैं, क्लोज फ्रेंड्स आते हैं, अगेन दैट्स द ओनली टॉपिक.
1: और बार बार उससे क्या है, वो रिजेंटमेंट, कहीं वो मेरे ख्याल से थॉट खत्म भी होने वाला हो, क्योंकि वायुमंडल में इतना ज्यादा वो फैला हुआ हो. एंड नाउ आई कैन क्लियरली सी इट, यू नो, कि हम विजुलाइज कर सकते हैं कि व्हाट रियली हैपेंड.
0: एब्सोल्युटली. तो वो पूरे घर का और उस फैमिली का एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा. तो वो बेटी या वो बच्चा अगर निकलना भी चाहे उससे, हम ही निकलने नहीं दे रहे, यू नो. हम भी बार बार, और बहुत हम उनको यही कहते हैं कि सिंपथी नहीं चाहिए, नॉर्मल. Just treat the person as normal. क्योंकि जितनी बार आप sympathy देंगे, आप फिर उनको वही याद दिला रहे हैं कि आप victim हैं. You know? तो एक तो मैं खुद feel कर रही हूँ कि मैं victim हूँ, और दूसरा सब मुझे feel करा रहे हैं कि मैं victim हूँ by बार बार saying बेचारे आप.
1: I think somewhere, you know, why बाकी सब लोग भी हम क्यों feel करवाते हैं, because we also like the sense of power that, you know, we are able to help somebody.
0: True.
1: Because we don't, we would like to help somebody,
0: right? But we're not really helping.
1: Yes,
0: you know, a help at that time would mean empowerment. Lekin baar baar keh kar ke, hai aapke saath aisa hua, bichare aap, ab aapka kya hoga, ya even ye kehna koi baat nahi sab theek ho jayega, matlab it's not to hurt anyone, lekin koi baat nahi sab theek ho jayega wo theek hai, but by saying that we're saying ki abhi sab galat hai. You know, to jitna hum normalcy ko create kar sake, सब ठीक हो जाएगा ये बोलने की बात नहीं है, सब ठीक क्रिएट करना है घर के वायुमंडल में. और बिल्कुल वायुमंडल ऐसा हो जाना चाहिए, बातचीत करने का तरीका ऐसा हो जाना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है. देन वी आर एबल टू फिनिश इट.
1: बहुत बहुत धन्यवाद.
0: ओम शक्ति.
1: ओम शक्ति.

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपके कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और हम सबके कल्याण के लिए हम शिव पुराण सुनवा रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव कल्याणकारी हैं, मंगलकारी हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि हर मानस का मंगल हो, कल्याण हो, सबके दुखों का विनाश हो सके। इसीलिए इसी उद्देश्य को लेकर हमने यह ग्रंथ आरंभ किया है और इसको सुनवाने के लिए हम अपने स्टूडियो में हमेशा ही लीना जी को आमंत्रित करते हैं। आज भी हमारे स्टूडियो में लीना जी उपस्थित हैं। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद बंधु जी।
0: लीना जी, बड़ी अच्छी प्रसंग आप सुनाती हैं हमारे दोस्तों को, इसमें से पढ़ पढ़ के सरल भाषा में, ताकि उनको समझ भी आ जाए और वो प्रेरित भी हो सकें। आपने पिछले एपिसोड में बताया कि नारद जी बता रहे हैं कथा कि हिमालय ने सबकी सुनकर क्या किया, क्या निर्णय लिया। तब हिमालय ने गर्गाचार्य से लगन पत्रिका लिखवा कर शिव जी के पास भेज दिया। फिर सप्त मुनि सब कुछ देकर अपने निवास स्थान पर लौट आए और हिमालय ने विवाह से संबंधित सामान का संग्रह कर किया। पर्वतों की स्त्रियां पार्वती का श्रृंगार भी करने लगी। वेद व्यास ने नारद जी के कहने पर ही यह ग्रंथ लिखा था। अब विभिन्न प्रकार के पर्वत, देवालय पर्वत दिव्य रत्नों के साथ आए, मंदराचल पर्वत विभिन्न रत्नों के और मणियों सहित वहां पहुंचे। इसी प्रकार से सभी पर्वत अपने अपने परिवारों के साथ रत्न मंडित होकर वहां पर पहुंचे, शोभा बढ़ाने के लिए हिमालय के घर में। अब लीना जी, और विवाह की क्या तैयारियां वहाँ चल रही थी? यह तो अद्भुत अलौकिक विवाह था जिसे देखकर देवता तो प्रसन्न होते हैं। हम तो सुनकर ही ऐसा लग रहा है कि हमारा तो जीवन ही सफल हो गया सुनने मात्र से, और लग रहा है कि कैसा दृश्य रहा होगा, कितना अलौकिक दिव्य दृश्य रहा होगा वो, जो जिनसे जिन्होंने इसका दृश्य में शामिल